0: inside the Saudi Arabia, and they have proven that during last many days. So it is clearly now the escalating. Now the ball remains with the Saudis, that what kind of diplomatic way they take, because already they have requested the Sultan of Oman to put the Houthis, to make a ceasefire between the Houthis and the Saudis and the Yemeni government forces for the week. But the Houthis are not ready for the ceasefire without the demand they have put forward. The first and important demand of the Houthis is that the blockade which has been put by the Yemeni government with the help of Saudis should be removed first of all. Then there will be any kind of a negotiation. But,
1: Ashraf, you know, Saudi Arabia is also claiming that it is in fact Iran which is backing the Houthis and making it carry out these attacks on Saudi.
0: Anjali, it is not the hidden thing that the Houthis are not today, but for the years being backed by the Iran. They have got the weaponry, technologies and everything what they have from the Iran, because Iran is openly supporting the Houthi forces. That is the reality. But so far it has put the pressure, because we have seen during the last 6 months now the Middle East war is going on between USA and the Iran. And also, most of the Middle East air bases of the U.S. were targeted by the Iran. They have not so openly targeted Saudi Arabia, but it seems now that Saudi Arabia has been targeted by the Houthis to put another pressure for the international oil routes, because the Red Sea and the Bab al-Mandab is now in the control of the Houthis. They have removed the Yemeni forces, which are the Saudi backed, from the Bab al-Mandab, and also the massive fight is going on in the two main cities of the Yemen, where the Houthis are trying to take control. If the Yemeni government backed by the Saudi is being dragged out by the Houthis
1: right.
0: from these two cities, Taiz and the Maqam, then probably it will be difficult for the Yemeni government to survive against Houthis.
1: All right, Ashraf, thank you for those details. A clear escalation between the Houthis and Saudi conflict. There has been targeted attack on the civilian infrastructure. And these are the visuals from Riyadh. This is from near the Riyadh airport. Some more news coming in. Prime Minister Modi mocked at Rahul Gandhi's Chhatron Ki Goonj rally in Indore yesterday. Rahul Gandhi uses comedian to lampoon Modi actions. Comedian mocks Prime Minister Modi and Rahul Gandhi plays along. Prime Minister Modi's give seat to elderly woman remark was mimicked and mocked. A political roast of Prime Minister Modi's humane gesture. BJP has slammed, calling it Congress heartless politics. The BJP has said that don't cross the limits of decency. So the big question was a red line crossed during this Chhatron Ki Goonj rally and during this mimicry of Prime Minister Modi. So Prime Minister Modi's public speaking and catchphrase was mimicked by the comedian who was there at Rahul Gandhi's rally. He was sharing stage with the leader. Meanwhile, BJP has said that the Congress party's ruthless politics has nothing whatsoever to do with tenderness, empathy or service. Drenched in the politics of power, the Congress has drifted miles away from that spirit of public service in which compassion and sensitivity towards the last person in society reign supreme. My colleague Ravish Pal is now joining us on this story. Ravish, a very good morning to you. Ravish, ये जो comedian ने mimicry की Prime Minister Modi की कल, जिसमें कि एक जो line थी, वो प्रधानमंत्री मोदी ने दो साल पहले एक old woman को एक chair देने के लिए जो कहा था, उस चीज़ की mimicry की गई, जिसके बाद BJP ने Congress को attack किया है कि कोई sensitivity नहीं है, कोई empathy नहीं है Congress में.
2: जी बिल्कुल, कल अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने तीन तरफ से अटैक किया है राहुल गांधी की छात्रों की गोल से, और इसमें सबसे ऊपर जो है राहुल गांधी और जो कॉमेडियन है उन्होंने जो मिमिक्री की थी उसको लेकर के किया है, और खुद इस फ्रंट को लीड, इस पूरे इशू को लीड कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, क्योंकि सबसे पहला रिएक्शन कल उन्हीं का आया जब ये पूरी मिमिक्री का एपिसोड हुआ, क्योंकि इंदौर में था, मध्य प्रदेश में था ये इवेंट छात्रों की गुंज, और कल दूसरों के रिजल्ट भी आए थे, तो उसको देखते हुए कल ये अटैक किया है तीन तरफ से बीजेपी ने. सबसे पहले तो राहुल गांधी और कॉमेडियन ने जो मिमिक्री की थी उसे लेकर के उन्होंने बताया कि एक तरीके से न केवल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो स्वर्गवासी माँ है उनका अपमान है, बल्कि इसके साथ ही उन तमाम बुजुर्ग महिलाओं का भी अपमान है जिनको एक तरीके से देश में महिलाओं को देवी की तरह पूजा जाता है. और अगले कुछ दिनों के बाद, क्योंकि नवरात्र का त्योहार भी आना है और घर घर पे जो है कन्याओं का पूजन भी होगा, तो इसे लेकर के अटैक किया है सबसे पहले डॉक्टर मोहन यादव ने. उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी के नेता अपनी मेंटेलिटी के कारण हमेशा से ही न केवल महिलाओं का, कन्याओं का अपमान करते रहे हैं, बल्कि इस तरीके से वो लगातार ये बता भी रहे हैं कि वो किस सोच के साथ बड़े हुए हैं, और इसके लिए उन्हें ना केवल महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए बल्कि देश से भी माफी मांगनी चाहिए. तो ये सबसे बड़ा अटैक किया गया था इस मिमिक्री वाले एपिसोड के साथ. और इसके अलावा जो छात्रों की गूंज में जो इश्यूज उठाए गए थे, जो लोग वहां पे पहुंचे थे राहुल गांधी के सामने, उन्होंने जो अपनी बातें रखी थी, और कांग्रेस ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश के एजुकेशन सिस्टम को लेकर के जो एग्जाम्स होती है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स मध्य प्रदेश की जो होती है सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से, उसको लेकर के जो अटैक किया था उसका भी पॉइंट वाइज जो है एक तरीके से काउंटर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से किया गया है. और खासतौर से कल जब दूसरों के रिजल्ट आए थे, और एक तरफ NSUI वहां पे पूरी तरीके से पीछे हो चुकी है, ABBP लीड कर गई, इंडिपेंडेंट एक सीट पे जीते, तो उसके बाद जो है पूरी तरीके से इस इवेंट को, छात्रों की गूंज इवेंट को बीजेपी ने झूठ की गूंज बता करके एक तरीके से इसका
1: जी. रविश, हमारे साथ बने रहिए. लेट्स वंस अगेन लिसन इनटू व्हाट एग्जैक्टली वाज द रिमार्क एंड द मिमिक्री दैट वाज डन एट राहुल गांधीज इवेंट यस्टरडे.
3: और बताइए, और बताइए थोड़ा.
4: माँ को कुर्सी दो, माँ माँ.
3: और बताइए, और बताइए थोड़ा.
4: माँ को कुर्सी दो, माँ माँ.
3: और बताइए, और
1: बताइए. माय कॉलीग रविश कंटिन्यूज टू स्टे विद अस. रविश, अभी बीजेपी ने बड़े बड़े अटैक किए हैं कांग्रेस पार्टी पे, ये कहते हुए कि कोई ममता नहीं है, कोई एम्पथी नहीं है, कोई सिंपथी नहीं है बुजुर्ग महिला के लिए. लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा था, जब 80s का ट्रेंड चल रहा था, तब बीजेपी के कुछ ऑफिशियल हैंडल्स ने भी कई आपत्तिजनक वीडियोज और फोटोज पोस्ट करी थी, जो कि अलेजेडली सोनिया गांधी की थी.
2: बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए इस पूरे मामले को, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के जो IT सेल्स हैं उन्होंने लगातार एक दूसरे के लीडर्स के ऊपर इस तरीके के 80s के जो पोर्ट्रेट थे उसे बना करके अटैक किया था. और जहां एक तरफ कांग्रेस के IT सेल की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे लगातार हमला हो रहा था, उनकी तस्वीरों को सामने रख करके अटैक किया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का जो IT सेल है, फिर बाद में उसने कांग्रेस की जो सबसे बड़ी लीडर है सोनिया गांधी, काफी डेरोगेटरी फोटोज जो है वो डाल करके उसे स्लैम किया था. तो दोनों ही तरफ से उस दौरान भी काफी जोरदार एक दूसरे के ऊपर अटैक किए गए थे. लेकिन सोनिया गांधी क्योंकि एक महिला है, और वो न केवल एक महिला है बल्कि इस देश की सबसे पुरानी पार्टी की सबसे बड़ी हेड है आज की तारीख में, और जो उनका पूरा जीवन काल रहा है वो इस देश में आई शादी करके उसके बाद फिर यही की होकर रह गई, उनकी सास की हत्या हुई, उनके पति की हत्या हुई, तो एक तरीके से वो भी एक बड़ा डेरोगेटरी रिमार्क था और उसकी वजह से बीजेपी को भी काफी कुछ जो है आलोचनाएं झेलनी पड़ी थी। लेकिन महज कुछ ही दिनों के बाद अगर आप देखें तो जिस तरीके से राहुल गांधी के सामने जो कॉमेडियन है उन्होंने एक बुजुर्ग महिला की मिमिक्री की है, नरेंद्र मोदी की मिमिक्री की है वहां पे, तो वो एक तरीके से बताया जा रहा है कि शायद ये उसका भी काउंटर हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर ये इसलिए ज्यादा एक बड़ा इश्यू बन गया है क्योंकि जो प्रधानमंत्री है उनकी माँ जो है वो इस दुनिया में है नहीं। दूसरी बात, जो छात्रों की गूंज इवेंट हुआ था इंदौर में, जब एक तरफ इवेंट हो रहा था तो दूसरी तरफ दिल्ली में यानी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट यूनियन है उसके रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे थे जिससे एनएसयूआई पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। तो इसे लेकर के अगर देखा जाए तो ये एक बड़ा कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल बनता चला गया कि अगर राहुल गांधी की छात्रों की गूंज इतनी ही इम्पैक्टफुल है तो फिर क्यों ऐसा हो रहा है कि अगर वो कोटा में छात्रों की गूंज करते हैं तो वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दूसरी तरीके से तीन सीट बीजेपी कर जाती है, अगर वो छात्रों की गूंज की दूसरी जगह करते हैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के बीच में करते हैं तो उसका भी असर हो नहीं रहा है। खासतौर से जेन जी को राहुल गांधी अपने साथ लेके चल रहे हैं तो फिर वहां पे डीसी में एनएसयूआई क्यों साफ हो गई।
1: जी रविश,
2: जब इन सब के बीच में मिमिक्री होती है एक बुजुर्ग महिला के नाम पर नरेंद्र मोदी की तो फिर वो एक बड़ा मुद्दा बन जाता है, वो पूरी तरीके से डाइवर्ट हो जाता है छात्रों की गूंज का जो मोर कोर इशू है उससे।
1: बिल्कुल रविश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेट्स वंस अगेन लिसन इन टू व्हाट वाज द ओरिजिनल रिमार्क दैट वाज मेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड द मिमिक्री दैट वाज डन यस्टरडे।
4: बुजुर्ग माता जी को चेयर दे दीजिए भाई, ये बुजुर्ग माता जी को चेयर दीजिए, एक कुर्सी दे दीजिए माता जी को। बुजुर्ग माता जी को चेयर
3: और बताइए थोड़ा
4: माँ को कुर्सी दो, माँ माँ
3: और बताइए थोड़ा
4: माँ को कुर्सी दो, माँ माँ।
1: Meanwhile, BJP students wing ABVP has swept the Delhi University elections, winning 3 of the 4 central posts. But the ABVP's victory has triggered a full-blown political showdown, with the Congress-backed NSUI failing to secure a single position on the central panel. The BJP has hailed ABVP's victory, saying that the verdict has exposed Congress' jhoot ki goonj and shows where the faith of the youth lies. In an exclusive conversation with India Today, Health Minister JP Nadda said that Rahul Gandhi's politics of lies had been busted, adding that the Dusu verdict reflects that the youth is inspired by the vision of a Viksit Bharat. Hitting back, the Congress has claimed that there were persistent attempts to rig the Dusu election and influence the counting process, stressing that charges of malpractice must be examined. Meanwhile, Rahul Gandhi held another Chhatro Ki Goonj event in Indore yesterday and took aim at the education system. Rahul Gandhi said that students are under pressure and losing hope in the system and alleged that the BJP RSS had captured the education system.
5: सिस्टम को स्टूडेंट से खतरा है। क्यों खतरा है? क्योंकि सवाल पूछता है स्टूडेंट। स्टूडेंट कहता है कि अमित शाह जी के बेटे क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन कैसे बन गए, यह सवाल स्टूडेंट पूछता है। स्टूडेंट पूछता है कि हिंदुस्तान के पूरे बिजनेस को दो लोगों ने कैसे कैप्चर कर दिया। स्टूडेंट पूछता है कि जुडिशरी और बाकी संस्थाएं क्यों नहीं अपना काम करती हैं। स्टूडेंट पूछता है इलेक्शन कमीशन अपना काम नहीं करता। इसीलिए सिस्टम स्टूडेंट नहीं चाहता है, सिस्टम अंधभक्त चाहता है। अंधभक्त कौन है? अंधभक्त एंटी स्टूडेंट है। जहां स्टूडेंट सवाल पूछता है, जहां स्टूडेंट क्यूरियस है, वहां अंधभक्त डेल्यूजनल है, अपनी दुनिया में रहता है। यह है हिंदुस्तान की शिक्षा का बजट। पहले 2014 में जब हमारी सरकार थी, बजट का 4.6% शिक्षा में जाता था। उसके बाद बजट कम करते करते करते करते 2.6% ऑफ बजट एजुकेशन में जाता है। 7.7 लाख करोड़ रुपए जो शिक्षा में जाने थे, अगर वो बजट मेंटेन किया जाता, वो शिक्षा में नहीं गए, वो अरबपतियों के हाथ गए, वो अदानी अंबानी के हाथ गए।
6: हर चीज को चुनाव से ही जोड़ेंगे तो असम, उत्तराखंड लगातार हम कहीं जीतते चले जा रहे हैं, तो आप उनका नाम नहीं लेंगे, छोड़ दीजिए वो जीतना या ये हारना, मैं उनको इन मुद्दों से नहीं जोड़ूंगा। हम जीते भी कई चुनाव अभी नौजवानों के, हमारा एक सिंसियर एफर्ट है कि इस पीढ़ी को अंधेरे में जाने से बचाना है। अब प्रधानमंत्री की क्या प्राथमिकता है आपके सामने है, दिए जलाओ तो चुनाव के लिए, दिए बुझाओ तो चुनाव के लिए, हर चीज चुनाव के लिए, और यही चुनाव इन्हें ले डूबेगा, क्योंकि ये चुनाव चुनाव करते रहता है ना जो आदमी, ये चुनाव ही इसको ले डूबेगा।
7: आज इंदौर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने अपनी झूठ की गूंज का कार्यक्रम किया, और जैसा कि होता है कि नेता प्रतिपक्ष हमेशा अपने विषय के प्रति लापरवाह भी रहते हैं, आज भी वो बगैर तैयारी के कुछ ऐसे बच्चों को, कुछ युवा मित्रों को जिनकी बात क्वेश्चन आंसर में आना चाहिए थी, बात करना कराना चाहिए थी, ऐसा लगा कांग्रेस के लोगों ने केवल अपने एजेंडे के आधार पर जनता के बीच भ्रम फैलाने की दृष्टि से बात कही।
1: And my colleague Anmol Bali interacted with the new DUSU President, Secretary and Joint Secretary from the ABVP after their victory. Listen in.
8: हमारे लिए हर एक वर्ग एक समान है। हमारे विद्यार्थी परिषद में हमें सिखाया जाता है कि तुम जातिवाद से तोड़ोगे हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे, तुम क्षेत्रवाद से तोड़ोगे हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे।
9: Okay, so I'm also joined by Secretary winner Riya Chhavri, but you have to say you are a only woman in the panel. So what main issues you will be focusing in the panel, because you are the only woman candidate in the panel?
10: As a girl candidate, मेरा main motive women safety का ही रहेगा, और मैं ये ensure करूंगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर एक लड़की को, हर एक स्टूडेंट को सेफ सिक्योर फील हो, और जो दूर से लड़कियां पढ़ने आती है, जो दूर से हमारी बहनें पढ़ने आती है, उनको एक होम फील हो।
9: So these were the winning candidates from the AVVP. I'm also joined by Lakshya Rath, the Joint Secretary. We have also seen a tough fight by the independent candidate on the Joint Secretary position. So what do you have to say?
11: हाँ जी, मतलब काफी tough था, जो मेहनत मतलब मैंने करी वैसी मेहनत उनकी भी थी, तो उस मेहनत के अंदर वो मेहनत थी तीन जगह बटी हुई थी, तीन लोग उसी एक ही पोस्ट के ऊपर लड़ाई लड़ रहे थे, और तीनों काफी साल से मेहनत कर रहे थे, बट अंतिम शायद मुझे लगा मेरी ज्यादा मेहनत थी तो मैं ज्यादा अच्छे वोटों से जीता हूँ।
9: डूसू के इतिहास में पहली बार कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत कर आया है,
12: और सबसे ज्यादा वोट भी मेरी आज तक के डूसू के इतिहास में 30,610 वोट मुझे मिले हैं, जो आज तक शायद डूसू के इतिहास में हमने नहीं देखा किसी की आई हूँ किसी भी पोस्ट पर।
9: दो रिकॉर्ड आपने दीपांशु भाई तोड़ दिए, पहले आप वजह बताइए, आपने जूते छोड़ रखे थे सारे चुनाव प्रचार में, मैं कवर कर रहा था, सोशल मीडिया पर रील्स देख रहा था, कहाँ है जूते आपके?
12: ये जूते सिर्फ उतरना नहीं, ये न्याय सत्याग्रह की शुरुआत मेरी सत्या निकेतन से हुई थी, कि जब तक उन छात्रों को इंसाफ नहीं मिलता जिनकी हत्या उस हादसे में हुई, तो मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा। तो 1.5 लाख छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनको जो परेशानियां हो रही हैं, तो नंगे पैर चलकर जो परेशानियां मुझे होती थी, वो एहसास दिलाती थी कि मुझे उन 1.5 लाख छात्रों की आवाज बनना है, तो उनकी परेशानियों के लिए मुझे कुछ करना है।
1: And Union Minister J.P. Nadda came down heavily on Rahul Gandhi over the DUSU polls. Listen in to what he told my colleague Piyush Mishra.
13: कितना परिवर्तन आप पिछले कुछ दिनों से लेकर अब तक में देखते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में न सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय के नतीजे आए, बल्कि पंजाब में चंडीगढ़ में जो रिजल्ट आए वो भी काफी उत्साहजनक थे पार्टी के लिए।
14: देखिए,
13: सबसे पहली बात यह है कि जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, उनकी अंडरस्टैंडिंग यूथ के बारे में बहुत सुपरफिशियल है। उनके वो कार्यक्रम जो रचते हैं, भगवान भला करे उनका, झूठ की गूंज आपने देखी ही, जो वो तो सबको स्पष्ट है। लेकिन दिल्ली में धमाका हुआ और पंजाब में धमाका हुआ, पंजाब यूनिवर्सिटी में, ये सबने देखा है। साफ है कि भारत का युवा अपने आप को विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया, प्रधानमंत्री मोदी जी की सपनों को साकार करने के लिए आतुर है और उसको अमली जामा पहनाने के लिए वो उसमें लगा हुआ है। उसी को वो उसके साथ अपने आप को अलाइन करके चल रहा है। और इसलिए मैं डूसू के जो पदाधिकारी जीते हैं उनको मैं बधाई देता हूं। ये राष्ट्रवादी शक्तियों की जीत है, पहली बात। दूसरी बात, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र सिर्फ दिल्ली का ही नहीं है, सारे देश के छात्र यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, इसलिए ये देश का मूड युवा का वो भी प्रतिलक्षित करता है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने डूसू में एबीवीपी को, राष्ट्रवादी संगठन को आगे लाने का प्रयास किया है। और ये झूठ की गूंज, आपको मालूम है कि इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, पड़ता है, और अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ठीक है, वो विपक्ष के नेता हैं और आप सब लोग मीडिया में विपक्ष के नेता को जो कवरेज देनी चाहिए वगैरह आप देते हैं, लेकिन जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है देश के विषयों के बारे में वो बिल्कुल सुपरफिशियल है और उनकी कुछ समझ में नहीं आता।
14: तो क्या छात्रों की गूंज जब गूंज रही है, आपको लग रहा है सर जो नतीजे आए,
13: गूंज कहाँ है, ये जो जीत है ये धमाका है।
14: तो उनका छात्रों का गूंज और आपका छात्रों का धमाका
13: राष्ट्रवादी ताकतों का, राष्ट्रवादी ताकतों ने एक तरीके से रिजॉल्व किया है, उन्होंने अपना मंतव्य बड़ा स्पष्ट किया है।
1: सो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा क्लियरली टेकिंग अ ड्राइव एट राहुल गांधी, रेफरिंग टू हिज छात्रों की गूंज रैली एंड ऑल्सो मॉकिंग द कांग्रेस पार्टी ओवर द डूसू रिजल्ट इन विच NSUI फेल्ड टू इवन विन अ सिंगल सीट। विद दैट इट्स अ रैप ऑन दिस बुलेटिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडिया टुडे। मोर न्यूज एंड अपडेट्स विल कंटिन्यू ऑन द अदर साइड।
15: यू आर वॉचिंग India Today.

भर्ती बोर्ड और आयोग तब शासन की किसी राजनीति का शिकार नहीं होते हैं और वहां से पारदर्शी और स्वच्छतापूर्ण प्रक्रिया परीक्षाओं की संपन्न होती है तो उसके परिणाम इसी रूप में देखने को मिलते हैं जैसे आज ये नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। यहां पे जो अब मेरे सहयोगी गण बोल रहे थे कि अब तक 9.5 लाख नौजवानों को हम लोगों ने ये नियुक्ति की पत्र वितरित किए हैं, आज भी है कल भी है, 2017 के पहले जिन्होंने इन्हीं नियुक्ति पत्र वितरण में गदर मचाई थी मैं उनसे कहना चाहता हूं नोट कर लें, आज से फिर हम नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं और अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख से अधिक युवाओं को हम उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं।

भर्ती बोर्ड और आयोग तब शासन की किसी राजनीति का शिकार नहीं होते हैं और वहां से पारदर्शी और स्वच्छतापूर्ण प्रक्रिया परीक्षाओं की संपन्न होती है तो उसके परिणाम इसी रूप में देखने को मिलते हैं जैसे आज ये नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। यहां पे जो अब मेरे सहयोगी गण बोल रहे थे कि अब तक 9.5 लाख नौजवानों को हम लोगों ने ये नियुक्ति की पत्र वितरित किए हैं, आज भी है कल भी है, 2017 के पहले जिन्होंने इन्हीं नियुक्ति पत्र वितरण में गदर मचाई थी मैं उनसे कहना चाहता हूं नोट कर लें, आज से फिर हम नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं और अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख से अधिक युवाओं को हम उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं।

0: खिचड़ी कचौड़ी खा ली, समोसे खा लिए, कोई पाप थोड़ी है, एंजॉय करो। तो बीच बीच पे आकर से मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई मुझे दिनिया वालों शराबी न समझो।
1: हम इंडियंस बहुत दिलवाले हैं, बट हमारे हार्ट्स इतने वीक क्यों हैं? व्हाई डू इंडियंस गेट हार्ट अटैक 10 years earlier than the West?
0: There is genetics in it, वो तो है ही, और साथ में हमारे वो risk factors भी सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में। सो एक एक हिंदुस्तानी एक लोडेड गन है, जिसको हम कहेंगे कि अगर ट्रिगर दबा तो हार्ट अटैक हुआ। अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में हर एक के कोलेस्ट्रॉल विच इज लिपिड प्रोफाइल तो 10 साल की उम्र में हो जाने चाहिए।
1: 10 years?
0: हाँ।
1: A lot of times television headlines become out the fact कि ये देखिए ये एक्सरसाइज करते थे, प्रोटीन पाउडर लेते हैं, इसलिए इनको हार्ट अटैक आ गया है। कितनी एक्सरसाइज इज ओके एंड वेयर डू यू नीड टू स्टॉप?
0: अगर हम सडनली सिवियर एक्सरसाइज, हैवी वेट लिफ्टिंग या एक्सट्रीम स्पोर्ट्स करते हैं, तो हमें पता नहीं होता कि हमारे आर्टरीज है कैसी। माइनर ब्लॉकेजेस जो हमें सिम्टम्स नहीं दे रही हैं, सडनली विद सिवियर एक्सरसाइज हार्ट अटैक कर सकती हैं। यू मे रिमेंबर वन ऑफ द सेलिब्रिटीज हु एक्सरसाइज फॉर 2 hours एंड सडनली कोलैप्स एंड डाइड, एंड एवरीबॉडी सेड वो तो इतना यू नो एक्सरसाइज करता था, वो तो 2 साल से क्या उसकी मसल से क्या था, एंड नोबडी न्यू दैट ही एक्चुअली स्मोक्ड 15 सिगरेट्स अ डे। वो जो हम देख रहे हैं ना कहीं डांस करते हुए कोलैप्स कर गए, they could have actually been smokers because smoking itself precipitates clotting in the even normal arteries.
1: Yeah.
0: 25 saal ke ladke heavy smoking ke baad maine dekhe heart attack hote hue jinki arteries full of clot hoti hai, blockage to hoti bhi nahi hai, kyunki heart attack ka reason hi kya hai? Hamari arteries mein blockages thi. Sochiye ki pipe hai hamare ghar ki, wo pehle se hi narrow ho rahi thi, kachra phasa aur pani band hua, suddenly artery band ho gayi.
1: How do I know that if I have uncontrolled BP?
0: You asked a very right question. And किसी लोगों को पता भी नहीं है, घर में चेक कैसे करते हैं?
1: And I did not know that TMTs are 40% false positives.
0: Absolutely. Wow. Women में तो up to 50% false positive आ सकते हैं.
1: How do I know this is a heart-related issue or this is a gut-related issue?
0: Very important. And in fact, both the symptoms can mimic each other. We are missing out 15% of heart attacks, and people are damaging their heart thinking कि वो गैस थी और शायद वो राजबा खा लिए थे रात को, या मैं बाहर खाने चले गए थे और पूरी रात वो गैस को समझते रहे, डाइजिन खाते रहे। बाय द टाइम दे लैंड अप इन द हॉस्पिटल द हार्ट इज बैडली डैमेज्ड बिकॉज 8 to 10 hours हैव पास्ड बाय।
1: द बिगेस्ट मिस्टेक दैट इंडियंस मेक व्हेन इट कम्स टू देयर हार्ट?
0: घबराहट हुई, स्वेटिंग हुई और सोचा कि हार्ट अटैक है और सॉर्बिट्रेट दे दी। सॉर्बिट्रेट इज एक्चुअली द वर्स्ट ड्रग फॉर हार्ट अटैक। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग जो आप खुद ले सकते हैं वो है
1: Welcome to Doctor vs. Internet. I'm Sonal Mehrotra Kapoor. Today I have with me a doctor who I've waited a long, long time to bring him on the podcast. If I say heart health, there is one doctor who's a household name in the country. Dr. Ashok Seth is not a doctor. He's an institution. What he's done for heart health, how he propagates about it, and what he's really turning the entire health industry into is commendable. And today when he sits down with us, I wanted to do something which is different from what he's already spoken. Itne sawal hote hain hamare aur aapke dimag mein, but one thing that has often like sort of got into my head is, why do Indians get heart attack 10 years earlier than the West? Are we genetically more inclined towards a weaker heart? Are women's heart different than the way a man's heart responds? And there's no romance in that. I'm purely talking about biology here. What about these high-intensity programs like HIROX, like HIIT? What are they doing to our heart? Why is it that we still haven't figured out that young people are dropping dead in their gyms? Or perhaps not very old people dying in their sleep? These are all very fundamental questions, but perhaps a time we bring you all the answers in one podcast. Aisa kya hai jo hum samajh nahi pa rahe ki fit rehne mein aur disease free rehne mein kitna farak hai, and how do we actually get there? So with that, Dr. Seth, how are you doing?
0: Very well, Sonal. In fact, main coffee isliye pee raha hu that I've got to keep up with your exuberance. And let me just say ki you know, your wonderful podcast, very informative. मैं कई दिनों से वेट कर रहा हूँ कि कब सोनल इनवाइट करेगी अपने पॉडकास्ट के लिए. So it's actually the other way around.
1: That is really, really sweet. Thank you so much. But let me dive in straight with the question.
0: Right.
1: हम इंडियंस बहुत दिलवाले हैं, बट हमारे हार्ट्स इतने वीक क्यों हैं? Are we genetically weaker? Our hearts are genetically weaker than the West.
0: That's absolutely correct. There are two aspects to it. Yes, there is genetics in it. वो तो है ही. और साथ में हमारे वो risk factors भी सबसे ज़्यादा है world में. So let's just consider genetics. क्या है? दो तीन चीज़ें जेनेटिक्स में आती हैं. एक तो हमारी बॉडी हैबिटस. आपने सुना होगा कि मैं आपको टॉफ़ी के बारे में बताता हूँ. टॉफ़ी तो बड़ी मिलती है. टॉफ़ी इज़ बैड फॉर हार्ट. बट जो हम टॉफ़ी की बात करते हैं हार्ट डिजीज़ में, दैट इज़ रिलेटेड टू थिन आउटसाइड एंड फैट इनसाइड. तो हम लोग जो हैं हिंदुस्तान में, साउथ ईस्ट एशिया में, वी आर एक्चुअली हमारे ऊपर से पतले लगते हैं. हमारे पैर पतले होते हैं, मसल्स कम होती हैं, सब कुछ लगता है, बट अंदर से मोटापा ज़्यादा है. जो एडिपोज टिश्यू जो हम कहते हैं, जैसे कि हमारा पेट ज़्यादा निकला होता है, लिवर के अराउंड, हार्ट के अराउंड, इंटेस्टाइन्स के अराउंड फैट ज़्यादा होता है. और ये जो विसरल फैट है, जो जेनेटिकल है, हमारा जेनेटिक्स के हिसाब से वो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है. तो हम चाहे पतले भी लगते हों और बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से हम चाहे 25 और 23 के बीच में हों, बट फिर भी हमारी नुकसान हो रहा है हार्ट का. और ये एक जेनेटिक्स है हमारा. इसीलिए वही चीज़ हमारे लिए रेज ट्राइग्लिसराइड्स को रेज करती है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को लो करती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस करती है, वही नुकसान हमारे को हार्ट को करती है, एथरोस्क्लेरोसिस. इनफैक्ट ये एडिपोज टिश्यू देखा गया है कि जो पेट का मोटापा होता है, इंटेस्टाइन्स के अराउंड एडिपोज टिश्यू होता है, लिवर को हार्म करता है, हार्ट को हार्म करता है, और ये कोई इन्फ्लेमेटरी पदार्थ प्रोड्यूस करता है जो हमारी आर्टरीज को डैमेज करते रहते हैं और एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोड्यूस करते हैं.
1: करेक्ट. सो दिस विसेरल फैट लोगों को समझ में नहीं आता, सो आई वांट टू स्पेंड सम टाइम ऑन इट.
0: सो आइडिया ये ले लें कि एक हमारा मोटापा है जो हमें चारों तरफ दिखता है. ओवरऑल हम पूरे मोटे हैं. और एक है कि ऊपर से तो पतले लग रहे हैं, बट अंदर हमारे इंटेस्टाइन्स के अराउंड जो दिख नहीं रहा है, वहां पे फैट डिपॉजिट हुआ हुआ है. लिवर जो हमें दिख नहीं रहा है, उसके अराउंड फैट डिपॉजिट हुआ हुआ है. हार्ट जो दिख नहीं रहा है, उसके अराउंड फैट डिपॉजिट हुआ.
1: कुछ करा नहीं है इसको करने के लिए, जेनेटिकली और मोर इंक्लाइंड. ओके,
0: सो दैट्स द फर्स्ट थिंग. इसीलिए हिंदुस्तान में पेट का मोटापा ज्यादा दिखता है. तो हम क्या कहते हैं कि मोटापा क्या है हिंदुस्तान में? जो वेस्ट के फिगर्स है कि बीएमआई होना चाहिए 30 से ऊपर, तो इंडिया में तो फिट करता ही नहीं है. और बीएमआई छोड़ दीजिए, सिंपल फैक्ट अगर मैं कहें कि हिंदुस्तान में मोटापा क्या है, तो आप अपनी वेस्ट सर्कमफेरेंस मेजर कर लो, क्योंकि वो आपका मोटापा है.
1: करेक्ट.
0: दैट इज द विसरल फैक्ट कि आदमी में, एडल्ट में, अगर और मैं कहूंगा सिर्फ
1: वेस्ट रेशियो
0: 90 सेंटीमीटर से अगर ज्यादा हो एडल्ट में, विमेन में 80 सेंटीमीटर से ज्यादा हो, तो सोचिए कि वो विसरल फैट मेजर कर रहा है आपका. और हमें कोई बीएमआईज वगैरह मेजर करने की जरूरत नहीं है.
1: बीएमआई इज नॉट द गोल्ड स्टैंडर्ड एनीमोर, दैट्स बीन एस्टैब्लिश्ड. बट व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज दैट यू आर सेइंग मोटापे का लिंक डायरेक्टली टू योर हार्ट. दैट इज सो इम्पोर्टेंट.
0: और पेट का मोटापा जो अंदर का मोटापा. दूसरी जो जेनेटिक्स की बात है जो अब ज्यादा रियलाइज हो रही है, आपने सुना होगा एलपीए. एलपी एक लाइपोप्रोटीन है, एक ब्लड में मेजर होता है, और आजकल उसके बारे में कई काफी बातें हो रही हैं. अब एलपीए देखा गया है कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर. पहले सोचते थे कि अगर फैमिली में चल रहा है तो शायद एक मार्कर है जिससे पता चल जाता है कि शायद हार्ट डिजीज ज्यादा होगी. अब ये एक मार्कर, ये अब ये रिस्क फैक्टर है. और हमारे हिंदुस्तान में या साउथ ईस्ट एशिया में ये वेस्ट से ज्यादा पाया जाता है. तो दिस इज अगेन जेनेटिक्स. हमारे लोगों में एलपीए बहुत हाई है. अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में ये पॉपुलेशन बेस्ड स्टडीज नहीं हुई है, बट एटलीस्ट ग्रुप्स में देखा गया है और दूसरे कंट्रीज की पॉपुलेशन बेस्ड स्टडीज में देखा गया कि हिंदुस्तान में एलपीए ज्यादा होता है. और ये एलपीए सिर्फ अगर वेस्ट में एलपीए हाई हो, तो अगर हम कहेंगे कि डेढ़ गुना रिस्क फैक्टर ज्यादा बढ़ गया, बट हिंदुस्तानी में ये भी देखा गया कि एलपीए सेम लेवल का एलपीए हाई हो, तो हिंदुस्तानी में 3 गुना ज्यादा हार्ट डिजीज हो जाती है.
1: Wow.
0: So we are suffering from two sides of genetics. So फिर वो जो बात आई कि और क्या चीजें हैं हिंदुस्तानियों में, तो वो तो क्लियर है. World capital of diabetes, world capital of hypertension, 30% adults above the age of 30 high blood pressure से सफर कर रहे हैं. और मैंने कह ही दिया कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो हमारे बड़े में है, स्पेशली लो एच डी एल कोलेस्ट्रॉल और रेस ट्राइग्लिसराइड्स. तो एक्चुअली यही है हमारा जीन्स और यही है हमारी किस्मत. सो एक एक हिंदुस्तानी एक लोडेड गन है जिसको हम कहेंगे कि अगर ट्रिगर दबा तो हार्ट अटैक हुआ, अनफॉर्चुनेटली.
1: That's a lot to process.
0: I didn't mean to frighten anybody.
1: I'm very glad you brought it up because it's a good start. Because if we don't even identify that as a problem, देखिए problem क्या है doctor said कि India में लोगों ने ऐसे ले लिया है कि अब उम्र हो गई है BP तो होगा, उम्र हो गई है वजन तो बढ़ेगा, diabetes तो हो ही जाएगा, दवाई खाते रहेंगे ठीक रहेंगे. That mindset, I don't know if you are seeing in your clinic, I'm seeing in people around me, that mindset is shifting. Younger people are now saying that, listen, I don't want to live with blood pressure. I want to ensure I can delay it as long as possible because genetically I know I'm going to get it.
0: Correct.
1: Diabetes runs in the family, blood pressure runs in the family. I'm going to get it one day. But how do I ensure that I delay it as long as possible?
0: And I think it's a good mind shift.
1: Yeah.
0: And it's happened in two ways. Ek to more education's happening through,
1: yes.
0: through exactly what you're doing today is happening. And the other factor is, of course, those visuals of people suddenly dying, collapsing, etc., which is coming up more because of social media, etc., which used to happen earlier, but more. Uski wajah se log kehte hain. In fact, patients come to me now, young ones, between 30 and 40, kehte ki kyun hai? Ye test karaya hai. क्योंकि मेरे किसी दोस्त को ये हो गया है, क्योंकि मैंने वो विजुअल देखा जिसपे ऐसे हो गया था, मैं भी एक्सरसाइज करता हूँ, मैं भी करता हूँ, मैंने सोचा अपने टेस्ट करा लूँ. नाउ दैट इज वेरी डिफरेंट टू व्हाट वी हैव सीन 10 इयर्स अगो.
1: या एंड आई जस्ट वांट टू से दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स टेलीविजन हेडलाइंस बिकम आउट द फैक्ट कि ये देखिए ये एक्सरसाइज करते थे, प्रोटीन पाउडर लेते हैं, इसलिए इनको हार्ट अटैक आ गया है. ये क्या मिथ बस्ट कर सकते हैं?
0: एब्सोल्युटली.
1: एक्सरसाइज का और हार्ट हेल्थ का क्या रिलेशनशिप है? कितनी एक्सरसाइज is okay and where do you need to stop?
0: So, इसमें दो भी चीजें हैं. ये तो you ask the right question कि what is good exercise and what is good heart health. But also, क्या उस आदमी को वीडियो खींच रहा होना चाहिए था? Should not he be resuscitating that person जो सामने कोलैप्स हो गया? The two important questions come to my mind. And I'm even more frustrated by the fact that that person jiska video khicha ja raha tha could have actually been saved by the person jo video khich raha tha. Wahi
1: intervention ki
0: 2 minute mein
1: could have saved their life.
0: But anyway, let's come back to this. Heart health and bodybuilding physiques are two different things altogether. Ek to muscle building hai and that is of course increasing with increased gyms. Aap dekh hi rahe ho, looking fit, etc. That's looking fit. But it doesn't mean your heart is actually fit. Jo andar ho raha hai, uska pata karna bahut zaruri hai. It is not, taking all those, steroids, etc. for building your body is one aspect of that. But the other aspect is ki ye bhi de hai, which is well known fact, ki agar hum severe exercise karte hain, अगर हम सडनली सिवियर एक्सरसाइज हैवी वेट लिफ्टिंग या एक्सट्रीम स्पोर्ट्स करते हैं सडनली, तो हमें पता नहीं होता कि हमारे आर्टरीज है कैसी, हमारे अंदर ब्लॉकेजेस हैं कि नहीं है. एंड इवन एनी माइनर ब्लॉकेजेस जो हमें सिम्टम्स नहीं दे रही हैं, सडनली विद सिवियर एक्सरसाइज हार्ट अटैक कर सकती हैं. अगर हम स्मोकर हैं तो सिवियर एक्सरसाइज हमें हार्ट अटैक कर सकती है, क्योंकि सिवियर एक्सरसाइज से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ता है, आर्टरीज पे स्ट्रेन पड़ता है, और वही ब्लॉकेज जिसने एक्सरसाइज हार्ट अटैक करना ही नहीं था वो सडनली हार्ट अटैक करती है. सो हमें डिफ्रेंशिएट करना चाहिए कि अगर हम सिवियर एक्सरसाइज पे जा रहे हैं, वेट लिफ्टिंग पे जा रहे हैं, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स पे जा रहे हैं, या हम सोच रहे हैं कि एडल्ट में हमने जिम हमें हाफ मैराथन रन करनी है, तो हार्ट का चेकअप बहुत जरूरी है प्रायर. एंड देन वी स्टार्ट ग्रेजुअली और धीरे धीरे हम बिल्डअप करें. नॉट कि किसी दिन कहा यार उसकी तो शेप बॉडी की बड़ी अच्छी, अब मैं चलता हूँ जिम और मैंने उठाना है 50 किलो और साइड में देखा कि उसने 70 किलो उठाया है. तो कहते चलो एक बार 70 भी उठा के देखा
1: जाए.
0: Yes, there are a few other conditions जो हार्ट की होती हैं, genetically run करती हैं, family में run करती हैं, और वो पता चल जाता है कि family में किसी को sudden death हुई है कि नहीं. ये arrhythmias होते हैं, हार्ट की मसल की conditions होती हैं, वो कई बार severe exercise में precipitate हो जाती हैं. इसलिए 30 साल के बाद तो कहूंगा ये कोलैप्सिस जरूर हार्ट अटैक की वजह से हैं. लेस देन 30 इयर्स इट कुड बी एनी ऑफ दोस जेनेटिक डिसऑर्डर्स एज वेल एज रेयर एपिसोड्स ऑफ हार्ट अटैक्स. यू नो स्मोकर्स में तो ये चीजें बहुत ज्यादा होती हैं. You know, you may remember one of the celebrities who exercised for 2 hours and suddenly collapsed and died. And everybody said, "Wo to itna, you know, exercise karta tha. Wo to 2 saal se kya uski muscles hi kya tha?" And he was only 42, etc. And nobody knew that he actually smoked 15 cigarettes a day.
1: Yeah.
0: And smokers, me to I get this regularly. Absolutely perfect life. 45-year-old kehta hai ki ji, main to sab kuch theek karta hu. Khana dekhiye mera Mediterranean diet. Main to isko chhod diya, wo chhod diya. Looking absolutely fit. Main 15 kilometer jog karta hu. Main kehta hu, I'm scared about you, because hey, what's wrong with you? Acha smoke karte ho? Haan, smoke to karta hu. I said, I'm scared about you. Ki tum exercise kar rahe ho 15 kilometer. Yun hoga. Ek din suddenly clot aayega and you'll collapse and die. Why are you smoking? This is the sadness of it, because smokers have that sudden cardiac death. Wo jo hum dekh rahe hain na, kahin dance karte hue collapse kar gaye, they could have actually been smokers, because smoking itself precipitates clotting in the even normal arteries. 25-25 saal ke ladke heavy smoking ke baad maine dekhe heart attack hote hue jinki arteries full of clot hoti hai, blockage to hoti bhi nahi hai. And then we actually on the angioplasty table are extracting those clots, trying to actually prevent the heart damage. Or wo heart damage, I've got so many patients, at least I must have 1,000 young people between the age of 20 to 25, or even more, jinke heart attacks hue sirf smoking ki wajah se, jinka heart itna damage ho gaya ki unka normal heart functioning. वो बोले हार्ट अटैक्स बड़ी डेंजरस होते हैं, बिकॉज़ दे हैपनिंग ऑन नॉर्मल आर्टरीज. सडनली आर्टरी बंद हो गई.
1: इज वेपिंग आल्सो इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग?
0: वेपिंग इज बैड. वेपिंग ऑल टेकिंग अवे इज निकोटीन पार्ट ऑफ इट, बट सॉरी पेपर पार्ट ऑफ इट. इट्स जस्ट टेकिंग वो जो बैड प्रोडक्ट्स ऑफ द पेपर इज टेकिंग, बट इट डजंट टेक अवे द अदर बैड इफेक्ट्स ऑन द आर्टरीज ऑफ द हार्ट. सो वेपिंग इज जस्ट अ कंसोलेशन of trying to make it more socially acceptable, but still continuing to harm us and harm you. Aur agar ye karte rahe to heart attack aayega hi. And that heart attack, by the way, every heart attack is shortening a life. So sometimes feel bad for that 20-25-year-old jisko heart attack hua, jiski wo jo 80-90 saal ki life honi thi, maybe 100 saal ki, gets cut down to 50 years, 60 years only.
1: Yeah.
0: It's sad.
1: Yeah, but every time people say this about smoking, my mind triggers into this other problem, which is that if I stay in Delhi, I am a smoker, sir.
0: Wo to hai hi.
1: If I'm, you know, breathing in this polluted air, so we are all at risk.
0: Main to sabko lagta dara raha hu.
1: No, it's good to know. I know what you're saying, but I really hope the purpose of this conversation is that we are able to, you know,
0: put a perspective.
1: No, yeah. Get the right knowledge. Us to push our government also to say that, listen, my health, just by breathing, I'm taking away like 8-10 years of my life here, right?
0: Pata hai main smokers ke liye kya kehta hu?
1: Kya?
0: Aap to smoke ne chhod di. Now don't even mix with smoke the friends who smoke. Kyunki aap passive smoking bhi karte rahoge na, 30% increase in risk of heart attack aapko ho jata hai. Aapka dost smoke kar raha hai. Kya yaar? अब छोड़ो स्मोकिंग, गिव इट अप. निकोटीन इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स दैट वी एक्चुअली सीन इन लाइफ. लेट्स नॉट इवन पैसिवली स्मोक, बट यू राइट अबाउट दिस पॉल्यूशन. यू कह दिया वो भी तो एक सिगरेट रोज की पी रहे हैं हम लोग.
1: एक नहीं सर, मतलब वर्स्ट कंडीशंस इट्स 22-23 सिगरेट्स अ डे.
0: सो पॉल्यूशन ऑफ कोर्स इज समथिंग we need to take very seriously.
1: Jo aapne ek LPA test ke bare mein bola, I think it's very important to clarify. It doesn't cost too much and you have to get it once in a lifetime, right? To just understand. Would you suggest that young people, when you say should know more about themselves, get these tests done?
0: Absolutely. Dekho, prevention of heart disease is no rocket science. And I would say, any government initiatives are needed. In fact, it's the cheapest thing to do. And I'll explain that. In my own life, it's the cheapest thing to do in everybody's life. But let's consider this. Ki test hi kabhi hone chahiye, which it also includes the LPA. So we say once in a lifetime is correct. But clearly, Hindustan mein har ek ke cholesterol, which is lipid profile, to 10 saal ki umar mein ho jane chahiye. Because heart disease to start hoti hai very early. Deposits to start hoti hai very early.
1: 10 years.
0: It has been actually seen ki jinko cholesterol ki tendency hai, jinke high cholesterol chal rahe, jinki family mein heart disease chal rahi hai. Aur jinki ek history hai family mein ki father, mother at an early age in life, less than 55, 60, ya to heart disease hui hai, ya deaths hui hai, ya bypass surgeries ho gayi hai, ya siblings mein, ya unke siblings mein.
1: Which is practically 90% of North India.
0: Exactly. To ye to karna hi hai. Aur unke sab ke liye karna hai. It's now a standardized care. The second aspect is ki agar sab kuch theek nikla, tabhi to wo familial hypercholesterolemia ye wo pick up ho jata hai jo early in life, jise tabhi se treatment shuru ho jaye to future mein hum bach sakte hain.
1: Yeah.
0: But agar wo sab theek nikla, to then by the age of 20, again becomes a must. And then hume pata hi hai ki heart disease to badi early shuru hoti hai, to agar nikla theek, to 5-5 saal pe aap test karate rahiye. Aur 30-35 saal ke baad to har saal ek par cholesterol ke test karaiye. Now, sirf cholesterol ki baat nahi hai. And we know ki ye humne LDL karna, humne HDL karna hai, triglycerides karne hai, LPA karna hai. But LPA to ek baar zindagi mein kara liya, because that test does not change. बात रही रिस्क फैक्टर्स की पता करने की, और कोलेस्ट्रॉल तो एक ही रिस्क फैक्टर है, तो साथ साथ हमें शुगर का भी टेस्ट करा लेना चाहिए और साथ में भी एक बार बीपी चेक करा लें. अगर ये तीन रिस्क फैक्टर्स हमें पता हो तो हमने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, क्योंकि हार्ट डिजीज प्रिवेंट करना तो हमारे हाथों में है. हम कहते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, यू नो वी वांट ह्यूज नंबर ऑफ रूल्स रेगुलेशंस वगैरह वगैरह. पर अगर ये तीन रिस्क फैक्टर्स हम रेगुलरली जानते रहे तो हार्ट डिजीज हम खुद प्रिवेंट कर सकेंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो अपना ख्याल रखना तो हमारे हाथों में है. द अदर थिंग, ये जो ये मैंने कहा कि बीपी चेक करने की बात, तो बीपी चेक तो हमें पता ही है कि हाल ही कंट्री जब बीपी डायग्नोज भी होता है तो 50% लोग को तो अनकंट्रोल बीपी चल रहा है, धीरे धीरे किडनी डैमेज होती रहती है. कहते हैं एक गोली खा रहे, इससे ज़्यादा ना बढ़ाएं. कोई कोई डॉक्टर कहता है कि जी आपका बीपी अनकंट्रोल है. नहीं नहीं, घर में तो बड़ा ठीक चलता रहता है, जब भी हम मेजर करते हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है. हमें तो पता चल जाता है, एक सर हेडेक होता है तो बीपी हाई है. तो ये सब कितनी मिथ्स हैं जो चल रही हैं, और किसी लोगों को पता भी नहीं है ज़्यादातर लोगों की बीपी के घर पे चेक भी कैसे करते हैं. वो मशीन ने दिखा दिया, उसी में खुश रहे.
1: हाउ डू आई नो दैट इफ आई हैव अनकंट्रोल्ड बीपी और घर की मशीन में ठीक दिख रहा है?
0: ओ, घर की मशीन में इसलिए कि हम ठीक से बीपी मेजर नहीं करते हैं. आई थिंक यू आस्क्ड अ वेरी राइट क्वेश्चन एंड लेट मी जस्ट क्लोज दिस. घर में चेक कैसे करते हैं? ठीक है, ज्यादातर लोग आपने सुना ही होगा कि घर में मशीन रखी हुई है और कहते हैं जी हम रेगुलरली चेक कर रहे हैं, बड़ा ठीक आता है घर में. आपके यहाँ आते हैं तो फिर हाई हो जाते हैं. यस, दैट्स अ फैक्ट, नॉट अ मिथ. बट कितना हाई होता है? अगर मेरे को 180 मिल रहा है, जो कि रियली वेरी हाई बीपी है, तो आपका घर में 110 कैसे हो सकता है? 10-20 मिलीमीटर का तो वेरिएशन होगा ही. सो रियली वो हाउ द वे इट्स चेक्ड इज, टेबल पे बैठिए, आराम से टेबल पे बैठिए, जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ. बट सोनल के साथ बात नहीं करनी है उस टाइम पे. इनफैक्ट उससे पहले ना, और ये कॉफी भी नहीं पीनी होती उसके साथ. उससे पहले कोई हैवी खाना भी नहीं खाना है. चाय कॉफी नहीं पीनी है. इट शुड बी इन अ रिलैक्स सिचुएशन जिसमें आप किसी से बात ना कर रहे हो. ये नहीं कि घर में झगड़ा हुआ है उसके बाद कहा कि बीपी अब चेक कर लीजिए. सो अब आप उसको रखिए हाथ पे, बी कंफर्टेबल इन द चेयर कंफर्टेबली. बीपी इंस्ट्रूमेंट भी उसी लेवल पे होना चाहिए जिस तरह आपका हाथ है, और हाथ आपके हार्ट के लेवल पे होना चाहिए, जो कि ये है. आपका निप्पल, आपका हाथ है.
1: सो दिस लेवल इज फाइन.
0: उसके बाद आपने कफ जो बांधना होता है वो ये आपकी जो एल्बो है उससे अप्रोक्सीमेटली 1 इंच या 2 सेंटीमीटर ऊपर आपका कफ है. आजकल हर कफ पे एरो बनी होती है कि आर्टरी कहाँ पे है. आर्टरी होती है, अगर ये ले ले क्रीज तो उसका 2/3 और 1/3 अगर ज्वाइन कर ले वहाँ पे आर्टरी होती है, वहाँ पे एरो लगा दें, फिर आप अपना बटन दबाएं और आपका ऑटोमेटेड बीपी चेक हो रहा है. जब ऑटोमेटेड बीपी चेक हो रहा है तो आप रिलैक्स रहिए, आपकी एक ब्लड प्रेशर रीडिंग आएगी, आप उसके बाद 3 मिनट बाद से 5 मिनट बाद दूसरी रीडिंग लीजिए और एक थर्ड रीडिंग लीजिए और उसका एवरेज कर लीजिए. और आपने, अगर आपने रियली समझना है कि आपका बीपी है कि नहीं है, अगर अच्छी रीडिंग आई तो अच्छा है, आपने कभी कभी बीच में चेक कर लिया. अदरवाइज अगर आपने रियली करना है और अगर देखना है कि आपका कंट्रोल ठीक है कि नहीं, तो दिन में 2 बार, रात के खाने से पहले और सवेरे के खाने से पहले, सवेरे के ब्रेकफास्ट से पहले.

0: And BJP student wing ABVP has swept the Delhi University elections, winning 3 of the 4 central posts. But the ABVP's victory has now triggered a full-blown political showdown, with the Congress-backed NSUI failing to secure a single position on the central panel. In fact, the BJP has also hailed ABVP's victory, saying that the verdict has exposed Congress Party's jhoot ki goonj. And we are now being joined by the new DUSU president from the ABVP, Yash Dabas, who is joining us on the broadcast. So we have Yash Dabas, the new DUSU president, with us. Yash, सबसे पहले तो congratulations to you. आपने इस जीत को हासिल किया है. काफी कांटे की टक्कर थी आपके बीच और NSUI के जो कैंडिडेट थे विजय मीना, उनके बीच. हर राउंड के बाद ऐसा लग रहा था कि कभी कोई आगे हो जा रहा था, कभी कोई आगे हो जा रहा था. काफी कम ऐसा होता है कि एंड के राउंड्स तक भी ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि कौन जीतने वाला है. तो आपको उस टाइम पे जब आप काउंटिंग बूथ पे प्रेजेंट थे, आपको उस टाइम पे कैसा लग रहा था जब हर राउंड के बाद रिजल्ट कभी इस तरफ जा रहा था, कभी उस तरफ जा रहा था?
1: मैम, मैं काफी रिलैक्स था. मुझे कहीं ना कहीं आत्मविश्वास था कि अभी एक आधे जो हमारे कैंपसेस है वो खुलने बाकी है, उनका रिजल्ट आना बाकी है, और उनका रिजल्ट आते ही मैं लीड मेंटेन कर लूंगा. और जैसे ही मुझे लगा कि हाँ, उन कैंपसेस की वोटिंग खुली है, तो उसके बाद हमने एकदम से 2000 का मार्जिन क्लेम किया.
0: जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था यश, तो ये कहा जा रहा था कि यश दबास क्लियर विनर है, आज ही प्रेसिडेंट डिक्लेयर हो गया है. जब NSUI ने अपनी टिकट्स अनाउंस करी, उसके बाद सब कह रहे थे कि इस बार तो यश दबास ही जीतने वाला है. लेकिन कल जब काउंटिंग हुई तो हमने देखा कि कैसे काफी क्लोज कॉन्टेस्ट था. NSUI ने स्ट्रांग कमबैक किया. क्या आपको उम्मीद थी कि इतना क्लोज कॉन्टेस्ट होने वाला है, और क्या आपको लग रहा था कि मैं तो इजीली जीत जाऊंगा, क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी ये बात कह रही थी?
1: नहीं मैम, मुझे कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि कंपटीशन टक्कर का ही रहने वाला है. हमने उसी हिसाब से तैयारी भी की थी, और अपने कभी भी ओपोनेंट को हम हल्का तो समझना नहीं चाहिए, ना हमने समझा, इसीलिए हमने उसी तरीके की मेहनत की. और फिर कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया और हम 2100 के मार्जिन से प्रेसिडेंट पोस्ट पे जीत के आए.
0: तो कौन सी ऐसी चीज है जो ABVP ने NSUI से अलग की और जो कि ABVP के लिए काम कर गई?
1: मैम, जो ABVP की इकाई है, जो हर एक कॉलेज में हमारी इकाई है, जो पूरा साल वो स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, छात्र हित के लिए काम करते हैं, राष्ट्र हित के लिए काम करते हैं, जो पूरा साल वो लगातार बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी स्वार्थ के जो लगातार काम करते हैं, वही हमारी जीत का कारण रहा. NSUI अगर आप देखेंगे तो वो केवल साल के आपके दो साल के आपको 2 महीनों में ही दिखेगी, अगस्त और सितंबर, क्योंकि इन समय DUSU, उसके अलावा वो पूरे साल में आपको कहीं नजर नहीं आएगी. लेकिन आप किसी भी दिन विद्यार्थी परिषद को ढूंढना चाहोगे तो आप कॉलेज कैंपसेस में जा सकते हो, आपको कहीं ना कहीं विद्यार्थी परिषद जरूर दिखेगी.
0: यश, क्या आपको लगता है कि जो NSUI के इंटरनल फैक्शनलिज्म था, जो उनकी अंदरूनी लड़ाई थी, उससे भी काफी फायदा पहुंचा ABVP को?
1: मैम, कहीं ना कहीं फायदा तो, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये फर्क है NSUI और ABVP में. हम विद्यार्थी परिषद के भी 7 कार्यकर्ता गए थे नॉमिनेशन भरने, और जब हमें पता था कि हमें से 4 लोगों को ही टिकट मिलने वाली है, बाकी 3 लोगों को नहीं मिलेगी. लेकिन जिन 3 लोगों को टिकट नहीं मिली, वो 3 लोग भी आए हमारे साथ और हमारी ताकत बढ़ाई उन लोगों ने, और उन लोगों ने हमें जीत के लिए आगे बढ़ाया.
0: जेंजी पे
1: जो
0: बहुत बड़ा
1: NSUI के थे, उन्होंने जी, NSUI के जो थे कार्यकर्ता, उन्होंने 7 लोगों ने अलग अलग, मतलब 4 सीटों पे 7 नॉमिनेशन थे NSUI के.
0: जी यश, जेंजी पे बहुत फोकस रहा इस साल. हमने लास्ट कुछ मंथ्स में देखा कि कैसे सारा फोकस सारे नेताओं का, सारी पार्टीज का जेंजी पे रहा है. तो कितना क्रूशियल था ये इलेक्शन, और क्या आपको लगता है कि DU ने अपना जवाब दे दिया है कि DU का हाथ अभी भी मोदी जी के साथ है?

0: कहना चाहता हूं कि डीयू, सिर्फ डीयू ने नहीं बल्कि पंजाब यूनिवर्सिटी में भी अभी इलेक्शन हुआ, तो जेनजीज स्मार्ट है, जेनजीज को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। जो फेक नरेटिव चला के इतने दिनों से कुछ पॉलिटिकल विंग ने बेवकूफ बनाने की कोशिश की थी कि हाँ जेनजीज आर नॉट विद एबीवीपी ऐसा करके, तो यहाँ पे एकदम क्लियर मैसेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के और पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने उन्होंने दिया है, जो है कि दैट जेनजीज आर विद एबीवीपी, जेनजीज आर विद नेशन।
1: जी यश, जेंजी की बात हो रही है तो कैंपेनिंग की भी बात करते हैं, क्योंकि कैंपेनिंग में भी काफी बदलाव देखने को मिला है पिछले कुछ सालों में। हम आपके कैंपेनिंग की बात करते हैं, मैंने आपकी काफी सारी रील्स देखी हैं, कई पूकी वाली रील्स भी देखी हैं, तो किस तरीके से आपने अपनी स्ट्रैटेजी को भी जेंजी के हिसाब से मोल्ड किया और जो जेंजी है उनको और अपना कैंपेनिंग इंटरेक्टिव बनाने के लिए, जिससे कि वो और ज्यादा आपसे जुड़े, क्या कुछ आपके दिमाग में था कि मुझे ये करना है और इस तरीके से मैं अपनी अप्रोच रखूंगा?
0: मैम देखिए, मैं तो खुद भी एक जेंजी हूं, तो जो मैं और मेरे साथ के भाई जब हम साथ बैठते थे, जो भी हमारा आइडिया आता रहा, थोड़ा क्रिएटिव रील्स मेरे साथ के दोस्तों ने भी बनाई, काफी कॉलेज स्टूडेंट्स ने अलग अलग, चाहे रामजस के मेरे साथ के भाई हो, बहन हो, उन्होंने काफी क्रिएटिव रील्स बनाई है जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रही है, तो हम सब ने कहीं ना कहीं मुझे भी कुछ आइडियाज दिए, हम सब ने एक साथ में मिलकर एक कंस्ट्रक्टिव वे में इस चीज को अप्रोच लिया और हमने काफी, मुझे लगता है कि आज पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है।
1: अच्छा, एक चीज और जिसकी चर्चा बहुत होती है दूसरी इलेक्शंस में, कि जो लंबा काफिला देखने को मिलता है गाड़ियों का, और इस साल उस काफिले से जुड़ा सबसे बड़ा नाम यश दबास का था, कि सबसे बड़ा काफिला यश दबास लेके घूम रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो कल्चर है गाड़ियों का, महंगी महंगी गाड़ियां, मैंने खुद आपका आपका जो काफिला है वो देखा था साउथ कैंपस में, पूरी रोड पे सिर्फ यश दबास के नाम की गाड़ियां थी और एक से बढ़कर एक लग्जरी गाड़ियां थी।
0: मैम मैं सुबह अपने कैंपस से निकला था, नॉर्थ कैंपस से अकेले एक गाड़ी में निकला था। हमने एक दिन पहले साउथ कैंपस में जितने भी हमारे साथी है, जितने भी भाई है, उनको हमने एक दिन पहले सूचना दे दी थी कि कल हमारा साउथ कैंपस का दौरा रहने वाला है, तो उसके बाद ये वहां पे साउथ कैंपस के साथियों का प्यार था जो हमें इतने भारी मात्रा में मिला, और उन सब के कारण ही शायद आज मैं जीत तक पहुंच पाया हूँ।
1: तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये अनोखा तरीका है भाईचारे का, जिसमें कि हर एक भाई अपनी एक लग्जरी गाड़ी लेके आता है कंट्रीब्यूट करने के लिए कैंपेनिंग में।
0: मैम जो भी भाई जैसा भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, काफी भाई ऐसे हैं जो पूरा दिन साथ घूमते हैं, मैं बोलता भी हूँ कि अरे यार आप जाके खाना खा लो, आपने सुबह से कुछ खाया नहीं, बोलते नहीं नहीं भाई जब तक आप नहीं खा रहे हम नहीं खाएंगे, तो ये इतना लगाव हो जाता है, एक टीम इतनी इमोशनल हो जाती है हर एक की कि नहीं जब तक आप लोग नहीं कर रहे। मेरे साथ के कार्यकर्ता थे, मैंने कहा भाई आप तो खा लो, फर्स्ट ईयर का कॉलेज का स्टूडेंट, एबीवीपी का कार्यकर्ता था, मैंने उससे कहा कि मेरे साथ सुबह 8 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक था, तो मैंने उसको कहा कि भाई आप जाके खाना खा लो और मुझे अभी थोड़ा समय लगेगा, इन
1: जी
0: कहते नहीं भैया जब तक हम आपको जिता नहीं देते जब तक खाएंगे नहीं, तो एक इतना इमोशनल टच बन जाता है स्टूडेंट्स के साथ।
1: जी यश, अब चूंकि आप जीत चुके हैं, चुनाव खत्म हो गया है, आप जीत चुके हैं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, अब तो आपका जो टारगेट है, जो मेन एम है, क्या होगा? पहले सबसे पहला कदम जो आप लेने वाले हैं, जो आपने प्रॉमिस किया होगा बच्चों को, वो क्या रहेगा?
0: मैम जो हमारा सबसे पहला काम रहने वाला है वो रहेगा, आपने थोड़े दिन पहले जैसे देखा होगा सत्य निकेतन में कैसे एक दुर्घटना हुई जिसके कारण 7 स्टूडेंट्स की जान गई, हम नहीं चाहते फ्यूचर में भी ऐसा कुछ हो, तो सबसे पहला जो हमारा काम रहने वाला है वो रहेगा कि हर एक पीजी का, हर एक हॉस्टल का, हर एक कॉलेज का एक सेफ्टी ऑडिट कराया जाए जिसकी रिपोर्ट को हम पब्लिक डोमेन पे भी डालें, ताकि आने वाले स्टूडेंट्स ये भी देख सके कि जहाँ वो अकोमोडेशन लेने जा रहे हैं वो उनके लिए सेफ है या नहीं, और जो सेफ नहीं होगा हम उसको सील भी करवाने का काम करेंगे, और जहां रेनोवेशन हो सके वहां रेनोवेशन करवाने का भी काम करेंगे।
1: एक आखिरी मैसेज जो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे, उन्होंने जिन्होंने आपको सपोर्ट किया और उनको भी जिन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया, लेकिन उनका भी दिल जीतना अभी बाकी है मेरे ख्याल आपके इस टेन्योर में।
0: मैम मैं उन सभी स्टूडेंट्स को एक बात कहना चाहूंगा कि मैं नहीं, आप सब ही डूसू प्रेसिडेंट बने हो, आपकी हर समस्या के लिए मैं आपके आगे खड़ा रहूंगा, आपके हर कॉल का मैं जवाब दूंगा, आपके हर एक सवाल का मैं जवाब दूंगा, चाहे बात अकाउंटेबिलिटी की रहे तो मैं

0: charges that Gurjar persuaded her to leave her U.S. job and promised that they would start a business together. Now, what we are learning is that from October 2025 to 2026 and to March 2026, she alleged that Gurjar stayed with her during this period, and he suddenly vanished away. And on August 15, 2026, the woman approached Gachibowli police station, where she had filed a complaint alleging cheating and physical and mental harassment following the alleged marriage promise that Gurjar had made. Gurjar was leaving India, he was at Mumbai airport when the officials there detained him and then brought to Hyderabad, where a case was registered in Gachibowli police station, and after which they have completed the legal process, and now he is sent to judicial remand. He has been remanded to judicial custody is what we are learning.
1: Right, Abdul. Thank you for bringing us all of those details into this very story. We are keeping a very close track of this entire complaint that's come in from this very woman against this actor, and we'll keep you updated. But on that note, we are shifting our focus to the national capital, an election that we've seen, a student council election that we've seen, which was a nail-biting contest. Now, BJP student wing ABVP has swept the Delhi University elections, winning 3 of the 4 central posts. But the ABVP's victory has triggered a full-blown political showdown, with the Congress-backed NSUI failing to secure a single position on the central panel. Now, the BJP has hailed ABVP's victory, saying the verdict has exposed Congress's jhoot ki goonj and shows where the faith of the youth lies. In an exclusive conversation with India Today, Health Minister JP Nadda said Rahul Gandhi's politics of lies had been busted, adding the DUSU verdict reflects that the youth is inspired by the vision of Viksit Bharat. Hitting right back, the Congress has claimed that there were persistent attempts to rig the DUSU elections and influence the counting process, stressing the charges of malpractice must be examined.
2: हमारे लिए हर एक वर्ग एक समान है. हमारे विद्यार्थी परिषद में हमें सिखाया जाता है कि तुम जातिवाद से तोड़ोगे, हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे. तुम क्षेत्रवाद से तोड़ोगे, हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे.
3: Okay, so I'm also joined by secretary winner Riya Chhavri, but you have to say you are a only woman in the panel. So what main issues you will be focusing in the panel, because you are the only woman candidate in the panel?
4: As a girl candidate, मेरा main motive women safety का ही रहेगा. मैं ये ensure करूँगी कि Delhi University में हर एक लड़की को, हर एक student को safe, secure feel हो, और जो दूर से लड़कियाँ पढ़ने आती है, जो दूर से हमारी बहनें पढ़ने आती है, उनको एक home feel हो.
3: So these were the winning candidates from the ABVP. I'm also joined by Lakshya Rath, the Joint Secretary. We have also seen a tough fight by the independent candidate on the Joint Secretary position. So what do you have to say?
5: हाँ जी, मतलब काफी tough था. जो मेहनत मतलब मैंने करी, वैसी मेहनत उनकी भी थी. तो उस मेहनत के अंदर वो मेहनत थी, तीन जगह बटी हुई थी. तीन लोग उसी एक ही पोस्ट के ऊपर लड़ाई लड़ रहे थे, और तीनों काफी साल से मेहनत कर रहे थे. बट अंतिम शायद मुझे लगा मेरी ज्यादा मेहनत थी, तो मैं ज्यादा अच्छे वोटर से जीता हूँ.
6: मैं एवीबीपी के सारा कैंडिडेट्स जितने जीते हैं, शानदार जीत के लिए बधाई देना चाहता हूँ, और पूरा छात्रों का अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने जो झूठ का गूंज है उसका पर्दाफाश कर दिया है. पर्दाफाश होने के बाद अब कांग्रेस कुछ कहने के लिए नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो जीरो हो गया. कांग्रेस एक सीट नहीं जीत पाए. आप सोच के देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे इतना बड़ा यूनिवर्सिटी का चुनाव में एक सीट कांग्रेस को मिला नहीं है. इसका मतलब साफ हो गया ना कि देश का युवा और खास करके यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते हैं, उन्होंने अपना मत दिया है, अपना आवाज, अपना विचार को क्लियर कट दे दिया है.
3: डूसू के इतिहास में पहली बार कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत कर आया है,
7: और सबसे ज्यादा वोट भी मेरी आज तक के डूसू के इतिहास में 30,610 वोट मुझे मिले हैं, जो आज तक शायद डूसू के इतिहास में हमने नहीं देखा किसी की आई हूँ किसी भी पोस्ट पर.
3: तो दो रिकॉर्ड आपने दीपांशु भाई तोड़ दिए. पहले आप वजह बताइए, आपने जूते छोड़ रखे थे सारे चुनाव प्रचार में, मैं कवर कर रहा था, सोशल मीडिया पर रील्स देख रहा था, कहाँ है जूते आपके?
7: ये जूते सिर्फ उतरना नहीं, ये न्याय सत्याग्रह की शुरुआत मेरी सत्या निकेतन से हुई थी, कि जब तक उन छात्रों को इंसाफ नहीं मिलता जिनकी हत्या उस हादसे में हुई, तो मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा. जो 1.5 लाख छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनको जो परेशानियां हो रही हैं, तो नंगे पैर चलकर जो परेशानियां मुझे होती थी, वो एहसास दिलाती थी कि मुझे उन 1.5 लाख छात्रों की आवाज बनना है, तो उनकी परेशानियों के लिए मुझे कुछ करना है.
1: Well, so it is quite a contest that we witnessed in the Delhi University

0: elections, the student elections that is, now denied an NSUI ticket. Deepanshu Shokin went solo and scripted a stunning victory in the Delhi University Student Union politics. Now, the bus conductor's son emerged as the most powerful rebel and lone independent winner, securing a record mandate. In fact, in an exclusive interview with my colleague Anjali Pandey, Shokin speaks on the NSUI's fault lines and why is it that the NSUI's strategy went drastically wrong. Take a look at this conversation.
1: Being joined by the new DUSU Vice President, Deepanshu Shokin, the independent candidate who has scripted history this time in many ways. Deepanshu, thank you for joining us on the broadcast. First of all, congratulations to you. Aapne history script ki hai, itne sare tarikon se record mandate mila hai aapko, margin itna bada raha. Sabse pehla jo naam ekdam pakka ho gaya tha, jeet jiski pakki ho gayi thi, subah hi wo aap hi the. Deepanshu, ek wo din tha jis din aapko टिकट मना की गई थी, जिस दिन आपको टिकट नहीं दी गई एनएसयूआई की तरफ से, आपकी वीडियोस वायरल हुई, आप काफी इमोशनल थे, उस दिन आपने डिसीजन लिया कि आप इंडिपेंडेंटली लड़ेंगे इलेक्शन, और एक कल का दिन था जब कोई एक ऐसा कैंडिडेट था जिसकी जीत सबसे पहले पक्की हुई थी और सबसे ज्यादा पक्की जीत थी वो आप ही थे. कैसी रही ये जर्नी?
2: जर्नी काफी अच्छी रही, बहुत से स्ट्रगल्स इसके बीच में आए, जैसे और आपने पूछा कि भाई टिकट कटने के बाद और यहाँ जीत तक का सफर कैसा रहा, तो बहुत ही प्यार और स्टूडेंट्स ने भरोसा मुझ पर जताया और उस भरोसे पर मैं खरा उतरूंगा, क्योंकि मेरा इलेक्शन सिर्फ मैंने नहीं लड़ा, मेरा इलेक्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर एक छात्र ने लड़ा और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ने प्रूव किया कि अगर वो गलत होता देखेंगे तो स्टूडेंट्स अपनी आवाज उठाना जानते हैं और उन्होंने मुझे अपनी आवाज के रूप में चुना.
1: दीपांशु, मैं आपसे जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी कंट्रोवर्सी रही उस पर भी बात करना चाहूंगी, क्योंकि कई वीडियोस वायरल हुए एनएसयूआई प्रेसिडेंट के, कई सारी थ्योरीज जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे चल रही थी, जिसमें कि उनका ये कहना था कि आपकी तरफ से कुछ शर्तें रखी गई थी और उन शर्तों को वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से आपको टिकट नहीं दी गई. उनका ये भी कहना है कि वो आपको प्रेसिडेंट की टिकट दे रहे थे लेकिन आप राजी नहीं थे प्रेसिडेंट लड़ने के लिए, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे?
2: बहुत सी ऐसी बातें थी जो सामने आती है और आप देख सकते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट कर रहा हूँ, दो और कैंडिडेट थे जो इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट कर रहे थे. तो मैं साफ साफ ये कहना चाहूंगा कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी, ना तो वहां पे मैनेजमेंट हो पाई चीजों को लेकर, और जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे जिनका जेनजी का जिन पे भरोसा था, जो खुद स्टूडेंट जिनको सपोर्ट कर रहे थे, जो चाह रहे थे कि भाई कॉमन स्टूडेंट जिनके सपोर्ट में थे, उनको मौका नहीं मिला. आप देख सकते हैं जिस तरीके का मैंडेट सामने आया है, तो ये साफ दर्शाता है कि इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से स्टूडेंट्स का जो भरोसा था वो कहीं ना कहीं टूटा. और मैं कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी बात करते हैं हमारे जेनजीज की और छात्रों की गूंज की, तो वो बहुत अच्छा कंसेप्ट है जो स्टूडेंट्स उसे कनेक्ट करते हैं, पर कहीं ना कहीं इंटरनल पॉलिटिक्स जो एनएसयूआई के अंदर हुई, जो एनएसयूआई की लीडरशिप की वजह से हुई, उसने साफ साफ जो नुकसान एनएसयूआई को हुआ वो उस वजह से हुआ.
1: जी, तो दीपांशु, क्या आप ये कह रहे हैं कि आपको टिकट नहीं ऑफर की गई थी प्रेसिडेंट पोस्ट की, आपको कोई भी टिकट ऑफर नहीं की गई थी एनएसयूआई की तरफ से?
2: मेरा विड्रॉल सबसे लास्ट में हुआ है, वहां पे आप देख सकते हैं सबसे
1: लेकिन एंड में. ऐसा क्या हुआ जिसके बाद आपको विड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि आप स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट थे एनएसयूआई की तरफ से, आपका कैंपेन इतना स्ट्रांग था, क्या एनएसयूआई को ये नहीं दिखा? क्योंकि एनएसयूआई का कहना है कि हम तो प्रेसिडेंट का पोस्ट दे रहे थे दीपांशु को, दीपांशु नहीं माना.
2: मुझसे पहले टिकट्स कंफर्म हो चुकी थी, मैं वाइस प्रेसिडेंट कंटेस्ट कर रहा था, बट जो इंटरनल पॉलिटिक्स हुए, किसका फोन आया, क्या हुआ, उसके बाद बोला गया कि आप विड्रॉ कर लो. बट मेरे को था कि मेरा मकसद सिर्फ चुनाव लड़ने का नहीं था, मेरा मकसद था मैं छात्रों को रिप्रेजेंट करने आया हूँ, स्टूडेंट्स को, तो मैं उनको रिप्रेजेंट करूँ, फिर नतीजा चाहे कुछ भी हो. तो मैंने डिसाइड किया मैं कंटेस्ट करूंगा, मैंने कंटेस्ट किया, स्टूडेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया.
1: क्या आपको लगता है कि ये जो सारा डिसीजन था टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का, ये एनएसयूआई पे महंगा पड़ा और इसी यही एक वजह है कि एनएसयूआई एक भी सीट नहीं जीत पाई इस बार?
2: ये तो जो मैंडेट आया उससे जवाब आपको मिल ही गया होगा कि कैसे जो हुआ है सब, उसका नुकसान एनएसयूआई को भुगतना पड़ा. पर कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूंगा कि हर स्टूडेंट को, जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं, जो जेनजी आज जिनको चाहते हैं, उन्हें मौका मिलना चाहिए, और उन्हें अगर मौका मिलेगा तो वो अच्छा करके दिखाएंगे, अपने आप को प्रूव करके दिखाएंगे, जिससे सबको फायदा हो।
1: अभी जब आप इलेक्शन जीत गए हैं तो अभी आगे कोई स्कोप है आपका वापस एनएसयूआई से जुड़ने का, वापस एनएसयूआई में जाने का, या अब आप अपनी अपना अपनी जो राय है वो अलग ही रखेंगे, और या फिर इन फ्यूचर किसी और पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ने का?
2: मेरा मेरा इलेक्शन पूरा स्टूडेंट्स ने लड़ा है, तो ये फैसला भी स्टूडेंट्स के ऊपर होगा कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। अभी हम छात्रों के मुद्दों पर काम करेंगे, जो वादे मैंने किए, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं स्टूडेंट्स की आवाज बनकर आया हूँ, तो मैं पहले उनकी आवाज को इस दिल्ली विश्वविद्यालय में उठाऊंगा। जो इश्यूज स्टूडेंट्स को आ रहे हैं, जो सत्यनिकेतन में हादसा हुआ, उन स्टूडेंट्स को इंसाफ दिलाना, हॉस्टल्स के मुद्दे पर हम काम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर हम काम करेंगे, और इन सब पर जो स्टूडेंट्स जो चाहेंगे वो काम, वो इश्यूज वो रेस किए जाएंगे।
1: जी दीपांशु, कल जिस तरीके का मैंडेट आपको मिला है, 30,000 के लगभग आपको वोट मिले हैं, उसको देख के एक अंदर से ये फीलिंग आई कि इलेक्शन में प्रेसिडेंट पोस्ट पे ही लड़ लेता, क्या पता उसमें भी आप इतिहास रच देते, क्या पता इतना सपोर्ट आपको उस पे भी मिल जाता तो आज आप डूसू के प्रेसिडेंट भी बन सकते थे?
2: जैसे मैंने आपको पहले बताया, मेरा मकसद सिर्फ चुनाव लड़ने का नहीं, मेरा मकसद था कि जो स्टूडेंट्स मेरे पर भरोसा करते हैं, मैं उनको रिप्रेजेंट करूं, जो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव का टैग होता है उसे मैं जस्टिफाई कर पाऊं, और उसमें पोस्ट मैटर नहीं करती, आपकी आवाज मैटर करती है कि आप छात्रों के मुद्दों को किस तरीके से उठा रहे हो, किस तरीके से आप उनके साथ खड़े हो। तो मैं स्टूडेंट्स के साथ था, जब भी उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट दिखाया, जिस तरीके का मैंडेट सामने आया, 30,000+ वोट्स, जो डूसू में एक अपने आप में एक हिस्ट्री है,
1: बिल्कुल,
2: तो ये सब दिखाता है कि स्टूडेंट्स मेरे साथ थे। और जब स्टूडेंट्स आपके साथ है तो पोस्ट मैटर नहीं करती, क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे सबकी नजर आप पे रहती है। अगर आप स्टूडेंट्स के इश्यूज को रेज करते हो, आप स्टूडेंट के इश्यूज पे बात करते हो, स्टूडेंट्स के लिए खड़े होते हो, तो वो जरूर कहीं ना कहीं आपके साथ रहेंगे, और वो ज्यादा मैटर
1: और वो
2: करता है।
1: हमने देखा भी, आपकी वीडियोस जो थी वो भी वायरल हो रही थी, जिसमें कि आपने कोई फुटवेयर नहीं पहना था, आप नंगे पांव अपनी कैंपेनिंग करते थे, ये हमने सत्यनिकेतन ट्रेजेडी के बाद से देखना शुरू किया, उस पे भी आप हमें कुछ बताइए।
2: नंगे पैर चलने का ये सत्याग्रह की जो शुरुआत मेरी हुई, कि जो परेशानियां मुझे नंगे पैर चलते हुए आई थी, वो मुझे याद दिलाती रही कि 1.5 लाख स्टूडेंट्स जो इस दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो मुझे याद दिलाती रही नंगे पैर, जो मुझे परेशानी कि वो स्टूडेंट्स की परेशानियों के लिए मुझे आवाज उठानी है, उनको सोल्यूशन देने हैं, उनके लिए लड़ना है, उनकी आवाज उठानी, उनके अधिकारों के लिए लड़ना, चाहे वो बेसिक फैसिलिटीज की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, और सबसे बड़ी बात जो सत्यनिकेतन में हादसा हुआ, अभी तक उन स्टूडेंट्स की फैमिलीज को इंसाफ नहीं मिला, तो उनके लिए मैं इंसाफ की मांग करता हूं, और जब तक ऐसा नहीं होता मैं नंगे पहले।
1: जी दीपांशु, एक अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव की बात करें, तो एक चीज जो कि हमेशा हेडलाइंस बनाती है वो है कि जितना पैसा खर्च किया जाता है, जिस तरीके के हम काफिले देखते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिले देखते हैं, आप एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड, आपका एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड है, हमने आपके घर वालों की भी वीडियोज देखी, और योर फादर इज अ बस कंडक्टर, आपका क्या, आपकी क्या राय है, जैसे कि आपके सामने जो कैंडिडेट्स थे, यश दबास, ईशु मौर्या जैसे कैंडिडेट्स थे जिनके पीछे बड़ा बड़ा बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला था, और दूसरी तरफ आप थे, तो क्या आपको लगता है कि पैसा और बाहुबल बहुत इम्पोर्टेंट है डूसू इलेक्शन में?
2: जेनजी जनरेशन है, और जेनजीज ने भरोसा दिखाते हैं स्टूडेंट्स इश्यूज पर, जो उनकी बात करेगा, उनके लिए बात करेगा, उनके साथ स्टूडेंट्स रहते हैं। पैसा और मसल मनी पार की पॉलिटिक्स अब इतना नहीं चलती जितना क्योंकि आपने देखा होगा, जब जब जेनजीज ने खुद प्रूव करके दिखाया कि वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं, तो मेरे साथ जेनजीज थे, मेरे साथ इस दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक एक स्टूडेंट्स था, स्टूडेंट्स थे, इसीलिए मुझे कोई परेशानी नहीं हुई इन मनी और मसल पावर की पॉलिटिक्स के सामने टक्कर लेने में। और इसी तरीके का मैंडेट आपको देखने को मिला कि जब स्टूडेंट्स ने मुझ पर भरोसा जताया, उन्होंने मुझे अपने बीच से पाया कि भाई हाँ ये हमारे बीच से जाकर हमारे रिप्रेजेंटेशन वहां पर कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स ने मुझे मेरा साथ दिया।
1: दीपांशु, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी, आपके साथ जो तीन बाकी पोस्ट पे जो लोग जीते हैं वो एबीवीपी के हैं, तो आपको क्या लगता है कि डीयू के बच्चों ने, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने क्लियर मैंडेट दे दिया है कि उनका हाथ किसके साथ है ऑन अ नेशनल लेवल? और एक चीज मैं और जो जानना चाहूंगी कि तीनों एबीवीपी से है, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, किस तरीके से मिलजुल के आप काम करने वाले हैं?
2: जैसा आपने देखा कि मुझे 30,615 वोट मिले, जो दूसू की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है, तो ये साफ दिखाता है कि स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं, और जब तक स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं तो कहीं जो भी परेशानियां हमें आएंगी हम मिलकर इनका समाधान करेंगे, और स्टूडेंट्स ने अपना मैंडेट मेरे साथ दिया है, तो हम मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, और जो लापरवाह प्रशासन और जो प्रशासन की तरफ से परेशानी आती है हम उनको खत्म करेंगे, और स्टूडेंट इश्यूज, स्टूडेंट्स ने मुझ पर भरोसा दिखाया है अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर या उनके इश्यूज को मैं रेज करूंगा, तो मैं स्टूडेंट्स के साथ इस लड़ाई में खड़ा हूँ।
1: जी दीपांशु, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू फॉर योर फ्यूचर।
0: Our next story focuses on a certain exercise that has seen its own share of controversies across states in this very country. Yes, we're speaking of the special intensive revision. Now, the latest flashpoint in that very episode is that the SIR scrutiny has reached the doorstep of the former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and Chief Minister Rekha Gupta herself, with Kejriwal and four members of his family having been served electoral roll verification notices. Kejriwal, his wife Sunita, parents Gobind Ram and Geeta Devi, and son Pulkit have all been flagged under the unmapped with last SIR category. This comes after Kejriwal had publicly questioned the SIR exercise over deletions from the draft electoral roll. Kejriwal, in fact, steps up his attack on the SIR, calling it an attempt to reduce India's population. He claims the exercise could bring the population down from 140 crore to 50 crore, while alleging 47 lakh names are missing from the draft voter roll. Meanwhile, Delhi Chief Minister Rekha Gupta's electoral details were flagged for a discrepancy during the SIR process, prompting a notice. But after physical verification by the booth level officer, her documents and details were checked and validated. So this is the latest in that very procedure that we've been tracking, taking place across states from time to time. This is the latest flashpoint. Shifting focus down south next, it's a political row we've seen erupting over the proposed new secretariat in Tamil Nadu's Pattanipakkam. The Tamil Nadu CPIM State Secretary P. Shanmugam, an ally of Vijay's TVK, criticised the Chief Minister, saying the Vijay government runs on its allies' support, and warned that the allies may abandon him if they're not consulted. He also said that the TVK does not call all party meetings and demanded that the plan for a secretariat in Pattanipakkam be dropped. It is not just the CPIM right now, viewers. The opposition has also been targeting the Vijay government over this very project itself. Tamil Nadu Minister Adavarjuna hit back, saying no final decisions has been taken on the new secretariat. He said only a government order has been passed for the site and accused political parties of playing politics over the very issue. He added that Chief Minister Vijay will take the final call on the project and that the Chief Minister always prioritizes fishermen.
3: 34% தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஓட்டு போட்டு நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படவில்லை. மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உள்ளிட்ட மற்ற கட்சிகளுடைய ஆதரவோடுதான் அரசாங்கம் நீடித்துக் கொண்டிருக்கிறதே தவிர, இப்படி தான் அடித்த மூப்பாக நீங்கள் நடந்து கொள்வீர்கள் என்று சொன்னால் வேறு விதமான முடிவுகளை நோக்கி நாங்கள் செல்ல வேண்டும். குறைந்தபட்சம் ஒரு ஜனநாயக அணுகுமுறை என்பது ஆட்சியாளர்களிடத்தில் தேவை. ஆனால் எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை நடத்துவதற்கு இவர்கள் அச்சப்படுகிறார்கள். தமிழ்நாடு அரசாங்கம் இப்போது அறிவித்திருக்கிற அரசாணை எண் 564 திரும்பப் பெற வேண்டும். இந்த இடத்தில் தலைமைச் செயலகம் அமைக்கப்படாது என்கிற அறிவிப்பை முதலமைச்சர் அவர்கள் வெளியிட
4: வேண்டும். உடனே போராடினாங்க, இது வரைக்கும் நம்ம எந்த முடிவு எடுக்கலையே, அது அரசியலாக்குறாங்க எல்லாரும், நம்ம அதை பண்ணிடுவோம் இது பண்ணிடுவோம். பொதுவா ஒரு ப்ராஜெக்ட் நடக்கும் பொழுது அந்த இடத்த டிபிஆர் டீடைல் ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்டுக்காக வந்து நம்ம வந்து தேர்ந்தெடுப்போம். அந்த ரிப்போர்ட் வந்த பிறகுதான் நம்ம பண்ணலாமா வேணாமான்னு முடிவு பண்ணுவார் முதலமைச்சர் அவர்கள். அப்ப மீனவ சகோதரர்களே, சகோதரிகளே, இன்னும் முதலமைச்சர் எந்த முடிவு எடுக்கல. ஒரு டிபிஆர், ஒரு டீடைல் ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட், ஒரு ஆய்வதை மேற்கொண்டு இருக்காங்க. இந்த இடம் சரி வருமா சரி வராதா, அந்த இடத்துல மீனவ மக்களுக்கு அப்செக்ஷன் இருக்கா இல்லையா, எதுவுமே இல்ல. ஒரு ஜிஓ போட்டிருக்காங்க, ஜிஓ போட்ட பிறகுதான் டிபிஆர் பண்ணப்படும். உடனே அது அரசியல், அங்க இருக்க நிறைய கட்சிகள் போய் மீனவ மக்கள் கிட்ட தமிழ் வெற்றி கழகம் உங்களுக்கு எதிராக வந்து எல்லா குப்பத்தையும் எல்லா மீனவ பகுதியில வெளியனுப்ப போறாங்க, எல்லாம் போலியான அரசியல். நம்மளுடைய தலைவர் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் ஒன்னே ஒன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க, ஏர்போர்ட் பரந்தூர் ஏர்போர்ட் வரணும்னு இருந்தா எத்தனையோ தொழிலதிபர்கள் அந்த ஏர்போர்ட்டை கேன்சல் பண்ணாதீங்க. எத்தனை கோடி வேணா ஊழல் பண்றதுக்கு ரெடியா இருந்தாங்க, எத்தனை கோடி வேணா பார்ட்டி பண்ணி கொடுத்திருப்பாங்க கேன்சல் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு. ஒரே ஒரு ஆர்டர், ஏன் தெரியுமா, எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி நான் சொன்னேன் விவசாயிகள் கண்ணீரை தொடப்பண்ண, அதனால பரந்தூர் ஏர்போர்ட்டை தூக்கி போட்டார். இதுதான் அரசியல். அவரை யாரையும் வந்து ஒரு அடக்கி ஆளுமோ இல்ல காவல்துறை வச்சு யாரையும் மிரட்டணுங்கிறது அவர் உணர்வு கிடையாது. எங்களோட முதலமைச்சருக்கு அந்த எண்ணம் கிடையாது. தலைமைச் செயலகமா மீனவ மக்களுடைய வாழ்க்கைனா கண்டிப்பா மீனவ மக்கள் மட்டும்தான் எங்களோட முதலமைச்சர் நிப்பாரு.
0: And on that very note, viewers, we're wrapping up the bulletin right here. But do stay tuned to India Today as we keep bringing you all the latest updates through the day. Thank you for watching.
5: You are watching India Today.

0: देखिए, ममता बनर्जी किसको सपोर्ट करेगी तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। ममता बनर्जी की कैंडिडेट खुद नहीं रही, पार्टी साइन बोर्ड बन चुकी है। पहले कांग्रेस को साइन बोर्ड कहती थी, अभी उसी साइन बोर्ड को जाके वो साइन दूसरा वाला साइन बोर्ड सपोर्ट कर रहा है। अब दो साइन बोर्ड अपने आप को एक दूसरे को सपोर्ट करके कितना दूर तक जा पाएंगे तो भगवान ही बता पाएगा आगे आने वाले समय में। और अरेस्ट कुछ केसेस है, इसके लिए पुलिस ने अरेस्ट किया है। अगर कुछ गंभीर कुछ नहीं है तो कोर्ट में जाएंगे तो बेल मिल जाएगा। अगर गंभीर है तो कोर्ट नहीं बेल देगी, तो कोर्ट ही डिसाइड कर देगी क्या सच है क्या झूठ है।
1: देखिए, ये डरे हुए लोग हैं, दिक्कत ये है, ये लोग डर गए और ये साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को इन्होंने पपेट बना लिया है। ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की चल रही है और इसके अंदर राहुल जी ने जो इनिशिएटिव लिया है उससे देश के अंदर लोगों की समझ में आ रहा है। अब लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तब ये बचेगा तो सारी चीजें सुधरने का काम करेंगे।

0: पूरा अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, उनका भी वो अपमान करते हैं।
1: We're now being joined by Alok Sharma from the Congress Party. Mr. Sharma, a very good morning to you. Alok ji, आपकी पार्टी को घेरा जा रहा है, कल जो कुछ हुआ छात्रों के गूंज इवेंट में, जो मिमिक्री की गई प्रधानमंत्री मोदी जी की, जो उन्होंने एक कुर्सी ऑफर की करने को बोला था एक एल्डरली वुमन को, उस पर मजाक उड़ाया गया और राहुल गांधी भी साथ में दिखे कमेडियन के, इस पर आपकी पार्टी को घेरा जा रहा है कि कैसे कांग्रेस पार्टी काफी इनसेंसिटिव है, आपका रिएक्शन?
2: देखिए, मैं समझता हूँ ना तो किसी का नाम लिया गया वहां पर, ना मोदी जी की मदर के बारे में कुछ कहा गया, लेकिन मोदी जी जिस तरह से अपनी सभाओं में पीआर करते हैं, केवल उसको एक्सपोज करने का काम किया गया। उनके काफिले में हर बार जब चुनाव चलता है तो एम्बुलेंस घुस जाती है। अरे भाई, अगर बार बार एम्बुलेंस,
1: आलोक जी नाम नहीं लिया गया लेकिन आप भी जानते हैं कि इशारा किस तरफ था।
2: हाँ बिल्कुल, देखिए मैं समझता हूँ कि मोदी जी पीआर के लिए जो सब कुछ करते हैं वो एक्सपोज होना जरूरी है। मोदी जी अपनी माताजी जो रियल माताजी थी उनके पास भी मिलने जाते थे तो 40-40 कैमरे लेकर जाते थे, एक पेड़ माँ के नाम और फिर पूरे जंगल के जंगल कटवा देते हैं ये लोग। तो माँ के नाम को जिस तरह से मोदी जी ने राजनीति में घसीटा है वो तो पूरे देश में पता है।
1: लेकिन आलोक जी, क्या इसका ये मतलब है कि कांग्रेस पार्टी को फिर इससे राइट मिल जाता है कि वो भी किसी की मां के ऊपर पॉलिटिक्स करे, वो भी ऐसे रिमार्क्स पास ऑन करे?
2: नहीं, हमने किसी की मां के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं की, हमने प्रधानमंत्री के ओछे पीआर के ऊपर पॉलिटिक्स की। जो प्रधानमंत्री हर सभा के अंदर एक फोटो लेके आ रहे, भाई देखिए जरा ये किसका फोटो है, ये ले लीजिए फोटो, जरा पकड़ लीजिए, मगर ये ओछी पीआर जो है देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती है। हर बार उनके यहाँ एम्बुलेंस घुस जाती है, एसपीजी के डायरेक्टर को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए जब एम्बुलेंस घुसती है। किसी की हिम्मत है कि चिड़िया भी पर मार जाए मोदी जी की परमिशन के बगैर?
1: आलोक जी, हमने अभी हमने कुछ हफ्ते पहले भी ऐसा ही कुछ देखा, जो राहुल गांधी का एक इवेंट था उसमें हमने संदीप दीक्षित जी को देखा, उन्होंने जो इशारे किए, जो उन्होंने भी मिमिक्री की, जिसमें कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर को भी मॉक किया गया था, तो क्या ये सब सही है? क्या औरतों के ऊपर ये राजनीति जो कांग्रेस पार्टी कर रही है अभी लास्ट कुछ मंथ्स में और लास्ट कुछ दिनों में, क्या ये सही है?
2: ये औरतों के ऊपर राजनीति नहीं है, आप गलत नैरेटिव दर्शकों के सामने रख रहे हैं। हम मोदी जी का जो स्टंट है, जो ओछी पीआर की उनकी जो एक्सरसाइजेज है उनको एक्सपोज कर रहे हैं। ये किसी की माँ की बहन की बेटी की अगेंस्ट कुछ नहीं कर रहे हैं हम, और जो लोग हमें पट्टी पढ़ा रहे हैं उनकी अगर कहानी बताऊंगा मोदी जी ने क्या क्या बोला है, जर्सी खाओ और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और स्वरूपन खाओ और पता नहीं कितना कितना बोला है। भाजपा वालों से कांग्रेस वालों को सीखने की आवश्यकता नहीं कि मां का सम्मान कैसे किया जाता है।
3: ये झूठ की गूंज चारों तरफ चल रही थी, आप समझिए कि क्या स्थिति है। राहुल गांधी जी को सुनने के लिए कोई आने को तैयार नहीं है, 100 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं। तो आपने देखा कि नेहा सिंह राठौर को जो है उन्होंने बुला लिया गुजरात, और आज जो है, कल जब मैं देख रहा था तो स्टैंड अप कॉमेडियन जो है उसको लेके इंदौर में घूम रहे हैं। मैंने कहा था एक दिन कि हो सकता है कि किसी दिन उनको जो सबसे लोकप्रिय अदाकारा हैं बॉलीवुड की, राखी सावंत, उनके साथ भी जो है मन शेयर करते हुए राहुल जी नजर आ जाएंगे, क्योंकि लोग तो आता नहीं है।
4: देखिए, राहुल गांधी के कृत्य ने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस पार्टी क्यों विपक्ष में बैठती है और 2029 में भी कांग्रेस विपक्ष में क्यों बैठेगी, क्योंकि राहुल गांधी का पूरा एक्ट ये दर्शा रहा था कि वो देश की गरीब जनता से नफरत करते हैं। वो एक ट्रोलर की तरीके से कॉमेडियन के जैसे स्टेज पे दिखे, ना कि एक एलओपी के जैसे। तभी इस देश में कंसेंसस है कि राहुल इज नॉट फिट टू बी दी एलओपी, ही इज नॉट मेंटली फिट टू बी दी एलओपी।
5: मैं समझता हूँ ये तो प्रहलाद जोशी समझ नहीं पाते, भाषा का ज्ञान नहीं उनको, विषय का ज्ञान नहीं, इस तरह की बातें बेतुकी वो बोल जाते हैं। वो पहली बार नहीं बोल रहे, वो आदतन बेतुकी बातें बोलते हैं। माँ का कहाँ से जिक्र आ गया? मैं तो 2-3 बार देख चुका राहुल जी का, माँ का तो कहीं जिक्र ही नहीं आया था। तो कम से कम शिक्षा मंत्री हो, अशिक्षित की तरह बात मत करो, कोई आरोप लगाओ तो उसमें कुछ तो सच्चाई हो, चलो 100% ना हो, 10-20-25% सच्चाई हो। राहुल गांधी ने तो उनकी माँ का जिक्र ही नहीं किया।
6: छात्रों का गुंज प्रोग्राम में जो हुआ, वहाँ प्रधानमंत्री मोदी का कैरिकेचर किया गया है, इसमें मैं कोई दोष नहीं देखता हूं। प्योर ह्यूमर तो अप्रिशिएट करना चाहिए, और मोदी भी तो ऐसा करते थे, बीजेपी भी करते थे, राहुल गांधी के बारे में उनको पप्पू कहलाते थे, आज क्यों उनको आपत्ति होगा राहुल गांधी ये कह रहे हैं। मैं कहता हूं कि सही है, इसको ह्यूमर को अप्रिशिएट करना चाहिए।
7: This, viewers, as we were mentioning before, is not the first time something of this kind has made headlines. Just in August, last month, Congress leader Sandeep Dixit had hugged Rahul Gandhi and invoked Italian Prime Minister Giorgio Meloni's name in reference to Prime Minister Modi. Take a look as to what had been said.
8: इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया, अब अजीब चीजें घुस जाती हैं, but इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी।
9: एक चीज पूछ सकता हूं?
8: हाँ।
9: मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था?
8: I have not reached there yet.
7: Now, as far as this event goes, it's not just this very episode or what the Congress has done so far or said so far that has made headlines. There's also another aspect to the entire story. Rahul Gandhi has also come out to slam the BJP at the Chhatro Ki Goonj event. Addressing the event in Indore itself, Lok Sabha leader of opposition Rahul Gandhi said, the system wants andhbhakts and not students. Drawing a contrast between the two, he said students ask questions while andhbhaks do not. Students spread love while andhbhaks spread hatred. Students are fearless while andhbhaks are cowards. And students are curious while andhbhaks are delusional. Turning to the education system, Gandhi said students are the future of India and that education is not a necessity. And is a necessity, not a luxury, I beg your pardon. He said, students are under pressure and unhappy and are losing hope in the very system. He's alleged that the BJP and the RSS has captured the education system altogether. Big allegations coming in from the leader of the opposition of the lower house. Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav has hit back, accusing Gandhi of spreading falsehoods and trying to mislead the public. He said that the Congress has never supported the youth and that Gandhi's remarks show a lack of seriousness on the very issue.
8: System ko student se khatra hai. Kyun khatra hai? Kyunki sawal puchta hai student. Student kehta hai ki Amit Shah ji ke bete cricket association ke chairman kaise ban gaye? Ye sawal student puchta hai. Student puchta hai कि हिंदुस्तान के पूरे बिजनेस को दो लोगों ने कैसे कैप्चर कर दिया। स्टूडेंट पूछता है कि जुडिशरी और बाकी संस्थाएं क्यों नहीं अपना काम करती हैं। स्टूडेंट पूछता है इलेक्शन कमीशन अपना काम नहीं करता, इसीलिए सिस्टम स्टूडेंट नहीं चाहता है, सिस्टम अंधभक्त चाहता है। अंधभक्त कौन है? अंधभक्त एंटी स्टूडेंट है। जहां स्टूडेंट सवाल पूछता है, जहां स्टूडेंट क्यूरियस है, वहां अंधभक्त डेल्यूशनल है, अपनी दुनिया में रहता है। यह है हिंदुस्तान की शिक्षा का बजट। पहले 2014 में जब हमारी सरकार थी, बजट का 4.6% शिक्षा में जाता था। उसके बाद बजट कम करते करते करते करते 2.6% ऑफ बजट एजुकेशन में जाता है। 7.7 लाख करोड़ रुपए जो शिक्षा में जाने थे, अगर वो बजट मेंटेन किया जाता, वो शिक्षा में नहीं गए, वो अरबपतियों के हाथ गए, वो अदानी अंबानी के हाथ गए।
10: आज इंदौर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने अपनी झूठ की गूंज का कार्यक्रम किया, और जैसा कि होता है कि नेता प्रतिपक्ष हमेशा अपने विषय के प्रति लापरवाह भी रहते हैं, आज भी वो बगैर तैयारी के कुछ ऐसे बच्चों को, कुछ युवा मित्रों को जिनकी बात क्वेश्चन आंसर में आना चाहिए थी, बात करना कराना चाहिए थी, ऐसा लगा कांग्रेस के लोगों ने केवल अपने एजेंडे के आधार पर जनता के बीच भ्रम फैलाने की दृष्टि से बात कही।
7: सो दिस इज द अदर पार्ट ऑफ द एंटायर डिबेट दैट्स नाउ कम अबाउट फ्रॉम दिस वन छात्रों की गूंज इवेंट। दिस वाज द इंदौर चैप्टर व्यूअर्स दैट वी आर स्पीकिंग ऑफ। नाउ देयर आर टू मेजर फ्लैश पॉइंट्स दैट हैव कम इन। वन विद दैट episode of mimicry that had taken place, which has both sides in fact exchanging barbs at each other, and the other part is what Rahul Gandhi has said about the education system, because remember Chhatron Ki Goonj event has to do with the students of the country. We've seen the previous chapters, the last one in fact having taken place in Pune, and this time it was in Indore. Now Rahul Gandhi in the last few months has come out to raise his voice about education quite a bit. He's come out to conduct these events with students, even certain group discussions with smaller groups of students that we have seen. And this, of course, this flagship event of the Congress at this given point takes quite the center stage. So this is the latest flashpoint of politics that we are covering on this very event that's come out to erupt. Now, on that note, we are shifting our focus to a different story. Yesterday, Delhi University has seen a nail-biting contest when we speak of the students' election, that is. Now, on that note itself, after a sweeping victory for the ABVP this time, it's my colleague Anjali Pandey who's spoken to ABVP's Yash Dabas, who has now been elected as the Delhi University Student Union president. Let's listen into that conversation.
11: काफी कांटे की टक्कर थी आपके बीच और एनएसयूआई के जो कैंडिडेट थे विजय मीना उनके बीच। हर राउंड के बाद ऐसा लग रहा था कि कभी कोई आगे हो जा रहा था, कभी कोई आगे हो जा रहा था। काफी कम ऐसा होता है कि एंड के राउंड्स तक भी ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि कौन जीतने वाला है। तो आपको उस टाइम पे जब आप काउंटिंग बूथ पे प्रेजेंट थे, आपको उस टाइम पे कैसा लग रहा था जब हर राउंड के बाद रिजल्ट कभी इस तरफ जा रहा था, कभी उस तरफ जा रहा था?
12: मैम, मैं काफी रिलैक्स था, मुझे कहीं ना कहीं आत्मविश्वास था कि अभी एक आधे जो हमारे कैंपसेस है वो खुलने बाकी है, उनका रिजल्ट आना बाकी है, और उनका रिजल्ट आते ही मैं लीड मेंटेन कर लूंगा। और जैसे ही मुझे लगा कि हाँ उन कैंपसेस की वोटिंग खुली है, तो उसके बाद हमने एकदम से 2000 का मार्जिन क्लेम किया।
11: जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था यश, तो ये कहा जा रहा था कि यश दबास क्लियर विनर है, आज ही प्रेसिडेंट डिक्लेयर हो गया है। जब एनएसयूआई ने अपनी टिकट्स अनाउंस करी, उसके बाद सब कह रहे थे कि इस बार तो यश दबास ही जीतने वाला है। लेकिन कल जब काउंटिंग हुई तो हमने देखा कि कैसे काफी क्लोज कॉन्टेस्ट था, एनएसयूआई ने स्ट्रांग कमबैक किया। क्या आपको उम्मीद थी कि इतना क्लोज कॉन्टेस्ट होने वाला है, और क्या आपको लग रहा था कि मैं तो इजीली जीत जाऊंगा, क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी ये बात कह रही थी?
12: नहीं मैम, मुझे कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि कंपटीशन टक्कर का ही रहने वाला है। हमने उसी हिसाब से तैयारी भी की थी, और अपने कभी भी ओपोनेंट को हम हल्का तो समझना नहीं चाहिए, ना हमने समझा, इसीलिए हमने उसी तरीके की मेहनत की, और फिर कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पांस आया और हम 2100 के मार्जिन से प्रेसिडेंट पोस्ट पे जीत के आए।
11: तो कौन सी ऐसी चीज है जो एबीवीपी ने एनएसयूआई से अलग की और जो की एबीवीपी के लिए काम कर गई?
12: मैम, जो एबीवीपी की इकाई है, जो हर एक कॉलेज में हमारी इकाई है, जो पूरा साल वो स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, छात्र हित के लिए काम करते हैं, राष्ट्र हित के लिए काम करते हैं, जो पूरा साल वो लगातार बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी स्वार्थ के जो लगातार काम करते हैं, वही हमारी जीत का कारण रहा। एनएसयूआई अगर आप देखेंगे तो वो केवल साल के आपके दो साल के आपको दो महीनों में ही दिखेगी, अगस्त और सितंबर, क्योंकि इन समय डुसू, उसके अलावा वो पूरे साल में आपको कहीं नजर नहीं आएगी। लेकिन आप किसी भी दिन विद्यार्थी परिषद को ढूंढना चाहोगे तो आप कॉलेज कैंपसेस में जा सकते हो, आपको कहीं ना कहीं विद्यार्थी परिषद जरूर दिखेगी।
11: यश, क्या आपको लगता है कि जो एनएसयूआई के इंटरनल फैक्शनलिज्म था, जो उनकी अंदरूनी लड़ाई थी, उससे भी काफी फायदा पहुंचा एबीवीपी को?
12: मैम, कहीं ना कहीं फायदा तो, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये फर्क है एनएसयूआई और एबीवीपी में, हम विद्यार्थी परिषद के भी 7 कार्यकर्ता गए थे नॉमिनेशन भरने, और जब हमें पता था कि हमें से 4 लोगों को ही टिकट मिलने वाली है, बाकी 3 लोगों को नहीं मिलेगी, लेकिन जिन 3 लोगों को टिकट नहीं मिली वो 3 लोग भी आए हमारे साथ और हमारी ताकत बढ़ाई उन लोगों ने, और उन लोगों ने हमें जीत के लिए आगे बढ़ाया।
11: जेंजी पे
12: जो
11: बहुत बड़ा
12: एनएसयूआई के थे उन्होंने एनएसयूआई के जो थे कार्यकर्ता, उन्होंने 7 लोगों ने अलग अलग, मतलब 4 सीटों पे 7 नॉमिनेशन थे एनएसयूआई के।
11: जी यश, जेंजी पे बहुत फोकस रहा इस साल, हमने लास्ट कुछ मंथ्स में देखा कि कैसे सारा फोकस सारे नेताओं का, सारी पार्टीज का जेंजी पे रहा है, तो कितना क्रूशियल था ये इलेक्शन, और क्या आपको लगता है कि डीयू ने अपना जवाब दे दिया है कि डीयू का हाथ अभी भी मोदी जी के साथ है?
12: मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ डीयू ने नहीं बल्कि पंजाब यूनिवर्सिटी में भी अभी इलेक्शन हुआ, तो जेंजीज स्मार्ट है, जेंजीज को आप बेवकूफ नहीं बना सकते, जो फेक नरेटिव चला के इतने दिनों से कुछ पॉलिटिकल विंग ने बेवकूफ बनाने की कोशिश की थी कि हाँ जेंजीज आर नॉट विद एबीवीपी ऐसा करके, तो यहाँ पे एकदम क्लियर मैसेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के और पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने उन्होंने दिया है, जो है कि दैट जेंजीज आर विद एबीवीपी, जेंजीज आर विद नेशन।
7: We'll now take you to another exclusive conversation. Denied an NSUI ticket, Dipanshu Shokin went solo this time. And what he did next was he scripted a stunning victory in the Delhi University Student Union politics. The bus conductor's sign emerged as the most powerful rebel and lone independent winner, securing a record mandate. Now, in this very exclusive conversation, an excerpt of which we bring to you here with my colleague Anjali Pandey, Shokin speaks on the NSUI's fault lines and why is it that their strategy went wrong.
11: First of all, congratulations to you. आपने history script की है इतने सारे तरीकों से, record mandate मिला है आपको, margin इतना बड़ा रहा, सबसे पहला जो नाम एकदम पक्का हो गया था, जीत जिसकी पक्की हो गई थी सुबह ही, वो आप ही थे। दीपांशु, एक वो दिन था जिस दिन आपको टिकट मना की गई थी, जिस दिन आपको टिकट नहीं दी गई NSUI की तरफ से, आपकी वीडियोज वायरल हुई, आप काफी इमोशनल थे, उस दिन आपने डिसीजन लिया कि आप इंडिपेंडेंट लड़ेंगे इलेक्शन, और एक कल का दिन था जब कोई एक ऐसा कैंडिडेट था जिसकी जीत सबसे पहले पक्की हुई थी और सबसे ज्यादा पक्की जीत थी, वो आप ही थे। कैसी रही ये जर्नी?
13: जर्नी काफी अच्छी रही, बहुत से स्ट्रगल्स इसके बीच में आए, जैसे और आपने पूछा कि भाई टिकट कटने के बाद और यहाँ जीत तक का सफर कैसा रहा, तो बहुत ही प्यार और स्टूडेंट्स ने भरोसा मुझ पर जताया और उस भरोसे पर मैं खरा उतरूंगा, क्योंकि मेरा इलेक्शन सिर्फ मैंने नहीं लड़ा, मेरा इलेक्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर एक छात्र ने लड़ा, और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ने प्रूव किया कि अगर वो गलत होता देखेंगे तो स्टूडेंट्स अपनी आवाज उठाना जानते हैं, और उन्होंने मुझे अपनी आवाज के रूप में चुना।
11: दीपांशु, मैं आपसे जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी कंट्रोवर्सी रही उस पर भी बात करना चाहूंगी, क्योंकि कई वीडियोस वायरल हुए एनएसयूआई प्रेसिडेंट के, कई सारी थ्योरीज जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे चल रही थी, जिसमें कि उनका ये कहना था कि आपकी तरफ से कुछ शर्तें रखी गई थी और उन शर्तों को वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से आपको टिकट नहीं दी गई। उनका ये भी कहना है कि वो आपको प्रेसिडेंट की टिकट दे रहे थे लेकिन आप राजी नहीं थे प्रेसिडेंट लड़ने के लिए, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे?
13: बहुत सी ऐसी बातें थी जो सामने आती है, और आप देख सकते हैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट कर रहा हूँ, 2 और कैंडिडेट थे जो इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट कर रहे थे, तो मैं साफ साफ ये कहना चाहूंगा कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी ना, तो वहां पे मैनेजमेंट हो पाई चीजों को लेकर, और जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे जिनका जेंजी का जिन पे भरोसा था, जो खुद स्टूडेंट जिनको सपोर्ट कर रहे थे, जो चाह रहे थे कि भाई कॉमन स्टूडेंट जिनके सपोर्ट में थे, उनको मौका नहीं मिला। आप देख सकते हैं जिस तरीके का मैंडेट सामने आया है, तो ये साफ दर्शाता है कि इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से स्टूडेंट्स का जो भरोसा था वो कहीं ना कहीं टूटा। और मैं कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी बात करते हैं हमारे जेंजीज की, जरा और छात्रों की गूंज की, तो वो बहुत अच्छा कंसेप्ट है जो स्टूडेंट्स उसे कनेक्ट करते हैं, पर कहीं ना कहीं इंटरनल पॉलिटिक्स जो एनएसयूआई के अंदर हुई, जो एनएसयूआई की लीडरशिप की वजह से हुई, उसने साफ साफ जो नुकसान एनएसयूआई को हुआ वो उस वजह से हुआ।
11: जी, तो दीपांशु, क्या आप ये कह रहे हैं कि आपको टिकट नहीं ऑफर की गई थी प्रेसिडेंट पोस्ट की, आपको कोई भी टिकट ऑफर नहीं की गई थी एनएसयूआई की तरफ से?
13: मेरा विड्रॉल सबसे लास्ट में हुआ है, वहां पे आप देख सकते हैं सबसे।
11: लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसके बाद आपको विड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि आप स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट थे एनएसयूआई की तरफ से, आपका कैंपेन इतना स्ट्रॉन्ग था, क्या एनएसयूआई को ये नहीं दिखा? क्योंकि एनएसयूआई का कहना है कि हम तो प्रेसिडेंट का पोस्ट दे रहे थे दीपांशु को, दीपांशु नहीं माना।
13: मुझसे पहले टिकट्स कंफर्म हो चुकी थी, मैं वाइस प्रेसिडेंट कंटेस्ट कर रहा था, बट जो इंटरनल पॉलिटिक्स हुए, किसका फोन आया, क्या हुआ, उसके बाद बोला गया कि आप विड्रॉ कर लो। बट मेरे को था कि मेरा मकसद सिर्फ चुनाव लड़ने का नहीं था, मेरा मकसद था मैं छात्रों को रिप्रेजेंट करने आया हूँ, स्टूडेंट्स को, तो मैं उनको रिप्रेजेंट करूँ, फिर नतीजा चाहे कुछ भी हो। तो मैंने डिसाइड किया मैं कंटेस्ट करूंगा, मैंने कंटेस्ट किया, स्टूडेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया।
11: क्या आपको लगता है कि ये जो सारा डिसीजन था टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का, ये एनएसयूआई पे महंगा पड़ा और इसी यही एक वजह है कि एनएसयूआई एक भी सीट नहीं जीत पाई इस बार?
13: ये तो जो मैंडेट आया उससे जवाब आपको मिल ही गया होगा कि कैसे जो हुआ है सब, उसका नुकसान एनएसयूआई को भुगतना पड़ा। पर कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा कि हर स्टूडेंट को, जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं, जो जेन जी आज जिनको चाहते हैं, उन्हें मौका मिलना चाहिए, और उन्हें अगर मौका मिलेगा तो वो अच्छा करके दिखाएंगे, अपने आप को प्रूव करके दिखाएंगे, जिससे सबको फायदा हो।
7: Now shifting our focus to another story. This is just months after the CJP-led youth protests took place in Delhi. The biggest students' union verdict has come in only yesterday evening, where the Delhi University Students' Union poll has delivered a big win for the BJP and a fresh boost for Prime Minister Modi's Gen Z outreach. So what is it that indeed worked in the favour of the ABVP? Where does the mindset shift come about? Why does it come about? Let's take you through all of those in detail in this comprehensive report next.
14: India's Gen Z has spoken. The verdict of India's biggest student elections is out, and BJP has won the Big Bang Gen Z campus poll. BJP student wing ABVP has swept three of the four top posts at Delhi University, giving PM Modi's Gen Z outreach a big boost. Yash Dabas won the president's post. Riya Chowdhury is the new secretary, and Lakshya Raj Singh won joint secretary.
15: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे पूरे साल काम करती आती है, वैसे ही पूरे साल काम करती रहेगी। हम हर एक दिन छात्रों के लिए लड़ते रहेंगे, हर एक छात्रों के मुद्दों को उठाते रहेंगे, हर एक जगह छात्रों की आवाज बनकर जाते रहेंगे।
16: सबसे बड़ा जो विद्यार्थी परिषद ने काफी समय से इसके अंदर हमारा पूरा पैनल था कि माहौल था कि 4-0 से हम जीतने वाले, बट कहीं ना कहीं एक सीट हम हार गए, और उसका एक कारण है सामने कैंडिडेट सिंपथी की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से सिंपथी उनको ज्यादा मिली, बट बाकी 3 सीटों के ऊपर सारे विद्यार्थियों ने हम पे भरोसा जताया।
14: The vice president's post went to independent candidate Dipanshu Shokin, but Congress-backed NSUI suffered a humiliating loss, ending with a zero in the win column. NSUI failed to secure a single position on the central panel, failing to convert early counting leads into a final victory. ABVP's victory comes just 2 months after Delhi streets witnessed one of the biggest student mobilizations in the CJP-led protests at Jantar Mantar.
17: Friends, main janta hoon ki...
14: Since then, Prime Minister Modi has time and again used social media and youth-centric outreach to speak to India's Gen Z. With his signature greeting for Gen Z, hello friends.
17: Thank you, friends. Kal der raat आपसे मिलने का मौका मिल गया है। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी।
14: At a recent interaction with students at SRCC, the Prime Minister even leaned into Gen Z vocabulary, tapping into the Gen Z lingo with words like OG and flex.
18: एसआरसीसी कहना ही अपने आप में ही एक फैक्ट होता है। यहाँ के एल्यूमनाई ओजी है।
14: पीएम मोदी देन असर्टेड दैट ट्रूथ विल प्रिवेल ओवर झूठ की गूंज।
18: मैं जानता हूँ सच की हुंकार के आगे झूठ की गूंज टिक नहीं सकेगी।
14: The Dusu elections were the first real test since the July protests, and ABVP's victory reflects that the BJP has passed the vibe check. Prime Minister Modi's youth appeal has resonated with DU's Gen Z. With Anmol Bali, Bureau Report, India Today.
7: And on that very note, we're wrapping up the bulletin this hour right here, but do stay tuned to India Today as we keep bringing you all the latest updates on the top stories through the evening. Thank you for watching.
19: Watching India Today.

0: Another BJP leader, in fact, another chief minister, adds to the tirade attacking Rahul Gandhi over his conduct at the Chhatron Ki Goonj event, the Indore chapter. This is Chief Minister Yogi Adityanath, who's taken an aim and pot shot at Rahul Gandhi in Greater Noida, stated that the conduct displayed yesterday by the Crown Prince of the Congress, amidst the echo of his own lies, is an insult to womanhood. Chief Minister Yogi remarked that no civilized or decent person could accept such behavior. He added that the country should give up hope on those who have never learned the norms of propriety and fail to grasp their sense of ancient adage, where women are honored, there the gods reside. Describing such individuals as misguided, he stated that their sole objective has become to sow confusion and anarchy in the very society. Now, before I proceed with more details, listen in to the entirety of the excerpt from his address where he slammed Rahul Gandhi and the Congress party.
1: Congress ke yuvraj ne bhi kal apne jhoot ki goonj mein jis prakar ka acharan kiya, puri nari shakti ka wo apman hai. Koi bhi sabhya vyakti, koi bhi sajjan vyakti, hamare yahan parampara kya hai, agar hum chal rahe hain ek pagdandi se chal rahe hain, ek marg se chal rahe hain, marg संकरा है, तो पहले हम क्या करते हैं, किसी बुजुर्ग को, किसी महिला को, या कोई फिर दिव्यांग हो या कुछ इस प्रकार मुझ अपने सी उम्र में बड़ा हो, उनको कहते हैं कि पहले आप, कहीं बैठने की भी व्यवस्था हो तो हम क्या, हमारा संस्कार कहता है पहले आप, यानी मैं भले ही इंतजार कर लूं लेकिन आप उम्र में बड़े हैं, मेरा संस्कार कहता है कि मैं पहले आपको सम्मान दूं, ये हमारा संस्कार है, ये हमारे जीवन की मर्यादा है. लेकिन जिन लोगों ने इन मर्यादाओं को नहीं सीखा है, जिन लोगों के मन में ये संस्कार नहीं है, जो भारत और भारतीयता को अपमानित करना अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य मान लेते हैं, उन लोगों से अपेक्षा करना कि वे वसुधैव कुटुंबकम के इस भाव को समझ सकें, या यत्र नारिस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता के भाव को समझ सकें, मुझे लगता है कि देश को उनसे उम्मीद करना ही छोड़ देना चाहिए.
0: Ashish Srivastav joins us on the broadcast with more details on these very remarks that have been made. Ashish, a very good afternoon to you. सबसे पहले एक और मुख्यमंत्री का हम टिप्पणी देख रहे हैं इस पूरे एपिसोड पे, जो छात्रों की गूंज की जो इंदौर इवेंट थी उस पर जो कांग्रेस लीडर ऑफ ऑपोजिशन, बल्कि लोअर हाउस के राहुल गांधी, एक मिमिक्री किया गया है इस स्टेज पर, जिसको लेकर बीजेपी अब काफी तगड़ी कमेंट्स लेके आ रही है, रिमार्क्स लेके आ रही है कि ऐसे आप बुजुर्गों को ऐसे पहले बात तो मॉक नहीं कर सकते और औरतों को ऐसे मॉक नहीं कर सकते. योगी आदित्यनाथ ने भी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी यही कहना है, आप इसे कैसे देख रहे हैं?
2: बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि वो जो छात्रों की गूंज है उसको चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वो झूठ की गूंज है, और वो गूंज ऐसी है जिसमें युवाओं को मिसगाइड किया जा रहा है, उनको महिलाओं का सम्मान ना करना इस तरीके से कहा जा रहा है. और यही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश को भटकाने का काम जो है वो राहुल गांधी कर रहे हैं, चूंकि देश उन पर क्या विश्वास करेगा, जो कि उन्होंने एक मंत्र दिया कि यत्र नारस्तुतु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहां पर नारियों की पूजा होती है, जहां पर देवता वास करता है, अगर उनके लिए इस तरीके का भाव नहीं समझा जाता है तो आखिर फिर वो किस तरीके के भाव को आगे बढ़ाएंगे. यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस के नेता पर ये भी वार करते हुए कहा है कि जिस तरीके से वो युवाओं के बीच में जाकर इस तरीके का सलीका सिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देश को अब वो दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं, तो देश उनके साथ ना चलकर कहीं ना कहीं ये देश जो है पूरी तरीके से मिसगाइड हो रहा है. तो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का ये करारा जवाब था, जिस तरीके से महिलाओं को लेकर जो भाव उन्होंने प्रकट किया, जो मिमिक

0: कि राहुल गांधी एक नेता है कांग्रेस के बड़े, और ऐसे में उनसे ये उम्मीद नहीं की जाती थी कि इस तरीके से वो भाव प्रकट करेंगे। और इसी को लेकर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने साफ किया है कि युवाओं को ये झूठ की गूंज के जरिए ये राहुल गांधी जिस तरीके से मिसगाइड कर रहे हैं, जिस तरीके से महिलाओं का सम्मान नहीं करने की बात कह रहे हैं, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि देश को किस ओर ले जा रहे हैं। जी
1: जी बिल्कुल आशीष, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए धन्यवाद, पर आप हमारे साथ बने रहे। Viewers, let's quickly take you through a report of what's happened exactly so far before we go back to bring you more news. Rahul Gandhi's Chhatro Ki Goonj event has now stepped into a new political arena. At the Indoor session this time, Rahul Gandhi was seen on stage with a comedian where the two appeared to mock Prime Minister Modi's gesture towards an elderly woman when he asked someone to give her a chair, that is. The BJP called it shameful and disgusting. The party has posted a video of Prime Minister Modi with his mother and said Rahul Gandhi has stooped to a new low now. Here's a report on all of the exchanges that have taken place in this war of words. Take a look.
2: Aur bataiye. Ha? Aur bataiye thoda. Maa ko kursi do. Maa. Maa.
3: An attempt to mock Prime Minister Modi by Congress has ended up creating another controversy, leaving many questioning the Congress's intent and criticizing the party. It all happened at Rahul Gandhi's Chhatro Ki Goonj event in Indore on Saturday. The Congress invited comedian Pulkit Mani to Rahul's event. The comedian performed a satirical mimicry of Prime Minister Modi and mocked an incident involving the Prime Minister and an old lady whom he had referred to as Ma.
2: और बताइए, हाँ, और बताइए थोड़ा। माँ को कुर्सी दो, माँ, माँ।
3: Just last month, in an attempt to mock Modi, the Congress raked up Italian Prime Minister Giorgia Meloni and made what the BJP called distasteful comments.
2: इनके इनका पता नहीं कहाँ से इनके दिमाग में घुस गया। अब अजीब चीजें घुस जाती हैं, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी।
4: एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ। मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था।
3: The BJP hammered the Congress over the controversy, accusing it of stooping lower and lower. The Congress defended its leader and the act.
5: जो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, राहुल गांधी जी, वो एक कार्यक्रम लेते हैं, छात्रों के बीच जाते हैं, नाम तो उन्होंने छात्रों की गूंज दिया है, लेकिन वो झूठ बोलते हैं, अपमान करते हैं, भारतीय संस्कृति का भी अपमान करते हैं।
6: मैं समझता हूँ ये तो प्रहलाद जोशी समझ नहीं पाते, भाषा का ज्ञान नहीं उनको, विषय का ज्ञान नहीं, इस तरह की बातें बेतुकी वो बोल जाते हैं। वो पहली बार नहीं बोल रहे, वो आदतन बेतुकी बातें बोलते हैं। माँ का कहाँ से जिक्र आ गया? मैं तो दो बार तीन बार देख चुका राहुल जी का, माँ का तो कहीं जिक्र ही नहीं आया था।
7: राहुल गांधी जी को सुनने के लिए कोई आने को तैयार नहीं है, 100 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं। तो आपने देखा कि नेहा सिंह राठौर को जो है उन्होंने बुला लिया गुजरात, और आज जो है, कल जब मैं देख रहा था तो स्टैंड अप कॉमेडियन जो है उसको लेके इंदौर में घूम रहे हैं।
8: देखिए कभी राजनीति के अंदर जो है, जब आप शीर्ष पदों पर होते हैं तो आपको इस तरीके की चीजों को स्वाभाविक रूप में लेना पड़ता है। लोकतंत्रवादी नहीं है आप, लोकतंत्र के अंदर इन चीजों को आपको पार्ट ऑफ गेम समझना पड़ता है।
3: It is not the first time that the Congress, in an attempt to target Prime Minister Modi, has gone too far and ended up scoring an own goal. The grand old party seriously needs to consider whether such controversies can be avoided. With Piyush Mishra and Ravish Pal, Bureau Report, India Today.
1: So now let's take you back to that exact comment that's been made by Chief Minister Yogi Adityanath at this given point on the entire matter.

0: as he's also come out to now slam Rahul Gandhi.
1: कांग्रेस के युवराज ने भी कल अपने झूठ की गूंज में जिस प्रकार का आचरण किया, पूरी नारी शक्ति का वो अपमान है। कोई भी सभ्य व्यक्ति, कोई भी सज्जन व्यक्ति, हमारे यहां परंपरा क्या है, अगर हम चल रहे हैं एक पगडंडी से चल रहे हैं, एक मार्ग से चल रहे हैं, मार्ग
0: Now also, listening to how Prime Minister Modi was in fact mocked earlier as well, and what exactly happened and what has the entire episode been at the Chhatro Ki Goonj event.
2: My friend, how are you?
3: I am fine. How are you, Modi ji?
2: Great harassment. Ma ko kursi do. Ma... My friend, how are you?
3: I am fine. How are you, Modi ji?
2: Great harassment. Ma ko kursi do. Ma. Ma.
0: Now, there's more breaking news coming in. Chief Minister Yogi Adityanath has not, in fact, restrained himself from just commenting on this incident. There is another entire political debate that's playing out, which is over remarks made by Hamid Ansari. And Chief Minister Yogi Adityanath has hit back at Hamid Ansari over his statement, wherein he said that there are some individuals who fail to uphold the dignity of their office, breaching that dignity simply in their nature. He's noted that while Hamid Ansari has served as the country's vice president earlier, he's made an unfortunate statement now. Chief Minister Yogi Adityanath further states that Hamid Ansari's views are alarming for India and Indian traditions. He's alleged that this statement is part of an agenda to tarnish India's global image, a narrative that's been propagated by anti-India forces. Let's listen in first to what is it exactly that Chief Minister Yogi Adityanath has spelled out in his address while attacking the statement that's been made by Hamid Ansari earlier in the day.
1: कुछ लोगों की फितरत होती है कि वे अपने पद की मर्यादा को बनाए नहीं रख पाते हैं, उस मर्यादा के विपरीत अपना आचरण करना उनके जीवन की फितरत बन चुकी होती है। श्रीमान हमिद अंसारी जो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने 5 वर्ष के अपने कार्यकाल को देश के अंदर संपन्न किया, उन्होंने कल एक वक्तव्य दिया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य था, और हम जैसे लोगों को शोभा भी नहीं देता कि हम उसका खंडन मंडन करें, लेकिन उनके जो वक्तव्य थे वह सचमुच डरावने वक्तव्य हैं, भारत के लिए, भारतीयता के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारत की परंपरा के लिए, और ये वक्तव्य दुनिया में भारत की छवि को धूमिल करने के कुत्सित प्रयासों के उस एजेंडे का हिस्सा है जो एंटी इंडिया फोर्सेस के द्वारा निरंतर निरंतर उसका दुष्प्रचार किया जाता है। उनके द्वारा शुद्ध रूप से भारत की सनातन परंपरा को कोसने, भारत की हिंदू परंपरा को अपमानित करने के वक्तव्य दिए गए और उसको आतंकवाद से जोड़ने के कुत्सित प्रयास हुए। एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति से भारत का संविधान अपेक्षा करता है कि उस पद की गरिमा के अनुरूप वह हमेशा आचरण करे।
0: आशीष श्रीवास्तव कंटिन्यूज टू बी विद अस ऑन द ब्रॉडकास्ट। आशीष, अगर हम इस टिप्पणी को देखें चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से, हमीद अंसारी ने जो पहले बोला है उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने भी यही कहा है कि एक पद पे थे वो, वाइस प्रेसिडेंट के पद पे थे वो, और ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर्स को ऐसी टिप्पणी जो इरेस्पॉन्सिबल रिमार्क्स है ऐसे नहीं करना चाहिए, वो भी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, इसको हम कैसे देखते हैं?
4: बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने जो रहे हैं उस पद पर, संवैधानिक पद पर, उसके बाद इस तरीके के बयान आते हैं। अगर तो चीफ मिनिस्टर ने खुलकर इस बात को कहा है, और यही नहीं कि कहा है कि भारत की छवि खराब करने वाले उस एजेंडे का हिस्सा है जो ये कह रहे हैं, जिसका दुष्प्रचार एंटी इंडिया फोर्सेस द्वारा किया जाता है। यानी कि ये जो वक्तव्य दे रहे हैं वो एंटी इंडिया फोर्सेस देते आए हैं, और साथ ही साथ सनातन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि सनातन के जो लोग हैं उनको आतंकवादी जैसा घोषित कर रहा है। तो अगर भारत में रहकर इस तरीके के सनातन का अपमान, सनातन को एंटी इंडिया फोर्सेस द्वारा किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा शर्मनाक है एक तरीके से। ये योगी आदित्यनाथ का वक्तव्य था, और उन्होंने साफ किया कि अगर जो इस पोस्ट पर बैठे हुए लोग अगर संवैधानिक रूप से जुड़े हुए हैं, अगर वो इस तरीके की बात करेंगे तो देश किस तरफ जा रहा है ये भी देखने वाली बात होगी। और इसी को लेकर उन्होंने आमिर अंसारी के इस बयान को लेकर बहुत ही ज्यादा कड़े कैसे रुख अपनाया है, और इसकी बात को साफ किया है कि एंटी इंडिया फोर्सेस द्वारा ही ऐसा दुष्प्रचार किया जाता है, और उसी के एजेंडे का हिस्सा है यहाँ पे अंसारी, और जिस वजह से उन्होंने सनातन को बदनाम करने के लिए, उसको एक आतंकवाद की श्रेणी में खड़ा करने के लिए काम किया है, जो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त लायक नहीं है। और यही उन्होंने इस बात के लिए कहा कि उस पर वो नहीं वक्तव्य दे सकते हैं, लेकिन देना पड़ रहा है, चूंकि जिस तरीके के बयान सामने आए हैं वो अपने आप में काफी ज्यादा परेशान करने वाले हैं।
0: जी बिल्कुल आशीष, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेल व्यूअर्स, स्पीकिंग ऑफ द स्टेटमेंट मेड बाय हमीद अंसारी, what exactly has he said? Remember, he's the former vice president of India, and these remarks that he has made is on Hindu right-wing communalism, and it's triggered a fresh political confrontation, with the BJP launching a sharp attack on both Ansari and the Congress. Speaking at the AG Noorani Memorial Lecture in New Delhi, Ansari cited a remark attributed to Jawaharlal Nehru, saying the greater danger to India was Hindu right-wing communalism rather than communism. Ansari also warned of what he described as recent challenges to civic nationalism, arguing that religious distinctions could emerge between citizens. Now, the BJP has hit back hard, accused the Congress of spreading anti-Hindu propaganda, calling Ansari's remarks unfortunate and demanding an apology on the same. And that has only been snowballing with each passing hour. Take a look at some of the responses as we speak.
5: Jawaharlal Nehru's observation in an officers meeting of the Ministry of External Affairs and recorded for posterity by Foreign Secretary Gundevia, and I quote those words, the danger to India, mark you, it is not communism, it is Hindu right-wing communalism.
6: ये इस प्रकार के बयान जिनको देश में उपराष्ट्रपति की कुर्सी आया, उनके द्वारा जब इस प्रकार के घटिया बयान दिए जाते हैं, तो उसका एक ही जवाब है कि हिंदू समाज सदैव सबको अपनाने का काम करता है, सबको सम्मान देने का काम करता है, और सबके साथ समरस होकर के काम करता है। इस प्रकार के बयानों से जरूर वैमनस्यता फैलती है और एक घृणा का भाव आता है, लेकिन इस प्रकार के बयान से लगातार कभी न कभी देश के उपराष्ट्रपति रहे श्री हामिद अंसारी जी बयान देते रहे हैं जो अनुचित है, उसे स्वीकार नहीं किया।
7: अगर हिंदू हमारे हिंदुस्तान में बहुसंख्यक नहीं होता तो मेरा हिंदुस्तान न तो सेकुलर होता और न पंथ निरपेक्ष होता। जिस वक्त बंटवारा हुआ इस देश का, उसमें जो है वो हिंदू बहुसंख्यक वाला हिंदुस्तान जो है वो पंथ निरपेक्ष और सेकुलर बना, मुस्लिम बहुसंख्यक वाला पाकिस्तान जो है वो इस्लामी राष्ट्र घोषित हुआ। इतना से भी अगर ABCD नहीं समझते और इस तरह के जो है वो छल छत्रप और इस तरह के जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट करने के जो कारीगर लोग हैं, वो मुझे लगता है कि आप इस तरह के कन्फ्यूजन क्रिएट करके, जो कम्युनल कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सफल नहीं होंगे।
8: आज देश तरक्की के रास्ते पर है, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के रास्ते पर है। पिछले 12 सालों में जितना मुसलमानों ने तरक्की की है नरेंद्र मोदी की हुकूमत में, उतनी तरक्की कहीं नहीं हुई है। कांग्रेस के राज में दंगे होते थे, हजारों मुसलमान मार दिए जाते थे, कत्ल हो जाता था। आज 12 साल से कोई दंगा नहीं है, फसाद नहीं है, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा है।
9: उन्होंने कहा कि यहां पर उग्र वाम पंथ की तुलना में दक्षिणपंथी हिंदू सांप्रदायिकता अधिक खतरनाक है। यदि हिंदू सांप्रदायिक होता, यदि हिंदू कट्टर होता, तो हामिद अंसारी ये बात कहने का साहस नहीं कर सकते थे। इस तरह की बातें करने वाला या तो कोई अनजान होता है या बेईमान होता है। हामिद अंसारी अनजान नहीं हो सकते, वो इन सब तथ्यों को जानते। उनके ये वक्तव्य किसी बेईमानी से कम होंगे ऐसा लगता नहीं। वो किसी हिडन एजेंडा के अंतर्गत काम करते हैं। भारत की शांति, भारत का सौहार्द, ये शायद उनके एजेंडे को सूट नहीं करता। देश की जनता उनको पहचान चुकी है, उनको जान चुकी है, इनके किसी बहकावे में आने वाली नहीं है।
0: More breaking news coming in now. Muslim cleric has also hit out at Hamid Ansari and the comments and statements made by him. Imam body chief slams controversial remark that's been made. Ilyasi says, and I quote, remark aimed inciting passion. Hamid Ansari has lost the standing amongst Muslims. It's a senior Muslim cleric now who's coming out to make these remarks. So clearly, Muslim community also has distanced themselves from the remarks that's been made by Hamid Ansari. Ansari is using Muslims to provoke. This is what has been said by the Imam body chief. And these are controversial remarks that has been made by Hamid Ansari. That's what Ilyasi has come out to say at this point. And he's saying that Ansari is using Muslims to provoke. And this is the latest adding to the entirety of leaders coming in to slam and attack Hamid Ansari for a remark that has been made, for a problematic remark that has been made on a public platform like the one he addressed. Take a look as to what the particular chief had to say, the Imam cleric chief had to say.
10: Hamid Ansari sahab ke पहले भी उन्होंने बहुत कंट्रोवर्सी बयान दिए थे और उसके बाद फिर उन्होंने एक कंट्रोवर्सी बयान अपना मुसलमानों के नाम से दिया है। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं। आज फिर उनको मुसलमान याद आ गए। जब वो सत्ता में थे, बड़ी बड़ी पदों पर बैठे थे, तब वो सेकुलर थे, तो इस तरह का मुसलमानों का फिर इस्तेमाल करके उन्होंने जो बयान दिया है और जिस तरह से दोबारा से मुसलमानों को उकसाने का ये उन्होंने बयान दिया है, भड़काने का बयान दिया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश है।
0: Anmol Bali joining me on the broadcast for more details and insights into this very comment that's now come in from the Imam body chief as we speak. Anmol, very good afternoon to you firstly. Let's understand one thing. Earlier, it was political leaders who were slamming this particular comment made by Hamid Ansari. But what the cleric has to say, the head cleric has to say, is A, our community does not associate itself with these remarks made. B, when he was the holder of a constitutional position, he was a secular man. Now he's coming out to make these comments, and basically these comments are being seen in the light of trying to provoke certain emotions among a certain community, which really comes out to be very irresponsible at this point.
11: This is not the very first time that we are seeing that comments made by Hamid Ansari, former vice president, has created a controversy. But now even the Muslim bodies have distanced themselves after the comments made by former VP Hamid Ansari in a program where he clearly questioned on the right-wing Hindu nationalism. And now we are seeing that All India Imam Organization head Umar Ahmed Ilyasi has alleged that Ansari has said this to rebuild his image. He has questioned that when you were on a powerful position, you were a secular. That now why you are talking this, and this could harm the social fabric of the India. And this is not the very first time that we are seeing that Hamid Ansari's comments have kind of created a controversy. Earlier in this year, also in 2026, in the month of January, we have seen that Hamid Ansari has made a statement about Lodhis and Ghaznavis. He said that they were Indian invaders, not the foreign invaders. Then we have seen that BJP leaders have accused Hamid Ansari of distorting history, and now this another controversy.
0: One controversy after the other, certain statements that are being made by former Vice President Hamid Ansari that's clearly not in the right light, and his own community, the Muslim community, coming out to also at this given point slam him for his comments. Thank you, Anmol, for bringing those details to us On that note, viewers, we're shifting our focus to a different story. And this is a story we cannot focus enough on, which is Indian streets at this point and how unsafe they have become simply because of these hit-and-run incidents that are taking place. It's another horrific incident that took place on Mumbai's iconic Marine Drive. A speeding BMW crashed in Mumbai and fell off a bridge. India Today exclusively accessed the CCTV footage of the accident. The video shows the car flying off the coastal road bridge and crashing violently into the ground-level construction site below. All four occupants of the car were immediately rushed to the nearby Civic Run Nair Hospital. Three of them were declared dead. Fourth occupant, an unidentified male, sustained severe injuries and is currently admitted in critical condition in the hospital's trauma ward.
12: A horrific incident involving a BMW car on Mumbai's coastal road has taken place. You can see this coastal road where cars speed at a speed of about 100 kilometers per hour. This is the road which connects Mumbai and has given a relief. But at the same time, overspeeding on this road can lead to major accident. You can see behind us is a BMW car which had which collided and fell down from coastal road. This is a car which is registered in Dadra Nagra Haveli with a person named Falgun Gajar. There was a 17-year-old Dhairya Seth who has passed away in this incident. One Aditya Oswal is on ventilator. Aditya Jakasnia, 19 years old, deceased. Shanay Gajar, 21-year-old, deceased. So there were 17 to 21-year-old youngsters who were traveling in this car. Three of them have passed away. One is on ventilator. Such in big fatal this incident has been. And you'll see the road which is coming from Marine Drive going from Worli going towards Marine Drive. The car was at a 200 km per hour stretch and it seems to have missed the left turn, the bridge, the way bridge is turning, and it collided on this hoarding which has been put up as direction and landed on an under construction side for the coastal road. So this is what we can say, that a big incident on the eve of Sunday after Saturday night, where these people were coming from, where they were going. All these things are being investigated by the police. With Nitin Wale, Mustafa Sheikh for India Today.
13: Black color ki BMW gaadi hai. Ye Marine Drive se Haji Ali ki taraf, northbound jo hai, uski taraf ja rahi thi. Aur coastal ke upar ka jo accident hua hai, wo spot se niche gir gayi. Us gaadi mein char ladke thi. चारों में एक जख्मी है आदित्य ओसवाल करके, उसका उम्र है 23 इयर्स, और जो डेथ हो गए उनके नाम है धैर्य शेख उम्र 17, आदित्य जकासनिया उम्र 19 और शनय गजर उम्र 21. ये सभी स्टूडेंट है, जुहू और कुर्ला में पढ़ते हैं.
0: Shifting our focus next to the international arena, it's at least two people who've been killed in a massive Ukrainian drone attack on the Moscow region. Ukrainian forces fired more than 1,000 drones at Russia overnight. The attack hit the Moscow oil refinery, damaging an oil facility in the process. Footage shows massive fires and smoke plumes. Several homes were also set ablaze. Now, Moscow's mayor has called it the biggest ever drone attack on the Russian capital and said 450 drones had been shot down. Ukraine's president, Volodymyr Zelensky, confirmed Kyiv had hit a key Russian oil facility, adding that Ukraine's long-range responses had a very significant impact in the Moscow region. Zelensky has also thanked countries supporting Ukraine's responses through the sanctions.
14: И уже это где-то было около 4 часов. Потеплее. Выхожу с подъезда, буквально 20 шагов делаю от подъезда, и сразу взрыв. Полетели стекла, крики, оры начались. Я развернулся, и все, двери уже у подъезда вывернуты, везде все, хлам вот этот валяется. Человека тут уже вынесли, все просят помощи. Ну и в итоге вот так вот все получилось.
0: Our next story is a heartwarming one. Indian Army canines are participating in Exercise Yudh Abhyas 2026, showcasing the role of trained military dogs in supporting troops during specialized operations. As a part of the professional exchanges with the U.S. Army, the canines participated in drills featuring room intervention and rappelling. Now, their participation in the Yudh Abhyas 2026 further highlights the growing role of army canines, particularly the indigenous breeds, and the close coordination between these highly trained animals and their handlers. Take a look at some of these visuals as we leave you with them right at the end of this bulletin. Thank you for watching.
15: You are watching India Today.

0: bring them to you. So we have Yash Dabas, the new DUSU president, with us. Yash, सबसे पहले तो congratulations to you. आपने इस जीत को हासिल किया है. काफी कांटे की टक्कर थी आपके बीच और NSUI के जो कैंडिडेट थे विजय मीना उनके बीच. हर राउंड के बाद ऐसा लग रहा था कि कभी कोई आगे हो जा रहा था, कभी कोई आगे हो जा रहा था. काफी कम ऐसा होता है कि एंड के राउंड्स तक भी ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि कौन जीतने वाला है. तो आपको उस टाइम पे जब आप काउंटिंग बूथ पे थे, आपको उस टाइम पे कैसा लग रहा था जब हर राउंड के बाद रिजल्ट कभी इस तरफ जा रहा था, कभी उस तरफ जा रहा था?
1: मैम, मैं काफी रिलैक्स था. मुझे कहीं ना कहीं आत्मविश्वास था कि अभी एक आधे जो हमारे कैंपसेस है वो खुलने बाकी है, उनका रिजल्ट आना बाकी है, और उनका रिजल्ट आते ही मैं लीड मेंटेन कर लूंगा. और जैसे ही मुझे लगा कि हाँ उन कैंपसेस की वोटिंग खुली है, तो उसके बाद हमने एकदम से 2000 का मार्जिन क्लेम किया.
0: जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था यश, तो ये कहा जा रहा था कि यश दबास क्लियर विनर है, आज ही प्रेसिडेंट डिक्लेयर हो गया है. जब NSUI ने अपनी टिकट्स अनाउंस करी, उसके बाद सब कह रहे थे कि इस बार तो यश दबास ही जीतने वाला है. लेकिन कल जब काउंटिंग हुई तो हमने देखा कि कैसे काफी क्लोज कॉन्टेस्ट था. NSUI ने स्ट्रांग कमबैक किया. क्या आपको उम्मीद थी कि इतना क्लोज कॉन्टेस्ट होने वाला है, और क्या आपको लग रहा था कि मैं तो इजीली जीत जाऊंगा, क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी ये बात कह रही थी?
1: नहीं मैम, मुझे कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि कंपटीशन टक्कर का ही रहने वाला है. हमने उसी हिसाब से तैयारी भी की थी, और अपने कभी भी ओपोनेंट को हम हल्का तो समझना नहीं चाहिए, ना हमने समझा, इसीलिए हमने उसी तरीके की मेहनत की. और फिर कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पांस आया और हम 2100 के मार्जिन से प्रेसिडेंट पोस्ट पे जीत गए.
0: तो कौन सी ऐसी चीज है जो ABVP ने NSUI से अलग की और जो कि ABVP के लिए काम कर गई?
1: मैम, जो ABVP की इकाई है, जो हर एक कॉलेज में हमारी इकाई है, जो पूरा साल वो स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, छात्र हित के लिए काम करते हैं, राष्ट्र हित के लिए काम करते हैं, जो पूरा साल वो लगातार बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी स्वार्थ के जो लगातार काम करते हैं, वही हमारी जीत का कारण रहा. NSUI अगर आप देखेंगे तो वो केवल साल के आपके दो साल के आपको दो महीनों में ही दिखेगी, अगस्त और सितंबर, क्योंकि इन समय DUSU, उसके अलावा वो पूरे साल में आपको कहीं नजर नहीं आएगी. लेकिन आप किसी भी दिन विद्यार्थी परिषद को ढूंढना चाहोगे तो आप कॉलेज कैंपसेस में जा सकते हो, आपको कहीं ना कहीं विद्यार्थी परिषद जरूर दिखेगी.
0: यश, क्या आपको लगता है कि जो NSUI के इंटरनल फैक्शनलिज्म था, जो उनकी अंदरूनी लड़ाई थी, उससे भी काफी फायदा पहुंचा ABVP को?
1: मैम, कहीं ना कहीं फायदा तो, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये फर्क है NSUI और ABVP में. हम विद्यार्थी परिषद के भी 7 कार्यकर्ता गए थे नॉमिनेशन भरने, और जब हमें पता था कि हमें से 4 लोगों को ही टिकट मिलने वाली है, बाकी 3 लोगों को नहीं मिलेगी. लेकिन जिन 3 लोगों को टिकट नहीं मिली, वो 3 लोग भी आए हमारे साथ और हमारी ताकत बढ़ाई उन लोगों ने, और उन लोगों ने हमें जीत के लिए आगे बढ़ाया.
0: जेंजी पे
1: जो
0: बहुत
1: वहां
0: बड़ा
1: NSUI के थे, उन्होंने जी NSUI के जो थे कार्यकर्ता, उन्होंने 7 लोगों ने अलग अलग, मतलब 4 सीटों पे 7 नॉमिनेशन थे NSUI के.
0: जी यश, जेंजी पे बहुत फोकस रहा इस साल. हमने लास्ट कुछ मंथ्स पे देखा कि कैसे सारा फोकस सारे नेताओं का, सारी पार्टीज का जेंजी पे रहा है. तो कितना क्रूशियल था ये इलेक्शन, और क्या आपको लगता है कि DU ने अपना जवाब दे दिया है कि DU का हाथ अभी भी मोदी जी के साथ है?
1: मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि DU, सिर्फ DU ने नहीं बल्कि पंजाब यूनिवर्सिटी में भी अभी इलेक्शन हुआ, तो जेंजीज स्मार्ट है. जेंजीज को आप बेवकूफ नहीं बना सकते. जो फेक नरेटिव चला के इतने दिनों से कुछ पॉलिटिकल विंग ने बेवकूफ बनाने की कोशिश की थी कि हाँ जेंजीज आर नॉट विद ABVP ऐसा करके, तो यहाँ पे एकदम क्लियर मैसेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के और पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने उन्होंने दिया है, जो है कि दैट जेंजीज आर विद ABVP, जेंजीज आर विद नेशन.
0: जी यश, जेंजी की बात हो रही है तो कैंपेनिंग की भी बात करते हैं, क्योंकि कैंपेनिंग में भी काफी बदलाव देखने को मिला है पिछले कुछ सालों में। हम आपके कैंपेनिंग की बात करते हैं, मैंने आपकी काफी सारी रील्स देखी हैं, कई पूकी वाली रील्स भी देखी हैं, तो किस तरीके से आपने अपनी स्ट्रैटेजी को भी जेंजी के हिसाब से मोल्ड किया और जो जेंजी है उनको और अपना कैंपेनिंग इंटरेक्टिव बनाने के लिए, जिससे कि वो और ज्यादा आपसे जुड़े, क्या

0: कुछ आपके दिमाग में था कि मुझे ये करना है और इस तरीके से मैं अपनी अप्रोच रखूंगा?
1: मैम देखिए, मैं तो खुद भी एक जेंजी हूं, तो जो मैं और मेरे साथ के भाई जब हम साथ बैठते थे, जो भी हमारा आइडिया आता है, रहा थोड़ा क्रिएटिव रील्स मेरे साथ के दोस्तों ने भी बनाई, काफी कॉलेज स्टूडेंट्स ने अलग अलग, चाहे रामजस के मेरे साथ के भाई हो, बहन हो, उन्होंने काफी क्रिएटिव रील्स बनाई जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रही है, तो हम सब ने कहीं ना कहीं मुझे भी कुछ आइडियाज दिए, हम सब ने एक साथ में मिलकर एक कंस्ट्रक्टिव वे में इस चीज को अप्रोच लिया और हमने काफी, मुझे लगता है कि आज पॉजिटिव रिस्पांस रहा है।
0: अच्छा, एक चीज और जिसकी चर्चा बहुत होती है दूसरी इलेक्शंस में, कि जो लंबा काफिला देखने को मिलता है गाड़ियों का, और इस साल उस काफिले से जुड़ा सबसे बड़ा नाम यश दबास का था, कि सबसे बड़ा काफिला यश दबास लेके घूम रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो कल्चर है गाड़ियों का, महंगी महंगी गाड़ियां, मैंने खुद आपका आपका जो काफिला है वो देखा था साउथ कैंपस में, पूरी रोड पे सिर्फ यश दबास के नाम की गाड़ियां थी और एक से बढ़कर एक लग्जरी गाड़ियां थी।
1: मैम मैं सुबह अपने कैंपस से निकला था, नॉर्थ कैंपस से अकेले एक गाड़ी में निकला था। हमने एक दिन पहले साउथ कैंपस में जितने भी हमारे साथी है, जितने भी भाई है, उनको हमने एक दिन पहले सूचना दे दी थी कि कल हमारा साउथ कैंपस का दौरा रहने वाला है, तो उसके बाद ये वहां पे साउथ कैंपस के साथियों का प्यार था जो हमें इतने भारी मात्रा में मिला, और उन सब के कारण ही शायद आज मैं जीत तक पहुंच पाया हूँ।
0: तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये अनोखा तरीका है भाईचारे का, जिसमें कि हर एक भाई अपनी एक लग्जरी गाड़ी लेके आता है कंट्रीब्यूट करने के लिए कैंपेनिंग में।
1: मैम जो भी भाई जैसा भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, काफी भाई ऐसे हैं जो पूरा दिन साथ घूमते हैं, मैं बोलता भी हूँ कि अरे यार आप जाके खाना खा लो, आपने सुबह से कुछ खाया नहीं, बोलते हैं नहीं नहीं भाई जब तक आप नहीं खा रहे हम नहीं खाएंगे, तो ये इतना लगाव हो जाता है, एक टीम इतनी इमोशनल हो जाती है हर एक की कि नहीं जब तक आप लोग नहीं कर रहे। मेरे साथ के कार्यकर्ता थे, मैंने कहा भाई आप तो खा लो, फर्स्ट ईयर का कॉलेज का स्टूडेंट, एबीवीपी का कार्यकर्ता था, मैंने उससे कहा कि मेरे साथ मैम सुबह 8 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक था, तो मैंने उसको कहा कि भाई आप जाके खाना खा लो और मुझे अभी थोड़ा समय लगेगा। यूं
0: जी
1: कहते नहीं भैया जब तक हम आपको जिता नहीं देते जब तक खाएंगे नहीं, तो एक इतना इमोशनल टच बन जाता है स्टूडेंट्स के साथ।
0: जी यश, अब चूंकि आप जीत चुके हैं, चुनाव खत्म हो गया है, आप जीत चुके हैं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, अब तो आपका जो टारगेट है, जो मेन एम है, क्या होगा? पहले सबसे पहला कदम जो आप लेने वाले हैं, जो आपने प्रॉमिस किया होगा बच्चों को, वो क्या रहेगा?
1: मैम जो हमारा सबसे पहला काम रहने वाला है वो रहेगा, आपने थोड़े दिन पहले जैसे देखा होगा सत्य निकेतन में कैसे एक दुर्घटना हुई जिसके कारण 7 स्टूडेंट्स की जान गई, हम नहीं चाहते फ्यूचर में भी ऐसा कुछ हो, तो सबसे पहला जो हमारा काम रहने वाला है वो रहेगा कि हर एक पीजी का, हर एक हॉस्टल का, हर एक कॉलेज का एक सेफ्टी ऑडिट कराया जाए जिसकी रिपोर्ट को हम पब्लिक डोमेन पे भी डालें, ताकि आने वाले स्टूडेंट्स ये भी देख सके कि जहाँ वो अकोमोडेशन लेने जा रहे हैं वो उनके लिए सेफ है या नहीं, और जो सेफ नहीं होगा हम उसको सील भी करवाने का काम करेंगे, और जहां रेनोवेशन हो सके वहां रेनोवेशन करवाने का भी काम करेंगे।
0: एक आखिरी मैसेज जो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे, उन्होंने जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, और उनको भी जिन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया, लेकिन उनका भी दिल जीतना अभी बाकी है मेरे ख्याल आपके इस टेन्योर में।
1: मैम मैं उन सभी स्टूडेंट्स को एक बात कहना चाहूंगा कि मैं नहीं, आप सब ही डूसू प्रेसिडेंट बने हो, आपकी हर समस्या के लिए मैं आपके आगे खड़ा रहूंगा, आपके हर कॉल का मैं जवाब दूंगा, आपके हर एक सवाल का मैं जवाब दूंगा, चाहे बात अकाउंटेबिलिटी की रहे तो मैं अकाउंटेबिलिटी भी लूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि जितनी भी जो हमारी यूनिवर्सिटी में जो समस्याएं है जो कई सालों से लगातार चलती आ रही है, तो मेरे टेन्योर खत्म होने तक वो समस्याएं भी परमानेंटली खत्म हो जाए।
0: ठीक है यश, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, आप डूसू प्रेसिडेंट बन चुके हैं, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड दिस टेन्योर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।
1: थैंक यू मैम।
0: वी आर नाउ now being joined by the new DUSU Vice President, Dipanshu Shaukeen, the independent candidate who has scripted history this time in many ways. Dipanshu, thank you for joining us on the broadcast. First of all, congratulations to you. Aapne history script ki hai, itne saare tarikon se record mandate mila hai aapko, margin itna bada raha. Sabse pehla jo naam ekdam pakka ho gaya tha, jeet jiski pakki ho gayi thi, subah hi wo aap hi the. Dipanshu, ek wo din tha jis din aapko टिकट मना की गई थी, जिस दिन आपको टिकट नहीं दी गई NSUI की तरफ से, आपकी वीडियोस वायरल हुई, आप काफी इमोशनल थे, उस दिन आपने डिसीजन लिया कि आप इंडिपेंडेंटली लड़ेंगे इलेक्शन, और एक कल का दिन था जब कोई एक ऐसा कैंडिडेट था जिसकी जीत सबसे पहले पक्की हुई थी और सबसे ज्यादा पक्की जीत थी वो आप ही थे. कैसी रही ये जर्नी?
2: जर्नी काफी अच्छी रही, बहुत से स्ट्रगल्स इसके बीच में आए, जैसे और आपने पूछा कि भाई टिकट कटने के बाद और यहाँ जीत तक का सफर कैसा रहा, तो बहुत ही प्यार और स्टूडेंट्स ने भरोसा मुझ पर जताया और उस भरोसे पर मैं खरा उतरूंगा, क्योंकि मेरा इलेक्शन सिर्फ मैंने नहीं लड़ा, मेरा इलेक्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर एक छात्र ने लड़ा और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ने प्रूव किया कि अगर वो गलत होता देखेंगे तो स्टूडेंट्स अपनी आवाज उठाना जानते हैं और उन्होंने मुझे अपनी आवाज के रूप में चुना.
0: दीपांशु, मैं आपसे जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी कंट्रोवर्सी रही उस पर भी बात करना चाहूंगी, क्योंकि कई वीडियोस वायरल हुए NSUI प्रेसिडेंट के, कई सारी थ्योरीज जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे चल रही थी, जिसमें कि उनका ये कहना था कि आपकी तरफ से कुछ शर्तें रखी गई थी और उन शर्तों को वो मानने के लिए तैयार नहीं थे जिसकी वजह से आपको टिकट नहीं दी गई. उनका ये भी कहना है कि वो आपको प्रेसिडेंट की टिकट दे रहे थे लेकिन आप राजी नहीं थे प्रेसिडेंट लड़ने के लिए, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे?
2: बहुत सी ऐसी बातें थी जो सामने आती है और आप देख सकते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट कर रहा हूँ, दो और कैंडिडेट थे जो इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट कर रहे थे
0: जी.
2: तो मैं साफ साफ ये कहना चाहूंगा कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी, ना तो वहां पे मैनेजमेंट हो पाई चीजों को लेकर, और जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे जिनका जिनजी का जिन पे भरोसा था, जो खुद स्टूडेंट जिनको सपोर्ट कर रहे थे, जो चाह रहे थे कि भाई कॉमन स्टूडेंट जिनके सपोर्ट में थे, उनको मौका नहीं मिला. आप देख सकते हैं जिस तरीके का मैंडेट सामने आया है, तो ये साफ दर्शाता है कि इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से स्टूडेंट्स का जो भरोसा था वो कहीं ना कहीं टूटा. और मैं कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी बात करते हैं हमारे जेनजीज की और छात्रों की गूंज की, तो वो बहुत अच्छा कंसेप्ट है जो स्टूडेंट्स उसे कनेक्ट करते हैं, पर कहीं ना कहीं इंटरनल पॉलिटिक्स जो NSUI के अंदर हुई, जो NSUI की लीडरशिप की वजह से हुई, उसने साफ साफ जो नुकसान NSUI को हुआ वो उस वजह से हुआ
0: जी. तो दीपांशु, क्या आप ये कह रहे हैं कि आपको टिकट नहीं ऑफर की गई थी प्रेसिडेंट पोस्ट की, आपको कोई भी टिकट ऑफर नहीं की गई थी NSUI की तरफ से?
2: मेरा विड्रॉल सबसे लास्ट में हुआ है, वहां पे आप देख सकते हैं सबसे.
0: लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसके बाद आपको विड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि आप स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट थे NSUI की तरफ से, आपका कैंपेन इतना स्ट्रॉन्ग था, क्या NSUI को ये नहीं दिखा? क्योंकि NSUI का कहना है कि हम तो प्रेसिडेंट का पोस्ट दे रहे थे दीपांशु को, दीपांशु नहीं माना.
2: मुझसे पहले टिकट्स कंफर्म हो चुकी थी, मैं वाइस प्रेसिडेंट कंटेस्ट कर रहा था, बट जो इंटरनल पॉलिटिक्स हुए, किसका फोन आया, क्या हुआ, उसके बाद बोला गया कि आप विड्रॉ कर लो. बट मेरे को था कि मेरा मकसद सिर्फ चुनाव लड़ने का नहीं था, मेरा मकसद था मैं छात्रों को रिप्रेजेंट करने आया हूँ, स्टूडेंट्स को, तो मैं उनको रिप्रेजेंट करूँ, फिर नतीजा चाहे कुछ भी हो. तो मैंने डिसाइड किया मैं कंटेस्ट करूंगा, मैंने कंटेस्ट किया, स्टूडेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया.
0: क्या आपको लगता है कि ये जो सारा डिसीजन था टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का, ये NSUI पे महंगा पड़ा और इसी यही एक वजह है कि NSUI एक भी सीट नहीं जीत पाई इस बार?
2: ये तो जो मैंडेट आया उससे जवाब आपको मिल ही गया होगा कि कैसे जो हुआ है सब, उसका नुकसान NSUI को भुगतना पड़ा. पर कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूंगा कि हर स्टूडेंट को, जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं, जो जेनजी आज जिनको चाहते हैं, उन्हें मौका मिलना चाहिए, और उन्हें अगर मौका मिलेगा तो वो अच्छा करके दिखाएंगे, अपने आप को प्रूव करके दिखाएंगे, जिससे सबको फायदा हो.
0: अभी जब आप इलेक्शन जीत गए हैं तो अभी आगे कोई स्कोप है आपका वापस NSUI से जुड़ने का, वापस NSUI में जाने का, या अब आप अपनी अपना अपनी जो राह है वो अलग ही रखेंगे, और या फिर इन फ्यूचर किसी और पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ने का?
2: मेरा इलेक्शन पूरा स्टूडेंट्स ने लड़ा है, तो ये फैसला भी स्टूडेंट्स के ऊपर होगा कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं. अभी हम छात्रों के मुद्दों पर काम करेंगे, जो वादे मैंने किए, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं स्टूडेंट्स की आवाज बनकर आया हूँ, तो मैं पहले उनकी आवाज को इस दिल्ली विश्वविद्यालय में उठाऊंगा, जो इश्यूज स्टूडेंट्स को आ रहे हैं, जो सत्यनिकेतन में हादसा हुआ, उन स्टूडेंट्स को इंसाफ दिलाना, हॉस्टल्स के मुद्दे पर हम काम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर हम काम करेंगे, और इन सब पर जो स्टूडेंट्स जो चाहेंगे वो काम, वो इश्यूज वो रेस किए जाएंगे।
0: जी दीपांशु, कल जिस तरीके का मैंडेट आपको मिला है, 30,000 के लगभग आपको वोट मिले हैं, उसको देख के एक अंदर से ये फीलिंग आई कि इलेक्शन में प्रेसिडेंट पोस्ट पे ही लड़ लेता, क्या पता उसमें भी आप इतिहास रच देते, क्या पता इतना सपोर्ट आपको उस पर भी मिल जाता तो आज आप डूसू के प्रेसिडेंट भी बन सकते थे।
2: जैसे मैंने आपको पहले बताया, मेरा मकसद सिर्फ चुनाव लड़ने का नहीं, मेरा मकसद था कि जो स्टूडेंट्स मेरे पर भरोसा करते हैं मैं उनको रिप्रेजेंट करूं, जो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव का टैग होता है उसे मैं जस्टिफाई कर पाऊं, और उसमें पोस्ट मैटर नहीं करती, आपकी आवाज मैटर करती है कि आप छात्रों के मुद्दों को किस तरीके से उठा रहे हो, किस तरीके से आप उनके साथ खड़े हो। तो मैं स्टूडेंट्स के साथ था जब भी उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट दिखाया, और जिस तरीके का मैंडेट सामने आया, 30,000+ वोट्स, जो डूसू में एक अपने आप में एक हिस्ट्री है,
0: बिल्कुल,
2: तो ये सब दिखाता है कि स्टूडेंट्स मेरे साथ थे। और जब स्टूडेंट्स आपके साथ है तो पोस्ट मैटर नहीं करती, क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे सबकी नजर आप पे रहती है। अगर आप स्टूडेंट्स के इश्यूज को रेज करते हो, आप स्टूडेंट के इश्यूज पे बात करते हो, स्टूडेंट्स के लिए खड़े होते हो, तो वो जरूर कहीं ना कहीं आपके साथ रहेंगे, और वो ज्यादा मैटर
0: और वो हमने देखा भी। आपकी वीडियोस जो थी वो भी वायरल हो रही थी, जिसमें कि आपने कोई फुटवेयर नहीं पहना था, आप नंगे पांव अपनी कैंपेनिंग करते थे, ये हमने सत्यनिकेतन ट्रेजेडी के बाद से देखना शुरू किया, उस पर भी आप हमें कुछ बताइए।
2: नंगे पैर चलने का ये सत्याग्रह की जो शुरुआत मेरी हुई, कि जो परेशानियां मुझे नंगे पैर चलते हुए आई थी, वो मुझे याद दिलाती रही कि 1.5 लाख स्टूडेंट्स जो इस दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो मुझे याद दिलाती रही नंगे पैर जो मुझे परेशानी की, वो स्टूडेंट्स की परेशानियों के लिए मुझे आवाज उठानी है, उनको सोल्यूशन देने हैं, उनके लिए लड़ना है, उनकी आवाज उठाने, उनके अधिकारों के लिए लड़ना, चाहे वो बेसिक फैसिलिटीज की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, और सबसे बड़ी बात जो सत्यनिकेतन में हादसा हुआ, अभी तक उन स्टूडेंट्स की फैमिलीज को इंसाफ नहीं मिला, तो उनके लिए मैं इंसाफ की मांग करता हूं, और जब तक ऐसा नहीं होता मैं नंगे पैर।
0: जी दीपांशु, एक अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव की बात करें, तो एक चीज जो कि हमेशा हेडलाइंस बनाती है वो है कि जितना पैसा खर्च किया जाता है, जिस तरीके के हम काफिले देखते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिले देखते हैं, आप एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड, आपका एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड है, हमने आपके घर वालों की भी वीडियोज देखी, और योर फादर इज अ बस कंडक्टर, आपका क्या, आपकी क्या राय है, जैसे कि आपके सामने जो कैंडिडेट्स थे, यश दबास, ईशु मौर्य जैसे कैंडिडेट्स थे जिनके पीछे बड़ा बड़ा बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला था, और दूसरी तरफ आप थे, तो क्या आपको लगता है कि पैसा और बाहुबल बहुत इंपॉर्टेंट है डूसू इलेक्शन में?
2: जेनजी जनरेशन है, और जेनजीज ने भरोसा दिखाते हैं स्टूडेंट्स इश्यूज पर, जो उनकी बात करेगा, उनके लिए बात करेगा, उनके साथ स्टूडेंट्स रहते हैं। पैसा और मसल मनी पार की पॉलिटिक्स अब इतना नहीं चलती जितना क्योंकि आपने देखा होगा, जब जब जेनजीज ने खुद प्रूव करके दिखाया कि वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं, तो मेरे साथ जेनजीज थे, मेरे साथ इस दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक एक स्टूडेंट्स था, स्टूडेंट्स थे, इसीलिए मुझे कोई परेशानी नहीं हुई इन मनी और मसल पार की पॉलिटिक्स के सामने टक्कर लेने में। और इसी तरीके का मैंडेट आपको देखने को मिला कि जब स्टूडेंट्स ने मुझ पर भरोसा जताया, उन्होंने मुझे अपने बीच से पाया कि भाई हाँ, ये हमारे बीच से जाकर हमारे रिप्रेजेंटेशन वहां पर कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स ने मुझे मेरा साथ दिया।
0: दीपांशु, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी, आपके साथ जो तीन बाकी पोस्ट पे जो लोग जीते हैं वो एबीवीपी के हैं, तो आपको क्या लगता है कि डीयू के बच्चों ने, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने क्लियर मैंडेट दे दिया है कि उनका हाथ किसके साथ है ऑन अ नेशनल लेवल? और एक चीज मैं और जो जानना चाहूंगी कि तीनों एबीवीपी से है, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, किस तरीके से मिलजुल के आप काम करने वाले हैं?
2: जैसा आपने देखा कि मुझे 30,615 वोट मिले, जो दूसरों की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है, तो ये साफ दिखाता है कि स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं, और जब तक स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं तो कहीं जो भी परेशानियां हमें आएंगी हम मिलकर इनका समाधान करेंगे, और स्टूडेंट्स ने अपना मैंडेट मेरे साथ दिया है, तो हम मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, और जो लापरवाह प्रशासन और जो प्रशासन की तरफ से परेशानी आती है हम उनको खत्म करेंगे, और स्टूडेंट इशूज स्टूडेंट्स ने मुझ पर भरोसा दिखाया है अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर या उनके इश्यूज को मैं रेज करूंगा, तो मैं स्टूडेंट्स के साथ इस लड़ाई में खड़ा हूँ।
0: जी दीपांशु, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू फॉर योर फ्यूचर।
3: यू आर वॉचिंग इंडिया टुडे।

भर्ती बोर्ड और आयोग तब शासन की किसी राजनीति का शिकार नहीं होते हैं और वहां से पारदर्शी और स्वच्छतापूर्ण प्रक्रिया परीक्षाओं की संपन्न होती है तो उसके परिणाम इसी रूप में देखने को मिलते हैं जैसे आज ये नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। यहां पे जो अब मेरे सहयोगी गण बोल रहे थे कि अब तक 9.5 लाख नौजवानों को हम लोगों ने ये नियुक्ति की पत्र वितरित किए हैं, आज भी है कल भी है, 2017 के पहले जिन्होंने इन्हीं नियुक्ति पत्र वितरण में गदर मचाई थी, मैं उनसे कहना चाहता हूं नोट कर लें, आज से फिर हम नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं और अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख से अधिक युवाओं को हम उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं।

0: मेरा नाम राजन हांडा है और मैं MRH टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर हूँ। MRH टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड इज द एक्सक्लूसिव पार्टनर टू मैन एंड हमल जर्मनी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग एंड सर्विसिंग ऑफ देयर एयर फिल्ट्रेशन प्रोडक्ट्स फॉर इंडिया। मैन एंड हमल एक 85 साल पुरानी जर्मन MNC है जो 80 विदेशों से भी ज़्यादा में इस समय काम कर रही है। एयर पोल्यूशन इज नाउ एक्चुअली द प्राइस दैट वी पे फॉर डेवलपमेंट। जितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो रोड बिल्डिंग है, ब्रिजेस हैं, मेट्रो है, कुछ बिल्डिंग्स बन रही हैं, ऑफिसेज बन रहे हैं, रेजिडेंसेस बन रही हैं, ये सब पोल्यूशन में कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। द फैक्ट इज दैट वी आर डूइंग दिस कैंपेन इज रियली रियली रिमार्केबल बिकॉज वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड इट इज जस्ट नॉट द गवर्नमेंट विच हैज टू डू दिस, इज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन where we all must be aware of the consequences of pollution and b how we can mitigate those risks. ye jo product aap mere piche dekh rahe ho isko filter cube bolte hain, ye forced air circulation ke technology se istemal kiya jata hai. isme hawa aati hai, force ki jati hai, jo heart koi bhi equipment ka hai wo filters, aur man and hamel ke paas jo filters ki technology hai, jo filters kis tarike se ban sakte hain from media to their coating to their layering is all the technology they have developed over 85 years and not only developed, they have also tested it across the globe. to ye jo technology hai koi nayi nahi hai jo ki bahar ki hawa ko saaf karti hai, ye road ki dust ko dekhti hai, smoke ko dekhti hai, uske ilawa kuch jo gases hain jaise NO2 hai ya SO2 hai jo ki harmful hoti hain, ye usko bhi capture karti hai. aur ye technology IIT Delhi ne bhi validate kari hai, और ये तब करी है जब 2 महीने सितंबर से नवंबर तक 2024 में इन द पीक पोल्यूशन पीरियड हमने एक स्कूल जो IIT का अंदर है प्रमाइसिस में उसको पूरा प्योर अपने इक्विपमेंट लगाया था और पूरे के पूरे हवा को साफ किया था। 60-70% की रिडक्शन आ जाती है इससे, जिससे कि एक नॉर्मल सिटीजन को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। सारा सामान जो इसके अंदर लगता है वो चाहे इंजीनियर दिल्ली जर्मनी में हुआ है लेकिन मैन्युफैक्चर इंडिया में हो रहा है, असेंबल इंडिया में हो रहा है, इससे इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बहुत रीजनेबल हो जाती है और इसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है और सर्विसिंग भी बहुत बढ़िया हो जाती है। देयर इज नो एक्सपेरिमेंटेशन गोइंग ऑन, देयर इज नो सच थिंग दैट वी हैव कम अप विद अ न्यू इनोवेशन। वी कैनॉट अफोर्ड अ न्यू इनोवेशन, वी आर फाइटिंग अ वेरी वेरी रियल प्रॉब्लम एंड वी हैव टू एड्रेस द रियल प्रॉब्लम बाय द रियल सोल्यूशन। इट विल बी In my opinion, this is not an exercise that you could carry for scientific development. It is an exercise that you have to carry keeping the health of the citizens in mind.
1: I am Priyanka Manocha, founding team of MRH Technologies Private Limited. And on my right is Pranav Kaushik from our partner company, Mann and Hummel. And he is Steven, another employee colleague from Mann and Hummel. So together we bring to you the pollution ka solution that you see behind us, which is called as Filter Cube. Mother of a 9-year-old daughter, and she is today living in Delhi and smoking equivalent to 80 cigarettes a day. Mere bacche ka school band ho jata hai jab pollution badh jata hai. Most of the time usko ghar pe apna padhai karna hota hai, aur ye jo uske early learning years hai jo uske shape kar rahe hai personality mein, उस वजह से उसको अपना घर पे अधिकतर टाइम बिताना होता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। टुडे व्हेन आई स्टैंड हियर इन फ्रंट ऑफ यू, आई मे अपीयर टू यू एज अ यंग पर्सन, बट माय इनर हेल्थ टुडे हैज डिटेरियोरेटेड टू अ लेवल दैट आई हैव लॉस्ट 12 इयर्स ऑफ माय लाइफ।
2: इस एक मशीन से जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हम ऑलमोस्ट 17,500 मीटर क्यूब ऑफ क्लीन एयर एवरी आवर डिलीवर करते हैं। इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड इट इन लीटर्स और इफ आई वॉन्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव ऑफ इट, एक क्रिकेट स्टेडियम के अंदर जितनी हवा भर सकती है उतनी हवा हर घंटे ये एक मशीन क्लीन करके एरिया में डालती है। तो ऐसी मल्टीपल मशीन्स जब हम यूज करते हैं, सो वॉट वी ट्राई टू डू एक हम एक क्लीन एयर जोन क्रिएट करते हैं उस एरिया के लिए, ताकि वहां का जो लोकलाइज पोल्यूशन है वो लोगों के ब्रीदेबल लिमिट्स में आ जाए।
3: ये डिवाइस कितनी इंटेलिजेंट है, जब बारिश होती है दिस डिवाइस स्विचेस ऑफ, मीनिंग व्हेन इट रेन्स वी डोंट वांट द एयर प्यूरिफायर्स टू बी वर्किंग, सो द डिवाइस स्विचेस ऑफ ऑन इट्स इटसेल्फ व्हेन इट्स रेन्स, एंड ऑल्सो व्हेन द रेन स्टॉप्स द डिवाइस स्विचेस ऑन ऑन इट्स ओन। ये डिवाइस में कई सारे ऑप्शन है, लाइक वी ऑल्सो हैव अ नाइट मोड, मीनिंग एट नाइट व्हेन वी डोंट हैव एनी डेंस पॉपुलेशन अराउंड वी कैन ब्रिंग डाउन द speed of the fan to around minimal, where we don't need much clean air coming out of the system. ये भी है, it does all on its own. And also अपने पास एक centralized dashboard रहेगा, meaning when we have 100 installations at different places, Connaught Place, A block, B block, C block, कई सारी area में हम लगा सकते हैं, तब हम एक area में कैसा perform कर रहा है उसका भी dashboard हम दे सकते हैं. We can give your data on every product level, zone level, and also as a city level.
4: Delhi's ambient air remains unhealthy for large parts of the year, with consequences that go beyond just what we breathe. The question, therefore, is whether we can find solutions that work throughout the year, particularly at pollution hotspots where people are exposed to higher concentrations. Rajiv Channan, an innovator based in Gurugram, claims to have developed a technology designed for year-round use. The idea is simple: identify where exposure is highest and intervene there. But how does the technology work, and can it make a meaningful difference to the air we breathe?

0: मेरा नाम राजीव चानन है और मैं फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ ह्यूमेंडस टेक्नोलॉजीज का, जो 2018 में हम लोगों ने फॉर्म की थी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज इन द फील्ड ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंट। तो दिल्ली का 1500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, करीब 1,00,000 लीटर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी एवरी डे कंज्यूम होता है। तो जनरली दिल्ली की डायमेंशन इज वेरी बिग इफ यू लुक इट फ्रॉम पोल्यूशन स्टैंड पॉइंट। तो नॉट ओनली कंट्रोलिंग AQI बट कंट्रोलिंग एक्सपोजर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो इन इफेक्ट दिल्ली रिक्वायर इन अवर ओपिनियन ए परमानेंट स्ट्रक्चर, परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन विच इज कमिंग। तो हम लोगों की टेक्नोलॉजी का ऑब्जेक्टिव यही है कि आप एक्सपोजर रिडक्शन कैसे कर सकते हैं। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी थ्रस्ट, न्यू पॉलिसीज आर वेरी गुड टू कंट्रोल ओवरऑल एम्बिएंट टू रिड्यूस पोल्यूशन। APS स्टैंड फॉर एम्बिएंट प्योरिफिकेशन सिस्टम। इट इज पार्टली मेंट फॉर पार्टिकुलेट मैटर। एन आइडिया बिहाइंड दिस इज दैट वी आर सपोज टू मेक ए सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी फॉर आउटडोर वेयर यू इंस्टॉल इट वंस and it should continue to run without any attention, intervention for 15-20 years. Because the minute you put something in outdoor, it has to be sustainable and it should not require frequent attention. And we designed the storage capacity to be roughly 3-5 years so that nobody needs to go in and service the equipment, you know, every now and then. It would once required in 1 in 3 years or 1 in 5 years. And then particulate matter, safe disposal of the material. So we still need to figure out what does it contain. It may contain many other particles, many other elements which may not be good for human health. So it has to be disposed. So idea behind was that we should reduce exposure to the people, and hence the machine should come closer to the people wherever in outdoor. There are large people like ISBT, railway station, marketplaces. We should bring equipment closer to the people, reduce their exposure. APS में किसी भी तरह का कोई भी फिल्टर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको आउटडोर में जो सबसे बड़ी समस्या आती है फिल्टर की, कि वो ये 2 या 3 दिन में चोक हो जाते हैं या उनकी परफॉर्मेंस एयर डिलीवरी कम हो जाती है, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 15 साल तक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहता है सभी पोल्यूशन लेवल पे और सभी वेदर कंडीशन में। तो इसमें ऐसा नहीं है कि बारिश में इसकी परफॉर्मेंस कम हो गई या समर में बढ़ गई या विंटर में बढ़ गई या कम हो गई, ऐसा नहीं है। इसमें जो प्रिंसिपल हम लोगों ने यूज किया वो बेसिक फिजिक्स का प्रिंसिपल था कि आपका जो पार्टिकुलेट मैटर होता है दैट इज हैवियर देन एयर मॉलिक्यूल्स। तो आप इसमें एयर सक करते हैं इन ए पर्टिकुलर वेलोसिटी विद ए पर्टिकुलर एंगल, सो दैट जो हैवियर मेटल होते हैं, हैवियर पार्टिकल होते हैं PM2.5 एंड PM10, they cannot travel the path of the air being taken into the system. So they tend to get separated from the balance air. So ये इसका, और वो agglomerate भी होते हैं। तो इसमें जो हम लोगों ने wind tunnel design की है उसमें दो aspect होते हैं, एक तो वो agglomerate करती है और दूसरा उन heavy particle की velocity को reduce करती जाती है और एक जगह पे आके उसकी velocity zero हो जाती है, वो अपने आप settle हो जाते हैं। तो ये इसका प्रिंसिपल है जिसमें हैवी पार्टिकल को बिना किसी फिल्टर के हम सेपरेट कर पाते हैं।
1: Imagine if the vehicles on Delhi's roads could do more than just transport us. What if instead of only adding to the pollution around them, they could actually help clean the air? A Delhi-based NGO, Shudhvayu, is working on a device that it says can be installed on the roof of a car and used to reduce particulate pollution around it. The organization claims its system is detachable and can be installed or removed in about 60 seconds. So could a car become more than just another source of emissions and actually become a moving air cleaning unit?
2: मेरा नाम संजीव कुमार यादव है। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हूँ और मैं शुद्ध वायु टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में एज ए टेक्नोलॉजी हेड एंड फाउंडिंग मेंबर मैं इसमें काम कर रहा हूँ।
3: I am Deepti Bhatnagar. I am biotechnologist and master's in business administration. I am a co-founder of Shudhvayu Technologies. Me and my team, headed by Mr. Amit Bhatnagar, who is an ex-IITian, we are working for air pollution problem.
2: जब हमने शुद्ध वायु व्हीकल माउंटेड एयर प्यूरिफायर पे काम करना शुरू किया तो हमारे ध्यान में यही था कि हमें एक डिप्लॉयबल, एक फिजिबल और एक स्केलेबल सोल्यूशन पे काम करें। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने ये डेवलप किया है जो कि बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी, बिना किसी बिजली के और बिना किसी परमानेंट स्ट्रक्चरल या किसी भी फिटिंग के ये रेट्रोफिट डिवाइस हमने बनाया है जो कि गाड़ी के ऊपर आप खुद से लगा सकते हैं और खुद से उतार सकते हैं। जब दिल्ली में पॉल्यूशन है तो उस टाइम पे आप खुद से लगा सकते हैं, जब पॉल्यूशन नहीं है तो आप उतार के अपने स्टोर में रख सकते हैं जो कि हार्डली एक 1 square feet का स्पेस लेगा। कि हमने पायलट किया था गुरुग्राम म्यूनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी की 50 cars पे हमने इसको लगाया था। जो अगर BS4 व्हीकल की बात कर रहे हैं तो उसका जो PM एमिशन नॉर्म होता है वो 25 मिलीग्राम पर किलोमीटर होता है और हमारा डिवाइस जो है वो 50 मिलीग्राम पर किलोमीटर कैप्चर कर रहा है। तो कहने का मतलब जैसा कि हम लोग बात करते हैं कि व्हीकल पॉल्यूशन फैलाता है, व्हीकल पॉल्यूटर है, लेकिन विद द शुद्ध वायु डिवाइस व्हीकल एक नेट एयर प्यूरिफायर में कन्वर्ट हो जा रहा है। कहने का मतलब हम केवल व्हीकुलर एमिशन को टारगेट नहीं कर रहे, हम किसी भी सोर्स से पॉल्यूशन हो रहा हो, क्योंकि दिल्ली में व्हीकल से पॉल्यूशन का जो कंट्रीब्यूशन है वो अप्रोक्सीमेटली 20% है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन है, उसके बाद रोड डस्ट है, उसके बाद इंडस्ट्रियल बर्निंग है, उसके बाद रेसिडेंशियल बर्निंग है। तो सब मिला के तो हम लोग सबको टारगेट कर रहे हैं, केवल व्हीकुलर एमिशन को टारगेट नहीं कर रहे हैं। तो हम कहने का मतलब यही है कि एक पॉल्यूटर को हम एयर प्योरीफायर में कन्वर्ट कर रहे हैं जो कि दिल्ली के लिए बहुत कारगर हो सकता है।
3: टेक्नोलॉजी में हम कोई भी फैन, इलेक्ट्रिसिटी, मोटर, बैटरी कुछ यूज नहीं कर रहे हैं। ये जो ऑलरेडी हमारे एनवायरनमेंट में एयर प्रेशर, एयर काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल है, जब गाड़ी चलती है तो अगर इवन वो गाड़ी 40 की स्पीड से भी चल रही है तब भी अगर आप अपना हाथ बाहर निकालेंगे तो आपको एयर प्रेशर फील होगा। तो हमारे एनवायरनमेंट में ऑलरेडी वो एयर प्रेशर अवेलेबल है। तो उसी प्रिंसिपल को यूज करके हमने ये एयर फिल्टर इनोवेट किया है। इसको जस्ट गाड़ी के ऊपर लगाना है, कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है। उसी एयर प्रेशर से एयर अंदर जाती है, कार्बन पार्टिकल्स को कैप्चर करती है, जिसमें डस्ट प्री फिल्टर भी लगाया हुआ है जिसमें जो लार्जर पार्टिकल्स हैं उनको कैप्चर किया जाता है। मेन फिल्टर में जब एयर आती है तो PM2.5 और PM10 पार्टिकल्स जो सबसे ज्यादा हजार्डस हैं उनको कैप्चर करती है और क्लीन एयर बाहर निकलती है।
2: जब व्हीकल से एसोसिएटेड कोई भी सॉल्यूशन आता है या टेक्नोलॉजी आती है तो व्हीकल ओनर्स अपनी व्हीकल से इमोशनली अटैच हैं क्योंकि वो कोई भी चीज़ उसमें फिक्स करने से 10 बार सोचते हैं। तो हमने उस सोच के साथ इसको डेवलप किया है कि इसमें हमने ऐसा प्रोविजन रखा है बॉटम में अपने डिवाइस के कि ये एक सिंगल स्क्रैच, एक सिंगल पिन भी गाड़ी के छत पे कोई एक सिंगल, हम ना तो कोई छेद कर रहे हैं, ना कोई ड्रिलिंग कर रहे हैं फिटिंग के लिए, ना तो इससे कोई हम स्क्रैच आने का कोई भी उसमें चांस रख रहे हैं।
3: इट इज सेल्फ इंस्टॉलेबल, चाहे सीनियर सिटीजन हो, चाहे लेडी हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, कोई भी इसको लगा सकता है। और ये एम्बिएंट एयर, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी सॉल्यूशन जो है वो स्टैटिक है, ये हम एग्जिस्टिंग जो गाड़ियां ऑलरेडी रोड पे चल रही हैं हम उन गाड़ियों को एयर प्यूरिफायर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इट इज अ वेरी वेरी नोवल एंड बिगर इनोवेशन देन एनी अदर अवेलेबल टेक्नोलॉजी।
2: अप्रोक्सीमेटली हम लोग 7,000 rupees का जो कॉस्टिंग है वो हम लोग कर रहे हैं और हम टारगेट जो कर रहे हैं कि जो हम इसको दूर करने के लिए हम सेल प्राइस जिसको बोल सकते हैं या जो भी, तो वो अप्रोक्सीमेटली हम 10K के आसपास अभी रखते हैं क्योंकि इसके साइजेज वेरी करते हैं गाड़ी के साइज के हिसाब से। तो हम इसको 8,000 में, 10,000 में और 12,000 में अभी कार्स के लिए रखे हुए हैं और बसेस में हम अप्रोक्सीमेटली इसको 22,000 का अभी कर रहे हैं।
3: जब मूविंग होगा तो लोगों में अवेयरनेस आएगी, और पॉल्यूशन इज समथिंग जो लोगों की हेल्थ को बहुत बुरी तरह अफेक्ट कर रहे हैं और लोगों को अभी रियलाइज नहीं है, तो उस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए भी ये सॉल्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट है कि गाड़ियों में लगे और लोगों तक पहुंचे।
2: अगर दिल्ली की एयर को साफ करना है तो हमें एक डेमोक्रेटिक और एक अफोर्डेबल सॉल्यूशन पे जाना होगा।
1: But when we talk about a solution to pollution, there is another question we need to ask. Is it sustainable? Because a solution cannot simply solve one problem by creating another. And that brings us to our final innovation. Aerobos, alongside with IIT Kanpur, has developed what it calls a wind panel, a rooftop filtration technology designed to clean air while a vehicle is moving. But there is another element to it. The system combines air filtration with renewable energy generation using both a solar film and a wind turbine. So can one technology potentially tackle pollution's exposure while also generating clean energy?
2: My name is Gangesh. By profession, I am a chartered engineer. I've done my master's in energy and power from University of Liverpool. I've been born and brought up in Delhi. So, yahan ki pollution ki problem se to main bachpan se hi dekhta hua aa raha hu. Isko solution iske isko theek karne ke liye aage wali generation ko ek hawa saaf hawa dene ke liye humne solution banaya jiska naam hai wind panel. Ye idea mere ko apni masters karte time when I was मास्टर्स इन यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, वहाँ से पढ़ते समय ये आइडिया आया कि बसेस के ऊपर भी एक ऐसा प्रोडक्ट लगा सकते हैं जिससे सिटी का पोल्यूशन साफ हो। मैंने और मेरे को फाउंडर रक्षांश ने साथ में मिलके पिछले 6-7 साल से ये प्रोडक्ट बना रहे हैं हम।
4: दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पास विद्युत एक चैलेंज है, लैंड एक चैलेंज है, वहाँ हम ना विद्युत यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम लोग विद्युत बना रहे हैं जो फिल्टर को सप्लाई दे रहा है, और लैंड जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है वो भी यूज़ नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा डिवाइस पूरा का पूरा मोबाइल माउंटिंग है जो कि बस के रूफटॉप के ऊपर लगा हुआ है।
2: इट इज़ अ रेट्रोफिटेड डिवाइस, तो बस पे हम लोग ये प्रोडक्ट अपना प्लेस करते हैं और मेंटेनेंस के लिए हम लोग को इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लेट्स हैं जिससे हम लोग ब्रश से साफ कर सकते हैं। इसमें कोई फिल्टर की रिप्लेसमेंट कॉस्ट या कोई मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। हम लोग को 2-3 हफ्ते में एक बार ब्रश से इसके फिल्टर साफ करने पड़ते हैं और वे प्रॉपर से अगले जर्नी के लिए तैयार हो जाती है बस साफ करने के लिए। ये प्रोडक्ट लगभग 2-5 लाख m³ ऑफ एयर एक दिन में साफ कर सकता है और उसके साथ साथ अराउंड 2-3 kW ऑफ एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है, जो कि एक प्रोडक्ट क्षमता रखता है 5 सोलर पैनल के। अगर हम बराबरी से कंपेयर करें तो 5 सोलर पैनल 1 विंड पैनल के बराबर में आता है। अभी तो सिर्फ 2-3 बसेस पे अभी बहुत लिमिटेड पायलट स्कोप में लगा है। मेरी दिल्ली गवर्नमेंट से गुजारिश है कि ये प्रोडक्ट स्केल पे 5,000-10,000 जितनी भी बसेज हैं दिल्ली में सब पे लगे ताकि पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है हम सॉल्व करें और इस पोल्यूशन के सोल्यूशन को हम जल्द से इम्प्लीमेंट करें बसेस पे।
1: That's all for this hour. Keep watching India Today for more news and updates.

0: मैं राज्यसभा का मेंबर था, इतना बड़ा घोटाला हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ।
1: राहुल गांधी's छात्रों की गूंज has now stepped into a new political arena. At the Indore session, Rahul Gandhi was seen on a stage with a comedian, where the two appeared to mock Prime Minister Modi's gesture towards an elderly woman when he asked someone to give her a chair. The BJP called it shameful and disgusting. The party posted a video of Prime Minister Modi with his mother and said Rahul Gandhi has now stooped to a new low. Here is a report on the same. Take a look.
2: और बताइए, और बताइए थोड़ा। माँ को कुर्सी दो, माँ, माँ।
3: An attempt to mock Prime Minister Modi by Congress has ended up creating another controversy, leaving many questioning the Congress's intent and criticizing the party. It all happened at Rahul Gandhi's Chhatro Ki Goonj event in Indore on Saturday. The Congress invited comedian Pulkit Mani to Rahul's event. The comedian performed a satirical mimicry of Prime Minister Modi and mocked an incident involving the Prime Minister and an old lady whom he had referred to as Ma.
2: और बताइए, और बताइए थोड़ा। माँ को कुर्सी दो, माँ, माँ।
3: Just last month, in an attempt to mock Modi, the Congress raked up Italian Prime Minister Giorgia Meloni and made what the BJP called distasteful comments.
4: इनके इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया, अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी।
5: एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था।
3: The BJP hammered the Congress over the controversy, accusing it of stooping lower and lower. The Congress defended its leader and the act.
6: जो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, राहुल गांधी जी, वो एक कार्यक्रम लेते हैं, छात्रों के बीच जाते हैं, नाम तो उन्होंने छात्रों की गूंज दिया है, लेकिन वो झूठ बोलते हैं, अपमान करते हैं, भारतीय संस्कृति का भी अपमान करते हैं।
7: मैं समझता हूँ ये तो प्रहलाद जोशी समझ नहीं पाते, भाषा का ज्ञान नहीं उनको, विषय का ज्ञान नहीं, इस तरह की बातें बेतुकी वो बोल जाते हैं। वो पहली बार नहीं बोल रहे, वो आदतन बेतुकी बातें बोलते हैं। माँ का कहाँ से जिक्र आ गया? मैं तो दो बार तीन बार देख चुका राहुल जी का, माँ का तो कहीं जिक्र ही नहीं आया था।
8: राहुल गांधी जी को सुनने के लिए कोई आने को तैयार नहीं है, 100 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं। तो आपने देखा कि नेहा सिंह राठौर को जो है उन्होंने बुला लिया गुजरात, और आज जो है, कल जब मैं देख रहा था तो स्टैंड अप कॉमेडियन जो है उसको लेके इंदौर में घूम रहे हैं।
9: देखिए कभी राजनीति के अंदर जो है, जब आप शीर्ष पदों पर होते हैं तो आपको इस तरीके की चीजों को स्वाभाविक रूप में लेना पड़ता है। लोकतंत्रवादी नहीं है आप, लोकतंत्र के अंदर इन चीजों को आपको पार्ट ऑफ गेम समझना पड़ता है।
3: It is not the first time that the Congress, in an attempt to target Prime Minister Modi, has gone too far and ended up scoring an own goal. The Grand Old Party seriously needs to consider whether such controversies can be avoided. With Piyush Mishra and Ravish Pal, Bureau Report, India Today.
1: The scripted history shattered the blueprint and no other channel has them. We are going completely unfiltered with the new faces of the Delhi University Student Union, Students Politics, the winner and the game changer. India Today's Anjali Pandey with these twin campus exclusives, the campus king, Yash Dabbas, and the defiant rebel, Deepanshu Shokin.

0: university professors and teachers. So they are opposing this bill for this reason, and they have pointed out several reasons to oppose this bill, and they have written a letter to Governor of West Bengal and appealing has appealed them to refrain from giving his consent to the bill. And they have pointed out few reasons, especially the reason behind the research-oriented work. They have written that each university is a distinct organic entity and its own rationale, structure and program of studies, which appoints its faculty in accordance with these factors.
1: Right. Right, Anupam. So this, viewers, is the issue that's been flagged by the senior academicians, and we'll keep a very close track of how things unfold on this bill that's been passed by the West Bengal government on September 10th. Former Vice President Hamid Ansari's remarks on Hindu right-wing communalism have triggered a fresh political confrontation, with the BJP launching a sharp attack on both Ansari and the Congress. Speaking at the A.G. Noorani Memorial Lecture in New Delhi, Ansari cited a remark attributed to Jawaharlal Nehru, saying the greater danger to India was Hindu right-wing communalism rather than communism. Ansari also warned of what he described as recent challenges to civic nationalism, arguing that religious distinctions could emerge between citizens. The BJP has hit back hard, accusing the Congress of spreading anti-Hindu propaganda, calling Ansari's remarks unfortunate and demanding an apology. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, meanwhile, launched a scathing attack on former Vice President Hamid Ansari, alleging his remarks disrespect India's Sanatan traditions. Meanwhile, senior Muslim cleric and Imam Body Chief Umair Ahmad Ilyasi has also hit back at Ansari, accusing him of provoking Muslims and alleging a larger conspiracy behind his remarks.
2: Jawaharlal Nehru's observation in an officers meeting of the Ministry of External Affairs and recorded for posterity by Foreign Secretary Gundevia, and I quote those words: "The danger to India, mark you, it is not communism, it is Hindu right wing communalism."
3: कुछ लोगों की फितरत होती है कि वे अपने पद की मर्यादा को बनाए नहीं रख पाते हैं, उस मर्यादा के विपरीत अपना आचरण करना उनकी जीवन की फितरत बन चुकी होती है। श्रीमान हामिद अंसारी, जो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने 5 वर्ष के अपने कार्यकाल को देश के अंदर संपन्न किया, उन्होंने कल एक वक्तव्य दिया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य था, और हम जैसे लोगों को शोभा भी नहीं देता कि हम उसका खंडन मंडन करें, लेकिन उनके जो वक्तव्य थे वह सचमुच डरावने वक्तव्य हैं, भारत के लिए, भारतीयता के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारत की परंपरा के लिए, और ये वक्तव्य दुनिया में भारत की छवि को धूमिल करने के कुत्सित प्रयासों के उस एजेंडे का हिस्सा है जो एंटी इंडिया फोर्सेस के द्वारा निरंतर निरंतर उसका दुष्प्रचार किया जाता है। उनके द्वारा शुद्ध रूप से भारत की सनातन परंपरा को कोसने, भारत की हिंदू परंपरा को अपमानित करने के वक्तव्य दिए गए और उसको आतंकवाद से जोड़ने के कुत्सित प्रयास हुए। एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति से भारत का संविधान अपेक्षा करता है कि उस पद की गरिमा के अनुरूप वह हमेशा आचरण करे।
4: ये इस प्रकार के बयान जिनको देश में उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बुलाया, उनके द्वारा जब इस प्रकार के घटिया बयान दिए जाते हैं तो उसका एक ही जवाब है कि हिंदू समाज सदैव सबको अपनाने का काम करता है, सबको सम्मान देने का काम करता है और सबके साथ समरस होकर के काम करता है। इस प्रकार के बयानों से जरूर वैमनस्यता फैलती है और एक घृणा का भाव आता है, लेकिन इस प्रकार के बयान से लगातार कभी न कभी देश के उपराष्ट्रपति रहे श्री हामिद अंसारी जी बयान देते रहे हैं जो अनुचित है, उसे स्वीकार नहीं किया।
5: अगर हिंदू हमारे हिंदुस्तान में बहुसंख्यक नहीं होता तो मेरा हिंदुस्तान न तो सेकुलर होता और न पंथ निरपेक्ष होता। जिस वक्त बंटवारा हुआ इस देश

0: ये साइड में से बहुत जोर जोर से ले गए कई बार, ये 22-23 दिन थे टोटल। इस वीडियो में दो ही क्यों दिखाई? मैंने बोला कि अच्छा है बढ़िया, लेकिन आप बार बार मैंने कि हमारे हमें टीच मत करो।
1: तब मैंने देख लिया कि उन लोगों ने शायद से पी रखी है। मैं कोशिश कर रही थी कि मैं थोड़ा उनसे आगे चलूं, क्योंकि मुझे डर लग रहा था जिस तरीके से वो गाड़ी चला रहे हैं।
2: वो मुझे स्टार्टिंग से चेस करने की कोशिश कर रहा था।
3: शिवानी चौहान, ऑल्सो नोन एज सिया, वॉज चेस्ड एंड हिट बाय मेन इन अ कार एंड लेफ्ट स्प्रॉल्ड ऑन अ बिजी रोड इन अ सिटी ऑल्सो कॉल्ड द मिलेनियम सिटी, गुरुग्राम। She was hit on Gurugram's Golf Course Road, a posh area that boasts one of the costliest real estate in the country. But what does all that money get you in this country? Not even a shred of a feeling of being safe. Imagine how Shivani felt during those moments when she was hit by that car. Her head bangs against the car after being hit, but as astute bikers do, she's wearing a safe helmet. But she still knows that there is a danger of coming under the rear wheel of that offending car. That would mean instant death. But she's lucky that day. Ironical to say it, but yes, lucky. As she was saved from sure death and she rolls down the road as the car speeds away. Imagine the impact of that hit. A bike that lost the hand on accelerator but had so much momentum that it kept skidding on the road for almost 70 to 100 meters. Now let's flash back to a few minutes before the hit. It was September 13th. Sia was out riding with other bikers on Golf Course Road. According to her account, she first noticed the white sedan behind her. She says there were people inside. The windows were dark and she suspected the occupants might have been drinking. Then she says the car began coming close to her motorcycle. Not once, repeatedly. She tried to move ahead. Her logic was simple. Put some traffic between herself and the car. She wasn't racing. She wasn't looking for trouble. And then another rider noticed what's happening. He moved behind Sia. He tried to shield her motorcycle from the sedan. The footage from the rider's cameras would later become the most important piece of evidence for this case. There was a witness, a camera. According to Sia, the occupants of the car were making gestures at her. At one point, she says, the windows came down. She could not clearly hear what was being said because she was wearing a helmet. But she says she repeatedly asked them to move away. They did not. Her account is that the car continued following her. And that was when fear became something more immediate. Not the fear of being fined. Not the fear of a traffic accident. The fear that someone in a much heavier vehicle might deliberately knock her off a motorcycle. Now, for many women who drive or ride on Indian roads, the danger is not always the traffic itself. Sometimes it is the behavior of the person behind the wheel, the intimidation, the unwanted attention, the aggressive overtaking, the vehicle deliberately coming too close, and the mental calculation women are often forced to make. Do I confront this person or do I just get away? Sia chose to get away. At least she says she tried. But she failed. Now you see that the road bends, traffic moves, Sia shifts towards the third lane. And according to her account, the sedan suddenly comes across. The video captures that moment. The car changes lanes. It hits the motorcycle. Sia falls the motorcycle continues sliding across the road. Now, another biker, whose helmet camera had captured the incident, goes after the car. At one point, the sedan stops at a traffic signal. There is a confrontation, and then the car leaves again. Sia is taken to the hospital. The video is uploaded. And within hours, the incident is no longer just a traffic story. It is everywhere.
4: रात को भी काफी पेन रही है सिया के, क्योंकि चोट लगने के बाद बाद में पता चलता है कि कहां कहां चोट लगी हुई है, गुम चोट उसकी आई हुई है काफी, और अभी वो कुछ देर के बाद यहीं पे दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में होली फैमिलीज में जाकर अपना जो भी एक्सरे हैं, एमआरआई है, जो भी ट्रीटमेंट है वो करवाई है.
3: गुरुग्राम पुलिस took Suo Motor cognizance of the viral videos and registered a case against an unidentified person.
5: हमारे सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल द्वारा एक वीडियो को इंटरसेप्ट किया गया जिसके अंदर एक टू व्हीलर जो महिला जो राइडर है उसके ऊपर फोर व्हीलर पीछे से एक गाड़ी के द्वारा हिट किया गया है. गोल्फ कोर्स रोड का यह मामला है और इसी के अंदर जो है कंसर्न महिला से अभी गुरुग्राम पुलिस द्वारा संपर्क साधा गया और Suo Motor cognizance लेते हुए सेक्टर 56 गुरुग्राम में हमने FIR जो है वो रजिस्टर कर ली गई.
3: थ्री टीम्स वर फॉर्मड. CCTV footage from the area was examined. Investigators began trying to identify the driver. And soon they had a name, Kalyan Besla. But Besla wasn't at his home. The search apparently was widened. And then another question emerged. Whose car was it? The registered owner, identified by India Today, said he was serving in the army and was out of town. He said he had given the car to a school friend for 2 days. That friend was Kalyan Besla. Then, according to the owner's account, Besla told him that another person had taken the vehicle. The owner said he barely even knew that person.
6: वो हमारे भतीजे की गाड़ी है, वो आर्मी में है और उसका दोस्त मांग कर लाया. वो लड़के ने फोन किया था हमारे पास, इसको गाड़ी दे देना. कल्याण बैसला टीकरी गुजर का, अब वो ले गया, उसने एक्सीडेंट कर दिया. हमें तो कोई लेना देना नहीं, हम उसकी नहीं, हमारी गाड़ी आई अभी नहीं, वो मिल रहा हमें.
5: पुलिस भी आई थी?
6: हाँ, पुलिस भी आई थी, वो भी नंबर वंबर ले गई.
3: So the investigators were now looking at a chain of possession. Who had the car? Who was driving? Who else was inside the car? And who knew what? The answers mattered because this was no longer simply about ownership of the vehicle. It was about reconstructing what happened in those few seconds on Golf Course Road. Then the accused decided to turn the blame finger towards the victim herself. Besla gave a very different account. He denied deliberately hitting Sia. His version was that there were numerous bikers on the road and that they were repeatedly changing speeds and slowing down and that the situation had escalated. He questioned the videos circulating online. He said the footage did not show the entire sequence. And he claimed he had not even known that the rider he collided with was a woman. He described the collision as completely accidental.
0: ये साइड में से बहुत जोर जोर से लेके कई बार फिर स्लो कर देते थे, फिर खींच रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, ठीक है, पिंच कर रहे थे, पर कोई नहीं मैंने कर रहे. मुझे ये भी नहीं पता कि लड़की थी इसमें. ये 22-23 दिन थे टोटल. इस वीडियो में दो ही क्यों दिखाई? मैंने बोला कि अच्छा है, बढ़िया, लेकिन आप बार बार, मैंने कि हमारे हमें टीज मत करो, बार बार टीज मत करो, लग जाएगी. अच्छा जी, ठीक है. फिर मैंने कहा जाने दे. फिर वो, फिर जब मैं उनसे आगे निकल गया था तो वो मेरे आगे कैसे आई, आप सोचो ना. जब मैं यूँ कह रहे थे कि निकल गया था बेस, आप वीडियो में देखना, मैं निकल गया. अच्छा, फिर आगे आगे चलो कोई नहीं. वो मैंने जानबूझ के नहीं मारी, मैं पीछे से आया हूँ यूँ, ठीक है. इधर आप देखो टाटा की है, कौन सी गाड़ी है साइड में, उसको ठोक देता, उसके पीछे बाइक उनको ठोक देता. अच्छा सुनो, आप इनको देखना, मैं जो मैं मेरे, ठीक है. इन्होंने बिना देखे, शीशे में देखे, आप प्रोफेशनल ड्राइवर हो, आपको ये नहीं पता कैसे मोड़, बिना शीशे में देखे ऐसे देख के मोड़ रहे हो, उस साइड वाली सफेद पट्टी को देखो, वो एकदम से ऐसे मोड़ी इन्होंने, नहीं उस मुझसे कंट्रोल नहीं, फिर भी मैंने खूब बचाने की कोशिश करी, मैंने जैसे आगे बढ़े वो गाली दे रहा मुझे, पीछे से वो सारे सारे बाइकर मुझे गाली देने पर लग रहे हैं, मैं 22 जने मेरे साथ फैमिली है, मैं क्या लड़ाई करता हूँ उनसे, फिर भी मैंने बत्ती पर रोकी, मैंने शीशा डाउन किया, मैं शीशा डाउन ही नहीं करता इस बात, मैंने उससे बोला भाई मेरी गलती नहीं है, गलती उनकी है।
3: But Sia rejected that explanation. Her response was equally direct. If the collision was accidental, why did he not stop? Why did he not get out of the car? Why did he not check whether she was alive? Why did the car just simply leave? And then she challenged another part of his account. She said the driver had seen her, had followed her, had gestured to her, and according to her, had even noticed that she was a woman.
1: तब मैंने देख लिया कि उन लोगों ने शायद से पी रखी है और उसमें पीछे भी दो लोग हैं क्योंकि गाड़ी के शीशे सारे काले थे, वो एग्जैक्टली दिखाई नहीं दे रहा था मुझे और मैं कोशिश कर रही थी कि मैं थोड़ा उनसे आगे चलूं क्योंकि मुझे डर लग रहा था जिस तरीके से वो गाड़ी चला रहे हैं स्पीड में, अपनी गाड़ी मेरी बाइक के आस पास लेके आ रहे हैं, तो मुझे डर था कि टक्कर मार के मुझे गिराना थी, इसी चीज को देख के कि मैं थोड़ा आगे जाऊंगी, तीन चार गाड़ियां हैं वो उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, पीछे हो जाएंगे, पर वो हर एक पूरी पॉसिबल कोशिश कर रहे थे कि वो अपनी गाड़ी मेरे बाइक के पीछे लगा के रखे, और जब वो कट आया और मैं वहाँ बीच में गाड़ी आई, मैं वहाँ साइड में हुई थर्ड लेन में, तो उसमें दिख रहा था कि गाड़ी कितनी तेजी से पीछे आ रही, जब वो कट मारती है उसकी टायर की तक की आवाज आती है और वो ठोक के निकल जाते हैं, तो ये जो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है गोल्फ कोर्स रोड पे, तो मतलब बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग है, बहुत ज्यादा स्कैरी है ये हर एक फीमेल बाइकर के लिए और हर एक उन लोगों के लिए जो संडे राइड करते हैं जो बाइक पे।
3: There are now two crucial visual records of that incident. One from the action camera mounted on Sia's superbike. Another from a fellow rider's helmet camera. Sia says both show the same essential sequence. The car moves across lanes. The motorcycle is deliberately hit. She is thrown off. The car leaves. Her argument is that the footage speaks for itself. Besla, on the other hand, has argued that the viral clips don't provide the complete context. That dispute will ultimately have to be tested against the full evidence, including CCTV, the original footage, and witness accounts. But the video changed the investigation because this was not simply one driver's word against another. There was a full digital trail.
0: ये साइड में से बहुत जोर जोर से लेके कई बार फिर स्लो कर देते थे, फिर खींच रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, पिंच कर रहे, पिंच कर रहे थे, पर कोई नहीं मैंने कर रहे, मुझे ये भी नहीं पता कि लड़की थी इसमें, ये 22-23 जने थे टोटल, इस वीडियो में दो ही क्यों दिखाई, दो क्यों दिखा रहे, दूसरा दिखाया नहीं, वो फ्रेंड कौन सा है, दिखाओ ना उसको फ्रेंड को, नाम लो उसका, ये मेरा फ्रेंड था साथ में,
1: इसमें मेंशन कर रहे हैं कि हम बार बार बाइक तेज कर रहे थे, स्लो कर रहे थे और हम इनको पिंच कर रहे थे, वो तो आई थिंक सो मेरी पूरी वीडियो में शो हो रहा है कौन किसको पिंच कर रहा था, एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम बाइक तेज कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, तो आपका क्या मतलब बनता है कि पूरे रास्ते आप मुझे चेस करें, और जैसा ये बोल रहे हैं कि मुझे तो पता भी नहीं था कि वो लड़की चला रही है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, आपने ऑब्वियसली मेरे बाल पीछे बहुत लंबे बाल है, मेरी चोटी बनी हुई थी, आपने वो देखा, आप आए, आपने एक्शन करा, आपने मुझे बाइक रोकने के लिए बोला, एंड उसके बाद कह रहे हैं कि 22-23 लोग थे और वो दो वीडियो भी क्यों आई, बाकी क्यों नहीं आए, मुझे ये समझ नहीं आता कि आपका हिट एंड रन वाले केस के लिए क्या दो वीडियो इनफ नहीं है।
3: इनिशियली द केस डिड नॉट कैरी एन अटेम्प्ट टू मर्डर चार्ज, बट आफ्टर एनालाइजिंग द फुटेज एंड रिकॉर्डिंग सिया स्टेटमेंट,
1: मेरी पूरी वीडियो में शो हो रहा है कौन किसको पिंच कर रहा था,
3: Gurugram Police added Section 109 of the Bharatiya Nyaya Sahita, which is attempt to murder. Sections 78 and 79 of the BNS were also added following her statement relating to stalking and words, gestures or acts intended to insult the modesty of a woman. Police said that the CCTV analysis indicated that the car was driven into the motorcycle deliberately.
7: ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि उसने जो टक्कर मारी है वो साइड से जानबूझ के मारी है, क्योंकि ऑलरेडी उनका आर्ग्यूमेंट हो चुका था और जो पीड़ित महिला है उन्होंने भी अपने कथन में यही अंकित करवाया है कि उन्होंने जान से मारने की नीयत की।
4: उन्होंने ऑलरेडी एक FIR उनको उसके ऊपर मीडिया के प्रभाव में आके कर रखी थी, पर उसके अंदर जो धाराएं थी वो इतनी कंफर्टेबल धाराएं नहीं थी, और हमने अपनी एप्लीकेशन दी है जिसके अंदर हमने उनसे रिक्वेस्ट करी है उस पर हिट एंड रन अटेम्प्ट टू मर्डर और हरासमेंट वाली आप इस पे धारा लगाइए।
3: दैट चेंज द लीगल कैरेक्टर ऑफ द केस ड्रामेटिकली फ्रॉम अ सस्पेक्टेड हिट एंड रन टू एन इन्वेस्टिगेशन दैट इंक्लूडेड एन एलिगेशन ऑफ एन इंटेंशनल अटेम्प्ट टू किल।
8: जैसे चार बताए गए हैं और एक को तो अरेस्ट कर लिया गया है, वो इंसिडेंट हुआ था वो पूरा कैप्चर्ड है कैमरे में, जिस तरीके से मारा गया है वो कोई हिट एंड रन का नहीं है, अटेम्प्ट टू मर्डर का है, वही चार्जेस लगाए गए हैं, 354 लगाई गई है, 509 लगाए गए, पूरी वीडियो प्रोवाइड करवा दी
3: है। बाय देन बेंसला वाज एब्सकॉन्डिंग, हिज फोन वाज स्विच्ड ऑफ, पुलिस टीम्स बिगन सर्चिंग फॉर हिम, द हंट मूव्ड बियॉन्ड गुरुग्राम एंड इवेंचुअली investigators traced him in Rajasthan. But by then, the time to do any kind of alcohol test in the blood was gone. On September 15th, Crime Branch Sohna teams arrested Bensla between Dausa and Rajgarh.
9: Sohna se SI aur head constable ki sanyukt team aayi thi, unke dwara जो वीडियो आप सोशल मीडिया पर देख रहे थे उसके संबंध में उनके द्वारा यहाँ थाने पर अभी आकर ये सूचित किया गया था कि हमारे द्वारा आगरा रोड से जो कथित जिन्होंने आइडेंटिफाई किया था आरोपीगढ़ थे जो उनके जिसमें आपके कल्याण वैसला और लवनीश को उन्होंने यहाँ से डिटेन करके डिटेन करने के बाद जो हमें सूचना दी थी उसके बाद डिटेन करके उनको वो गुरुग्राम लेकर गए।
10: देखिए पुलिस ने अपने दो दिन का पुलिस कस्टडी का रिमांड मांगा है, इसमें उनका कहना है कि कुछ हमें को एक्यूज के बारे में जानकारी लेनी है, उसलिए पुलिस ने रिमांड सीख किया है और पुलिस अपना सीन रिक्रिएट करना चाहती है क्राइम सीन को, वो अपना उनका प्रोसीजर है, अभी हमने उसको अपोज भी किया है, उस पर आर्ग्यूमेंट किया है। रिमांड में बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि उन्होंने 307/109 BNS लगाई है, उसके लगाया क्योंकि वो बहुत लेटर ऑन एडिट हुई है और बहुत सारी चीजें उन्होंने कोर्ट में उसमें हमने अपोज किया है, वो सारी चीजें ऑर्डर में आ जाएंगी।
3: The car allegedly used in the incident was recovered. Another man, identified as Lavnish, was also taken into custody. Even the arrest came with its own twist. According to police, after being apprehended, Besla asked to go to the toilet. Police allege that he then tried to escape. He fell while attempting to flee and suffered injuries. Taken to the hospital for initial treatment. The man who had allegedly disappeared after the crash was finally in police custody, but a little bit too late. The investigation wasn't yet over because now there was another question. Who else was in that car? In a later statement, Sia said there were two other people inside the car. She has demanded action against those people as well. She told the media that arresting Bensla alone would not be enough if others who were present were allowed to walk away.
11: मैंने बता दिया है चार लोग थे, एक्शन लेने के लिए बोल दिया हो तो आई होप पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी एक्शन लेने। और दो थे आगे जो तीस कर रहे थे और बाकी जो चार लोग टोटल थे गाड़ी में।
3: The police investigation will have to establish exactly who was inside the vehicle and what role, if any, each person played. There is another reason this case has resonated so strongly. Sia is a biker and she is a woman. Those two facts have collided in a way that has made thousands of women ask a very basic question. How safe are India's roads for women?
12: ये पूरा का पूरा एकदम मेल ईगो के उसके ऊपर है, जैसे कि कोई भी अगर गाड़ी चलाता है और महिला ड्राइवर को देखता है बाइक, वो भी बाइक राइड करते हुए, क्यों बहुत बड़ी बात होती है आज की डेट में एक वुमेन बाइक राइड करती है, तो उनको ये दिखता है कि वो थोड़ा उनको स्टाइल वगैरह दिखाए और गाड़ी वो शीशा नीचे करके थम्स अप कर दिखा रहे हैं, और बाइकर जो होते हैं वो यूजुअली दिखाते थम्स बैक करते हैं, फिर उसके बाद भी अगर आप उनके साथ वो लगे हुए हो वो कह रहे डिस्टेंस मेंटेन करो, उसके बाद वो स्लैम करके जा रहे पूरा, तो मेरे ख्याल से बहुत गलत बात है और जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन उठेगा।
3: Sia told Ashtak that she had been riding for around a year. She doesn't belong to a large formal riding club. Sometimes she rides with her cousin. Sometimes she rides alone.
1: See, मेरा कोई पर्टिकुलर ग्रुप नहीं है, मैं कभी अकेले भी जाती हूँ, मेरा एक कजन ब्रदर है उसके पास भी है, कभी मैं उनके साथ जाती हूँ, तो मेरा कोई ऐसा पर्टिकुलरली ग्रुप नहीं है, और मैं ये एक साल से कर रही हूँ बाइकिंग।
3: She describes the women's riding community as relatively small. And now, after this incident, she says she will ride again. But she will be scared.
1: बाइक तो चला पाऊंगी पर मुझे डर लगेगा कि मैं अकेले जाऊंगी।
13: अकेले जाओ, ग्रुप में जाने में डर लगेगा।
1: ग्रुप में क्या, मुझे गुड़गांव दिल्ली के रोड पे ही जाने में डर लगेगा।
3: The physical injuries may heal. The legal case may move through the courts. The accused may face trial. But what happens to the confidence of someone who now looks into her rear view mirror and wonders, is that car simply passing me or following me? Indian roads are already chaotic. Two-wheelers share space with buses, trucks, SUVs, delivery vehicles, animals and pedestrians. But road safety isn't only about speed limits and helmets. It is also about behavior. What happens when a driver uses the size and the weight of a car to intimidate someone on a motorcycle? What happens when a woman asks a driver to back off and the driver treats that as a challenge? What happens when harassment on the road is dismissed as just teasing? And perhaps most importantly, at what point does aggressive driving stop being bad driving and become a threat? The Gurugram case has forced that conversation into the open. Not because every road confrontation is an attempted murder. It is not. But because women should not have to calculate their safety every time an unfamiliar vehicle comes too close. Well, that's all we have for you today in Postmortem. It's time for a short break now. Keep watching India Today.

0: are watching India Today.
1: Hello and welcome, viewers. You're watching India Today with me, Sriya Kundu, and we will be tracking all of the top stories of the day with all of their latest developments in this hour's bulletin. Let's first take a look at the headlines before getting into the details of each of these stories. Prime Minister Narendra Modi's sympathetic gesture of offering a chair to an elderly woman mocked at Rahul Gandhi's rally. BJP calls it ruthless politics without care, empathy or heart. Congress says BJP can't distinguish between mockery and seriousness.
2: Aur bataiye, aur bataiye thoda. Maa ko kursi do. Maa. Maa.
1: Jaishankar and his wife, among several high-profile voters who've been served an election commission notice under the Delhi SIR, records flagged as unmapped with the last SIR, with the poll body clarifying that a notice does not mean a voter is ineligible or that their name shall be deleted. Three people were killed and one critically injured after a speeding BMW crashed on Mumbai's coastal road earlier. Black BMW was travelling from Marine Drive toward Haji Ali when the driver lost control of the car and fell from the bridge, reportedly due to speeding. Former Vice President Hamid Ansari's remarks on Hindu right-wing communalism triggers a political clash. BJP hits back at Ansari and Congress, calling his remarks unfortunate and demanding an apology. U.S. State Department warns Americans in Middle East to stay highly vigilant after Houthis claim attacks on Riyadh. Flames and a large plume of black smoke seen near Riyadh airport. Saudi military says its air defences intercepted and destroyed a missile fired toward Riyadh. India opened its Asian Games medal account with two shooting silvers, led by Elvenil Valarivan, while Suchika Tarial secured an MMA bronze. In the Delhi SIR, the Election Commission has issued notices to several high-profile figures across the national capital. Those flagged for discrepancies include External Affairs Minister S. Jaishankar and his wife, former Army Chief Upendra Dwivedi, CBI Director Praveen Sood, former Supreme Court Justice Ranjana Desai, Congress leader Udit Raj and former Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia. Discrepancies leading to these notices include names being unmapped with previous electoral rolls, name mismatches and parental age inconsistencies. Now, the Delhi Chief Electoral Officer has clarified that issue of notice does not mean that their names will be deleted from the electoral rolls of the NCT of Delhi. The poll body has explained that notices are being issued to correct their data and that no name can be deleted without giving an opportunity of being heard and an appealable order. Earlier, former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and four members of his family served electoral roll verification notices under the unmapped with last SIR category. This came after Kejriwal had publicly questioned the SIR exercise over deletions from the draft electoral roll. Kejriwal steps up his attack on the SIR, calling it an attempt to reduce India's population. In fact, he went a step further, claiming the exercise could bring the population of the country down from the current 140 crores to 50 crores, while alleging 47 lakh names are missing from the draft voter roll. Meanwhile, Delhi Chief Minister Rekha Gupta's electoral details were flagged also for a discrepancy during the SIR process, prompting a notice. But after physical verification by the BLO, her documents and details were checked out and then validated.
3: यह SIR का नया प्रोविजन इलेक्शन कमीशन ने भारतीय जनता पार्टी की दबाव में किया है और अभी तक 12-13 करोड़ वोटर्स डिलीट कर दिए गए। ये तो लोकतंत्र को खत्म करने की एक बड़ी साजिश है और ये इस बात का बड़ा सबूत है कि जब एल के अडवाणी के पास नोटिस जाएगा, देश के फॉरेन सिक्योरिटी के पास जाएगा, तो इससे अंदाजा किया जा सकता है कि ये प्रोसेस जो है वो कितना गलत प्रोसेस है।
1: एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, और वो इतना निष्पक्ष है, उसमें इतनी पारदर्शिता है कि जो नोटिसेस दिए गए हैं उसमें बड़े बड़े लीडर्स के नाम हैं, और चाहे वो कपिल सिब्बल हों, चाहे हमारी रेखा गुप्ता जी हों, चाहे लाल कृष्ण अडवाणी जी हों, और चाहे अरविंद केजरीवाल जी हों, उन सबको दिए गए हैं, क्योंकि एक रूल ऑफ लॉ है, उसके तहत एक कानूनी प्रक्रिया है, उसके तहत सबको बताना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है, नोटिसेस जाते हैं और आप सही डॉक्यूमेंट्स देते हैं और बात साफ तौर से नई तरह से अपडेट हो जाती है इलेक्टोरल लिस्ट में। लेकिन उसमें भी राजनीति देखिए, बजाय ये समझने के कि लाल कृष्ण अडवाणी जी को भी गया है भाई, एस जयशंकर जी को भी गया है, जो हमारे मंत्री एक्सटर्नल अफेयर्स के, लेकिन आप अपनी बात करके अपना रोना अपने मातम शुरू कर दिया है।
4: ये बीएलओ को फॉर्म दिया, मेरे दस्तखत हैं यहां और बीएलओ के दस्तखत, तो मैचिंग हो गया, तो इसका मतलब मेरा मैच करता है, तो फिर मैं नोटिस कैसे आया। मैं ज्ञानेश कुमार जी से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने नोटिस कैसे दिया। मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं, 1992 और 2002 में मैं राज्यसभा का मेंबर था। इतना बड़ा घोटाला हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ।
5: राहुल गांधी छात्रों की गूंज हैज नाउ स्टेप्ड इनटू अ न्यू पॉलिटिकल अरेना। एट द इंदौर सेशन राहुल गांधी वाज सीन ऑन अ स्टेज विथ अ कॉमेडियन, where the two appeared to mock Prime Minister Modi's gesture towards an elderly woman when he asked someone to give her a chair. The BJP called it shameful and disgusting. The party posted a video of Prime Minister Modi with his mother and said Rahul Gandhi has now stooped to a new low. Here is a report on the same. Take a look.
2: और बताइए, हाँ? और बताइए थोड़ा। माँ को कुर्सी दो, माँ, माँ।
6: An attempt to mock Prime Minister Modi by Congress has ended up creating another controversy, leaving many questioning the Congress's intent and criticizing the party. It all happened at Rahul Gandhi's Chhatron Ki Goonj event in Indore on Saturday. The Congress invited comedian Pulkit Mani to Rahul's event. The comedian performed a satirical mimicry of Prime Minister Modi and mocked an incident involving the Prime Minister and an old lady whom he had referred to as Ma.
2: और बताइए, हाँ? और बताइए थोड़ा। माँ को कुर्सी दो, माँ, माँ।
6: Just last month, in an attempt to mock Modi, the Congress raked up Italian Prime Minister Giorgia Meloni and made what the BJP called distasteful comments.
7: इनके इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया, अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी।
8: एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ। मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था।
6: The BJP hammered the Congress over the controversy, accusing it of stooping lower and lower. The Congress defended its leader and the act.
9: राहुल गांधी जी वो एक कार्यक्रम लेते हैं, छात्रों के बीच जाते हैं, नाम तो उन्होंने छात्रों की गूंज दिया है, लेकिन वो झूठ बोलते हैं, अपमान करते हैं, भारतीय संस्कृति का भी अपमान करते हैं।
10: मैं समझता हूँ ये तो प्रहलाद जोशी समझ नहीं पाते, भाषा का ज्ञान नहीं उनको, विषय का ज्ञान नहीं, इस तरह की बातें बेतुकी वो बोल जाते हैं। वो पहली बार नहीं बोल रहे, वो आदतन बेतुकी बातें बोलते हैं। माँ का कहाँ से जिक्र आ गया? मैं तो दो बार तीन बार देख चुका राहुल जी का, माँ का तो कहीं जिक्र ही नहीं आया था।
11: राहुल गांधी जी को सुनने के लिए कोई आने को तैयार नहीं है, 100 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं। तो आपने देखा कि नेहा सिंह राठौर को जो है उन्होंने बुला लिया गुजरात, और आज जो है, कल जब मैं देख रहा था तो स्टैंड अप कॉमेडियन जो है उसको लेके इंदौर में घूम रहे हैं।
12: राजनीति के अंदर जो है, जब आप शीर्ष पदों पर होते हैं तो आपको इस तरीके के इस तरीके की चीजों को स्वाभाविक रूप में लेना पड़ता है। लोकतंत्रवादी नहीं है आप, लोकतंत्र के अंदर इन चीजों को आपको पार्ट ऑफ गेम समझना पड़ता है।
6: It is not the first time that the Congress, in an attempt to target Prime Minister Modi, has gone too far and ended up scoring an own goal. The Granol party seriously needs to consider whether such controversies can be avoided. With Piyush Mishra, Ravish Pal, Bureau Report, India Today.
5: The scripted history shattered the blueprint and no other channel has them. We are going completely unfiltered with the new faces of the Delhi University Student Union, Students Politics. The winner and the game changer, India Today's Anjali Pandey, with these twin campus exclusives, the campus king, Yash Dabbas, and the defiant rebel, Deepanshu Shokin.
13: काफी काटे की टक्कर थी आपके बीच और एनएसयूआई के जो कैंडिडेट थे विजय मीना उनके बीच। हर राउंड के बाद ऐसा लग रहा था कि कभी कोई आगे हो जा रहा था, कभी कोई आगे हो जा रहा था। काफी कम ऐसा होता है कि एंड के राउंड्स तक भी ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि कौन जीतने वाला है। तो आपको उस टाइम पे जब आप काउंटिंग बूथ पे प्रेजेंट थे, आपको उस टाइम पे कैसा लग रहा था जब हर राउंड के बाद रिजल्ट कभी इस तरफ जा रहा था, कभी उस तरफ जा रहा था?
14: मैम, मैं काफी रिलैक्स था, मुझे कहीं ना कहीं आत्मविश्वास था कि अभी एक आधे जो हमारे कैंपसेस है वो खुलने बाकी है, उनका रिजल्ट आना बाकी है, और उनका रिजल्ट आते ही मैं लीड मेंटेन कर लूंगा। और जैसे ही मुझे लगा कि हाँ उन कैंपसेस की वोटिंग खुली है, तो उसके बाद हमने एकदम से 2000 का मार्जिन क्लेम किया।
13: जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था यश, तो ये कहा जा रहा था कि यश दबास क्लियर विनर है, आज ही प्रेसिडेंट डिक्लेयर हो गया है। जब एनएसयूआई ने अपनी टिकट्स अनाउंस करी, उसके बाद सब कह रहे थे कि इस बार तो यश दबास ही जीतने वाला है। लेकिन कल जब काउंटिंग हुई तो हमने देखा कि कैसे काफी क्लोज कॉन्टेस्ट था, एनएसयूआई ने स्ट्रांग कमबैक किया। क्या आपको उम्मीद थी कि इतना क्लोज कॉन्टेस्ट होने वाला है, और क्या आपको लग रहा था कि मैं तो इजीली जीत जाऊंगा, क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी ये बात कह रही थी?
14: नहीं मैम, मुझे कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि कंपटीशन टक्कर का ही रहने वाला है। हमने उसी हिसाब से तैयारी भी की थी, और अपने कभी भी ओपोनेंट

0: एनएसयूआई से अलग की और जो कि एबीवीपी के लिए काम कर गई।
1: मैम, जो एबीवीपी की इकाई है, जो हर एक कॉलेज में हमारी इकाई है, जो पूरा साल वो स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, छात्र हित के लिए काम करते हैं, राष्ट्र हित के लिए काम करते हैं, जो पूरा साल वो लगातार बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी स्वार्थ के जो लगातार काम करते हैं, वही हमारी जीत का कारण रहा। एनएसयूआई अगर आप देखेंगे तो वो केवल साल के आपके दो साल के आपको 2 महीनों में ही दिखेगी, अगस्त और सितंबर, क्योंकि इन समय डूसू, उसके अलावा वो पूरे साल में आपको कहीं नजर नहीं आएगी।
0: फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू यू, आपने हिस्ट्री स्क्रिप्ट की है इतने सारे तरीकों से, रिकॉर्ड मैंडेट मिला है आपको, मार्जिन इतना बड़ा रहा, सबसे पहला जो नाम एकदम पक्का हो गया था, जीत जिसकी पक्की हो गई थी सुबह ही, वो आप ही थे। दीपांशु, एक वो दिन था जिस दिन आपको टिकट मना की गई थी, जिस दिन आपको टिकट नहीं दी गई एनएसयूआई की तरफ से, आपकी वीडियोज वायरल हुई, आप काफी इमोशनल थे, उस दिन आपने डिसीजन लिया कि आप इंडिपेंडेंट लड़ेंगे इलेक्शन, और एक कल का दिन था जब कोई एक ऐसा कैंडिडेट था जिसकी जीत सबसे पहले पक्की हुई थी और सबसे ज्यादा पक्की जीत थी, वो आप ही थे। कैसी रही ये जर्नी?
2: जर्नी काफी अच्छी रही, बहुत से स्ट्रगल्स इसके बीच में आए, जैसे और आपने पूछा कि भाई टिकट कटने के बाद और यहाँ जीत तक का सफर कैसा रहा, तो बहुत ही प्यार और स्टूडेंट्स ने भरोसा मुझ पर जताया और उस भरोसे पर मैं खरा उतरूंगा, क्योंकि मेरा इलेक्शन सिर्फ मैंने नहीं लड़ा, मेरा इलेक्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर एक छात्र ने लड़ा, और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ने प्रूव किया कि अगर वो गलत होता देखेंगे तो स्टूडेंट्स अपनी आवाज उठाना जानते हैं, और उन्होंने मुझे अपनी आवाज के रूप में चुना।
0: दीपांशु, मैं आपसे जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी कंट्रोवर्सी रही उस पर भी बात करना चाहूंगी, क्योंकि कई वीडियोस वायरल हुए एनएसयूआई प्रेसिडेंट के, कई सारी थ्योरीज जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे चल रही थी, जिसमें कि उनका ये कहना था कि आपकी तरफ से कुछ शर्तें रखी गई थी और उन शर्तों को वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से आपको टिकट नहीं दी गई। उनका ये भी कहना है कि वो आपको प्रेसिडेंट की टिकट दे रहे थे लेकिन आप राजी नहीं थे प्रेसिडेंट लड़ने के लिए, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे?
2: बहुत सी ऐसी बातें थी जो सामने आती है, और आप देख सकते हैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट कर रहा हूँ, दो और कैंडिडेट थे जो इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट कर रहे थे, तो मैं साफ साफ ये कहना चाहूंगा कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी, ना तो वहां पे मैनेजमेंट हो पाई चीजों को लेकर, और जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे जिनका जेनजी का जिन पे भरोसा था, जो खुद स्टूडेंट जिनको सपोर्ट कर रहे थे, जो चाह रहे थे कि भाई कॉमन स्टूडेंट जिनके सपोर्ट में थे, उनको मौका नहीं मिला। आप देख सकते हैं जिस तरीके का मैंडेट सामने आया है, तो ये साफ दर्शाता है कि इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से स्टूडेंट्स का जो भरोसा था वो कहीं ना कहीं टूटा। और मैं कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी बात करते हैं हमारे जेनजीज की और छात्रों की गूंज की, तो वो बहुत अच्छा कंसेप्ट है जो स्टूडेंट्स उसे कनेक्ट करते हैं, पर कहीं ना कहीं इंटरनल पॉलिटिक्स जो एनएसयूआई के अंदर हुई, जो एनएसयूआई की लीडरशिप की वजह से हुई, उसने साफ साफ जो नुकसान एनएसयूआई को हुआ वो उस वजह से हुआ।
3: Former Vice President Hamid Ansari's remarks on Hindu right-wing communalism have triggered a fresh political confrontation, with the BJP launching a sharp attack on both Ansari and the Congress. Speaking at the A.G. Noorani Memorial Lecture in New Delhi, Ansari cited a remark attributed to Jawaharlal Nehru saying the greater danger to India was Hindu right-wing communalism rather than communism. Ansari also warned of what he described as recent challenges to civic nationalism, arguing that religious distinctions could emerge between citizens. The BJP has hit back hard, accusing the Congress of spreading anti-Hindu propaganda, calling Ansari's remarks unfortunate and demanding an apology. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, meanwhile, launched a scathing attack on former Vice President Hamid Ansari, alleging his remarks disrespect India's Sanatan traditions. Meanwhile, senior Muslim cleric and Imam body chief Umair Ahmad Ilyasi has also hit back at Ansari, accusing him of provoking Muslims and alleging a larger conspiracy behind his remarks.
4: Jawaharlal Nehru's observation in an officers' meeting of the Ministry of External Affairs and recorded for posterity by Foreign Secretary Gundevia, and I quote those words: "The danger to India mark you.

0: are watching India Today.
1: In the Delhi SIRO, the Election Commission has issued notices to several high-profile figures across the national capital. Those flagged for discrepancies include External Affairs Minister S. Jaishankar and his wife, former Army Chief Upendra Dwivedi, CBI Director Praveen Sood, former Supreme Court Justice Ranjana Desai, Congress leader Udit Raj and former Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia. Discrepancies leading to these notices include names being unmapped with previous electoral rolls, name mismatches and parental age inconsistencies. Now, the Delhi Chief Electoral Officer has clarified that issue of notice does not mean that their names will be deleted from the electoral rolls of the NCT of Delhi. The poll body has explained that notices are being issued to correct their data and that no name can be deleted without giving an opportunity of being heard and an appealable order. Earlier, former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and four members of his family served electoral roll verification notices under the unmapped with last SIR category. This came after Kejriwal had publicly questioned the SIR exercise over deletions from the draft electoral roll. Kejriwal steps up his attack on the SIR, calling it an attempt to reduce India's population. In fact, he went a step further, claiming the exercise could bring the population of the country down from the current 140 crores to 50 crores, while alleging 47 lakh names are missing from the draft voter roll. Meanwhile, Delhi Chief Minister Rekha Gupta's electoral details were flagged also for a discrepancy during the SIR process, prompting a notice. But after physical verification by the BLO, her documents and details were checked out and then validated.
2: यह SIR का नया प्रोविजन इलेक्शन कमीशन ने भारतीय जनता पार्टी की दबाव में किया है और अभी तक 12-13 करोड़ वोटर्स डिलीट कर दिए गए। ये तो लोकतंत्र को खत्म करने की एक बड़ी साजिश है और ये इस बात का बड़ा सबूत है कि जब एलके अडवाणी के पास नोटिस जाएगा देश के फॉरेन सेक्रेटरी के पास जाएगा तो इससे अंदाजा किया जा सकता है कि ये प्रोसेस जो है वो कितना गलत प्रोसेस है
3: एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है और वो इतना निष्पक्ष है उसमें उतनी पारदर्शिता है कि जो नोटिसेस दिए गए हैं उसमें बड़े बड़े लीडर्स के नाम है और चाहे वो कपिल सिब्बल हों चाहे हमारी रेखा गुप्ता जी हों चाहे लाल कृष्ण अडवाणी जी हों और चाहे अरविंद केजरीवाल जी हों उन सबको दिए गए हैं क्योंकि एक रूल ऑफ लॉ है उसके तहत एक कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत सबको बताना पड़ता है वेरीफाई करना पड़ता है नोटिसेस जाते हैं और आप सही डॉक्यूमेंट्स देते हैं और बात साफ तौर से नई तरह से अपडेट हो जाती है इलेक्टोरल लिस्ट में लेकिन उसमें भी राजनीति देखिए बजाय ये समझने के कि लाल कृष्ण अडवाणी जी को भी गया है भाई एस जयशंकर जी को भी गया है जो हमारे मंत्री एक्सटर्नल अफेयर्स के लेकिन आप अपनी बात करके अपना रोना अपने मातम शुरू कर दिया है
4: ये बीएलओ को फॉर्म दिया मेरे दस्तखत हैं यहां और बीएलओ के दस्तखत तो मैचिंग हो गया तो इसका मतलब मेरा मैच करता है तो फिर मैं नोटिस कैसे आया मैं ज्ञानेश कुमार जी से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने नोटिस कैसे दिया मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं 1992 में मैं राज्यसभा का मेंबर था इतना बड़ा घोटाला हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ आज तक नहीं हुआ
1: राहुल गांधी's छात्रों की गूंज has now stepped into a new political arena. At the Indore session, Rahul Gandhi was seen on a stage with a comedian, where the two appeared to mock Prime Minister Modi's gesture towards an elderly woman when he asked someone to give her a chair. The BJP called it shameful and disgusting. The party posted a video of Prime Minister Modi with his mother and said Rahul Gandhi has now stooped to a new low. Here is a report on the same. Take a look.
5: और बताइए, और बताइए थोड़ा। माँ को कुर्सी दो, माँ, माँ।
6: An attempt to mock Prime Minister Modi by Congress has ended up creating another controversy, leaving many questioning the Congress's intent and criticizing the party. It all happened at Rahul Gandhi's Chhatron Ki Goonj event in Indore on Saturday. The Congress invited comedian Pulkit Mani to Rahul's event. The comedian performed a satirical mimicry of Prime Minister Modi and mocked an incident involving the Prime Minister and an old lady whom he had referred to as Ma.
7: और बताइए, और बताइए थोड़ा. माँ को कुर्सी दो, माँ, माँ.
6: Just last month, in an attempt to mock Modi, the Congress raked up Italian Prime Minister Giorgia Meloni and made what the BJP called distasteful comments.
7: इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया. अब अजीब चीजें घुस जाती हैं, but इनके माइंड में घुस गया कि foreign policy is this. अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी.
8: एक चीज पूछ सकता हूं?
7: हाँ.
8: मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था.
6: The BJP hammered the Congress over the controversy, accusing it of stooping lower and lower. The Congress defended its leader and the act.
9: राहुल गांधी जी, वो एक कार्यक्रम लेते हैं, छात्रों के बीच जाते हैं. नाम तो उन्होंने छात्रों की गूंज दिया है, लेकिन वो झूठ बोलते हैं, अपमान करते हैं, भारतीय संस्कृति का भी अपमान करते हैं.
10: मैं समझता हूँ ये तो प्रहलाद जोशी समझ नहीं पाते. भाषा का ज्ञान नहीं उनको, विषय का ज्ञान नहीं. इस तरह की बातें बेतुकी वो बोल जाते हैं, वो पहली बार नहीं बोल रहे हैं, वो आदतन बेतुकी बातें बोलते हैं. माँ का कहाँ से जिक्र आ गया? मैं तो दो बार तीन बार देख चुका राहुल जी का, माँ का तो कहीं जिक्र ही नहीं आया था.
11: राहुल गांधी जी को सुनने के लिए कोई आने को तैयार नहीं है. 100 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं. तो आपने देखा कि नेहा सिंह राठौर को जो है उन्होंने बुला लिया गुजरात. और आज जो है, कल जब मैं देख रहा था तो स्टैंड अप कॉमेडियन जो है उसको लेके इंदौर में घूम रहे हैं.
12: राजनीति के अंदर जो है, जब आप शीर्ष पदों पर होते हैं तो आपको इस तरीके के इस तरीके की चीजों को स्वाभाविक रूप में लेना पड़ता है. लोकतंत्रवादी नहीं है आप, लोकतंत्र के अंदर इन चीजों को आपको पार्ट ऑफ गेम समझना पड़ता है.
6: It is not the first time that the Congress, in an attempt to target Prime Minister Modi, has gone too far and ended up scoring an own goal. The grand old party seriously needs to consider whether such controversies can be avoided. With Piyush Mishra, Ravish Pal, Bureau Report, India Today.
1: The scripted history shattered the blueprint and no other channel has them. We are going completely unfiltered with the new faces of the Delhi University Student Union, Students Politics. The winner and the game changer, India Today's Anjali Pandey, with these twin campus exclusives, the campus king, Yash Dabbas, and the defiant rebel, Deepanshu Shokin.
13: काफी कांटे की टक्कर थी आपके बीच और एनएसयूआई के जो कैंडिडेट थे विजय मीना उनके बीच. हर राउंड के बाद ऐसा लग रहा था कि कभी कोई आगे हो जा रहा था, कभी कोई आगे हो जा रहा था. काफी कम ऐसा होता है कि एंड के राउंड्स तक भी ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि कौन जीतने वाला है. तो आपको उस टाइम पे जब आप काउंटिंग बूथ पे प्रेजेंट थे, आपको उस टाइम पे कैसा लग रहा था जब हर राउंड के बाद रिजल्ट कभी इस तरफ जा रहा था, कभी उस तरफ जा रहा था?
14: मैम, मैं काफी रिलैक्स था. मुझे कहीं ना कहीं आत्मविश्वास था कि अभी एक आधे जो हमारे कैंपसेस है वो खुलने बाकी है, उनका रिजल्ट आना बाकी है, और उनका रिजल्ट आते ही मैं लीड मेंटेन कर लूंगा. और जैसे ही मुझे लगा कि हाँ उन कैंपसेस की वोटिंग खुली है, तो उसके बाद हमने एकदम से 2000 का मार्जिन क्लेम किया.
13: जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था यश, तो ये कहा जा रहा था कि यश देबास क्लियर विनर है, आज ही प्रेसिडेंट डिक्लेयर हो गया है। जब एनएसयूआई ने अपनी टिकट्स अनाउंस करी, उसके बाद सब कह रहे थे कि इस बार तो यश देबास ही जीतने वाला है। लेकिन कल जब काउंटिंग हुई तो हमने देखा कि कैसे काफी क्लोज कॉन्टेस्ट था, एनएसयूआई ने स्ट्रांग कमबैक किया। क्या आपको उम्मीद थी कि इतना क्लोज कॉन्टेस्ट होने वाला है, और क्या आपको लग रहा था कि मैं तो इजिली जीत जाऊंगा, क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी ये बात कह रही थी?
14: नहीं मैम, मुझे कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि कंपटीशन टक्कर का ही रहने वाला है। हमने उसी हिसाब से तैयारी भी की थी, और अपने कभी भी ओपोनेंट को हम हल्का तो समझना नहीं चाहिए, ना हमने समझा, इसीलिए हमने उसी तरीके की मेहनत की। और फिर कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पांस आया और हम 2100 के मार्जिन से प्रेसिडेंट पोस्ट पे जीत गए।
13: तो कौन सी ऐसी चीज है जो एबीवीपी ने एनएसयूआई से अलग की और जो कि एबीवीपी के लिए काम कर गई?
14: मैम, जो एबीवीपी की इकाई है, जो हर एक कॉलेज में हमारी इकाई है, जो पूरा साल वो स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, छात्र हित के लिए काम करते हैं, राष्ट्र हित के लिए काम करते हैं, जो पूरा साल वो लगातार बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी स्वार्थ के जो लगातार काम करते हैं, वही हमारी जीत का कारण रहा। एनएसयूआई अगर आप देखेंगे तो वो केवल साल के आपके दो साल के आपको दो महीनों में ही दिखेगी, अगस्त और सितंबर, क्योंकि इन समय डुसु, उसके अलावा वो पूरे साल में आपको कहीं नजर नहीं आएगी।
13: फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू यू, आपने हिस्ट्री स्क्रिप्ट की है इतने सारे तरीकों से, रिकॉर्ड मैंडेट मिला है आपको, मार्जिन इतना बड़ा रहा, सबसे पहला जो नाम एकदम पक्का हो गया था, जीत जिसकी पक्की हो गई थी सुबह ही, वो आप ही थे। दीपांशु, एक वो दिन था जिस दिन आपको टिकट मना की गई थी, जिस दिन आपको टिकट नहीं दी गई एनएसयूआई की तरफ से, आपकी वीडियोज वायरल हुई, आप काफी इमोशनल थे, उस दिन आपने डिसीजन लिया कि आप इंडिपेंडेंट लड़ेंगे इलेक्शन, और एक कल का दिन था जब कोई एक ऐसा कैंडिडेट था जिसकी जीत सबसे पहले पक्की हुई थी और सबसे ज्यादा पक्की जीत थी, वो आप ही थे। कैसी रही ये जर्नी?
15: जर्नी काफी अच्छी रही, बहुत से स्ट्रगल्स इसके बीच में आए, जैसे और आपने पूछा कि भाई टिकट कटने के बाद और यहाँ जीत तक का सफर कैसा रहा, तो बहुत ही प्यार और स्टूडेंट्स ने भरोसा मुझ पर जताया और उस भरोसे पर मैं खरा उतरूंगा, क्योंकि मेरा इलेक्शन सिर्फ मैंने नहीं लड़ा, मेरा इलेक्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर एक छात्र ने लड़ा, और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ने प्रूव किया कि अगर वो गलत होता देखेंगे तो स्टूडेंट्स अपनी आवाज उठाना जानते हैं, और उन्होंने मुझे अपनी आवाज के रूप में चुना।
13: दीपांशु, मैं आपसे जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी कंट्रोवर्सी रही उस पर भी बात करना चाहूंगी, क्योंकि कई वीडियोस वायरल हुए एनएसयूआई प्रेसिडेंट के, कई सारी थ्योरीज जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे चल रही थी, जिसमें कि उनका ये कहना था कि आपकी तरफ से कुछ शर्तें रखी गई थी और उन शर्तों को वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से आपको टिकट नहीं दी गई। उनका ये भी कहना है कि वो आपको प्रेसिडेंट की टिकट दे रहे थे लेकिन आप राजी नहीं थे प्रेसिडेंट लड़ने के लिए, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे?
15: बहुत सी ऐसी बातें थी जो सामने आती है, और आप देख सकते हैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट कर रहा हूँ, दो और कैंडिडेट थे जो इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट कर रहे थे, तो मैं साफ साफ ये कहना चाहूंगा कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी, ना तो वहां पे मैनेजमेंट हो पाई चीजों को लेकर, और जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे जिनका जिनजी का जिन पे भरोसा था, जो खुद स्टूडेंट जिनको सपोर्ट कर रहे थे, जो चाह रहे थे कि भाई कॉमन स्टूडेंट जिनके सपोर्ट में थे, उनको मौका नहीं मिला। आप देख सकते हैं जिस तरीके का मैंडेट सामने आया है, तो ये साफ दर्शाता है कि इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से स्टूडेंट्स का जो भरोसा था वो कहीं ना कहीं टूटा। और मैं कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी बात करते हैं हमारे जेनजीज की और छात्रों की गूंज की, तो वो बहुत अच्छा कंसेप्ट है जो स्टूडेंट्स उसे कनेक्ट करते हैं, पर कहीं ना कहीं इंटरनल पॉलिटिक्स जो एनएसयूआई के अंदर हुई, जो एनएसयूआई की लीडरशिप की वजह से हुई, उसने साफ साफ जो नुकसान एनएसयूआई को हुआ वो उस वजह से हुआ।
16: Former Vice President Hamid Ansari's remarks on Hindu right-wing communalism have triggered a fresh political confrontation, with the BJP launching a sharp attack on both Ansari and the Congress. Speaking at the A.G. Noorani Memorial Lecture in New Delhi, Ansari cited a remark attributed to Jawaharlal Nehru saying the greater danger to India was Hindu right-wing communalism rather than communism. Ansari also warned of what he described as recent challenges to civic nationalism, arguing that religious distinctions could

0: BJP has hit back hard, accusing the Congress of spreading anti-Hindu propaganda, calling Ansari's remarks unfortunate and demanding an apology. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, meanwhile, launched a scathing attack on former Vice President Hamid Ansari, alleging his remarks disrespect India's Sanatan traditions. Meanwhile, senior Muslim cleric and Imam Body Chief Umair Ahmed Ilyasi has also hit back at Ansari, accusing him of provoking Muslims and alleging a larger conspiracy behind his remarks.
1: Jawaharlal Nehru's observation in an officers' meeting of the Ministry of External Affairs and recorded for posterity by Foreign Secretary Gundevia, and I quote those words, "The danger to India, mark you, it is not communism. It is Hindu right-wing communalism."
2: कुछ लोगों की फितरत होती है कि वे अपने पद की मर्यादा को बनाए नहीं रख पाते हैं, उस मर्यादा के विपरीत अपना आचरण करना उनकी जीवन की फितरत बन चुकी होती है। श्रीमान हामिद अंसारी जो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने 5 वर्ष के अपने कार्यकाल को देश के अंदर संपन्न किया, उन्होंने कल एक वक्तव्य दिया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य था, और हम जैसे लोगों को शोभा भी नहीं देता कि हम उसका खंडन मंडन करें, लेकिन उनके जो वक्तव्य थे वह सचमुच डरावने वक्तव्य हैं, भारत के लिए, भारतीयता के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारत की परंपरा के लिए, और ये वक्तव्य दुनिया में भारत की छवि को धूमिल करने के कुत्सित प्रयासों के उस एजेंडे का हिस्सा है जो एंटी इंडिया फोर्सेस के द्वारा निरंतर निरंतर उसका दुष्प्रचार किया जाता है। उनके द्वारा शुद्ध रूप से भारत की सनातन परंपरा को कोसने, भारत की हिंदू परंपरा को अपमानित करने के वक्तव्य दिए गए और उसको आतंकवाद से जोड़ने के कुत्सित प्रयास हुए। एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति से भारत का संविधान अपेक्षा करता है कि उस पद की गरिमा के अनुरूप वह हमेशा आचरण करे।
3: ये इस प्रकार के बयान जिनको देश में उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बुलाया, उनके द्वारा जब इस प्रकार के घटिया बयान दिए जाते हैं तो उसका एक ही जवाब है कि हिंदू समाज सदैव सबको अपनाने का काम करता है, सबको सम्मान देने का काम करता है और सबके साथ समरस होकर के काम करता है। इस प्रकार के बयानों से जरूर वैमनस्यता फैलती है और एक घृणा का भाव आता है, लेकिन इस प्रकार के बयान से लगातार कभी न कभी देश के उपराष्ट्रपति रहे श्री हामिद अंसारी जी बयान देते रहे हैं जो अनुचित है, उसे स्वीकार नहीं किया।
4: अगर हिंदू हमारे हिंदुस्तान में बहुसंख्यक नहीं होता तो मेरा हिंदुस्तान न तो सेकुलर होता और न पंथ निरपेक्ष होता। जिस वक्त बंटवारा हुआ इस देश का, उसमें जो है वो हिंदू बहुसंख्यक वाला हिंदुस्तान जो है वो पंथ निरपेक्ष और सेकुलर बना, मुस्लिम बहुसंख्यक वाला पाकिस्तान जो है वो इस्लामी राष्ट्र घोषित हुआ। इतना से भी अगर ABCD नहीं समझते और इस तरह के जो है वो छल छत्रप और इस तरह के जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट करने के जो कारीगर लोग हैं, वो मुझे लगता है कि आप इस तरह के कन्फ्यूजन क्रिएट करके, जो कम्युनल कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सफल नहीं होंगे।
5: आज देश तरक्की के रास्ते पर है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर है। पिछले 12 सालों में जितना मुसलमानों ने तरक्की की है नरेंद्र मोदी की हुकूमत में, उतनी तरक्की कहीं नहीं हुई है। कांग्रेस के राज में दंगे होते थे, हजारों मुसलमान मार दिए जाते थे, कत्ल हो जाता था। आज 12 साल से कोई दंगा नहीं है, फसाद नहीं है, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा है।
6: उन्होंने कहा कि यहां पर उग्र वाम पंथ की तुलना में दक्षिण पंथी हिंदू सांप्रदायिकता अधिक खतरनाक है। यदि हिंदू सांप्रदायिक होता, यदि हिंदू कट्टर होता तो हामिद अंसारी ये बात कहने का साहस नहीं कर सकते थे। इस तरह की बातें करने वाला या तो कोई अनजान होता है या बेईमान होता है। हामिद अंसारी अनजान नहीं हो सकते, वो इन सब तथ्यों को जानते। उनके ये वक्तव्य किसी बेईमानी से कम होंगे ऐसा लगता नहीं, वो किसी हिडन एजेंडा के अंतर्गत काम

0: are watching India Today.
1: In the Delhi SIR row, the Election Commission has issued notices to several high-profile figures across the national capital. Those flagged for discrepancies include External Affairs Minister S. Jaishankar and his wife, former Army Chief Upendra Dwivedi, CBI Director Praveen Sood, former Supreme Court Justice Ranjana Desai, Congress leader Udit Raj and former Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia. Discrepancies leading to these notices include names being unmapped with previous electoral rolls, name mismatches and parental age inconsistencies. Now, the Delhi Chief Electoral Officer has clarified that issue of notice does not mean that their names will be deleted from the electoral rolls of the NCT of Delhi. The poll body has explained that notices are being issued to correct their data and that no name can be deleted without giving an opportunity of being heard and an appealable order. Earlier, former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and four members of his family served electoral roll verification notices under the unmapped with last SIR category. This came after Kejriwal had publicly questioned the SIR exercise over deletions from the draft electoral roll. Kejriwal steps up his attack on the SIR, calling it an attempt to reduce India's population. In fact, he went a step further, claiming the exercise could bring the population of the country down from the current 140 crores to 50 crores, while alleging 47 lakh names are missing from the draft voter roll. Meanwhile, Delhi Chief Minister Rekha Gupta's electoral details were flagged also for a discrepancy during the SIR process, prompting a notice. But after physical verification by the BLO, her documents and details were checked out and then validated.
2: यह SIR का नया प्रोविजन इलेक्शन कमीशन ने भारतीय जनता पार्टी की दबाव में किया है और अभी तक 12-13 करोड़ वोटर्स डिलीट कर दिए गए। ये तो लोकतंत्र को खत्म करने की एक बड़ी साजिश है और ये इस बात का बड़ा सबूत है कि जब एलके अडवाणी के पास नोटिस जाएगा देश के फॉरेन सेक्रेटरी के पास जाएगा तो इससे अंदाजा किया जा सकता है कि ये प्रोसेस जो है वो कितना गलत प्रोसेस है
3: एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है और वो इतना निष्पक्ष है उसमें उतनी पारदर्शिता है कि जो नोटिसेस दिए गए हैं उसमें बड़े बड़े लीडर्स के नाम है और चाहे वो कपिल सिब्बल हों चाहे हमारी रेखा गुप्ता जी हों चाहे लाल कृष्ण अडवाणी जी हों और चाहे अरविंद केजरीवाल जी हों उन सबको दिए गए हैं क्योंकि एक रूल ऑफ लॉ है उसके तहत एक कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत सबको बताना पड़ता है वेरीफाई करना पड़ता है नोटिसेस जाते हैं और आप सही डॉक्यूमेंट्स देते हैं और बात साफ तौर से नई तरह से अपडेट हो जाती है इलेक्टोरल लिस्ट में लेकिन उसमें भी राजनीति देखिए बजाय ये समझने के कि लाल कृष्ण अडवाणी जी को भी गया है भाई एस जयशंकर जी को भी गया है जो हमारे मंत्री एक्सटर्नल अफेयर्स के लेकिन आप अपनी बात करके अपना रोना अपने मातम शुरू कर दिया है
4: ये बीएलओ को फॉर्म दिया मेरे दस्तखत हैं यहां और बीएलओ के दस्तखत तो मैचिंग हो गया तो इसका मतलब मेरा मैच करता है तो फिर मैं नोटिस कैसे आया मैं ज्ञानेश कुमार जी से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने नोटिस कैसे दिया मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं 1992 और 2002 में मैं राज्यसभा का मेंबर था इतना बड़ा घोटाला हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ आज तक नहीं हुआ
1: राहुल गांधी's छात्रों की गूंज has now stepped into a new political arena. At the Indore session, Rahul Gandhi was seen on a stage with a comedian, where the two appeared to mock Prime Minister Modi's gesture towards an elderly woman when he asked someone to give her a chair. The BJP called it shameful and disgusting. The party posted a video of Prime Minister Modi with his mother and said Rahul Gandhi has now stooped to a new low. Here is a report on the same. Take a look.
5: An attempt to mock Prime Minister Modi by Congress has ended up creating another controversy, leaving many questioning the Congress's intent and criticizing the party. It all happened at Rahul Gandhi's Chhatron Ki Goonj event in Indore on Saturday. The Congress invited comedian Pulkit Mani to Rahul's event. The comedian performed a satirical mimicry of Prime Minister Modi and mocked an incident involving the Prime Minister and an old lady whom he had referred to as Ma.
6: और बताइए, हाँ, और बताइए थोड़ा. माँ को कुर्सी दो, माँ, माँ.
5: Just last month, in an attempt to mock Modi, the Congress raked up Italian Prime Minister Giorgia Meloni and made what the BJP called distasteful comments.
7: इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया. अब अजीब चीजें घुस जाती हैं, but इनके माइंड में घुस गया कि foreign policy is this. अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी.
8: एक चीज पूछ सकता हूं?
7: हाँ.
8: मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था.
5: The BJP hammered the Congress over the controversy, accusing it of stooping lower and lower. The Congress defended its leader and the act.
9: Rahul Gandhi ji, वो एक कार्यक्रम लेते हैं, छात्रों के बीच जाते हैं. नाम तो उन्होंने छात्रों की गूंज दिया है, लेकिन वो झूठ बोलते हैं, अपमान करते हैं, भारतीय संस्कृति का भी अपमान करते हैं.
10: मैं समझता हूँ ये तो प्रहलाद जोशी समझ नहीं पाते. भाषा का ज्ञान नहीं उनको, विषय का ज्ञान नहीं. इस तरह की बातें बेतुकी वो बोल जाते हैं, वो पहली बार नहीं बोल रहे हैं, वो आदतन बेतुकी बातें बोलते हैं. माँ का कहाँ से जिक्र आ गया? मैं तो दो बार तीन बार देख चुका राहुल जी का, माँ का तो कहीं जिक्र ही नहीं आया था.
11: राहुल गांधी जी को सुनने के लिए कोई आने को तैयार नहीं है. 100 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं. तो आपने देखा कि नेहा सिंह राठौर को जो है उन्होंने बुला लिया गुजरात. और आज जो है, कल जब मैं देख रहा था तो स्टैंड अप कॉमेडियन जो है उसको लेके इंदौर में घूम रहे हैं.
12: राजनीति के अंदर जो है, जब आप शीर्ष पदों पर होते हैं तो आपको इस तरीके की चीजों को स्वाभाविक रूप में लेना पड़ता है. लोकतंत्रवादी नहीं है आप, लोकतंत्र के अंदर इन चीजों को आपको पार्ट ऑफ गेम समझना पड़ता है.
5: It is not the first time that the Congress, in an attempt to target Prime Minister Modi, has gone too far and ended up scoring an own goal. The Granule Party seriously needs to consider whether such controversies can be avoided. With Piyush Mishra and Ravish Pal, Bureau Report, India Today.
1: The scripted history shattered the blueprint and no other channel has them. We are going completely unfiltered with the new faces of the Delhi University Student Union, Students Politics. The winner and the game changer, India Today's Anjali Pandey, with these twin campus exclusives, the campus king, Yash Dabbas, and the defiant rebel, Deepanshu Shokin.
13: काफी काटे की टक्कर थी आपके बीच और एनएसयूआई के जो कैंडिडेट थे विजय मीना, उनके बीच. हर राउंड के बाद ऐसा लग रहा था कि कभी कोई आगे हो जा रहा था, कभी कोई आगे हो जा रहा था. काफी कम ऐसा होता है कि एंड के राउंड्स तक भी ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि कौन जीतने वाला है. तो आपको उस टाइम पे जब आप काउंटिंग बूथ पे प्रेजेंट थे, आपको उस टाइम पे कैसा लग रहा था जब हर राउंड के बाद रिजल्ट कभी इस तरफ जा रहा था, कभी उस तरफ जा रहा था?
14: मैम, मैं काफी रिलैक्स था. मुझे कहीं ना कहीं आत्मविश्वास था कि अभी एक आधे जो हमारे कैंपसेस है वो खुलने बाकी है, उनका रिजल्ट आना बाकी है, और उनका रिजल्ट आते ही मैं लीड मेंटेन कर लूंगा. और जैसे ही मुझे लगा कि हाँ उन कैंपसेस की वोटिंग खुली है, तो उसके बाद हमने एकदम से 2000 का मार्जिन क्लेम किया.
13: जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था यश, तो ये कहा जा रहा था कि यश देबास क्लियर विनर है, आज ही प्रेसिडेंट डिक्लेयर हो गया है। जब एनएसयूआई ने अपनी टिकट्स अनाउंस करी, उसके बाद सब कह रहे थे कि इस बार तो यश देबास ही जीतने वाला है। लेकिन कल जब काउंटिंग हुई तो हमने देखा कि कैसे काफी क्लोज कॉन्टेस्ट था, एनएसयूआई ने स्ट्रांग कमबैक किया। क्या आपको उम्मीद थी कि इतना क्लोज कॉन्टेस्ट होने वाला है, और क्या आपको लग रहा था कि मैं तो इजीली जीत जाऊंगा, क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी ये बात कह रही थी?
14: नहीं मैम, मुझे कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि कंपटीशन टक्कर का ही रहने वाला है। हमने उसी हिसाब से तैयारी भी की थी, और अपने कभी भी ओपोनेंट को हम हल्का तो समझना नहीं चाहिए, ना हमने समझा, इसीलिए हमने उसी तरीके की मेहनत की। और फिर कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पांस आया और हम 2100 के मार्जिन से प्रेसिडेंट पोस्ट पे जीत गए।
13: तो कौन सी ऐसी चीज है जो एबीवीपी ने एनएसयूआई से अलग की और जो कि एबीवीपी के लिए काम कर गई?
14: मैम, जो एबीवीपी की इकाई है, जो हर एक कॉलेज में हमारी इकाई है, जो पूरा साल वो स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, छात्र हित के लिए काम करते हैं, राष्ट्र हित के लिए काम करते हैं, जो पूरा साल वो लगातार बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी स्वार्थ के जो लगातार काम करते हैं, वही हमारी जीत का कारण रहा। एनएसयूआई अगर आप देखेंगे तो वो केवल साल के आपके दो साल के आपको दो महीनों में ही दिखेगी, अगस्त और सितंबर, क्योंकि इन समय डुसू, उसके अलावा वो पूरे साल में आपको कहीं नजर नहीं आएगी।
13: फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू यू, आपने हिस्ट्री स्क्रिप्ट की है इतने सारे तरीकों से, रिकॉर्ड मैंडेट मिला है आपको, मार्जिन इतना बड़ा रहा, सबसे पहला जो नाम एकदम पक्का हो गया था, जीत जिसकी पक्की हो गई थी सुबह ही, वो आप ही थे। दीपांशु, एक वो दिन था जिस दिन आपको टिकट मना की गई थी, जिस दिन आपको टिकट नहीं दी गई एनएसयूआई की तरफ से, आपकी वीडियोज वायरल हुई, आप काफी इमोशनल थे, उस दिन आपने डिसीजन लिया कि आप इंडिपेंडेंट लड़ेंगे इलेक्शन, और एक कल का दिन था जब कोई एक ऐसा कैंडिडेट था जिसकी जीत सबसे पहले पक्की हुई थी और सबसे ज्यादा पक्की जीत थी, वो आप ही थे। कैसी रही ये जर्नी?
15: जर्नी काफी अच्छी रही, बहुत से स्ट्रगल्स इसके बीच में आए, जैसे और आपने पूछा कि भाई टिकट कटने के बाद और यहाँ जीत तक का सफर कैसा रहा, तो बहुत ही प्यार और स्टूडेंट्स ने भरोसा मुझ पर जताया और उस भरोसे पर मैं खरा उतरूंगा, क्योंकि मेरा इलेक्शन सिर्फ मैंने नहीं लड़ा, मेरा इलेक्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर एक छात्र ने लड़ा, और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ने प्रूव किया कि अगर वो गलत होता देखेंगे तो स्टूडेंट्स अपनी आवाज उठाना जानते हैं, और उन्होंने मुझे अपनी आवाज के रूप में चुना।
13: दीपांशु, मैं आपसे जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी कंट्रोवर्सी रही उस पर भी बात करना चाहूंगी, क्योंकि कई वीडियोस वायरल हुए एनएसयूआई प्रेसिडेंट के, कई सारी थ्योरीज जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे चल रही थी, जिसमें कि उनका ये कहना था कि आपकी तरफ से कुछ शर्तें रखी गई थी और उन शर्तों को वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से आपको टिकट नहीं दी गई। उनका ये भी कहना है कि वो आपको प्रेसिडेंट की टिकट दे रहे थे लेकिन आप राजी नहीं थे प्रेसिडेंट लड़ने के लिए, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे?
15: बहुत सी ऐसी बातें थी जो सामने आती है, और आप देख सकते हैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट कर रहा हूँ, दो और कैंडिडेट थे जो इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट कर रहे थे, तो मैं साफ साफ ये कहना चाहूंगा कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी, ना तो वहां पे मैनेजमेंट हो पाई चीजों को लेकर, और जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे जिनका जेनजी का जिन पे भरोसा था, जो खुद स्टूडेंट जिनको सपोर्ट कर रहे थे, जो चाह रहे थे कि भाई कॉमन स्टूडेंट जिनके सपोर्ट में थे, उनको मौका नहीं मिला। आप देख सकते हैं जिस तरीके का मैंडेट सामने आया है, तो ये साफ दर्शाता है कि इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से स्टूडेंट्स का जो भरोसा था वो कहीं ना कहीं टूटा। और मैं कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी बात करते हैं हमारे जेनजीज की और छात्रों की गूंज की, तो वो बहुत अच्छा कंसेप्ट है जो स्टूडेंट्स उसे कनेक्ट करते हैं, पर कहीं ना कहीं इंटरनल पॉलिटिक्स जो एनएसयूआई के अंदर हुई, जो एनएसयूआई की लीडरशिप की वजह से हुई, उसने साफ साफ जो नुकसान एनएसयूआई को हुआ वो उस वजह से हुआ।
16: Former Vice President Hamid Ansari's remarks on Hindu right-wing communalism have triggered a fresh political confrontation, with the BJP launching a sharp attack on both Ansari and the Congress. Speaking at the A.G. Noorani Memorial Lecture in New Delhi, Ansari cited a remark attributed to Jawaharlal Nehru saying the greater danger to India was Hindu right-wing communalism rather than communism. Ansari also warned of what he described as recent challenges to civic nationalism, arguing that religious distinctions could emerge between citizens. The BJP has hit back hard, accusing the Congress of spreading anti-Hindu propaganda, calling Ansari's remarks unfortunate and demanding an apology. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, meanwhile, launched a scathing attack on former Vice President Hamid Ansari, alleging his remarks disrespect India's Sanatan traditions. Meanwhile, senior Muslim cleric and Imam Body Chief Umair Ahmed Ilyasi has also hit back at Ansari, accusing him of provoking Muslims and alleging a larger conspiracy behind his remarks.
17: Jawaharlal Nehru's observation in an officers' meeting of the Ministry of External Affairs and recorded for posterity by Foreign Secretary Gundevia, and I quote those words, "The danger to India, mark you, it is not communism. It is Hindu right-wing communalism."
18: कुछ लोगों की फितरत होती है कि वे अपने पद की मर्यादा को बनाए नहीं रख पाते हैं, उस मर्यादा के विपरीत अपना आचरण करना उनके जीवन की फितरत बन चुकी होती है। श्रीमान हामिद अंसारी, जो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने 5 वर्ष के अपने कार्यकाल को देश के अंदर संपन्न किया, उन्होंने कल एक वक्तव्य दिया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य था, और हम जैसे लोगों को शोभा भी नहीं देता कि हम उसका खंडन मंडन करें, लेकिन उनके जो वक्तव्य थे वह सचमुच डरावने वक्तव्य हैं, भारत के लिए, भारतीयता के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारत की परंपरा के लिए, और ये वक्तव्य दुनिया में भारत की छवि को धूमिल करने के कुत्सित प्रयासों के उस एजेंडे का हिस्सा है जो एंटी इंडिया फोर्सेस के द्वारा निरंतर निरंतर उसका दुष्प्रचार किया जाता है। उनके द्वारा शुद्ध रूप से भारत की सनातन परंपरा को कोसने, भारत की हिंदू परंपरा को अपमानित करने के वक्तव्य दिए गए और उसको आतंकवाद से जोड़ने के कुत्सित प्रयास हुए। एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति से भारत का संविधान अपेक्षा करता है कि उस पद की गरिमा के अनुरूप वह हमेशा आचरण करे।
19: इस प्रकार के बयान जिनको देश में उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बुलाया, उनके द्वारा जब इस प्रकार के घटिया बयान दिए जाते हैं तो उसका एक ही जवाब है कि हिंदू समाज सदैव सबको अपनाने का काम करता है, सबको सम्मान देने का काम करता है और सबके साथ समरस होकर के काम करता है। इस प्रकार के बयानों से जरूर वैमनस्यता फैलती है और एक घृणा का भाव आता है, लेकिन इस प्रकार के बयान से लगातार कभी न कभी देश के उपराष्ट्रपति रहे श्री हामिद अंसारी जी बयान देते रहे हैं जो अनुचित है, उसे स्वीकार नहीं किया।
20: अगर हिंदू हमारे हिंदुस्तान में बहुसंख्यक नहीं होता तो मेरा हिंदुस्तान न तो सेकुलर होता और न पंथ निरपेक्ष होता। जिस वक्त बंटवारा हुआ इस देश का, उसमें जो है वो हिंदू बहुसंख्यक वाला हिंदुस्तान जो है वो पंथ निरपेक्ष और सेकुलर बना, मुस्लिम बहुसंख्यक वाला पाकिस्तान जो है वो इस्लामी राष्ट्र घोषित हुआ। इतना से भी अगर ABCD नहीं समझते और इस तरह के जो है वो छल छत्रप और इस तरह के जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट करने के जो कारीगर लोग हैं, वो मुझे लगता है कि आप इस तरह के कन्फ्यूजन क्रिएट करके, जो कम्युनल कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सफल नहीं होंगे।
21: आज देश तरक्की के रास्ते पर है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर है। पिछले 12 सालों में जितना मुसलमानों ने तरक्की की है नरेंद्र मोदी की हुकूमत में, उतनी तरक्की कहीं नहीं हुई है। कांग्रेस के राज में दंगे होते थे, हजारों मुसलमान मार दिए जाते थे, कत्ल हो जाता था। आज 12 साल से कोई दंगा नहीं है, फसाद नहीं है, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा है।
22: उन्होंने कहा कि यहां पर उग्र वाम पंथ की तुलना में दक्षिण पंथी हिंदू सांप्रदायिकता अधिक खतरनाक है। यदि हिंदू सांप्रदायिक होता, यदि हिंदू कट्टर होता तो हामिद अंसारी ये बात कहने का साहस नहीं कर सकते थे। इस तरह की बातें करने वाला या तो कोई अनजान होता है या बेईमान होता है। हामिद अंसारी अनजान नहीं हो सकते, वो इन सब तथ्यों को जानते। उनके ये वक्तव्य किसी बेईमानी से कम होंगे ऐसा लगता नहीं, वो किसी हिडन एजेंडा के अंतर्गत काम करते हैं। भारत की शांति, भारत का सौहार्द, ये शायद उनके एजेंडे को सूट नहीं करता। देश की जनता उनको पहचान चुकी है, उनको जान चुकी है, इनके किसी बहकावे में आने वाली नहीं है।
0: हामिद अंसारी साहब के पहले भी उन्होंने बहुत कंट्रोवर्सी बयान दिए थे और उसके बाद फिर उन्होंने एक कंट्रोवर्सी बयान अपना मुसलमानों के नाम से दिया है। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं। आज फिर उनको मुसलमान याद आ गए। जब वो सत्ता में थे, बड़ी बड़ी पदों पर बैठे थे, तब वो सेकुलर थे, तो इस तरह का मुसलमानों का फिर इस्तेमाल करके उन्होंने जो बयान दिया है और जिस तरह से दोबारा से मुसलमानों को उकसाने का ये उन्होंने बयान दिया है, भड़काने का बयान दिया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश है।
16: The West Asia conflict is entering another dangerous phase of escalation. The Houthis now claim attacks on Saudi Arabia's capital, Riyadh. At the same time, Turkey has signaled its readiness to support Saudi Arabia. And with Hormuz already being a major flashpoint, concerns are growing over the wider impact on global shipping and energy supplies. Take a look at this report.
2: It's been 7 months since the West Asia war haunted the region and tightened its chokehold on oil supplies and refineries across the world. For the first time since the conflict began, the Houthis have targeted Saudi Arabia's capital, Riyadh. The Houthis claim to have targeted both King Khalid International Airport and Aramco facilities in Saudi Arabia. This has once again brought the Bab al-Mandeb Strait into sharp focus and raised concerns over the strategic choke point.
16: The Yemeni armed forces carried out, with the help of Almighty God, two significant military operations using a large number of ballistic and cruise missiles as well as drones. The first targeted sensitive targets in the Saudi enemy's capital, Riyadh. The second targeted the Aramco company in Yanbu. Both operations were crowned a success, resulting in massive fires at the targeted sites.
2: The attack has also raised questions over the trilateral Mecca defense pact, which involves Pakistan, Saudi Arabia and Turkey. Turkish foreign minister said on Saturday that Saudi Arabia may have military requirements due to the ongoing attacks by Yemen's Houthis and that Turkey was ready to provide assistance. But Houthi forces have threatened Pakistan and Turkey, warning them to stay out of the conflict or face consequences. Just days earlier, the Yemeni government claimed that Iran-aligned Houthi forces fired 6 ballistic missiles at the Red Sea port of Mocha on August 14th. The Houthis have established their presence across key areas and significant islands of Yemen. These locations sit along one of the world's most important maritime routes, connecting the Red Sea to the Gulf of Aden and ultimately the Indian Ocean. This makes the chokehold even more critical. The shortest maritime routes connecting West Asia to the rest of the world revolve around 3 key choke points. The Suez Canal, a narrow but vital passage for global shipping, the Bab al-Mandeb Strait, which the Houthis have threatened to disrupt, and the Strait of Hormuz, which Iran has said will remain closed until its conditions are met.
16: Today on the diplomatic front as well, our positions are completely clear, rational and non-negotiable. Our messages and conditions have been conveyed explicitly to the other side through intermediaries, and the enemies know full well that the path of deception and unilateral imposition is closed. And until these conditions are met, the inalienable rights of the Iranian nation are recognized and the Americans fulfill their commitments, there will be no possibility of a return to the previous negotiation framework or to reopen the Strait of Hormuz.
3: به شرایط پیشین مذاکره و باز شدن تنگه هرمز وجود نخواهد داشت.
2: And it's not just that. US President Donald Trump has cut short his visit to Camp David and rushed back to Washington as tensions continue to escalate. The US State Department and American embassies across West Asia have also issued security alerts. This is where the West Asia crisis meets the global economy. The question is no longer where the next strike will come from, but how far its consequences will spread. Bureau Report, India Today.
16: From the world of entertainment, this is a controversy that has indeed taken center stage. It's Katrina Kaif who's at the center of this trolling storm. After she recently was spotted in public, trolls started targeting her looks and body, even questioning her beauty. Amid the backlash, it's Salman Khan who appeared to indirectly come out in support of Katrina Kaif during a recent Bigg Boss Weekend Ka Vaar episode. Let's take a look.
4: Once known for her fitness, now being trolled for her post-pregnancy weight. For years, Katrina Kaif has been known for her fitness and her carefully maintained on-screen image. But after becoming a mother, the conversation around the actress has taken a very different turn. Instead of talking about her post-pregnancy glow or even her motherhood, social media users started body-shaming her. And now, two of her former co-stars, Salman Khan and Ali Zafar, have spoken out against the trolling. Katrina Kaif recently stepped out with husband Vicky Kaushal at an Ambani family's Ganesh Chaturthi celebrations. And a section of social media began commenting on a post-pregnancy weight gain, and the body shaming quickly became a talking point online. Katrina herself has not responded on the trolling so far, but someone who did speak up was her longtime friend Salman Khan. On the latest Bigg Boss 20 Weekend Ka Vaar, Salman spoke about the way celebrities, especially women, are targeted for their appearance. And while he did not take Katrina's name, his comments came right in the middle of the backlash she was facing. Salman questioned why a woman should be trolled simply because she gained weight after pregnancy. His point was simple, that pregnancy changes a woman's body and there should not be an expectation that she immediately return to her pre-pregnancy appearance. But Salman wasn't the only one to call out the trolling. Pakistani actor and singer Ali Zafar, who worked with Katrina in Meri Brother Ki Dulhan, also came out in her support. In a video addressing the issue, Ali Zafar said that society needs to look inward and question the standards it creates for women's bodies. Meanwhile, Katrina's fans have also pushed back against the trolling. Many users have reminded people that pregnancy and motherhood naturally bring physical changes and that a woman's body does not need to look the same before and after childbirth. Because after years of seeing actresses judged for being too thin, too heavy, too old, too young, the question is not really about Katrina's weight. It is about why a woman's body becomes public property the moment she steps into the spotlight. Bureau Report, India Today.
16: On that note, viewers, we're wrapping up the bulletin right here, but do stay tuned to India Today as we keep bringing you all the latest updates on the top stories through the evening. Thank you for watching.
6: You are watching India Today.

0: राहुल गांधी जो मिमिक्री कर रहे हैं, मैं तो ऐसा मानता हूं कि राहुल गांधी जी ने पार्टी को छोड़कर स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी को तो उन्होंने बेरोजगार कर दिया है, कम से कम स्टैंड अप कॉमेडियन का रोजगार उनको मिलेगा।
1: अंधभक्त तो ढूंढते हैं सब लोग, जहां भी है तो अंधभक्तों की बात होती है। ये देश अंधभक्तों का मेला बन गया है, मोदी जी ने उनको अंधभक्तों का मेला बनाया है। लेकिन कल छात्रों की गूंज में हमने जो चित्र देखा है इंदौर में, वो बहुत ही उत्साहवर्धक रहा। पूरे देश में ये छात्रों की गूंज हमें सुनाई दे रही है और देश में परिवर्तन करने के लिए ये गूंज बहुत मदद करेगी।

0: are watching India Today.
1: In the Delhi SIRO, the Election Commission has issued notices to several high-profile figures across the national capital. Those flagged for discrepancies include External Affairs Minister S. Jaishankar and his wife, former Army Chief Upendra Dwivedi, CBI Director Praveen Sood, former Supreme Court Justice Ranjana Desai, Congress leader Udit Raj and former Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia. Discrepancies leading to these notices include names being unmapped with previous electoral rolls, name mismatches and parental age inconsistencies. Now, the Delhi Chief Electoral Officer has clarified that issue of notice does not mean that their names will be deleted from the electoral rolls of the NCT of Delhi. The poll body has explained that notices are being issued to correct their data and that no name can be deleted without giving an opportunity of being heard and an appealable order. Earlier, former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and four members of his family served electoral roll verification notices under the unmapped with last SIR category. This came after Kejriwal had publicly questioned the SIR exercise over deletions from the draft electoral roll. Kejriwal steps up his attack on the SIR, calling it an attempt to reduce India's population. In fact, he went a step further, claiming the exercise could bring the population of the country down from the current 140 crores to 50 crores, while alleging 47 lakh names are missing from the draft voter roll. Meanwhile, Delhi Chief Minister Rekha Gupta's electoral details were flagged also for a discrepancy during the SIR process, prompting a notice. But after physical verification by the BLO, her documents and details were checked out and then validated.
2: यह SIR का नया प्रोविजन इलेक्शन कमीशन ने भारतीय जनता पार्टी की दबाव में किया है और अभी तक 12-13 करोड़ वोटर्स डिलीट कर दिए गए। ये तो लोकतंत्र को खत्म करने की एक बड़ी साजिश है और ये इस बात का बड़ा सबूत है कि जब एलके अडवाणी के पास नोटिस जाएगा देश के फॉरेन सेक्रेटरी के पास जाएगा तो इससे अंदाजा किया जा सकता है कि ये प्रोसेस जो है वो कितना गलत प्रोसेस है
3: एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है और वो इतना निष्पक्ष है उसमें उतनी पारदर्शिता है कि जो नोटिसेस दिए गए हैं उसमें बड़े बड़े लीडर्स के नाम है और चाहे वो कपिल सिब्बल हों चाहे हमारी रेखा गुप्ता जी हों चाहे लाल कृष्ण अडवाणी जी हों और चाहे अरविंद केजरीवाल जी हों उन सबको दिए गए हैं क्योंकि एक रूल ऑफ लॉ है उसके तहत एक कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत सबको बताना पड़ता है वेरीफाई करना पड़ता है नोटिसेस जाते हैं और आप सही डॉक्यूमेंट्स देते हैं और बात साफ तौर से नई तरह से अपडेट हो जाती है इलेक्टोरल लिस्ट में लेकिन उसमें भी राजनीति देखिए बजाय ये समझने के कि लाल कृष्ण अडवाणी जी को भी गया है भाई एस जयशंकर जी को भी गया है जो हमारे मंत्री एक्सटर्नल अफेयर्स के लेकिन आप अपनी बात करके अपना रोना अपने मातम शुरू कर दिया है
4: ये बीएलओ को फॉर्म दिया मेरे दस्तखत हैं यहां और बीएलओ के दस्तखत तो मैचिंग हो गया तो इसका मतलब मेरा मैच करता है तो फिर मैं नोटिस कैसे आया मैं ज्ञानेश कुमार जी से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने नोटिस कैसे दिया मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं 1992 में मैं राज्यसभा का मेंबर था इतना बड़ा घोटाला हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ आज तक नहीं हुआ
1: Rahul Gandhi's Chhatro Ki Goonj has now stepped into a new political arena. At the Indore session, Rahul Gandhi was seen on a stage with a comedian, where the two appeared to mock Prime Minister Modi's gesture towards an elderly woman when he asked someone to give her a chair. The BJP called it shameful and disgusting. The party posted a video of Prime Minister Modi with his mother and said Rahul Gandhi has now stooped to a new low. Here is a report on the same. Take a look.
5: और बताइए और बताइए थोड़ा
6: माँ को कुर्सी दो माँ माँ
7: An attempt to mock Prime Minister Modi by Congress has ended up creating another controversy, leaving many questioning the Congress's intent and criticizing the party. It all happened at Rahul Gandhi's Chhatro Ki Goonj event in Indore on Saturday. The Congress invited comedian Pulkit Mani to Rahul's event. The comedian performed a satirical mimicry of Prime Minister Modi and mocked an incident involving the Prime Minister and an old lady whom he had referred to as Ma.
5: Aur bataiye, aur bataiye thoda. Ma ko kursi do, Ma, Ma.
7: Just last month, in an attempt to mock Modi, the Congress raked up Italian Prime Minister Giorgia Meloni and made what the BJP called distasteful comments.
8: इनके इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया. अब अजीब चीजें घुस जाती हैं. But इनके माइंड में घुस गया कि foreign policy is this. अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी.
9: एक चीज पूछ सकता हूं?
8: हाँ.
9: मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था.
7: The BJP hammered the Congress over the controversy, accusing it of stooping lower and lower. The Congress defended its leader and the act.
10: राहुल गांधी जी, वो एक कार्यक्रम लेते हैं, छात्रों के बीच जाते हैं. नाम तो उन्होंने छात्रों की गूंज दिया है, लेकिन वो झूठ बोलते हैं, अपमान करते हैं, भारतीय संस्कृति का भी अपमान करते हैं.
11: मैं समझता हूँ ये तो प्रहलाद जोशी समझ नहीं पाते. भाषा का ज्ञान नहीं उनको, विषय का ज्ञान नहीं. इस तरह की बातें बेतुकी वो बोल जाते हैं. वो पहली बार नहीं बोल रहे, वो आदतन बेतुकी बातें बोलते हैं. माँ का कहाँ से जिक्र आ गया? मैं तो दो बार तीन बार देख चुका राहुल जी का, माँ का तो कहीं जिक्र ही नहीं आया था.
12: राहुल गांधी जी को सुनने के लिए कोई आने को तैयार नहीं है. 100 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं. तो आपने देखा कि नेहा सिंह राठौर को जो है उन्होंने बुला लिया गुजरात. और आज जो है, कल जब मैं देख रहा था तो स्टैंड अप कॉमेडियन जो है उसको लेके इंदौर में घूम रहे हैं.
13: राजनीति के अंदर जो है, जब आप शीर्ष पदों पर होते हैं तो आपको इस तरीके की चीजों को स्वाभाविक रूप में लेना पड़ता है. लोकतंत्रवादी नहीं है आप, लोकतंत्र के अंदर इन चीजों को आपको पार्ट ऑफ गेम समझना पड़ता है.
7: It is not the first time that the Congress, in an attempt to target Prime Minister Modi, has gone too far and ended up scoring an own goal. The grand old party seriously needs to consider whether such controversies can be avoided. With Piyush Mishra and Ravish Pal, Bureau Report, India Today.
1: Their scripted history shattered the blueprint and no other channel has them. We are going completely unfiltered with the new faces of the Delhi University Student Union, Student Politics, the winner and the game changer. India Today's Anjali Pandey with these twin campus exclusives, the campus king, Yash Dabbas, and the defiant rebel, Deepanshu Shokin.
14: काफी कांटे की टक्कर थी आपके बीच और एनएसयूआई के जो कैंडिडेट थे विजय मीना, उनके बीच. हर राउंड के बाद ऐसा लग रहा था कि कभी कोई आगे हो जा रहा था, कभी कोई आगे हो जा रहा था. काफी कम ऐसा होता है कि एंड के राउंड्स तक भी ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि कौन जीतने वाला है. तो आपको उस टाइम पे जब आप काउंटिंग बूथ पे प्रेजेंट थे, आपको उस टाइम पे कैसा लग रहा था जब हर राउंड के बाद रिजल्ट कभी इस तरफ जा रहा था, कभी उस तरफ जा रहा था?
15: मैम, मैं काफी रिलैक्स था. मुझे कहीं ना कहीं आत्मविश्वास था कि अभी एक आधे जो हमारे कैंपसेस है वो खुलने बाकी है, उनका रिजल्ट आना बाकी है, और उनका रिजल्ट आते ही मैं लीड मेंटेन कर लूंगा. और जैसे ही मुझे लगा कि हाँ उन कैंपसेस की वोटिंग खुली है, तो उसके बाद हमने एकदम से 2000 का मार्जिन क्लेम किया.
14: जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था यश, तो ये कहा जा रहा था कि यश देबास क्लियर विनर है, आज ही प्रेसिडेंट डिक्लेयर हो गया है। जब एनएसयूआई ने अपनी टिकट्स अनाउंस करी, उसके बाद सब कह रहे थे कि इस बार तो यश देबास ही जीतने वाला है। लेकिन कल जब काउंटिंग हुई तो हमने देखा कि कैसे काफी क्लोज कॉन्टेस्ट था, एनएसयूआई ने स्ट्रांग कमबैक किया। क्या आपको उम्मीद थी कि इतना क्लोज कॉन्टेस्ट होने वाला है, और क्या आपको लग रहा था कि मैं तो इजीली जीत जाऊंगा, क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी ये बात कह रही थी?
15: नहीं मैम, मुझे कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि कंपटीशन टक्कर का ही रहने वाला है। हमने उसी हिसाब से तैयारी भी की थी, और अपने कभी भी ओपोनेंट को हम हल्का तो समझना नहीं चाहिए, ना हमने समझा, इसीलिए हमने उसी तरीके की मेहनत की। और फिर कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पांस आया और हम 2100 के मार्जिन से प्रेसिडेंट पोस्ट पे जीत गए।
14: तो कौन सी ऐसी चीज है जो एबीवीपी ने एनएसयूआई से अलग की और जो कि एबीवीपी के लिए काम कर गई?
15: मैम, जो एबीवीपी की इकाई है, जो हर एक कॉलेज में हमारी इकाई है, जो पूरा साल वो स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, छात्र हित के लिए काम करते हैं, राष्ट्र हित के लिए काम करते हैं, जो पूरा साल वो लगातार बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी स्वार्थ के जो लगातार काम करते हैं, वही हमारी जीत का कारण रहा। एनएसयूआई अगर आप देखेंगे तो वो केवल साल के आपके दो साल के आपको दो महीनों में ही दिखेगी, अगस्त और सितंबर, क्योंकि इन समय डुसू, उसके अलावा वो पूरे साल में आपको कहीं नजर नहीं आएगी।
14: फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू यू, आपने हिस्ट्री स्क्रिप्ट की है इतने सारे तरीकों से, रिकॉर्ड मैंडेट मिला है आपको, मार्जिन इतना बड़ा रहा, सबसे पहला जो नाम एकदम पक्का हो गया था, जीत जिसकी पक्की हो गई थी सुबह ही, वो आप ही थे। दीपांशु, एक वो दिन था जिस दिन आपको टिकट मना की गई थी, जिस दिन आपको टिकट नहीं दी गई एनएसयूआई की तरफ से, आपकी वीडियोज वायरल हुई, आप काफी इमोशनल थे, उस दिन आपने डिसीजन लिया कि आप इंडिपेंडेंट लड़ेंगे इलेक्शन, और एक कल का दिन था जब कोई एक ऐसा कैंडिडेट था जिसकी जीत सबसे पहले पक्की हुई थी और सबसे ज्यादा पक्की जीत थी, वो आप ही थे। कैसी रही ये जर्नी?
16: जर्नी काफी अच्छी रही, बहुत से स्ट्रगल्स इसके बीच में आए, जैसे और आपने पूछा कि भाई टिकट कटने के बाद और यहाँ जीत तक का सफर कैसा रहा, तो बहुत ही प्यार और स्टूडेंट्स ने भरोसा मुझ पर जताया, और उस भरोसे पर मैं खरा उतरूंगा, क्योंकि मेरा इलेक्शन सिर्फ मैंने नहीं लड़ा, मेरा इलेक्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर एक छात्र ने लड़ा, और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ने प्रूव किया कि अगर वो गलत होता देखेंगे तो स्टूडेंट्स अपनी आवाज उठाना जानते हैं, और उन्होंने मुझे अपनी आवाज के रूप में चुना।
14: दीपांशु, मैं आपसे जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी कंट्रोवर्सी रही उस पर भी बात करना चाहूंगी, क्योंकि कई वीडियोस वायरल हुए एनएसयूआई प्रेसिडेंट के, कई सारी थ्योरीज जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे चल रही थी, जिसमें कि उनका ये कहना था कि आपकी तरफ से कुछ शर्तें रखी गई थी और उन शर्तों को वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से आपको टिकट नहीं दी गई। उनका ये भी कहना है कि वो आपको प्रेसिडेंट की टिकट दे रहे थे लेकिन आप राजी नहीं थे प्रेसिडेंट लड़ने के लिए, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे?
16: बहुत सी ऐसी बातें थी जो सामने आती है, और आप देख सकते हैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट कर रहा हूँ, दो और कैंडिडेट थे जो इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट कर रहे थे, तो मैं साफ साफ ये कहना चाहूंगा कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी, ना तो वहां पे मैनेजमेंट हो पाई चीजों को लेकर, और जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे जिनका जेनजी का जिन पे भरोसा था, जो खुद स्टूडेंट जिनको सपोर्ट कर रहे थे, जो चाह रहे थे कि भाई कॉमन स्टूडेंट जिनके सपोर्ट में थे, उनको मौका नहीं मिला। आप देख सकते हैं जिस तरीके का मैंडेट सामने आया है, तो ये साफ दर्शाता है कि इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से स्टूडेंट्स का जो भरोसा था वो कहीं ना कहीं टूटा। और मैं कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी बात करते हैं हमारे जेनजीज की और छात्रों की गूंज की, तो वो बहुत अच्छा कंसेप्ट है जो स्टूडेंट्स उसे कनेक्ट करते हैं, पर कहीं ना कहीं इंटरनल पॉलिटिक्स जो एनएसयूआई के अंदर हुई, जो एनएसयूआई की लीडरशिप की वजह से हुई, उसने साफ साफ जो नुकसान एनएसयूआई को हुआ वो उस वजह से हुआ।
17: Former Vice President Hamid Ansari's remarks on Hindu right-wing communalism have triggered a fresh political confrontation, with the BJP launching a sharp attack on both Ansari and the Congress. Speaking at the A.G. Noorani Memorial Lecture in New Delhi, Ansari cited a remark attributed to Jawaharlal Nehru saying the greater danger to India was Hindu right-wing communalism rather than communism. Ansari also warned of what he described as recent challenges to civic nationalism, arguing that religious distinctions could emerge between citizens. The BJP has hit back hard, accusing the Congress of spreading anti-Hindu propaganda, calling Ansari's remarks unfortunate and demanding an apology. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, meanwhile, launched a scathing attack on former Vice President Hamid Ansari, alleging his remarks disrespect India's Sanatan traditions. Meanwhile, senior Muslim cleric and Imam body chief Umair Ahmad Ilyasi has also hit back at Ansari, accusing him of provoking Muslims and alleging a larger conspiracy behind his remarks.

0: Gundevia, and I quote those words, "The danger to India, mark you, it is not communism. It is Hindu right-wing communalism."
1: कुछ लोगों की फितरत होती है कि वे अपने पद की मर्यादा को बनाए नहीं रख पाते हैं, उस मर्यादा के विपरीत अपना आचरण करना उनकी जीवन की फितरत बन चुकी होती है। श्रीमान हामिद अंसारी, जो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने 5 वर्ष के अपने कार्यकाल को देश के अंदर संपन्न किया, उन्होंने कल एक वक्तव्य दिया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य था, और हम जैसे लोगों को शोभा भी नहीं देता कि हम उसका खंडन मंडन करें, लेकिन उनके जो वक्तव्य थे वह सचमुच डरावने वक्तव्य हैं, भारत के लिए, भारतीयता के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारत की परंपरा के लिए। और ये वक्तव्य दुनिया में भारत की छवि को धूमिल करने के कुत्सित प्रयासों के उस एजेंडे का हिस्सा है जो एंटी इंडिया फोर्सेस के द्वारा निरंतर निरंतर उसका दुष्प्रचार किया जाता है। उनके द्वारा शुद्ध रूप से भारत की सनातन परंपरा को कोसने, भारत की हिंदू परंपरा को अपमानित करने के वक्तव्य दिए गए और उसको आतंकवाद से जोड़ने के कुत्सित प्रयास हुए। एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति से भारत का संविधान अपेक्षा करता है कि उस पद की गरिमा के अनुरूप वह हमेशा आचरण करे।
2: ये इस प्रकार के बयान जिनको देश में उपराष्ट्रपति की उचित आया, उनके द्वारा जब इस प्रकार के घटिया बयान दिए जाते हैं तो उसका एक ही जवाब है कि हिंदू समाज सदैव सबको अपनाने का काम करता है, सबको सम्मान देने का काम करता है और सबके साथ समरस होकर के काम करता है। इस प्रकार के बयानों से जरूर वैमनस्यता फैलती है और एक घृणा का भाव आता है, लेकिन इस प्रकार के बयान से लगातार कभी न कभी देश के उपराष्ट्रपति रहे श्री हामिद अंसारी जी बयान देते रहे हैं जो अनुचित है, उसे स्वीकार नहीं किया।
3: अगर हिंदू हमारे हिंदुस्तान में बहुसंख्यक नहीं होता तो मेरा हिंदुस्तान न तो सेकुलर होता और न पंथ निरपेक्ष होता। जिस वक्त बंटवारा हुआ इस देश का, उसमें जो है वो हिंदू बहुसंख्यक वाला हिंदुस्तान जो है वो पंथ निरपेक्ष और सेकुलर बना, मुस्लिम बहुसंख्यक वाला पाकिस्तान जो है वो इस्लामी राष्ट्र घोषित हुआ। इतना से भी अगर ABCD नहीं समझते और इस तरह के जो है वो छल छत्रप और इस तरह के जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट करने के जो कारीगर लोग हैं, वो मुझे लगता है कि आप इस तरह के कन्फ्यूजन क्रिएट करके, जो कम्युनल कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सफल नहीं होंगे।
4: आज देश तरक्की के रास्ते पर है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर है। पिछले 12 सालों में जितना मुसलमानों ने तरक्की की है नरेंद्र मोदी की हुकूमत में, उतनी तरक्की कहीं नहीं हुई है। कांग्रेस के राज में दंगे होते थे, हजारों मुसलमान मार दिए जाते थे, कत्ल हो जाता था। आज 12 साल से कोई दंगा नहीं है, फसाद नहीं है, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा है।
5: उन्होंने कहा कि यहां पर उग्र वाम पंथ की तुलना में दक्षिण पंथी हिंदू सांप्रदायिकता अधिक खतरनाक है। यदि हिंदू सांप्रदायिक होता, यदि हिंदू कट्टर होता तो हामिद अंसारी ये बात कहने का साहस नहीं कर सकते थे। इस तरह की बातें करने वाला या तो कोई अनजान होता है या बेईमान होता है। हामिद अंसारी अनजान नहीं हो सकते, वो इन सब तथ्यों को जानते। उनके ये वक्तव्य किसी बेईमानी से कम होंगे ऐसा लगता नहीं। वो किसी हिडन एजेंडा के अंतर्गत काम करते हैं। भारत की शांति, भारत का सौहार्द, ये शायद उनके एजेंडे को सूट नहीं करता। देश की जनता उनको पहचान चुकी है, उनको जान चुकी है, इनके किसी बहकावे में आने वाली नहीं है।
6: हामिद अंसारी साहब के पहले भी उन्होंने बहुत कंट्रोवर्सी बयान दिए थे और उसके बाद फिर उन्होंने एक कंट्रोवर्सी बयान अपना मुसलमानों के नाम से दिया है। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं। आज फिर उनको मुसलमान याद आ गए। जब वो सत्ता में थे, बड़ी बड़ी पदों पर बैठे थे, तब वो सेकुलर थे, तो इस तरह का मुसलमानों का फिर इस्तेमाल करके

0: are watching India Today.
1: In the Delhi SIR row, the Election Commission has issued notices to several high-profile figures across the national capital. Those flagged for discrepancies include External Affairs Minister S. Jaishankar and his wife, former Army Chief Upendra Dwivedi, CBI Director Praveen Sood, former Supreme Court Justice Ranjana Desai, Congress leader Udit Raj and former Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia. Discrepancies leading to these notices include names being unmapped with previous electoral rolls, name mismatches and parental age inconsistencies. Now, the Delhi Chief Electoral Officer has clarified that issue of notice does not mean that their names will be deleted from the electoral rolls of the NCT of Delhi. The poll body has explained that notices are being issued to correct their data and that no name can be deleted without giving an opportunity of being heard and an appealable order. Earlier, former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and four members of his family served electoral roll verification notices under the unmapped with last SIR category. This came after Kejriwal had publicly questioned the SIR exercise over deletions from the draft electoral roll. Kejriwal steps up his attack on the SIR, calling it an attempt to reduce India's population. In fact, he went a step further, claiming the exercise could bring the population of the country down from the current 140 crores to 50 crores, while alleging 47 lakh names are missing from the draft voter roll. Meanwhile, Delhi Chief Minister Rekha Gupta's electoral details were flagged also for a discrepancy during the SIR process, prompting a notice. But after physical verification by the BLO, her documents and details were checked out and then validated.
2: यह SIR का नया प्रोविजन इलेक्शन कमीशन ने भारतीय जनता पार्टी की दबाव में किया है और अभी तक 12-13 करोड़ वोटर्स डिलीट कर दिए गए। ये तो लोकतंत्र को खत्म करने की एक बड़ी साजिश है और ये इस बात का बड़ा सबूत है कि जब एलके अडवाणी के पास नोटिस जाएगा देश के फॉरेन सेक्रेटरी के पास जाएगा तो इससे अंदाजा किया जा सकता है कि ये प्रोसेस जो है वो कितना गलत प्रोसेस है
3: एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है और वो इतना निष्पक्ष है उसमें उतनी पारदर्शिता है कि जो नोटिसेस दिए गए हैं उसमें बड़े-बड़े लीडर्स के नाम हैं और चाहे वो कपिल सिब्बल हों चाहे हमारी रेखा गुप्ता जी हों चाहे लाल कृष्ण अडवाणी जी हों और चाहे अरविंद केजरीवाल जी हों उन सबको दिए गए हैं क्योंकि एक रूल ऑफ लॉ है उसके तहत एक कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत सबको बताना पड़ता है वेरीफाई करना पड़ता है नोटिसेस जाते हैं और आप सही डॉक्यूमेंट्स देते हैं और बात साफ तौर से नई तरह से अपडेट हो जाती है इलेक्टोरल लिस्ट में लेकिन उसमें भी राजनीति देखिए बजाय ये समझने के कि लाल कृष्ण अडवाणी जी को भी गया है भाई एस जयशंकर जी को भी गया है जो हमारे मंत्री एक्सटर्नल अफेयर्स के लेकिन आप अपनी बात करके अपना रोना आपने मातम शुरू कर दिया है
4: ये बीएलओ को फॉर्म दिया मेरे दस्तखत हैं यहां और बीएलओ के दस्तखत तो मैचिंग हो गया तो इसका मतलब मेरा मैच करता है तो फिर मैं नोटिस कैसे आया मैं ज्ञानेश कुमार जी से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने नोटिस कैसे दिया मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं 1992 और 2002 में मैं राज्यसभा का मेंबर था इतना बड़ा घोटाला हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ आज तक नहीं हुआ
1: राहुल गांधीज छात्रों की गूंज हैज नाउ स्टेप्ड इनटू अ न्यू पॉलिटिकल अरेना एट द इंदौर सेशन राहुल गांधी वाज सीन ऑन अ स्टेज विथ अ कॉमेडियन where the two appeared to mock Prime Minister Modi's gesture towards an elderly woman when he asked someone to give her a chair. The BJP called it shameful and disgusting. The party posted a video of Prime Minister Modi with his mother and said Rahul Gandhi has now stooped to a new low. Here is a report on the same. Take a look.
5: Aur bataiye. Ha? Aur bataiye thoda. Maa ko kursi do. Maa. Maa.
6: An attempt to mock Prime Minister Modi by Congress has ended up creating another controversy, leaving many questioning the Congress's intent and criticizing the party. It all happened at Rahul Gandhi's Chhatron Ki Goonj event in Indore on Saturday. The Congress invited comedian Pulkit Mani to Rahul's event. The comedian performed a satirical mimicry of Prime Minister Modi and mocked an incident involving the Prime Minister and an old lady whom he had referred to as Ma.
5: Aur bataiye, aur bataiye thoda. Ma ko kursi do, ma, ma.
6: Just last month, in an attempt to mock Modi, the Congress raked up Italian Prime Minister Giorgia Meloni and made what the BJP called distasteful comments.
5: इनके इनका पता नहीं कहाँ से इनके दिमाग में घुस गया. अब अजीब चीजें घुस जाती हैं. But इनके माइंड में घुस गया कि foreign policy is this. अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी.
7: एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ. मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था.
6: The BJP hammered the Congress over the controversy, accusing it of stooping lower and lower. The Congress defended its leader and the act.
8: राहुल गांधी जी वो एक कार्यक्रम लेते हैं, छात्रों के बीच जाते हैं. नाम तो उन्होंने छात्रों की गूंज दिया है, लेकिन वो झूठ बोलते हैं, अपमान करते हैं, भारतीय संस्कृति का भी अपमान करते हैं.
9: मैं समझता हूँ ये तो प्रहलाद जोशी समझ नहीं पाते. भाषा का ज्ञान नहीं उनको, विषय का ज्ञान नहीं. इस तरह की बातें बेतुकी वो बोल जाते हैं. वो पहली बार नहीं बोल रहे, वो आदतन बेतुकी बातें बोलते हैं. माँ का कहाँ से जिक्र आ गया? मैं तो दो बार तीन बार देख चुका राहुल जी का, माँ का तो कहीं जिक्र ही नहीं आया था.
10: राहुल गांधी जी को सुनने के लिए कोई आने को तैयार नहीं है. 100 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं. तो आपने देखा कि नेहा सिंह राठौर को जो है उन्होंने बुला लिया गुजरात. और आज जो है, कल जब मैं देख रहा था तो स्टैंड अप कॉमेडियन जो है उसको लेके इंदौर में घूम रहे हैं.
11: राजनीति के अंदर जो है, जब आप शीर्ष पदों पर होते हैं तो आपको इस तरीके की चीजों को स्वाभाविक रूप में लेना पड़ता है. लोकतंत्रवादी नहीं है आप. लोकतंत्र के अंदर इन चीजों को आपको पार्ट ऑफ गेम समझना पड़ता है.
6: It is not the first time that the Congress, in an attempt to target Prime Minister Modi, has gone too far and ended up scoring an own goal. The Grand Old Party seriously needs to consider whether such controversies can be avoided. With Piyush Mishra and Ravish Pal, Bureau Report, India Today.
1: The scripted history shattered the blueprint and no other channel has them. We are going completely unfiltered with the new faces of the Delhi University Student Union, Students Politics. The winner and the game changer, India Today's Anjali Pandey, with these twin campus exclusives, the campus king, Yash Dabbas, and the defiant rebel, Deepanshu Shokin.
12: काफी कांटे की टक्कर थी आपके बीच और एनएसयूआई के जो कैंडिडेट थे विजय मीना, उनके बीच. हर राउंड के बाद ऐसा लग रहा था कि कभी कोई आगे हो जा रहा था, कभी कोई आगे हो जा रहा था. काफी कम ऐसा होता है कि एंड के राउंड्स तक भी ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि कौन जीतने वाला है. तो आपको उस टाइम पे जब आप काउंटिंग बूथ पे प्रेजेंट थे, आपको उस टाइम पे कैसा लग रहा था जब हर राउंड के बाद रिजल्ट कभी इस तरफ जा रहा था, कभी उस तरफ जा रहा था?
13: मैम, मैं काफी रिलैक्स था. मुझे कहीं ना कहीं आत्मविश्वास था कि अभी एक आधे जो हमारे कैंपसेस है वो खुलने बाकी है, उनका रिजल्ट आना बाकी है, और उनका रिजल्ट आते ही मैं लीड मेंटेन कर लूंगा. और जैसे ही मुझे लगा कि हाँ उन कैंपसेस की वोटिंग खुली है, तो उसके बाद हमने एकदम से 2000 का मार्जिन क्लेम किया.
12: जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था यश, तो ये कहा जा रहा था कि यश दबाज क्लियर विनर है, आज ही प्रेसिडेंट डिक्लेयर हो गया है। जब एनएसयूआई ने अपनी टिकट्स अनाउंस करी, उसके बाद सब कह रहे थे कि इस बार तो यश दबाज ही जीतने वाला है। लेकिन कल जब काउंटिंग हुई तो हमने देखा कि कैसे काफी क्लोज कॉन्टेस्ट था, एनएसयूआई ने स्ट्रांग कमबैक किया। क्या आपको उम्मीद थी कि इतना क्लोज कॉन्टेस्ट होने वाला है, और क्या आपको लग रहा था कि मैं तो इजिली जीत जाऊंगा, क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी ये बात कह रही थी?
13: नहीं मैम, मुझे कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि कंपटीशन टक्कर का ही रहने वाला है। हमने उसी हिसाब से तैयारी भी की थी, और अपने कभी भी ओपोनेंट को हम हल्का तो समझना नहीं चाहिए, ना हमने समझा, इसीलिए हमने उसी तरीके की मेहनत की। और फिर कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पांस आया और हम 2100 के मार्जिन से प्रेसिडेंट पोस्ट पे जीत गए।
12: तो कौन सी ऐसी चीज है जो एबीवीपी ने एनएसयूआई से अलग की और जो कि एबीवीपी के लिए काम कर गई?
13: मैम, जो एबीवीपी की इकाई है, जो हर एक कॉलेज में हमारी इकाई है, जो पूरा साल वो स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, छात्र हित के लिए काम करते हैं, राष्ट्र हित के लिए काम करते हैं, जो पूरा साल वो लगातार बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी स्वार्थ के जो लगातार काम करते हैं, वही हमारी जीत का कारण रहा। एनएसयूआई अगर आप देखेंगे तो वो केवल साल के आपके दो साल के आपको दो महीनों में ही दिखेगी, अगस्त और सितंबर, क्योंकि इन समय डुसू, उसके अलावा वो पूरे साल में आपको कहीं नजर नहीं आएगी।
12: फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू यू, आपने हिस्ट्री स्क्रिप्ट की है इतने सारे तरीकों से, रिकॉर्ड मैंडेट मिला है आपको, मार्जिन इतना बड़ा रहा, सबसे पहला जो नाम एकदम पक्का हो गया था, जीत जिसकी पक्की हो गई थी सुबह ही, वो आप ही थे। दीपांशु, एक वो दिन था जिस दिन आपको टिकट मना की गई थी, जिस दिन आपको टिकट नहीं दी गई एनएसयूआई की तरफ से, आपकी वीडियोज वायरल हुई, आप काफी इमोशनल थे, उस दिन आपने डिसीजन लिया कि आप इंडिपेंडेंट लड़ेंगे इलेक्शन, और एक कल का दिन था जब कोई एक ऐसा कैंडिडेट था जिसकी जीत सबसे पहले पक्की हुई थी और सबसे ज्यादा पक्की जीत थी, वो आप ही थे। कैसी रही ये जर्नी?
14: जर्नी काफी अच्छी रही, बहुत से स्ट्रगल्स इसके बीच में आए, जैसे और आपने पूछा कि भाई टिकट कटने के बाद और यहाँ जीत तक का सफर कैसा रहा, तो बहुत ही प्यार और स्टूडेंट्स ने भरोसा मुझ पर जताया और उस भरोसे पर मैं खरा उतरूंगा, क्योंकि मेरा इलेक्शन सिर्फ मैंने नहीं लड़ा, मेरा इलेक्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर एक छात्र ने लड़ा, और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ने प्रूव किया कि अगर वो गलत होता देखेंगे तो स्टूडेंट्स अपनी आवाज उठाना जानते हैं, और उन्होंने मुझे अपनी आवाज के रूप में चुना।
12: दीपांशु, मैं आपसे जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी कंट्रोवर्सी रही उस पर भी बात करना चाहूंगी, क्योंकि कई वीडियोस वायरल हुए एनएसयूआई प्रेसिडेंट के, कई सारी थ्योरीज जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे चल रही थी, जिसमें कि उनका ये कहना था कि आपकी तरफ से कुछ शर्तें रखी गई थी और उन शर्तों को वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से आपको टिकट नहीं दी गई। उनका ये भी कहना है कि वो आपको प्रेसिडेंट की टिकट दे रहे थे लेकिन आप राजी नहीं थे प्रेसिडेंट लड़ने के लिए, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे?
14: बहुत सी ऐसी बातें थी जो सामने आती है, और आप देख सकते हैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट कर रहा हूँ, दो और कैंडिडेट थे जो इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट कर रहे थे
12: जी।
14: तो मैं साफ साफ ये कहना चाहूंगा कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी, ना तो वहां पे मैनेजमेंट हो पाई चीजों को लेकर, और जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे जिनका जेनजी का जिनपे भरोसा था, जो खुद स्टूडेंट जिनको सपोर्ट कर रहे थे, जो चाह रहे थे कि भाई कॉमन स्टूडेंट जिनके सपोर्ट में थे, उनको मौका नहीं मिला। आप देख सकते हैं जिस तरीके का मैंडेट सामने आया है, तो ये साफ दर्शाता है कि इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से स्टूडेंट्स का जो भरोसा था वो कहीं ना कहीं टूटा। और मैं कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी बात करते हैं हमारे जेनजीज की और छात्रों की गूंज की, तो वो बहुत अच्छा कंसेप्ट है जो स्टूडेंट्स उसे कनेक्ट करते हैं, पर कहीं ना कहीं इंटरनल पॉलिटिक्स जो एनएसयूआई के अंदर हुई, जो एनएसयूआई की लीडरशिप की वजह से हुई, उसने साफ साफ जो नुकसान एनएसयूआई को हुआ वो उस वजह से हुआ।
1: Former Vice President Hamid Ansari's remarks on Hindu right-wing communalism have triggered a fresh political confrontation, with the BJP launching a sharp attack on both Ansari and the Congress. Speaking at the A.G. Noorani Memorial Lecture in New Delhi, Ansari cited a remark attributed to Jawaharlal Nehru, saying the greater danger to India was Hindu right-wing communalism rather than communism. Ansari also warned of what he described as recent challenges to civic nationalism, arguing that religious distinctions could emerge between citizens. The BJP has hit back hard, accusing the Congress of spreading anti-Hindu propaganda, calling Ansari's remarks unfortunate and demanding an apology. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, meanwhile, launched a scathing attack on former Vice President Hamid Ansari, alleging his remarks disrespect India's Sanatan traditions. Meanwhile, senior Muslim cleric and Imam Body Chief Umair Ahmed Ilyasi has also hit back at Ansari, accusing him of provoking Muslims and alleging a larger conspiracy behind his remarks.
15: Jawaharlal Nehru's observation in an officers' meeting of the Ministry of External Affairs and recorded for posterity by Foreign Secretary Gundevia, and I quote those words, "The danger to India, mark you, it is not communism, it is Hindu right-wing communalism."
16: कुछ लोगों की फितरत होती है कि वे अपने पद की मर्यादा को बनाए नहीं रख पाते हैं, उस मर्यादा के विपरीत अपना आचरण करना उनकी जीवन की फितरत बन चुकी होती है। श्रीमान हामिद अंसारी जो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने 5 वर्ष के अपने कार्यकाल को देश के अंदर संपन्न किया, उन्होंने कल एक वक्तव्य दिया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य था, और हम जैसे लोगों को शोभा भी नहीं देता कि हम उसका खंडन मंडन करें, लेकिन उनके जो वक्तव्य थे वह सचमुच डरावने वक्तव्य हैं, भारत के लिए, भारतीयता के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारत की परंपरा के लिए, और ये वक्तव्य दुनिया में भारत की छवि को धूमिल करने के कुत्सित प्रयासों के उस एजेंडे का हिस्सा है जो एंटी इंडिया फोर्सेस के द्वारा निरंतर निरंतर उसका दुष्प्रचार किया जाता है। उनके द्वारा शुद्ध रूप से भारत की सनातन परंपरा को कोसने, भारत की हिंदू परंपरा को अपमानित करने के वक्तव्य दिए गए और उसको आतंकवाद से जोड़ने के कुत्सित प्रयास हुए। एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति से भारत का संविधान अपेक्षा करता है कि उस पद की गरिमा के अनुरूप वह हमेशा आचरण करे।
17: ये इस प्रकार के बयान जिनको देश में उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बुलाया, उनके द्वारा जब इस प्रकार के घटिया बयान दिए जाते हैं तो उसका एक ही जवाब है कि हिंदू समाज सदैव सबको अपनाने का काम करता है, सबको सम्मान देने का काम करता है और सबके साथ समरस होकर के काम करता है। इस प्रकार के बयानों से जरूर वैमनस्यता फैलती है और एक घृणा का भाव आता है, लेकिन इस प्रकार के बयान से लगातार कभी न कभी देश के उपराष्ट्रपति रहे श्री हामिद अंसारी जी बयान देते रहे हैं जो अनुचित है, उसे स्वीकार नहीं किया।
18: अगर हिंदू हमारे हिंदुस्तान में बहुसंख्यक नहीं होता तो मेरा हिंदुस्तान न तो सेकुलर होता और न पंथनिरपेक्ष होता। जिस वक्त बंटवारा हुआ इस देश का, उसमें जो है वो हिंदू बहुसंख्यक वाला हिंदुस्तान जो है वो पंथनिरपेक्ष और सेकुलर बना, मुस्लिम बहुसंख्यक वाला पाकिस्तान जो है वो इस्लामी राष्ट्र घोषित हुआ। इतना से भी अगर ABCD नहीं समझते और इस तरह के जो है वो छल छत्रप और इस तरह के जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट करने के जो कारीगर लोग हैं, वो मुझे लगता है कि आप इस तरह के कन्फ्यूजन क्रिएट करके, जो कम्युनल कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सफल नहीं होंगे।
19: आज देश तरक्की के रास्ते पर है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर है। पिछले 12 सालों में जितना मुसलमानों ने तरक्की की है नरेंद्र मोदी की हुकूमत में, उतनी तरक्की कहीं नहीं हुई है। कांग्रेस के राज में दंगे होते थे, हजारों मुसलमान मार दिए जाते थे, कत्ल हो जाता था। आज 12 साल से कोई दंगा नहीं है, फसाद नहीं है, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा है।
20: उन्होंने कहा कि यहां पर उग्र वाम पंथ की तुलना में दक्षिण पंथी हिंदू सांप्रदायिकता अधिक खतरनाक है। यदि हिंदू सांप्रदायिक होता, यदि हिंदू कट्टर होता तो हामिद अंसारी ये बात कहने का साहस नहीं कर सकते थे। इस तरह की बातें करने वाला या तो कोई अनजान होता है या बेईमान होता है। हामिद अंसारी अनजान नहीं हो सकते, वो इन सब तथ्यों को जानते। उनके ये वक्तव्य किसी बेईमानी से कम होंगे ऐसा लगता नहीं, वो किसी हिडन एजेंडा के अंतर्गत काम करते हैं। भारत की शांति, भारत का सौहार्द, ये शायद उनके एजेंडे को सूट नहीं करता। देश की जनता उनको पहचान चुकी है, उनको जान चुकी है, इनके किसी बहकावे में आने वाली नहीं है।
0: हामिद अंसारी साहब के पहले भी उन्होंने बहुत कंट्रोवर्सी बयान दिए थे और उसके बाद फिर उन्होंने एक कंट्रोवर्सी बयान अपना मुसलमानों के नाम से दिया है। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं। आज फिर उनको मुसलमान याद आ गए। जब वो सत्ता में थे, बड़ी बड़ी पदों पर बैठे थे, तब वो सेकुलर थे, तो इस तरह का मुसलमानों का फिर इस्तेमाल करके उन्होंने जो बयान दिया है और जिस तरह से दोबारा से मुसलमानों को उकसाने का ये उन्होंने बयान दिया है, भड़काने का बयान दिया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश है।
1: The West Asia conflict is entering another dangerous phase of escalation. The Houthis now claim attacks on Saudi Arabia's capital, Riyadh. At the same time, Turkey has signaled its readiness to support Saudi Arabia. And with Hormuz already being a major flashpoint, concerns are growing over the wider impact on global shipping and energy supplies. Take a look at this report.
21: It's been 7 months since the West Asia war haunted the region and tightened its chokehold on oil supplies and refineries across the world. For the first time since the conflict began, the Houthis have targeted Saudi Arabia's capital, Riyadh. The Houthis claim to have targeted both King Khalid International Airport and Aramco facilities in Saudi Arabia. This has once again brought the Bab al-Mandeb Strait into sharp focus and raised concerns over the strategic choke point.
1: The Yemeni armed forces carried out, with the help of Almighty God, two significant military operations using a large number of ballistic and cruise missiles as well as drones. The first targeted sensitive targets in the Saudi enemy's capital, Riyadh. The second targeted the Aramco company in Yanbu. Both operations were crowned a success, resulting in massive fires at the targeted sites.
21: The attack has also raised questions over the trilateral Mecca defense pact, which involves Pakistan, Saudi Arabia and Turkey. Turkish foreign minister said on Saturday that Saudi Arabia may have military requirements due to the ongoing attacks by Yemen's Houthis and that Turkey was ready to provide assistance. But Houthi forces have threatened Pakistan and Turkey, warning them to stay out of the conflict or face consequences. Just days earlier, the Yemeni government claimed that Iran-aligned Houthi forces fired 6 ballistic missiles at the Red Sea port of Mocha on August 14th. The Houthis have established their presence across key areas and significant islands of Yemen. These locations sit along one of the world's most important maritime routes, connecting the Red Sea to the Gulf of Aden and ultimately the Indian Ocean. This makes the chokehold even more critical. The shortest maritime routes connecting West Asia to the rest of the world revolve around 3 key choke points. The Suez Canal, a narrow but vital passage for global shipping, the Bab al-Mandeb Strait, which the Houthis have threatened to disrupt, and the Strait of Hormuz, which Iran has said will remain closed until its conditions are met.
1: Today on the diplomatic front as well, our positions are completely clear, rational and non-negotiable. Our messages and conditions have been conveyed explicitly to the other side through intermediaries, and the enemies know full well that the path of deception and unilateral imposition is closed. And until these conditions are met, the inalienable rights of the Iranian nation are recognized and the Americans fulfill their commitments, there will be no possibility of a return to the previous negotiation framework or to reopen the Strait of Hormuz.
22: به شرایط پیشین مذاکره و باز شدن تنگه هرمز وجود نخواهد داشت.
21: And it's not just that. US President Donald Trump has cut short his visit to Camp David and rushed back to Washington as tensions continue to escalate. The US State Department and American embassies across West Asia have also issued security alerts. This is where the West Asia crisis meets the global economy. The question is no longer where the next strike will come from, but how far its consequences will spread. Bureau Report, India Today.
1: From the world of entertainment, this is a controversy that has indeed taken center stage. It's Katrina Kaif who's at the center of this trolling storm. After she recently was spotted in public, trolls started targeting her looks and body, even questioning her beauty. Amid the backlash, it's Salman Khan who appeared to indirectly come out in support of Katrina Kaif during a recent Bigg Boss Weekend Ka Vaar episode. Let's take a look.
6: Once known for her fitness, now being trolled for her post-pregnancy weight. For years, Katrina Kaif has been known for her fitness and her carefully maintained on-screen image. But after becoming a mother, the conversation around the actress has taken a very different turn. Instead of talking about her post-pregnancy glow or even her motherhood, social media users started body-shaming her. And now, two of her former co-stars, Salman Khan and Ali Zafar, have spoken out against the trolling. Katrina Kaif recently stepped out with husband Vicky Kaushal at an Ambani family's Ganesh Chaturthi celebrations. And a section of social media began commenting on a post-pregnancy weight gain. And the body shaming quickly became a talking point online. Katrina herself has not responded on the trolling so far. But someone who did speak up was her longtime friend, Salman Khan. On the latest Bigg Boss 20 Weekend Ka Vaar, Salman spoke about the way celebrities, especially women, are targeted for their appearance. And while he did not take Katrina's name, his comments came right in the middle of the backlash she was facing. Salman questioned why a woman should be trolled simply because she gained weight after pregnancy. His point was simple, that pregnancy changes a woman's body and there should not be an expectation that she immediately return to her pre-pregnancy appearance. But Salman wasn't the only one to call out the trolling. Pakistani actor and singer Ali Zafar, who worked with Katrina in Meri Brother Ki Dulhan, also came out in a support. In a video addressing the issue, Ali Zafar said that society needs to look inward and question the standards it creates for women's bodies. Meanwhile, Katrina's fans have also pushed back against the trolling. Many users have reminded people that pregnancy and motherhood naturally bring physical changes and that a woman's body does not need to look the same before and after childbirth. Because after years of seeing actresses judged for being too thin, too heavy, too old, too young, the question is not really about Katrina's weight. It is about why a woman's body becomes public property the moment she steps into the spotlight. Bureau Report, India Today.
1: On that note, viewers, we're wrapping up the bulletin right here, but do stay tuned to India Today as we keep bringing you all the latest updates on the top stories through the evening. Thank you for watching.
2: You are watching India Today.

0: are watching India Today.
1: In the Delhi SIR row, the Election Commission has issued notices to several high-profile figures across the national capital. Those flagged for discrepancies include External Affairs Minister S. Jaishankar and his wife, former Army Chief Upendra Dwivedi, CBI Director Praveen Sood, former Supreme Court Justice Ranjana Desai, Congress leader Udit Raj and former Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia. Discrepancies leading to these notices include names being unmapped with previous electoral rolls, name mismatches and parental age inconsistencies. Now, the Delhi Chief Electoral Officer has clarified that issue of notice does not mean that their names will be deleted from the electoral rolls of the NCT of Delhi. The poll body has explained that notices are being issued to correct their data and that no name can be deleted without giving an opportunity of being heard and an appealable order. Earlier, former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and four members of his family served electoral roll verification notices under the unmapped with last SIR category. This came after Kejriwal had publicly questioned the SIR exercise over deletions from the draft electoral roll. Kejriwal steps up his attack on the SIR, calling it an attempt to reduce India's population. In fact, he went a step further, claiming the exercise could bring the population of the country down from the current 140 crores to 50 crores, while alleging 47 lakh names are missing from the draft voter roll. Meanwhile, Delhi Chief Minister Rekha Gupta's electoral details were flagged also for a discrepancy during the SIR process, prompting a notice. But after physical verification by the BLO, her documents and details were checked out and then validated.
2: यह SIR का नया प्रोविजन इलेक्शन कमीशन ने भारतीय जनता पार्टी की दबाव में किया है और अभी तक 12-13 करोड़ वोटर्स डिलीट कर दिए गए। ये तो लोकतंत्र को खत्म करने की एक बड़ी साजिश है और ये इस बात का बड़ा सबूत है कि जब एलके अडवाणी के पास नोटिस जाएगा देश के फॉरेन सेक्रेटरी के पास जाएगा तो इससे अंदाजा किया जा सकता है कि ये प्रोसेस जो है वो कितना गलत प्रोसेस है
3: एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है और वो इतना निष्पक्ष है उसमें उतनी पारदर्शिता है कि जो नोटिसेस दिए गए हैं उसमें बड़े बड़े लीडर्स के नाम है और चाहे वो कपिल सिब्बल हों चाहे हमारी रेखा गुप्ता जी हों चाहे लाल कृष्ण अडवाणी जी हों और चाहे अरविंद केजरीवाल जी हों उन सबको दिए गए हैं क्योंकि एक रूल ऑफ लॉ है उसके तहत एक कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत सबको बताना पड़ता है वेरीफाई करना पड़ता है नोटिसेस जाते हैं और आप सही डॉक्यूमेंट्स देते हैं और बात साफ तौर से नई तरह से अपडेट हो जाती है इलेक्टोरल लिस्ट में लेकिन उसमें भी राजनीति देखिए बजाय ये समझने के कि लाल कृष्ण अडवाणी जी को भी गया है भाई एस जयशंकर जी को भी गया है जो हमारे मंत्री एक्सटर्नल अफेयर्स के लेकिन आप अपनी बात करके अपना रोना आपने मातम शुरू कर दिया है
4: ये बीएलओ को फॉर्म दिया मेरे दस्तखत हैं यहां और बीएलओ के दस्तखत तो मैचिंग हो गया तो इसका मतलब मेरा मैच करता है तो फिर मैं नोटिस कैसे आया मैं ज्ञानेश कुमार जी से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने नोटिस कैसे दिया मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं 1992 और 2002 में मैं राज्यसभा का मेंबर था इतना बड़ा घोटाला हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ आज तक नहीं हुआ
1: राहुल गांधीज छात्रों की गूंज हैज नाउ स्टेप्ड इनटू अ न्यू पॉलिटिकल अरेना एट द इंदौर सेशन राहुल गांधी वाज सीन ऑन अ स्टेज विथ अ कॉमेडियन where the two appeared to mock Prime Minister Modi's gesture towards an elderly woman when he asked someone to give her a chair. The BJP called it shameful and disgusting. The party posted a video of Prime Minister Modi with his mother and said Rahul Gandhi has now stooped to a new low. Here is a report on the same. Take a look.
5: Aur bataiye. Ha? Aur bataiye thoda. Maa ko kursi do. Maa. Maa.
6: An attempt to mock Prime Minister Modi by Congress has ended up creating another controversy, leaving many questioning the Congress's intent and criticizing the party. It all happened at Rahul Gandhi's Chhatron Ki Goonj event in Indore on Saturday. The Congress invited comedian Pulkit Mani to Rahul's event. The comedian performed a satirical mimicry of Prime Minister Modi and mocked an incident involving the Prime Minister and an old lady whom he had referred to as Ma.
5: Aur bataiye, aur bataiye thoda. Ma ko kursi do. Ma, ma.
6: Just last month, in an attempt to mock Modi, the Congress raked up Italian Prime Minister Giorgia Meloni and made what the BJP called distasteful comments.
7: इनके इनका पता नहीं कहाँ से इनके दिमाग में घुस गया. अब अजीब चीजें घुस जाती हैं. But इनके माइंड में घुस गया कि foreign policy is this. अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी.
8: एक चीज पूछ सकता हूं?
7: हाँ.
8: मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था.
6: The BJP hammered the Congress over the controversy, accusing it of stooping lower and lower. The Congress defended its leader and the act.
9: राहुल गांधी जी, वो एक कार्यक्रम लेते हैं, छात्रों के बीच जाते हैं. नाम तो उन्होंने छात्रों की गूंज दिया है, लेकिन वो झूठ बोलते हैं, अपमान करते हैं, भारतीय संस्कृति का भी अपमान करते हैं.
10: मैं समझता हूँ ये तो प्रहलाद जोशी समझ नहीं पाते. भाषा का ज्ञान नहीं उनको, विषय का ज्ञान नहीं. इस तरह की बातें बेतुकी वो बोल जाते हैं. वो पहली बार नहीं बोल रहे, वो आदतन बेतुकी बातें बोलते हैं. माँ का कहाँ से जिक्र आ गया? मैं तो दो बार तीन बार देख चुका राहुल जी का, माँ का तो कहीं जिक्र ही नहीं आया था.
11: राहुल गांधी जी को सुनने के लिए कोई आने को तैयार नहीं है. 100 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं. तो आपने देखा कि नेहा सिंह राठौर को जो है उन्होंने बुला लिया गुजरात. और आज जो है, कल जब मैं देख रहा था तो स्टैंड अप कॉमेडियन जो है उसको लेके इंदौर में घूम रहे हैं.
12: राजनीति के अंदर जो है, जब आप शीर्ष पदों पर होते हैं तो आपको इस तरीके की चीजों को स्वाभाविक रूप में लेना पड़ता है. लोकतंत्रवादी नहीं है आप. लोकतंत्र के अंदर इन चीजों को आपको पार्ट ऑफ गेम समझना पड़ता है.
6: It is not the first time that the Congress, in an attempt to target Prime Minister Modi, has gone too far and ended up scoring an own goal. The Grand Old Party seriously needs to consider whether such controversies can be avoided. With Piyush Mishra and Ravish Pal, Bureau Report, India Today.
1: The scripted history shattered the blueprint and no other channel has them. We are going completely unfiltered with the new faces of the Delhi University Student Union, Students Politics. The winner and the game changer, India Today's Anjali Pandey, with these twin campus exclusives, the campus king, Yash Dabbas, and the defiant rebel, Deepanshu Shokin.
13: काफी काटे की टक्कर थी आपके बीच और एनएसयूआई के जो कैंडिडेट थे विजय मीना, उनके बीच. हर राउंड के बाद ऐसा लग रहा था कि कभी कोई आगे हो जा रहा था, कभी कोई आगे हो जा रहा था. काफी कम ऐसा होता है कि एंड के राउंड्स तक भी ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि कौन जीतने वाला है. तो आपको उस टाइम पे, जब आप काउंटिंग बूथ पे प्रेजेंट थे, आपको उस टाइम पे कैसा लग रहा था जब हर राउंड के बाद रिजल्ट कभी इस तरफ जा रहा था, कभी उस तरफ जा रहा था?
14: मैम, मैं काफी रिलैक्स था. मुझे कहीं ना कहीं आत्मविश्वास था कि अभी एक आधे जो हमारे कैंपसेस है वो खुलने बाकी है, उनका रिजल्ट आना बाकी है, और उनका रिजल्ट आते ही मैं लीड मेंटेन कर लूंगा. और जैसे ही मुझे लगा कि हाँ, उन कैंपसेस की वोटिंग खुली है, तो उसके बाद हमने एकदम से 2000 का मार्जिन क्लेम किया.
13: जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था यश, तो ये कहा जा रहा था कि यश दबाज क्लियर विनर है, आज ही प्रेसिडेंट डिक्लेयर हो गया है। जब एनएसयूआई ने अपनी टिकट्स अनाउंस करी, उसके बाद सब कह रहे थे कि इस बार तो यश दबाज ही जीतने वाला है। लेकिन कल जब काउंटिंग हुई तो हमने देखा कि कैसे काफी क्लोज कॉन्टेस्ट था, एनएसयूआई ने स्ट्रांग कमबैक किया। क्या आपको उम्मीद थी कि इतना क्लोज कॉन्टेस्ट होने वाला है, और क्या आपको लग रहा था कि मैं तो इजिली जीत जाऊंगा, क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी ये बात कह रही थी?
14: नहीं मैम, मुझे कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि कंपटीशन टक्कर का ही रहने वाला है। हमने उसी हिसाब से तैयारी भी की थी, और अपने कभी भी ओपोनेंट को हम हल्का तो समझना नहीं चाहिए, ना हमने समझा, इसीलिए हमने उसी तरीके की मेहनत की। और फिर कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पांस आया और हम 2100 के मार्जिन से प्रेसिडेंट पोस्ट पे जीत गए।
13: तो कौन सी ऐसी चीज है जो एबीवीपी ने एनएसयूआई से अलग की और जो कि एबीवीपी के लिए काम कर गई?
14: मैम, जो एबीवीपी की इकाई है, जो हर एक कॉलेज में हमारी इकाई है, जो पूरा साल वो स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, छात्र हित के लिए काम करते हैं, राष्ट्र हित के लिए काम करते हैं, जो पूरा साल वो लगातार बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी स्वार्थ के जो लगातार काम करते हैं, वही हमारी जीत का कारण रहा। एनएसयूआई अगर आप देखेंगे तो वो केवल साल के आपके दो साल के आपको दो महीनों में ही दिखेगी, अगस्त और सितंबर, क्योंकि इन समय डुसू, उसके अलावा वो पूरे साल में आपको कहीं नजर नहीं आएगी।
13: फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू यू, आपने हिस्ट्री स्क्रिप्ट की है इतने सारे तरीकों से, रिकॉर्ड मैंडेट मिला है आपको, मार्जिन इतना बड़ा रहा, सबसे पहला जो नाम एकदम पक्का हो गया था, जीत जिसकी पक्की हो गई थी सुबह ही, वो आप ही थे। दीपांशु, एक वो दिन था जिस दिन आपको टिकट मना की गई थी, जिस दिन आपको टिकट नहीं दी गई एनएसयूआई की तरफ से, आपकी वीडियोज वायरल हुई, आप काफी इमोशनल थे, उस दिन आपने डिसीजन लिया कि आप इंडिपेंडेंट लड़ेंगे इलेक्शन, और एक कल का दिन था जब कोई एक ऐसा कैंडिडेट था जिसकी जीत सबसे पहले पक्की हुई थी और सबसे ज्यादा पक्की जीत थी, वो आप ही थे। कैसी रही ये जर्नी?
15: जर्नी काफी अच्छी रही, बहुत से स्ट्रगल्स इसके बीच में आए, जैसे और आपने पूछा कि भाई टिकट कटने के बाद और यहाँ जीत तक का सफर कैसा रहा, तो बहुत ही प्यार और स्टूडेंट्स ने भरोसा मुझ पर जताया और उस भरोसे पर मैं खरा उतरूंगा, क्योंकि मेरा इलेक्शन सिर्फ मैंने नहीं लड़ा, मेरा इलेक्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर एक छात्र ने लड़ा, और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ने प्रूव किया कि अगर वो गलत होता देखेंगे तो स्टूडेंट्स अपनी आवाज उठाना जानते हैं, और उन्होंने मुझे अपनी आवाज के रूप में चुना।
13: दीपांशु, मैं आपसे जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी कंट्रोवर्सी रही उस पर भी बात करना चाहूंगी, क्योंकि कई वीडियोस वायरल हुए एनएसयूआई प्रेसिडेंट के, कई सारी थ्योरीज जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे चल रही थी, जिसमें कि उनका ये कहना था कि आपकी तरफ से कुछ शर्तें रखी गई थी और उन शर्तों को वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से आपको टिकट नहीं दी गई। उनका ये भी कहना है कि वो आपको प्रेसिडेंट की टिकट दे रहे थे लेकिन आप राजी नहीं थे प्रेसिडेंट लड़ने के लिए, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे?
15: बहुत सी ऐसी बातें थी जो सामने आती है, और आप देख सकते हैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट कर रहा हूँ, दो और कैंडिडेट थे जो इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट कर रहे थे
13: जी।
15: तो मैं साफ साफ ये कहना चाहूंगा कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी, ना तो वहां पे मैनेजमेंट हो पाई चीजों को लेकर, और जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे जिनका जेनजी का जिनपे भरोसा था, जो खुद स्टूडेंट जिनको सपोर्ट कर रहे थे, जो चाह रहे थे कि भाई कॉमन स्टूडेंट जिनके सपोर्ट में थे, उनको मौका नहीं मिला। आप देख सकते हैं जिस तरीके का मैंडेट सामने आया है, तो ये साफ दर्शाता है कि इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से स्टूडेंट्स का जो भरोसा था वो कहीं ना कहीं टूटा। और मैं कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी बात करते हैं हमारे जेनजीज की और छात्रों की गूंज की, तो वो बहुत अच्छा कंसेप्ट है जो स्टूडेंट्स उसे कनेक्ट करते हैं, पर कहीं ना कहीं इंटरनल पॉलिटिक्स जो एनएसयूआई के अंदर हुई, जो एनएसयूआई की लीडरशिप की वजह से हुई, उसने साफ साफ जो नुकसान एनएसयूआई को हुआ वो उस वजह से हुआ।
16: Former Vice President Hamid Ansari's remarks on Hindu right-wing communalism have triggered a fresh political confrontation, with the BJP launching a sharp attack on both Ansari and the Congress. Speaking at the A.G. Noorani Memorial Lecture in New Delhi, Ansari cited a remark attributed to Jawaharlal Nehru, saying the greater danger to India was Hindu right-wing communalism rather than communism. Ansari also warned of what he described as recent challenges to civic nationalism, arguing that religious distinctions could emerge between citizens. The BJP has hit back hard, accusing the Congress of spreading anti-Hindu propaganda, calling Ansari's remarks unfortunate and demanding an apology. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, meanwhile, launched a scathing attack on former Vice President Hamid Ansari, alleging his remarks disrespect India's Sanatan traditions. Meanwhile, senior Muslim cleric and Imam Body Chief Umair Ahmed Ilyasi has also hit back at Ansari, accusing him of provoking Muslims and alleging

0: in an officers' meeting of the Ministry of External Affairs and recorded for posterity by Foreign Secretary Gundevia. And I quote those words: "The danger to India, mark you, it is not communism. It is Hindu right-wing communalism."
1: कुछ लोगों की फितरत होती है कि वे अपने पद की मर्यादा को बनाए नहीं रख पाते हैं, उस मर्यादा के विपरीत अपना आचरण करना उनकी जीवन की फितरत बन चुकी होती है। श्रीमान हामिद अंसारी, जो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने 5 वर्ष के अपने कार्यकाल को देश के अंदर संपन्न किया, उन्होंने कल एक वक्तव्य दिया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य था, और हम जैसे लोगों को शोभा भी नहीं देता कि हम उसका खंडन मंडन करें, लेकिन उनके जो वक्तव्य थे वो सचमुच डरावने वक्तव्य हैं, भारत के लिए, भारतीयता के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारत की परंपरा के लिए। और ये वक्तव्य दुनिया में भारत की छवि को धूमिल करने के कुत्सित प्रयासों के उस एजेंडे का हिस्सा है जो एंटी इंडिया फोर्सेस के द्वारा निरंतर निरंतर उसका दुष्प्रचार किया जाता है। उनके द्वारा शुद्ध रूप से भारत की सनातन परंपरा को कोसने, भारत की हिंदू परंपरा को अपमानित करने के वक्तव्य दिए गए और उसको आतंकवाद से जोड़ने के कुत्सित प्रयास हुए। एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति से भारत का संविधान अपेक्षा करता है कि उस पद की गरिमा के अनुरूप वह हमेशा आचरण करे।
2: ये इस प्रकार के बयान जिनको देश में उपराष्ट्रपति की उचित आया, उनके द्वारा जब इस प्रकार के घटिया बयान दिए जाते हैं तो उसका एक ही जवाब है कि हिंदू समाज सदैव सबको अपनाने का काम करता है, सबको सम्मान देने का काम करता है और सबके साथ समरस होकर के काम करता है। इस प्रकार के बयानों से जरूर वैमनस्यता फैलती है और एक घृणा का भाव आता है, लेकिन इस प्रकार के बयान से लगातार कभी न कभी देश के उपराष्ट्रपति रहे श्री हामिद अंसारी जी बयान देते रहे हैं जो अनुचित है, उसे स्वीकार नहीं किया।
3: अगर हिंदू हमारे हिंदुस्तान में बहुसंख्यक नहीं होता तो मेरा हिंदुस्तान न तो सेकुलर होता और न पंथ निरपेक्ष होता। जिस वक्त बंटवारा हुआ इस देश का, उसमें जो है वो हिंदू बहुसंख्यक वाला हिंदुस्तान जो है वो पंथ निरपेक्ष और सेकुलर बना, मुस्लिम बहुसंख्यक वाला पाकिस्तान जो है वो इस्लामी राष्ट्र घोषित हुआ। इतना से भी अगर ABCD नहीं समझते और इस तरह के जो है वो छल छत्रप और इस तरह के जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट करने के जो कारीगर लोग हैं, वो मुझे लगता है कि आप इस तरह के कन्फ्यूजन क्रिएट करके, जो कम्युनल कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सफल नहीं होंगे।
4: आज देश तरक्की के रास्ते पर है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर है। पिछले 12 सालों में जितना मुसलमानों ने तरक्की की है नरेंद्र मोदी की हुकूमत में, उतनी तरक्की कहीं नहीं हुई है। कांग्रेस के राज में दंगे होते थे, हजारों मुसलमान मार दिए जाते थे, कत्ल हो जाता था। आज 12 साल से कोई दंगा नहीं है, फसाद नहीं है, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा है।
5: उन्होंने कहा कि यहां पर उग्र वाम पंथ की तुलना में दक्षिणपंथी हिंदू सांप्रदायिकता अधिक खतरनाक है। यदि हिंदू सांप्रदायिक होता, यदि हिंदू कट्टर होता तो हामिद अंसारी ये बात कहने का साहस नहीं कर सकते थे। इस तरह की बातें करने वाला या तो कोई अनजान होता है या बेईमान होता है। हामिद अंसारी अनजान नहीं हो सकते, वो इन सब तथ्यों को जानते। उनके ये वक्तव्य किसी बेईमानी से कम होंगे ऐसा लगता नहीं। वो किसी हिडन एजेंडा के अंतर्गत काम करते हैं। भारत की शांति, भारत का सौहार्द, ये शायद उनके एजेंडे को सूट नहीं करता। देश की जनता उनको पहचान चुकी है, उनको जान चुकी है, इनके किसी बहकावे में आने वाली नहीं है।
6: हामिद अंसारी साहब के पहले भी उन्होंने बहुत कंट्रोवर्सी बयान दिए थे और उसके बाद फिर उन्होंने एक कंट्रोवर्सी बयान अपना मुसलमानों के नाम से दिया है। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं। आज फिर उनको मुसलमान याद आ गए हैं।

0: यह है हिंदुस्तान की शिक्षा का बजट। पहले 2014 में जब हमारी सरकार थी, बजट का 4.6% शिक्षा में जाता था। उसके बाद बजट कम करते करते करते करते 2.6% ऑफ बजट एजुकेशन में जाता है, 7.7 लाख करोड़ रुपए जो शिक्षा में जाने थे, अगर वो बजट मेंटेन किया जाता, वो शिक्षा में नहीं गए, वो अरबपतियों के हाथ गए, वो अदानी अंबानी के हाथ गए।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: are watching India Today.
1: In the Delhi SIRO, the Election Commission has issued notices to several high-profile figures across the national capital. Those flagged for discrepancies include External Affairs Minister S. Jaishankar and his wife, former Army Chief Upendra Dwivedi, CBI Director Praveen Sood, former Supreme Court Justice Ranjana Desai, Congress leader Udit Raj and former Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia. Discrepancies leading to these notices include names being unmapped with previous electoral rolls, name mismatches and parental age inconsistencies. Now, the Delhi Chief Electoral Officer has clarified that issue of notice does not mean that their names will be deleted from the electoral rolls of the NCT of Delhi. The poll body has explained that notices are being issued to correct their data and that no name can be deleted without giving an opportunity of being heard and an appealable order. Earlier, former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and four members of his family served electoral roll verification notices under the unmapped with last SIR category. This came after Kejriwal had publicly questioned the SIR exercise over deletions from the draft electoral roll. Kejriwal steps up his attack on the SIR, calling it an attempt to reduce India's population. In fact, he went a step further, claiming the exercise could bring the population of the country down from the current 140 crores to 50 crores, while alleging 47 lakh names are missing from the draft voter roll. Meanwhile, Delhi Chief Minister Rekha Gupta's electoral details were flagged also for a discrepancy during the SIR process, prompting a notice. But after physical verification by the BLO, her documents and details were checked out and then validated.
2: यह SIR का नया प्रोविजन इलेक्शन कमीशन ने भारतीय जनता पार्टी की दबाव में किया है और अभी तक 12-13 करोड़ वोटर्स डिलीट कर दिए गए। ये तो लोकतंत्र को खत्म करने की एक बड़ी साजिश है और ये इस बात का बड़ा सबूत है कि जब एलके अडवाणी के पास नोटिस जाएगा देश के फॉरेन सेक्रेटरी के पास जाएगा तो इससे अंदाजा किया जा सकता है कि ये प्रोसेस जो है वो कितना गलत प्रोसेस है
3: एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है और वो इतना निष्पक्ष है उसमें इतनी पारदर्शिता है कि जो नोटिसेस दिए गए हैं उसमें बड़े बड़े लीडर्स के नाम है और चाहे वो कपिल सिब्बल हों चाहे हमारी रेखा गुप्ता जी हों चाहे लाल कृष्ण अडवाणी जी हों और चाहे अरविंद केजरीवाल जी हों उन सबको दिए गए हैं क्योंकि एक रूल ऑफ लॉ है उसके तहत एक कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत सबको बताना पड़ता है वेरीफाई करना पड़ता है नोटिसेस जाते हैं और आप सही डॉक्यूमेंट्स देते हैं और बात साफ तौर से नई तरह से अपडेट हो जाती है इलेक्टोरल लिस्ट में लेकिन उसमें भी राजनीति देखिए बजाय ये समझने के कि लाल कृष्ण अडवाणी जी को भी गया है भाई एस जयशंकर जी को भी गया है जो हमारे मंत्री एक्सटर्नल अफेयर्स के लेकिन आप अपनी बात करके अपना रोना अपने मातम शुरू कर दिया है
4: ये बीएलओ को फॉर्म दिया मेरे दस्तखत हैं यहां और बीएलओ के दस्तखत तो मैचिंग हो गया तो इसका मतलब मेरा मैच करता है तो फिर मैं नोटिस कैसे आया मैं ज्ञानेश कुमार जी से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने नोटिस कैसे दिया मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं 1992 में मैं राज्यसभा का मेंबर था इतना बड़ा घोटाला हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ आज तक नहीं हुआ
1: राहुल गांधी's छात्रों की गूंज has now stepped into a new political arena. At the Indore session, Rahul Gandhi was seen on a stage with a comedian, where the two appeared to mock Prime Minister Modi's gesture towards an elderly woman when he asked someone to give her a chair. The BJP called it shameful and disgusting. The party posted a video of Prime Minister Modi with his mother and said Rahul Gandhi has now stooped to a new low. Here is a report on the same. Take a look.
5: और बताइए थोड़ा माँ को कुर्सी दो माँ माँ
6: An attempt to mock Prime Minister Modi by Congress has ended up creating another controversy, leaving many questioning the Congress's intent and criticizing the party. It all happened at Rahul Gandhi's Chhatron Ki Goonj event in Indore on Saturday. The Congress invited comedian Pulkit Mani to Rahul's event. The comedian performed a satirical mimicry of Prime Minister Modi and mocked an incident involving the Prime Minister and an old lady whom he had referred to as Ma.
7: Aur bataiye, aur bataiye thoda. Ma ko kursi do. Ma, ma.
6: Just last month, in an attempt to mock Modi, the Congress raked up Italian Prime Minister Giorgia Meloni and made what the BJP called distasteful comments.
8: इनके इनका पता नहीं कहाँ से इनके दिमाग में घुस गया. अब अजीब चीजें घुस जाती हैं. But इनके माइंड में घुस गया कि foreign policy is this. अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी.
9: एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ. मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था.
6: The BJP hammered the Congress over the controversy, accusing it of stooping lower and lower. The Congress defended its leader and the act.
10: Rahul Gandhi ji, वो एक कार्यक्रम लेते हैं, छात्रों के बीच जाते हैं. नाम तो उन्होंने छात्रों की गूंज दिया है, लेकिन वो झूठ बोलते हैं, अपमान करते हैं, भारतीय संस्कृति का भी अपमान करते हैं.
11: मैं समझता हूँ ये तो प्रहलाद जोशी समझ नहीं पाते. भाषा का ज्ञान नहीं उनको, विषय का ज्ञान नहीं. इस तरह की बातें बेतुकी वो बोल जाते हैं. वो पहली बार नहीं बोल रहे, वो आदतन बेतुकी बातें बोलते हैं. माँ का कहाँ से जिक्र आ गया? मैं तो दो बार तीन बार देख चुका राहुल जी का, माँ का तो कहीं जिक्र ही नहीं आया था.
12: राहुल गांधी जी को सुनने के लिए कोई आने को तैयार नहीं है. 100 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं. तो आपने देखा कि नेहा सिंह राठौर को जो है उन्होंने बुला लिया गुजरात. और आज जो है, कल जब मैं देख रहा था तो स्टैंड अप कॉमेडियन जो है उसको लेके इंदौर में घूम रहे हैं.
13: राजनीति के अंदर जो है, जब आप शीर्ष पदों पर होते हैं तो आपको इस तरीके की चीजों को स्वाभाविक रूप में लेना पड़ता है. लोकतंत्रवादी नहीं है आप. लोकतंत्र के अंदर इन चीजों को आपको पार्ट ऑफ गेम समझना पड़ता है.
6: It is not the first time that the Congress, in an attempt to target Prime Minister Modi, has gone too far and ended up scoring an own goal. The grand old party seriously needs to consider whether such controversies can be avoided. With Piyush Mishra and Ravish Pal, Bureau Report, India Today.
1: Their scripted history shattered the blueprint and no other channel has them. We are going completely unfiltered with the new faces of the Delhi University Student Union, Student Politics. The winner and the game changer, India Today's Anjali Pandey, with these twin campus exclusives, the campus king, Yash Dabbas, and the defiant rebel, Deepanshu Shokin.
14: काफी कांटे की टक्कर थी आपके बीच और एनएसयूआई के जो कैंडिडेट थे विजय मीना, उनके बीच. हर राउंड के बाद ऐसा लग रहा था कि कभी कोई आगे हो जा रहा था, कभी कोई आगे हो जा रहा था. काफी कम ऐसा होता है कि एंड के राउंड्स तक भी ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि कौन जीतने वाला है. तो आपको उस टाइम पे जब आप काउंटिंग बूथ पे प्रेजेंट थे, आपको उस टाइम पे कैसा लग रहा था जब हर राउंड के बाद रिजल्ट कभी इस तरफ जा रहा था, कभी उस तरफ जा रहा था?
15: मैम, मैं काफी रिलैक्स था. मुझे कहीं ना कहीं आत्मविश्वास था कि अभी एक आधे जो हमारे कैंपसेस है वो खुलने बाकी है, उनका रिजल्ट आना बाकी है, और उनका रिजल्ट आते ही मैं लीड मेंटेन कर लूंगा. और जैसे ही मुझे लगा कि हाँ उन कैंपसेस की वोटिंग खुली है, तो उसके बाद हमने एकदम से 2000 का मार्जिन क्लेम किया.
14: जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था यश, तो ये कहा जा रहा था कि यश देबास क्लियर विनर है, आज ही प्रेसिडेंट डिक्लेयर हो गया है। जब एनएसयूआई ने अपनी टिकट्स अनाउंस करी, उसके बाद सब कह रहे थे कि इस बार तो यश देबास ही जीतने वाला है। लेकिन कल जब काउंटिंग हुई तो हमने देखा कि कैसे काफी क्लोज कॉन्टेस्ट था, एनएसयूआई ने स्ट्रांग कमबैक किया। क्या आपको उम्मीद थी कि इतना क्लोज कॉन्टेस्ट होने वाला है, और क्या आपको लग रहा था कि मैं तो इजीली जीत जाऊंगा, क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी ये बात कह रही थी?
15: नहीं मैम, मुझे कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि कंपटीशन टक्कर का ही रहने वाला है। हमने उसी हिसाब से तैयारी भी की थी, और अपने कभी भी ओपोनेंट को हम हल्का तो समझना नहीं चाहिए, ना हमने समझा, इसीलिए हमने उसी तरीके की मेहनत की। और फिर कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पांस आया और हम 2100 के मार्जिन से प्रेसिडेंट पोस्ट पे जीत के आए।
14: तो कौन सी ऐसी चीज है जो एबीवीपी ने एनएसयूआई से अलग की और जो कि एबीवीपी के लिए काम कर गई?
15: मैम, जो एबीवीपी की इकाई है, जो हर एक कॉलेज में हमारी इकाई है, जो पूरा साल वो स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, छात्र हित के लिए काम करते हैं, राष्ट्र हित के लिए काम करते हैं, जो पूरा साल वो लगातार बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी स्वार्थ के जो लगातार काम करते हैं, वही हमारी जीत का कारण रहा। एनएसयूआई अगर आप देखेंगे तो वो केवल साल के आपके दो साल के आपको दो महीनों में ही दिखेगी, अगस्त और सितंबर, क्योंकि इन समय डूसू, उसके अलावा वो पूरे साल में आपको कहीं नजर नहीं आएगी।
14: फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू यू, आपने हिस्ट्री स्क्रिप्ट की है इतने सारे तरीकों से, रिकॉर्ड मैंडेट मिला है आपको, मार्जिन इतना बड़ा रहा, सबसे पहला जो नाम एकदम पक्का हो गया था, जीत जिसकी पक्की हो गई थी सुबह ही, वो आप ही थे। दीपांशु, एक वो दिन था जिस दिन आपको टिकट मना की गई थी, जिस दिन आपको टिकट नहीं दी गई एनएसयूआई की तरफ से, आपकी वीडियोज वायरल हुई, आप काफी इमोशनल थे, उस दिन आपने डिसीजन लिया कि आप इंडिपेंडेंट लड़ेंगे इलेक्शन, और एक कल का दिन था जब कोई एक ऐसा कैंडिडेट था जिसकी जीत सबसे पहले पक्की हुई थी और सबसे ज्यादा पक्की जीत थी, वो आप ही थे। कैसी रही ये जर्नी?
16: जर्नी काफी अच्छी रही, बहुत से स्ट्रगल्स इसके बीच में आए, जैसे और आपने पूछा कि भाई टिकट कटने के बाद और यहाँ जीत तक का सफर कैसा रहा, तो बहुत ही प्यार और स्टूडेंट्स ने भरोसा मुझ पर जताया, और उस भरोसे पर मैं खरा उतरूंगा, क्योंकि मेरा इलेक्शन सिर्फ मैंने नहीं लड़ा, मेरा इलेक्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर एक छात्र ने लड़ा, और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ने प्रूव किया कि अगर वो गलत होता देखेंगे तो स्टूडेंट्स अपनी आवाज उठाना जानते हैं, और उन्होंने मुझे अपनी आवाज के रूप में चुना।
14: दीपांशु, मैं आपसे जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी कंट्रोवर्सी रही उस पर भी बात करना चाहूंगी, क्योंकि कई वीडियोस वायरल हुए एनएसयूआई प्रेसिडेंट के, कई सारी थ्योरीज जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे चल रही थी, जिसमें कि उनका ये कहना था कि आपकी तरफ से कुछ शर्तें रखी गई थी और उन शर्तों को वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से आपको टिकट नहीं दी गई। उनका ये भी कहना है कि वो आपको प्रेसिडेंट की टिकट दे रहे थे लेकिन आप राजी नहीं थे प्रेसिडेंट लड़ने के लिए, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे?
16: बहुत सी ऐसी बातें थी जो सामने आती है, और आप देख सकते हैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट कर रहा हूँ, दो और कैंडिडेट थे जो इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट कर रहे थे, तो मैं साफ साफ ये कहना चाहूंगा कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी, ना तो वहां पे मैनेजमेंट हो पाई चीजों को लेकर, और जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे जिनका जिनजी का जिन पे भरोसा था, जो खुद स्टूडेंट जिनको सपोर्ट कर रहे थे, जो चाह रहे थे कि भाई कॉमन स्टूडेंट जिनके सपोर्ट में थे, उनको मौका नहीं मिला। आप देख सकते हैं जिस तरीके का मैंडेट सामने आया है, तो ये साफ दर्शाता है कि इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से स्टूडेंट्स का जो भरोसा था वो कहीं ना कहीं टूटा। और मैं कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी बात करते हैं हमारे जेनजीज की और छात्रों की गूंज की, तो वो बहुत अच्छा कंसेप्ट है जो स्टूडेंट्स उसे कनेक्ट करते हैं, पर कहीं ना कहीं इंटरनल पॉलिटिक्स जो एनएसयूआई के अंदर हुई, जो एनएसयूआई की लीडरशिप की वजह से हुई, उसने साफ साफ जो नुकसान एनएसयूआई को हुआ वो उस वजह से हुआ।
17: Former Vice President Hamid Ansari's remarks on Hindu right-wing communalism have triggered a fresh political confrontation, with the BJP launching a sharp attack on both Ansari and the Congress. Speaking at the A.G. Noorani Memorial Lecture in New Delhi, Ansari cited a remark attributed to Jawaharlal Nehru saying the greater danger to India was Hindu right-wing communalism rather than communism. Ansari also warned of what he described as recent challenges to civic nationalism, arguing that religious distinctions could emerge between citizens. The BJP has hit back hard, accusing the Congress of spreading anti-Hindu propaganda, calling Ansari's remarks unfortunate and demanding an apology. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, meanwhile, launched a scathing attack on former Vice President Hamid Ansari, alleging his remarks disrespect India's Sanatan traditions. Meanwhile, senior Muslim cleric and Imam body chief Umair Ahmad Ilyasi has also hit back at Ansari, accusing him of provoking Muslims and alleging a larger conspiracy behind his remarks.
18: Jawaharlal Nehru's observation in an officers' meeting of the Ministry of External Affairs and recorded for posterity by Foreign Secretary Gundevia, and I quote those words, "The danger to India, mark you, it is not communism. It is Hindu right-wing communalism."
19: कुछ लोगों की फितरत होती है कि वे अपने पद की मर्यादा को बनाए नहीं रख पाते हैं, उस मर्यादा के विपरीत अपना आचरण करना उनकी जीवन की फितरत बन चुकी होती है। श्रीमान हामिद अंसारी, जो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने 5 वर्ष के अपने कार्यकाल को देश के अंदर संपन्न किया, उन्होंने कल एक वक्तव्य दिया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य था, और हम जैसे लोगों को शोभा भी नहीं देता कि हम उसका खंडन मंडन करें, लेकिन उनके जो वक्तव्य थे वो सचमुच डरावने वक्तव्य हैं, भारत के लिए, भारतीयता के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारत की परंपरा के लिए, और ये वक्तव्य दुनिया में भारत की छवि को धूमिल करने के कुत्सित प्रयासों के उस एजेंडे का हिस्सा है जो एंटी इंडिया फोर्सेस के द्वारा निरंतर निरंतर उसका दुष्प्रचार किया जाता है। उनके द्वारा शुद्ध रूप से भारत की सनातन परंपरा को कोसने, भारत की हिंदू परंपरा को अपमानित करने के वक्तव्य दिए गए और उसको आतंकवाद से जोड़ने के कुत्सित प्रयास हुए। एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति से भारत का संविधान अपेक्षा करता है कि उस पद की गरिमा के अनुरूप वह हमेशा आचरण करे।
20: ये इस प्रकार के बयान जिनको देश में उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बुलाया, उनके द्वारा जब इस प्रकार के घटिया बयान दिए जाते हैं तो उसका एक ही जवाब है कि हिंदू समाज सदैव सबको अपनाने का काम करता है, सबको सम्मान देने का काम करता है और सबके साथ समरस होकर के काम करता है। इस प्रकार के बयानों से जरूर वैमनस्यता फैलती है और एक घृणा का भाव आता है, लेकिन इस प्रकार के बयान से लगातार कभी न कभी देश के उपराष्ट्रपति रहे श्री हामिद अंसारी जी बयान देते रहे हैं जो अनुचित है, उसे स्वीकार नहीं किया।
21: अगर हिंदू हमारे हिंदुस्तान में बहुसंख्यक नहीं होता तो मेरा हिंदुस्तान न तो सेकुलर होता और न पंथ निरपेक्ष होता। जिस वक्त बंटवारा हुआ इस देश का, उसमें जो है वो हिंदू बहुसंख्यक वाला हिंदुस्तान जो है वो पंथ निरपेक्ष और सेकुलर बना, मुस्लिम बहुसंख्यक वाला पाकिस्तान जो है वो इस्लामी राष्ट्र घोषित हुआ। इतना से भी अगर ABCD नहीं समझते और इस तरह के जो है वो छल छत्रप और इस तरह के जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट करने के जो कारीगर लोग हैं, वो मुझे लगता है कि आप इस तरह के कन्फ्यूजन क्रिएट करके, जो कम्युनल कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सफल नहीं होंगे।
22: आज देश तरक्की के रास्ते पर है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर है। पिछले 12 सालों में जितना मुसलमानों ने तरक्की की है नरेंद्र मोदी की हुकूमत में, उतनी तरक्की कहीं नहीं हुई है। कांग्रेस के राज में दंगे होते थे, हजारों मुसलमान मार दिए जाते थे, कत्ल हो जाता था। आज 12 साल से कोई दंगा नहीं है, फसाद नहीं है, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा है।
23: उन्होंने कहा कि यहां पर उग्र वाम पंथ की तुलना में दक्षिणपंथी हिंदू सांप्रदायिकता अधिक खतरनाक है। यदि हिंदू सांप्रदायिक होता, यदि हिंदू कट्टर होता तो हामिद अंसारी ये बात कहने का साहस नहीं कर सकते थे। इस तरह की बातें करने वाला या तो कोई अनजान होता है या बेईमान होता है। हामिद अंसारी अनजान नहीं हो सकते, वो इन सब तथ्यों को जानते हैं। उनके ये वक्तव्य किसी बेईमानी से कम होंगे ऐसा लगता नहीं, वो किसी हिडन एजेंडा के अंतर्गत काम करते हैं। भारत की शांति, भारत का सौहार्द, ये शायद उनके एजेंडे को सूट नहीं करता। देश की जनता उनको पहचान चुकी है, उनको जान चुकी है, इनके किसी बहकावे में आने वाली नहीं है।
0: हामिद अंसारी साहब के पहले भी उन्होंने बहुत कंट्रोवर्सी बयान दिए थे और उसके बाद फिर उन्होंने एक कंट्रोवर्सी बयान अपना मुसलमानों के नाम से दिया है। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं। आज फिर उनको मुसलमान याद आ गए। जब वो सत्ता में थे, बड़ी बड़ी पदों पर बैठे थे, तब वो सेकुलर थे, तो इस तरह का मुसलमानों का फिर इस्तेमाल करके उन्होंने जो बयान दिया है और जिस तरह से दोबारा से मुसलमानों को उकसाने का ये उन्होंने बयान दिया है, भड़काने का बयान दिया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश है।
17: The West Asia conflict is entering another dangerous phase of escalation. The Houthis now claim attacks on Saudi Arabia's capital, Riyadh. At the same time, Turkey has signaled its readiness to support Saudi Arabia. And with Hormuz already being a major flashpoint, concerns are growing over the wider impact on global shipping and energy supplies. Take a look at this report.
2: It's been 7 months since the West Asia war haunted the region and tightened its chokehold on oil supplies and refineries across the world. For the first time since the conflict began, the Houthis have targeted Saudi Arabia's capital, Riyadh. The Houthis claim to have targeted both King Khalid International Airport and Aramco facilities in Saudi Arabia. This has once again brought the Bab al-Mandeb Strait into sharp focus and raised concerns over the strategic choke point.
17: The Yemeni armed forces carried out, with the help of Almighty God, two significant military operations using a large number of ballistic and cruise missiles as well as drones. The first targeted sensitive targets in the Saudi enemy's capital, Riyadh. The second targeted the Aramco company in Yanbu. Both operations were crowned a success, resulting in massive fires at the targeted sites.
2: The attack has also raised questions over the trilateral Mecca defense pact, which involves Pakistan, Saudi Arabia and Turkey. Turkish foreign minister said on Saturday that Saudi Arabia may have military requirements due to the ongoing attacks by Yemen's Houthis and that Turkey was ready to provide assistance. But Houthi forces have threatened Pakistan and Turkey, warning them to stay out of the conflict or face consequences. Just days earlier, the Yemeni government claimed that Iran-aligned Houthi forces fired 6 ballistic missiles at the Red Sea port of Mocha on August 14th. The Houthis have established their presence across key areas and significant islands of Yemen. These locations sit along one of the world's most important maritime routes, connecting the Red Sea to the Gulf of Aden and ultimately the Indian Ocean. This makes the chokehold even more critical. The shortest maritime routes connecting West Asia to the rest of the world revolve around 3 key choke points. The Suez Canal, a narrow but vital passage for global shipping. The Bab al-Mandeb Strait, which the Houthis have threatened to disrupt. And the Strait of Hormuz, which Iran has said will remain closed until its conditions are met.
17: Today on the diplomatic front as well, our positions are completely clear, rational and non-negotiable. Our messages and conditions have been conveyed explicitly to the other side through intermediaries, and the enemies know full well that the path of deception and unilateral imposition is closed. And until these conditions are met, the inalienable rights of the Iranian nation are recognized and the Americans fulfill their commitments, there will be no possibility of a return to the previous negotiation framework or to reopen the Strait of Hormuz.
2: And it's not just that. US President Donald Trump has cut short his visit to Camp David and rushed back to Washington as tensions continue to escalate. The US State Department and American embassies across West Asia have also issued security alerts. This is where the West Asia crisis meets the global economy. The question is no longer where the next strike will come from, but how far its consequences will spread. Bureau Report, India Today.
17: From the world of entertainment, this is a controversy that has indeed taken center stage. It's Katrina Kaif who's at the center of this trolling storm. After she recently was spotted in public, trolls started targeting her looks and body, even questioning her beauty. Amid the backlash, it's Salman Khan who appeared to indirectly come out in support of Katrina Kaif during a recent Big Boss Weekend Ka Vaar episode. Let's take a look.
3: Once known for her fitness, now being trolled for her post-pregnancy weight. For years, Katrina Kaif has been known for her fitness and her carefully maintained on-screen image. But after becoming a mother, the conversation around the actress has taken a very different turn. Instead of talking about her post-pregnancy glow or even her motherhood, social media users started body-shaming her. And now, two of her former co-stars, Salman Khan and Ali Zafar, have spoken out against the trolling. Katrina Kaif recently stepped out with husband Vicky Kaushal at an Ambani family's Ganesh Chaturthi celebrations. And a section of social media began commenting on a post-pregnancy weight gain. And the body shaming quickly became a talking point online. Katrina herself has not responded on the trolling so far. But someone who did speak up was her longtime friend Salman Khan. On the latest Big Boss 20 Weekend Ka Vaar, Salman spoke about the way celebrities, especially women, are targeted for their appearance. And while he did not take Katrina's name, his comments came right in the middle of the backlash she was facing. Salman questioned why a woman should be trolled simply because she gained weight after pregnancy. His point was simple, that pregnancy changes a woman's body and there should not be an expectation that she immediately return to her pre-pregnancy appearance. But Salman wasn't the only one to call out the trolling. Pakistani actor and singer Ali Zafar, who worked with Katrina in Meri Brother Ki Dulhan, also came out in her support. In a video addressing the issue, Ali Zafar said that society needs to look inward and question the standards it creates for women's bodies. Meanwhile, Katrina's fans have also pushed back against the trolling. Many users have reminded people that pregnancy and motherhood naturally bring physical changes and that a woman's body does not need to look the same before and after childbirth. Because after years of seeing actresses judged for being too thin, too heavy, too old, too young, the question is not really about Katrina's weight. It is about why a woman's body becomes public property the moment she steps into the spotlight. Bureau Report, India Today.
17: On that note, viewers, we're wrapping up the bulletin right here, but do stay tuned to India Today as we keep bringing you all the latest updates on the top stories through the evening. Thank you for watching.
4: You are watching India Today.

0: राहुल गांधी जो मिमिक्री कर रहे हैं, मैं तो ऐसा मानता हूं कि राहुल गांधी जी ने पार्टी को छोड़कर स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी को तो उन्होंने बेरोजगार कर दिया है, कम से कम स्टैंड अप कॉमेडियन का रोजगार उनको मिलेगा।
1: हाँ, अंधभक्त तो ढूंढते हैं सब लोग, जहां भी है तो अंधभक्तों की बात होती है। ये देश अंधभक्तों का मेला बन गया है, मोदी जी ने उनको अंधभक्तों का मेला बनाया है। लेकिन कल छात्रों की गूंज में हमने जो चित्र देखा है इंदौर में, वो बहुत ही उत्साहवर्धक रहा। पूरे देश में ये छात्रों की गूंज हमें सुनाई दे रही है और देश में परिवर्तन करने के लिए ये गूंज बहुत मदद करेगी।

0: are watching India Today.
1: In the Delhi SIRO, the Election Commission has issued notices to several high-profile figures across the national capital. Those flagged for discrepancies include External Affairs Minister S. Jaishankar and his wife, former Army Chief Upendra Dwivedi, CBI Director Praveen Sood, former Supreme Court Justice Ranjana Desai, Congress leader Udit Raj and former Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia. Discrepancies leading to these notices include names being unmapped with previous electoral rolls, name mismatches and parental age inconsistencies. Now, the Delhi Chief Electoral Officer has clarified that issue of notice does not mean that their names will be deleted from the electoral rolls of the NCT of Delhi. The poll body has explained that notices are being issued to correct their data and that no name can be deleted without giving an opportunity of being heard and an appealable order. Earlier, former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and four members of his family served electoral roll verification notices under the unmapped with last SIR category. This came after Kejriwal had publicly questioned the SIR exercise over deletions from the draft electoral roll. Kejriwal steps up his attack on the SIR, calling it an attempt to reduce India's population. In fact, he went a step further, claiming the exercise could bring the population of the country down from the current 140 crores to 50 crores, while alleging 47 lakh names are missing from the draft voter roll. Meanwhile, Delhi Chief Minister Rekha Gupta's electoral details were flagged also for a discrepancy during the SIR process, prompting a notice. But after physical verification by the BLO, her documents and details were checked out and then validated.
2: यह SIR का नया प्रोविजन इलेक्शन कमीशन ने भारतीय जनता पार्टी की दबाव में किया है और अभी तक 12-13 करोड़ वोटर्स डिलीट कर दिए गए। ये तो लोकतंत्र को खत्म करने की एक बड़ी साजिश है और ये इस बात का बड़ा सबूत है कि जब एलके अडवाणी के पास नोटिस जाएगा देश के फॉरेन सिक्रेटरी के पास जाएगा तो इससे अंदाजा किया जा सकता है कि ये प्रोसेस जो है वो कितना गलत प्रोसेस है
3: एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है और वो इतना निष्पक्ष है उसमें इतनी पारदर्शिता है कि जो नोटिसेस दिए गए हैं उसमें बड़े बड़े लीडर्स के नाम है और चाहे वो कपिल सिब्बल हों चाहे हमारी रेखा गुप्ता जी हों चाहे लाल कृष्ण अडवाणी जी हों और चाहे अरविंद केजरीवाल जी हों उन सबको दिए गए हैं क्योंकि एक रूल ऑफ लॉ है उसके तहत एक कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत सबको बताना पड़ता है वेरीफाई करना पड़ता है नोटिस जाते हैं और आप सही डॉक्यूमेंट्स देते हैं और बात साफ तौर से नई तरह से अपडेट हो जाती है इलेक्टोरल लिस्ट में लेकिन उसमें भी राजनीति देखिए बजाय ये समझने के कि लाल कृष्ण अडवाणी जी को भी गया है भाई एस जयशंकर जी को भी गया है जो हमारे मंत्री एक्सटर्नल अफेयर्स के लेकिन आप अपनी बात करके अपना रोना अपने मातम शुरू कर दिया है
4: ये बीएलओ को फॉर्म दिया मेरे दस्तखत हैं यहां और बीएलओ के दस्तखत तो मैचिंग हो गया तो इसका मतलब मेरा मैच करता है तो फिर मैं नोटिस कैसे आया मैं ज्ञानेश कुमार जी से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने नोटिस कैसे दिया मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं 1992 में मैं राज्यसभा का मेंबर था इतना बड़ा घोटाला हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ आज तक नहीं हुआ
1: राहुल गांधी's छात्रों की गूंज has now stepped into a new political arena. At the Indore session, Rahul Gandhi was seen on a stage with a comedian, where the two appeared to mock Prime Minister Modi's gesture towards an elderly woman when he asked someone to give her a chair. The BJP called it shameful and disgusting. The party posted a video of Prime Minister Modi with his mother and said Rahul Gandhi has now stooped to a new low. Here is a report on the same. Take a look.
5: और बताइए, और बताइए थोड़ा। माँ को कुर्सी दो, माँ।
6: An attempt to mock Prime Minister Modi by Congress has ended up creating another controversy, leaving many questioning the Congress's intent and criticizing the party. It all happened at Rahul Gandhi's Chhatro Ki Goonj event in Indore on Saturday. The Congress invited comedian Pulkit Mani to Rahul's event. The comedian performed a satirical mimicry of Prime Minister Modi and mocked an incident involving the Prime Minister and an old lady whom he had referred to as Ma.
5: Aur bataiye, aur bataiye thoda. Ma ko kursi do. Ma, ma.
6: Just last month, in an attempt to mock Modi, the Congress raked up Italian Prime Minister Giorgia Meloni and made what the BJP called distasteful comments.
7: इनका पता नहीं कहाँ से इनके दिमाग में घुस गया. अब अजीब चीजें घुस जाती हैं. But इनके माइंड में घुस गया कि foreign policy is this. अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी.
8: एक चीज पूछ सकता हूं?
7: हाँ.
8: मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था?
6: The BJP hammered the Congress over the controversy, accusing it of stooping lower and lower. The Congress defended its leader and the act.
9: राहुल गांधी जी, वो एक कार्यक्रम लेते हैं, छात्रों के बीच जाते हैं. नाम तो उन्होंने छात्रों की गूंज दिया है, लेकिन वो झूठ बोलते हैं, अपमान करते हैं, भारतीय संस्कृति का भी अपमान करते हैं.
10: मैं समझता हूँ ये तो प्रहलाद जोशी समझ नहीं पाते. भाषा का ज्ञान नहीं उनको, विषय का ज्ञान नहीं. इस तरह की बातें बेतुकी वो बोल जाते हैं. वो पहली बार नहीं बोल रहे, वो आदतन बेतुकी बातें बोलते हैं. माँ का कहाँ से जिक्र आ गया? मैं तो दो बार तीन बार देख चुका राहुल जी का, माँ का तो कहीं जिक्र ही नहीं आया था.
11: राहुल गांधी जी को सुनने के लिए कोई आने को तैयार नहीं है. 100 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं. तो आपने देखा कि नेहा सिंह राठौर को जो है उन्होंने बुला लिया गुजरात. और आज जो है, कल जब मैं देख रहा था तो स्टैंड अप कॉमेडियन जो है उसको लेके इंदौर में घूम रहे हैं.
12: राजनीति के अंदर जो है, जब आप शीर्ष पदों पर होते हैं तो आपको इस तरीके की चीजों को स्वाभाविक रूप में लेना पड़ता है. लोकतंत्रवादी नहीं है आप. लोकतंत्र के अंदर इन चीजों को आपको पार्ट ऑफ गेम समझना पड़ता है.
6: It is not the first time that the Congress, in an attempt to target Prime Minister Modi, has gone too far and ended up scoring an own goal. The grand old party seriously needs to consider whether such controversies can be avoided. With Piyush Mishra, Ravish Pal, Bureau Report, India Today.
1: The scripted history shattered the blueprint and no other channel has them. We are going completely unfiltered with the new faces of the Delhi University Student Union, Students Politics, the winner and the game changer. India Today's Anjali Pandey with these twin campus exclusives, the campus king, Yash Dabbas, and the defiant rebel, Deepanshu Shokin.
13: काफी काटे की टक्कर थी आपके बीच और एनएसयूआई के जो कैंडिडेट थे विजय मीना, उनके बीच. हर राउंड के बाद ऐसा लग रहा था कि कभी कोई आगे हो जा रहा था, कभी कोई आगे हो जा रहा था. काफी कम ऐसा होता है कि एंड के राउंड्स तक भी ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि कौन जीतने वाला है. तो आपको उस टाइम पे जब आप काउंटिंग बूथ पे प्रेजेंट थे, आपको उस टाइम पे कैसा लग रहा था जब हर राउंड के बाद रिजल्ट कभी इस तरफ जा रहा था, कभी उस तरफ जा रहा था?
14: मैम, मैं काफी रिलैक्स था. मुझे कहीं ना कहीं आत्मविश्वास था कि अभी एक आधे जो हमारे कैंपसेस है वो खुलने बाकी है, उनका रिजल्ट आना बाकी है, और उनका रिजल्ट आते ही मैं लीड मेंटेन कर लूंगा. और जैसे ही मुझे लगा कि हाँ उन कैंपसेस की वोटिंग खुली है, तो उसके बाद हमने एकदम से 2000 का मार्जिन क्लेम किया.
13: जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था यश, तो ये कहा जा रहा था कि यश दबास क्लियर विनर है, आज ही प्रेसिडेंट डिक्लेयर हो गया है. जब एनएसयूआई ने अपनी टिकट्स अनाउंस करी, उसके बाद सब कह रहे थे कि इस बार तो यश दबास ही जीतने वाला है. लेकिन कल जब काउंटिंग हुई तो हमने देखा कि कैसे काफी क्लोज कॉन्टेस्ट था. एनएसयूआई ने स्ट्रांग कमबैक किया. क्या आपको उम्मीद थी कि इतना क्लोज कॉन्टेस्ट होने वाला है, और क्या आपको लग रहा था कि मैं तो इजीली जीत जाऊंगा, क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी ये बात कह रही थी?
14: नहीं मैम, मुझे कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि कंपटीशन टक्कर का ही रहने वाला है। हमने उसी हिसाब से तैयारी भी की थी और अपने कभी भी ओपोनेंट को हम हल्का तो समझना नहीं चाहिए, ना हमने समझा, इसीलिए हमने उसी तरीके की मेहनत की और फिर कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया और हम 2100 के मार्जिन से प्रेसिडेंट पोस्ट पे जीत के आए।
13: तो कौन सी ऐसी चीज है जो एबीवीपी ने एनएसयूआई से अलग की और जो कि एबीवीपी के लिए काम कर गई?
14: मैम, जो एबीवीपी की इकाई है, जो हर एक कॉलेज में हमारी इकाई है, जो पूरा साल वो स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, छात्र हित के लिए काम करते हैं, राष्ट्र हित के लिए काम करते हैं, जो पूरा साल वो लगातार बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी स्वार्थ के जो लगातार काम करते हैं, वही हमारी जीत का कारण रहा। एनएसयूआई अगर आप देखेंगे तो वो केवल साल के आपके दो साल के आपको दो महीनों में ही दिखेगी, अगस्त और सितंबर, क्योंकि इन समय डुसु, उसके अलावा वो पूरे साल में आपको कहीं नजर नहीं आएगी।
13: फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू यू, आपने हिस्ट्री स्क्रिप्ट की है इतने सारे तरीकों से, रिकॉर्ड मैंडेट मिला है आपको, मार्जिन इतना बड़ा रहा, सबसे पहला जो नाम एकदम पक्का हो गया था, जीत जिसकी पक्की हो गई थी सुबह ही, वो आप ही थे। दीपांशु, एक वो दिन था जिस दिन आपको टिकट मना की गई थी, जिस दिन आपको टिकट नहीं दी गई एनएसयूआई की तरफ से, आपकी वीडियोज वायरल हुई, आप काफी इमोशनल थे, उस दिन आपने डिसीजन लिया कि आप इंडिपेंडेंट लड़ेंगे इलेक्शन, और एक कल का दिन था जब कोई एक ऐसा कैंडिडेट था जिसकी जीत सबसे पहले पक्की हुई थी और सबसे ज्यादा पक्की जीत थी, वो आप ही थे। कैसी रही ये जर्नी?
15: जर्नी काफी अच्छी रही, बहुत से स्ट्रगल्स इसके बीच में आए, जैसे और आपने पूछा कि भाई टिकट कटने के बाद और यहाँ जीत तक का सफर कैसा रहा, तो बहुत ही प्यार और स्टूडेंट्स ने भरोसा मुझ पर जताया और उस भरोसे पर मैं खरा उतरूंगा, क्योंकि मेरा इलेक्शन सिर्फ मैंने नहीं लड़ा, मेरा इलेक्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर एक छात्र ने लड़ा और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ने प्रूव किया कि अगर वो गलत होता देखेंगे तो स्टूडेंट्स अपनी आवाज उठाना जानते हैं और उन्होंने मुझे अपनी आवाज के रूप में चुना।
13: दीपांशु, मैं आपसे जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी कंट्रोवर्सी रही उस पर भी बात करना चाहूंगी, क्योंकि कई वीडियोस वायरल हुए एनएसयूआई प्रेसिडेंट के, कई सारी थ्योरीज जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे चल रही थी, जिसमें कि उनका ये कहना था कि आपकी तरफ से कुछ शर्तें रखी गई थी और उन शर्तों को वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से आपको टिकट नहीं दी गई। उनका ये भी कहना है कि वो आपको प्रेसिडेंट की टिकट दे रहे थे लेकिन आप राजी नहीं थे प्रेसिडेंट लड़ने के लिए, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे?
15: बहुत सी ऐसी बातें थी जो सामने आती है और आप देख सकते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट कर रहा हूँ, दो और कैंडिडेट थे जो इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट कर रहे थे, तो मैं साफ साफ ये कहना चाहूंगा कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी, ना तो वहां पे मैनेजमेंट हो पाई चीजों को लेकर, और जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे जिनका जेनजी का जिन पे भरोसा था, जो खुद स्टूडेंट जिनको सपोर्ट कर रहे थे, जो चाह रहे थे कि भाई कॉमन स्टूडेंट जिनके सपोर्ट में थे, उनको मौका नहीं मिला। आप देख सकते हैं जिस तरीके का मैंडेट सामने आया है, तो ये साफ दर्शाता है कि इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से स्टूडेंट्स का जो भरोसा था वो कहीं ना कहीं टूटा। और मैं कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी बात करते हैं हमारे जेनजीज की और छात्रों की गूंज की, तो वो बहुत अच्छा कंसेप्ट है जो स्टूडेंट्स उसे कनेक्ट करते हैं, पर कहीं ना कहीं इंटरनल पॉलिटिक्स जो एनएसयूआई के अंदर हुई, जो एनएसयूआई की लीडरशिप की वजह से हुई, उसने साफ साफ जो नुकसान एनएसयूआई को हुआ वो उस वजह से हुआ।
1: Former Vice President Hamid Ansari's remarks on Hindu right-wing communalism have triggered a fresh political confrontation, with the BJP launching a sharp attack on both Ansari and the Congress. Speaking at the AG Noorani Memorial Lecture in New Delhi, Ansari cited a remark attributed to Jawaharlal Nehru saying the greater danger to India was Hindu right-wing communalism rather than communism. Ansari also warned of what he described as recent challenges to civic nationalism, arguing that religious distinctions could emerge between citizens. The BJP has hit back hard, accusing the Congress of spreading anti-Hindu propaganda, calling Ansari's remarks unfortunate and demanding an apology. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, meanwhile, launched a scathing attack on former Vice President Hamid Ansari, alleging his remarks disrespect India's Sanatan.

0: Jawaharlal Nehru's observation in an officers' meeting of the Ministry of External Affairs and recorded for posterity by Foreign Secretary Gundevia, and I quote those words: "The danger to India, mark you, it is not communism. It is Hindu right-wing communalism."
1: कुछ लोगों की फितरत होती है कि वे अपने पद की मर्यादा को बनाए नहीं रख पाते हैं, उस मर्यादा के विपरीत अपना आचरण करना उनके जीवन की फितरत बन चुकी होती है। श्रीमान हामिद अंसारी, जो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने 5 वर्ष के अपने कार्यकाल को देश के अंदर संपन्न किया, उन्होंने कल एक वक्तव्य दिया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य था, और हम जैसे लोगों को शोभा भी नहीं देता कि हम उसका खंडन मंडन करें, लेकिन उनके जो वक्तव्य थे वह सचमुच डरावने वक्तव्य हैं, भारत के लिए, भारतीयता के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारत की परंपरा के लिए। और ये वक्तव्य दुनिया में भारत की छवि को धूमिल करने के कुत्सित प्रयासों के उस एजेंडे का हिस्सा है जो एंटी इंडिया फोर्सेस के द्वारा निरंतर निरंतर उसका दुष्प्रचार किया जाता है। उनके द्वारा शुद्ध रूप से भारत की सनातन परंपरा को कोसने, भारत की हिंदू परंपरा को अपमानित करने के वक्तव्य दिए गए और उसको आतंकवाद से जोड़ने के कुत्सित प्रयास हुए। एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति से भारत का संविधान अपेक्षा करता है कि उस पद की गरिमा के अनुरूप वह हमेशा आचरण करे।
2: इस प्रकार के बयान हिंदू देश में उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर आया, उनके द्वारा जब इस प्रकार के घटिया बयान दिए जाते हैं तो उसका एक ही जवाब है कि हिंदू समाज सदैव सबको अपनाने का काम करता है, सबको सम्मान देने का काम करता है और सबके साथ समरस होकर के काम करता है। इस प्रकार के बयानों से जरूर वैमनस्यता फैलती है और एक घृणा का भाव आता है, लेकिन इस प्रकार के बयान से लगातार कभी न कभी देश के उपराष्ट्रपति रहे श्री हामिद अंसारी जी बयान देते रहे हैं जो अनुचित है, उसे स्वीकार नहीं किया।
3: अगर हिंदू हमारे हिंदुस्तान में बहुसंख्यक नहीं होता तो मेरा हिंदुस्तान न तो सेकुलर होता और न पंथ निरपेक्ष होता। जिस वक्त बंटवारा हुआ इस देश का, उसमें जो है वो हिंदू बहुसंख्यक वाला हिंदुस्तान जो है वो पंथ निरपेक्ष और सेकुलर बना, मुस्लिम बहुसंख्यक वाला पाकिस्तान जो है वो इस्लामी राष्ट्र घोषित हुआ। इतना से भी अगर ABCD नहीं समझते और इस तरह के जो है वो छल छत्रप और इस तरह के जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट करने के जो कारीगर लोग हैं, वो मुझे लगता है कि आप इस तरह के कन्फ्यूजन क्रिएट करके, जो कम्युनल कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सफल नहीं होंगे।
4: आज देश तरक्की के रास्ते पर है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर है। पिछले 12 सालों में जितना मुसलमानों ने तरक्की की है नरेंद्र मोदी की हुकूमत में, उतनी तरक्की कहीं नहीं हुई है। कांग्रेस के राज में दंगे होते थे, हजारों मुसलमान मार दिए जाते थे, कत्ल हो जाता था। आज 12 साल से कोई दंगा नहीं है, फसाद नहीं है, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा है।
5: उन्होंने कहा कि यहां पर उग्र वाम पंथ की तुलना में दक्षिण पंथी हिंदू सांप्रदायिकता अधिक खतरनाक है। यदि हिंदू सांप्रदायिक होता, यदि हिंदू कट्टर होता तो हामिद अंसारी ये बात कहने का साहस नहीं कर सकते थे। इस तरह की बातें करने वाला या तो कोई अनजान होता है या बेईमान होता है। हामिद अंसारी अनजान नहीं हो सकते, वो इन सब तथ्यों को जानते। उनके ये वक्तव्य किसी बेईमानी से कम होंगे ऐसा लगता नहीं। वो किसी हिडन एजेंडा के अंतर्गत काम करते हैं। भारत की शांति, भारत का सौहार्द, ये शायद उनके एजेंडे को सूट नहीं करता। देश की जनता उनको पहचान चुकी है, उनको जान चुकी है, इनके किसी बहकावे में आने वाली नहीं है।
6: हामिद अंसारी साहब के पहले भी उन्होंने बहुत कंट्रोवर्सी बयान दिए थे और उसके बाद फिर उन्होंने एक कंट्रोवर्सी बयान अपना मुसलमानों के नाम से दिया है। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं।

0: are watching India Today.
1: In the Delhi SIRO, the Election Commission has issued notices to several high-profile figures across the national capital. Those flagged for discrepancies include External Affairs Minister S. Jaishankar and his wife, former Army Chief Upendra Dwivedi, CBI Director Praveen Sood, former Supreme Court Justice Ranjana Desai, Congress leader Udit Raj and former Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia. Discrepancies leading to these notices include names being unmapped with previous electoral rolls, name mismatches and parental age inconsistencies. Now, the Delhi Chief Electoral Officer has clarified that issue of notice does not mean that their names will be deleted from the electoral rolls of the NCT of Delhi. The poll body has explained that notices are being issued to correct their data and that no name can be deleted without giving an opportunity of being heard and an appealable order. Earlier, former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and four members of his family served electoral roll verification notices under the unmapped with last SIR category. This came after Kejriwal had publicly questioned the SIR exercise over deletions from the draft electoral roll. Kejriwal steps up his attack on the SIR, calling it an attempt to reduce India's population. In fact, he went a step further, claiming the exercise could bring the population of the country down from the current 140 crores to 50 crores, while alleging 47 lakh names are missing from the draft voter roll. Meanwhile, Delhi Chief Minister Rekha Gupta's electoral details were flagged also for a discrepancy during the SIR process, prompting a notice. But after physical verification by the BLO, her documents and details were checked out and then validated.
2: ये SIR का नया प्रोविजन इलेक्शन कमीशन ने भारतीय जनता पार्टी की दबाव में किया है और अभी तक 12 जन इलेक्शन कमीशन ने भारतीय जनता पार्टी की दबाव में किया है और अभी तक 12 कि जब एलके अडवाणी के पास नोटिस जाएगा देश के फॉरेन सेक्रेटरी के पास जाएगा तो इससे अंदाजा किया जा सकता है कि ये प्रोसेस जो है वो कितना गलत प्रोसेस है
3: एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है और वो इतना निष्पक्ष है उसमें इतनी पारदर्शिता है कि जो नोटिसेस दिए गए हैं उसमें बड़े-बड़े लीडर्स के नाम हैं और चाहे वो कपिल सिब्बल हों चाहे हमारी रेखा गुप्ता जी हों चाहे लाल कृष्ण अडवाणी जी हों और चाहे अरविंद केजरीवाल जी हों उन सबको दिए गए हैं क्योंकि एक रूल ऑफ लॉ है उसके तहत एक कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत सबको बताना पड़ता है वेरीफाई करना पड़ता है नोटिसेस जाते हैं और आप सही डॉक्यूमेंट्स देते हैं और बात साफ तौर से नई तरह से अपडेट हो जाती है इलेक्टोरल लिस्ट में लेकिन उसमें भी राजनीति देखिए बजाय ये समझने के कि लाल कृष्ण अडवाणी जी को भी गया है भाई एस जयशंकर जी को भी गया है जो हमारे मंत्री एक्सटर्नल अफेयर्स के लेकिन आप अपनी बात करके अपना रोना अपने मातम शुरू कर दिया है
4: ये बीएलओ को फॉर्म दिया मेरे दस्तखत हैं यहां और बीएलओ के दस्तखत तो मैचिंग हो गया तो इसका मतलब मेरा मैच करता है तो फिर मैं नोटिस कैसे आया मैं ज्ञानेश कुमार जी से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने नोटिस कैसे दिया मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं 1992 में मैं राज्यसभा का मेंबर था इतना बड़ा घोटाला हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ आज तक नहीं हुआ
1: राहुल गांधी's छात्रों की गूंज has now stepped into a new political arena at the Indore session Rahul Gandhi was seen on a stage with a comedian Where the two appeared to mock Prime Minister Modi's gesture towards an elderly woman when he asked someone to give her a chair. The BJP called it shameful and disgusting. The party posted a video of Prime Minister Modi with his mother and said Rahul Gandhi has now stooped to a new low. Here is a report on the same. Take a look.
5: और बताइए, और बताइए थोड़ा। माँ को कुर्सी दो, माँ, माँ।
6: An attempt to mock Prime Minister Modi by Congress has ended up creating another controversy, leaving many questioning the Congress's intent and criticizing the party. It all happened at Rahul Gandhi's Chhatron Ki Goonj event in Indore on Saturday. The Congress invited comedian Pulkit Mani to Rahul's event. The comedian performed a satirical mimicry of Prime Minister Modi and mocked an incident involving the Prime Minister and an old lady whom he had referred to as Ma.
5: Aur bataiye, aur bataiye thoda. Ma ko kursi do. Ma, ma.
6: Just last month, in an attempt to mock Modi, the Congress raked up Italian Prime Minister Giorgia Meloni and made what the BJP called distasteful comments.
5: इनके इनका पता नहीं कहाँ से इनके दिमाग में घुस गया. अब अजीब चीजें घुस जाती हैं. But इनके माइंड में घुस गया कि foreign policy is this. अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी.
7: एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ. मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था?
6: The BJP hammered the Congress over the controversy, accusing it of stooping lower and lower. The Congress defended its leader and the act.
8: राहुल गांधी जी, वो एक कार्यक्रम लेते हैं, छात्रों के बीच जाते हैं. नाम तो उन्होंने छात्रों की गूंज दिया है, लेकिन वो झूठ बोलते हैं, अपमान करते हैं, भारतीय संस्कृति का भी अपमान करते हैं.
9: मैं समझता हूँ ये तो प्रहलाद जोशी समझ नहीं पाते. भाषा का ज्ञान नहीं उनको, विषय का ज्ञान नहीं. इस तरह की बातें बेतुकी वो बोल जाते हैं. वो पहली बार नहीं बोल रहे, वो आदतन बेतुकी बातें बोलते हैं. माँ का कहाँ से जिक्र आ गया? मैं तो दो बार तीन बार देख चुका राहुल जी का, माँ का तो कहीं जिक्र ही नहीं आया था.
10: राहुल गांधी जी को सुनने के लिए कोई आने को तैयार नहीं है. 100 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं. तो आपने देखा कि नेहा सिंह राठौर को जो है उन्होंने बुला लिया गुजरात. और आज जो है, कल जब मैं देख रहा था तो स्टैंड अप कॉमेडियन जो है उसको लेके इंदौर में घूम रहे हैं.
11: राजनीति के अंदर जो है, जब आप शीर्ष पदों पर होते हैं तो आपको इस तरीके की चीजों को स्वाभाविक रूप में लेना पड़ता है. लोकतंत्रवादी नहीं है आप, लोकतंत्र के अंदर इन चीजों को आपको पार्ट ऑफ गेम समझना पड़ता है.
6: It is not the first time that the Congress, in an attempt to target Prime Minister Modi, has gone too far and ended up scoring an own goal. The grand old party seriously needs to consider whether such controversies can be avoided. With Piyush Mishra, Ravish Pal, Bureau Report, India Today.
1: The scripted history shattered the blueprint and no other channel has them. We are going completely unfiltered with the new faces of the Delhi University Student Union, Students Politics, the winner and the game changer. India Today's Anjali Pandey with these twin campus exclusives, the campus king, Yash Dabbas, and the defiant rebel, Deepanshu Shokin.
12: काफी कांटे की टक्कर थी आपके बीच और एनएसयूआई के जो कैंडिडेट थे विजय मीना, उनके बीच. हर राउंड के बाद ऐसा लग रहा था कि कभी कोई आगे हो जा रहा था, कभी कोई आगे हो जा रहा था. काफी कम ऐसा होता है कि एंड के राउंड्स तक भी ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि कौन जीतने वाला है. तो आपको उस टाइम पे जब आप काउंटिंग बूथ पे प्रेजेंट थे, आपको उस टाइम पे कैसा लग रहा था जब हर राउंड के बाद रिजल्ट कभी इस तरफ जा रहा था, कभी उस तरफ जा रहा था?
13: मैम, मैं काफी रिलैक्स था. मुझे कहीं ना कहीं आत्मविश्वास था कि अभी एक आधे जो हमारे कैंपसेज है वो खुलने बाकी है, उनका रिजल्ट आना बाकी है, और उनका रिजल्ट आते ही मैं लीड मेंटेन कर लूंगा. और जैसे ही मुझे लगा कि हाँ उन कैंपसेज की वोटिंग खुली है, तो उसके बाद हमने एकदम से 2000 का मार्जिन क्लेम किया.
12: जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था यश, तो ये कहा जा रहा था कि यश देबास क्लियर विनर है, आज ही प्रेसिडेंट डिक्लेयर हो गया है। जब एनएसयूआई ने अपनी टिकट्स अनाउंस करी, उसके बाद सब कह रहे थे कि इस बार तो यश देबास ही जीतने वाला है। लेकिन कल जब काउंटिंग हुई तो हमने देखा कि कैसे काफी क्लोज कॉन्टेस्ट था, एनएसयूआई ने स्ट्रांग कमबैक किया। क्या आपको उम्मीद थी कि इतना क्लोज कॉन्टेस्ट होने वाला है, और क्या आपको लग रहा था कि मैं तो इजीली जीत जाऊंगा, क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी ये बात कह रही थी?
13: नहीं मैम, मुझे कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि कंपटीशन टक्कर का ही रहने वाला है। हमने उसी हिसाब से तैयारी भी की थी, और अपने कभी भी ओपोनेंट को हम हल्का तो समझना नहीं चाहिए, ना हमने समझा, इसीलिए हमने उसी तरीके की मेहनत की। और फिर कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पांस आया और हम 2100 के मार्जिन से प्रेसिडेंट पोस्ट पे जीत के आए।
12: तो कौन सी ऐसी चीज है जो एबीवीपी ने एनएसयूआई से अलग की और जो कि एबीवीपी के लिए काम कर गई?
13: मैम, जो एबीवीपी की इकाई है, जो हर एक कॉलेज में हमारी इकाई है, जो पूरा साल वो स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, छात्र हित के लिए काम करते हैं, राष्ट्र हित के लिए काम करते हैं, जो पूरा साल वो लगातार बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी स्वार्थ के जो लगातार काम करते हैं, वही हमारी जीत का कारण रहा। एनएसयूआई अगर आप देखेंगे तो वो केवल साल के आपके दो साल के आपको दो महीनों में ही दिखेगी, अगस्त और सितंबर, क्योंकि इन समय डूसू, उसके अलावा वो पूरे साल में आपको कहीं नजर नहीं आएगी।
12: फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू यू, आपने हिस्ट्री स्क्रिप्ट की है इतने सारे तरीकों से, रिकॉर्ड मैंडेट मिला है आपको, मार्जिन इतना बड़ा रहा, सबसे पहला जो नाम एकदम पक्का हो गया था, जीत जिसकी पक्की हो गई थी सुबह ही, वो आप ही थे। दीपांशु, एक वो दिन था जिस दिन आपको टिकट मना की गई थी, जिस दिन आपको टिकट नहीं दी गई एनएसयूआई की तरफ से, आपकी वीडियोज वायरल हुई, आप काफी इमोशनल थे, उस दिन आपने डिसीजन लिया कि आप इंडिपेंडेंट लड़ेंगे इलेक्शन, और एक कल का दिन था जब कोई एक ऐसा कैंडिडेट था जिसकी जीत सबसे पहले पक्की हुई थी और सबसे ज्यादा पक्की जीत थी, वो आप ही थे। कैसी रही ये जर्नी?
14: जर्नी काफी अच्छी रही, बहुत से स्ट्रगल्स इसके बीच में आए, जैसे और आपने पूछा कि भाई टिकट कटने के बाद और यहाँ जीत तक का सफर कैसा रहा, तो बहुत ही प्यार और स्टूडेंट्स ने भरोसा मुझ पर जताया, और उस भरोसे पर मैं खरा उतरूंगा, क्योंकि मेरा इलेक्शन सिर्फ मैंने नहीं लड़ा, मेरा इलेक्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर एक छात्र ने लड़ा, और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ने प्रूव किया कि अगर वो गलत होता देखेंगे तो स्टूडेंट्स अपनी आवाज उठाना जानते हैं, और उन्होंने मुझे अपनी आवाज के रूप में चुना।
12: दीपांशु, मैं आपसे जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी कंट्रोवर्सी रही उस पर भी बात करना चाहूंगी, क्योंकि कई वीडियोस वायरल हुए एनएसयूआई प्रेसिडेंट के, कई सारी थ्योरीज जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे चल रही थी, जिसमें कि उनका ये कहना था कि आपकी तरफ से कुछ शर्तें रखी गई थी और उन शर्तों को वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से आपको टिकट नहीं दी गई। उनका ये भी कहना है कि वो आपको प्रेसिडेंट की टिकट दे रहे थे लेकिन आप राजी नहीं थे प्रेसिडेंट लड़ने के लिए, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे?
14: बहुत सी ऐसी बातें थी जो सामने आती है, और आप देख सकते हैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट कर रहा हूँ, दो और कैंडिडेट थे जो इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट कर रहे थे, तो मैं साफ साफ ये कहना चाहूंगा कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी, ना तो वहां पे मैनेजमेंट हो पाई चीजों को लेकर, और जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे जिनका जेनजी का जिन पे भरोसा था, जो खुद स्टूडेंट जिनको सपोर्ट कर रहे थे, जो चाह रहे थे कि भाई कॉमन स्टूडेंट जिनके सपोर्ट में थे, उनको मौका नहीं मिला। आप देख सकते हैं जिस तरीके का मैंडेट सामने आया है, तो ये साफ दर्शाता है कि इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से स्टूडेंट्स का जो भरोसा था वो कहीं ना कहीं टूटा। और मैं कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी बात करते हैं हमारे जेनजीज की और छात्रों की गूंज की, तो वो बहुत अच्छा कंसेप्ट है जो स्टूडेंट्स उसे कनेक्ट करते हैं, पर कहीं ना कहीं इंटरनल पॉलिटिक्स जो एनएसयूआई के अंदर हुई, जो एनएसयूआई की लीडरशिप की वजह से हुई, उसने साफ साफ जो नुकसान एनएसयूआई को हुआ वो उस वजह से हुआ।
15: Former Vice President Hamid Ansari's remarks on Hindu right-wing communalism have triggered a fresh political confrontation, with the BJP launching a sharp attack on both Ansari and the Congress. Speaking at the A.G. Noorani Memorial Lecture in New Delhi, Ansari cited a remark attributed to Jawaharlal Nehru saying the greater danger to India was Hindu right-wing communalism rather than communism. Ansari also warned of what he described as recent challenges to civic nationalism, arguing that religious distinctions could emerge between citizens. The BJP has hit back hard, accusing the Congress of spreading anti-Hindu propaganda, calling Ansari's remarks unfortunate and demanding an apology. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, meanwhile, launched a scathing attack on former Vice President Hamid Ansari, alleging his remarks disrespect India's Sanatan traditions. Meanwhile, senior Muslim cleric and Imam body chief Umair Ahmad Ilyasi has also hit back at Ansari, accusing him of provoking Muslims and alleging a larger conspiracy behind his remarks.
16: Jawaharlal Nehru's observation in an officers' meeting of the Ministry of External Affairs and recorded for posterity by Foreign Secretary Gundevia, and I quote those words, "The danger to India, mark you, it is not communism. It is Hindu right-wing communalism."
17: कुछ लोगों की फितरत होती है कि वे अपने पद की मर्यादा को बनाए नहीं रख पाते हैं, उस मर्यादा के विपरीत अपना आचरण करना उनके जीवन की फितरत बन चुकी होती है। श्रीमान हामिद अंसारी, जो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने 5 वर्ष के अपने कार्यकाल को देश के अंदर संपन्न किया, उन्होंने कल एक वक्तव्य दिया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य था, और हम जैसे लोगों को शोभा भी नहीं देता कि हम उसका खंडन मंडन करें, लेकिन उनके जो वक्तव्य थे वह सचमुच डरावने वक्तव्य हैं, भारत के लिए, भारतीयता के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारत की परंपरा के लिए, और ये वक्तव्य दुनिया में भारत की छवि को धूमिल करने के कुत्सित प्रयासों के उस एजेंडे का हिस्सा है जो एंटी इंडिया फोर्सेस के द्वारा निरंतर निरंतर उसका दुष्प्रचार किया जाता है। उनके द्वारा शुद्ध रूप से भारत की सनातन परंपरा को कोसने, भारत की हिंदू परंपरा को अपमानित करने के वक्तव्य दिए गए और उसको आतंकवाद से जोड़ने के कुत्सित प्रयास हुए। एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति से भारत का संविधान अपेक्षा करता है कि उस पद की गरिमा के अनुरूप वह हमेशा आचरण करे।
18: इस प्रकार के बयान जिनको देश में उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बुलाया, उनके द्वारा जब इस प्रकार के घटिया बयान दिए जाते हैं तो उसका एक ही जवाब है कि हिंदू समाज सदैव सबको अपनाने का काम करता है, सबको सम्मान देने का काम करता है और सबके साथ समरस होकर के काम करता है। इस प्रकार के बयानों से जरूर वैमनस्यता फैलती है और एक घृणा का भाव आता है, लेकिन इस प्रकार के बयान से लगातार कभी न कभी देश के उपराष्ट्रपति रहे श्री हामिद अंसारी जी बयान देते रहे हैं जो अनुचित है, उसे स्वीकार नहीं किया।
19: अगर हिंदू हमारे हिंदुस्तान में बहुसंख्यक नहीं होता तो मेरा हिंदुस्तान न तो सेकुलर होता और न पंथ निरपेक्ष होता। जिस वक्त बंटवारा हुआ इस देश का, उसमें जो है वो हिंदू बहुसंख्यक वाला हिंदुस्तान जो है वो पंथ निरपेक्ष और सेकुलर बना, मुस्लिम बहुसंख्यक वाला पाकिस्तान जो है वो इस्लामी राष्ट्र घोषित हुआ। इतना से भी अगर ABCD नहीं समझते और इस तरह के जो है वो छल छत्रप और इस तरह के जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट करने के जो कारीगर लोग हैं, वो मुझे लगता है कि आप इस तरह के कन्फ्यूजन क्रिएट करके, जो कम्युनल कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सफल नहीं होंगे।
20: आज देश तरक्की के रास्ते पर है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर है। पिछले 12 सालों में जितना मुसलमानों ने तरक्की की है नरेंद्र मोदी की हुकूमत में, उतनी तरक्की कहीं नहीं हुई है। कांग्रेस के राज में दंगे होते थे, हजारों मुसलमान मार दिए जाते थे, कत्ल हो जाता था। आज 12 साल से कोई दंगा नहीं है, फसाद नहीं है, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा है।
21: उन्होंने कहा कि यहां पर उग्र वाम पंथ की तुलना में दक्षिण पंथी हिंदू सांप्रदायिकता अधिक खतरनाक है। यदि हिंदू सांप्रदायिक होता, यदि हिंदू कट्टर होता तो हामिद अंसारी ये बात कहने का साहस नहीं कर सकते थे। इस तरह की बातें करने वाला या तो कोई अनजान होता है या बेईमान होता है। हामिद अंसारी अनजान नहीं हो सकते, वो इन सब तथ्यों को जानते। उनके ये वक्तव्य किसी बेईमानी से कम होंगे ऐसा लगता नहीं, वो किसी हिडन एजेंडा के अंतर्गत काम करते हैं। भारत की शांति, भारत का सौहार्द, ये शायद उनके एजेंडे को सूट नहीं करता। देश की जनता उनको पहचान चुकी है, उनको जान चुकी है, इनके किसी बहकावे में आने वाली नहीं है।
0: हामिद अंसारी साहब के पहले भी उन्होंने बहुत कंट्रोवर्सी बयान दिए थे और उसके बाद फिर उन्होंने एक कंट्रोवर्सी बयान अपना मुसलमानों के नाम से दिया है। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं। आज फिर उनको मुसलमान याद आ गए। जब वो सत्ता में थे, बड़ी बड़ी पदों पर बैठे थे, तब वो सेकुलर थे, तो इस तरह का मुसलमानों का फिर इस्तेमाल करके उन्होंने जो बयान दिया है और जिस तरह से दोबारा से मुसलमानों को उकसाने का ये उन्होंने बयान दिया है, भड़काने का बयान दिया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश है।
15: The West Asia conflict is entering another dangerous phase of escalation. The Houthis now claim attacks on Saudi Arabia's capital, Riyadh. At the same time, Turkey has signaled its readiness to support Saudi Arabia. And with Hormuz already being a major flashpoint, concerns are growing over the wider impact on global shipping and energy supplies. Take a look at this report.
2: It's been 7 months since the West Asia war haunted the region and tightened its chokehold on oil supplies and refineries across the world. For the first time since the conflict began, the Houthis have targeted Saudi Arabia's capital, Riyadh. The Houthis claim to have targeted both King Khalid International Airport and Aramco facilities in Saudi Arabia. This has once again brought the Bab al-Mandeb Strait into sharp focus and raised concerns over the strategic choke point.
15: The Yemeni armed forces carried out, with the help of Almighty God, two significant military operations using a large number of ballistic and cruise missiles as well as drones. The first targeted sensitive targets in the Saudi enemy's capital, Riyadh. The second targeted the Aramco company in Yanbu. Both operations were crowned a success, resulting in massive fires at the targeted sites.
2: The attack has also raised questions over the trilateral Mecca defense pact, which involves Pakistan, Saudi Arabia and Turkey. Turkish foreign minister said on Saturday that Saudi Arabia may have military requirements due to the ongoing attacks by Yemen's Houthis and that Turkey was ready to provide assistance. But Houthi forces have threatened Pakistan and Turkey, warning them to stay out of the conflict or face consequences. Just days earlier, the Yemeni government claimed that Iran-aligned Houthi forces fired 6 ballistic missiles at the Red Sea port of Mocha on August 14th. The Houthis have established their presence across key areas and significant islands of Yemen. These locations sit along one of the world's most important maritime routes, connecting the Red Sea to the Gulf of Aden and ultimately the Indian Ocean. This makes the chokehold even more critical. The shortest maritime routes connecting West Asia to the rest of the world revolve around 3 key choke points. The Suez Canal, a narrow but vital passage for global shipping. The Bab al-Mandeb Strait, which the Houthis have threatened to disrupt. And the Strait of Hormuz, which Iran has said will remain closed until its conditions are met.
15: Today on the diplomatic front as well, our positions are completely clear, rational and non-negotiable. Our messages and conditions have been conveyed explicitly to the other side through intermediaries, and the enemies know full well that the path of deception and unilateral imposition is closed. And until these conditions are met, the inalienable rights of the Iranian nation are recognized and the Americans fulfill their commitments, there will be no possibility of a return to the previous negotiation framework or to reopen the Strait of Hormuz.
2: And it's not just that. US President Donald Trump has cut short his visit to Camp David and rushed back to Washington as tensions continue to escalate. The US State Department and American embassies across West Asia have also issued security alerts. This is where the West Asia crisis meets the global economy. The question is no longer where the next strike will come from, but how far its consequences will spread. ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया टुडे.
15: From the world of entertainment, this is a controversy that has indeed taken center stage. It's Katrina Kaif who's at the center of this trolling storm. After she recently was spotted in public, trolls started targeting her looks and body, even questioning her beauty. Amid the backlash, it's Salman Khan who appeared to indirectly come out in support of Katrina Kaif during a recent Big Boss Weekend Ka Vaar episode. Let's take a look.
3: Once known for her fitness, now being trolled for her post-pregnancy weight. For years, Katrina Kaif has been known for her fitness and her carefully maintained on-screen image. But after becoming a mother, the conversation around the actress has taken a very different turn. Instead of talking about her post-pregnancy glow or even her motherhood, social media users started body-shaming her. And now, two of her former co-stars, Salman Khan and Ali Zafar, have spoken out against the trolling. Katrina Kaif recently stepped out with husband Vicky Kaushal at an Ambani family's Ganesh Chaturthi celebrations. And a section of social media began commenting on a post-pregnancy weight gain. And the body shaming quickly became a talking point online. Katrina herself has not responded on the trolling so far. But someone who did speak up was her longtime friend Salman Khan. On the latest Big Boss 20 Weekend Ka Vaar, Salman spoke about the way celebrities, especially women, are targeted for their appearance. And while he did not take Katrina's name, his comments came right in the middle of the backlash she was facing. Salman questioned why a woman should be trolled simply because she gained weight after pregnancy. His point was simple, that pregnancy changes a woman's body and there should not be an expectation that she immediately return to her pre-pregnancy appearance. But Salman wasn't the only one to call out the trolling. Pakistani actor and singer Ali Zafar, who worked with Katrina in Meri Brother Ki Dulhan, also came out in her support. In a video addressing the issue, Ali Zafar said that society needs to look inward and question the standards it creates for women's bodies. Meanwhile, Katrina's fans have also pushed back against the trolling. Many users have reminded people that pregnancy and motherhood naturally bring physical changes and that a woman's body does not need to look the same before and after childbirth. Because after years of seeing actresses judged for being too thin, too heavy, too old, too young, the question is not really about Katrina's weight. It is about why a woman's body becomes public property the moment she steps into the spotlight. Bureau Report, India Today.
15: On that note, viewers, we're wrapping up the bulletin right here, but do stay tuned to India Today as we keep bringing you all the latest updates on the top stories through the evening. Thank you for watching.
4: You are watching India Today.

0: are watching India Today.
1: In the Delhi SIRO, the Election Commission has issued notices to several high-profile figures across the national capital. Those flagged for discrepancies include External Affairs Minister S. Jaishankar and his wife, former Army Chief Upendra Dwivedi, CBI Director Praveen Sood, former Supreme Court Justice Ranjana Desai, Congress leader Udit Raj and former Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia. Discrepancies leading to these notices include names being unmapped with previous electoral rolls, name mismatches and parental age inconsistencies. Now, the Delhi Chief Electoral Officer has clarified that issue of notice does not mean that their names will be deleted from the electoral rolls of the NCT of Delhi. The poll body has explained that notices are being issued to correct their data and that no name can be deleted without giving an opportunity of being heard and an appealable order. Earlier, former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and four members of his family served electoral roll verification notices under the unmapped with last SIR category. This came after Kejriwal had publicly questioned the SIR exercise over deletions from the draft electoral roll. Kejriwal steps up his attack on the SIR, calling it an attempt to reduce India's population. In fact, he went a step further, claiming the exercise could bring the population of the country down from the current 140 crores to 50 crores, while alleging 47 lakh names are missing from the draft voter roll. Meanwhile, Delhi Chief Minister Rekha Gupta's electoral details were flagged also for a discrepancy during the SIR process, prompting a notice. But after physical verification by the BLO, her documents and details were checked out and then validated.
2: यह SIR का नया प्रोविजन इलेक्शन कमीशन ने भारतीय जनता पार्टी की दबाव में किया है और अभी तक 12-13 करोड़ वोटर्स डिलीट कर दिए गए। ये तो लोकतंत्र को खत्म करने की एक बड़ी साजिश है और ये इस बात का बड़ा सबूत है कि जब एलके अडवाणी के पास नोटिस जाएगा देश के फॉरेन सेक्रेटरी के पास जाएगा तो इससे अंदाजा किया जा सकता है कि ये प्रोसेस जो है वो कितना गलत प्रोसेस है
3: एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है और वो इतना निष्पक्ष है उसमें उतनी पारदर्शिता है कि जो नोटिसेस दिए गए हैं उसमें बड़े बड़े लीडर्स के नाम है और चाहे वो कपिल सिब्बल हों चाहे हमारी रेखा गुप्ता जी हों चाहे लाल कृष्ण अडवाणी जी हों और चाहे अरविंद केजरीवाल जी हों उन सबको दिए गए हैं क्योंकि एक रूल ऑफ लॉ है उसके तहत एक कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत सबको बताना पड़ता है वेरीफाई करना पड़ता है नोटिसेस जाते हैं और आप सही डॉक्यूमेंट्स देते हैं और बात साफ तौर से नई तरह से अपडेट हो जाती है इलेक्टोरल लिस्ट में लेकिन उसमें भी राजनीति देखिए बजाय ये समझने के कि लाल कृष्ण अडवाणी जी को भी गया है भाई एस जयशंकर जी को भी गया है जो हमारे मंत्री एक्सटर्नल अफेयर्स के लेकिन आप अपनी बात करके अपना रोना आपने मातम शुरू कर दिया है
4: ये बीएलओ को फॉर्म दिया मेरे दस्तखत हैं यहां और बीएलओ के दस्तखत तो मैचिंग हो गया तो इसका मतलब मेरा मैच करता है तो फिर मैं नोटिस कैसे आया मैं ज्ञानेश कुमार जी से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने नोटिस कैसे दिया मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं 1992 और 2002 में मैं राज्यसभा का मेंबर था इतना बड़ा घोटाला हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ आज तक नहीं हुआ
1: राहुल गांधी's छात्रों की गूंज has now stepped into a new political arena. At the Indore session, Rahul Gandhi was seen on a stage with a comedian, where the two appeared to mock Prime Minister Modi's gesture towards an elderly woman when he asked someone to give her a chair. The BJP called it shameful and disgusting. The party posted a video of Prime Minister Modi with his mother and said Rahul Gandhi has now stooped to a new low. Here is a report on the same. Take a look.
5: और बताइए, हाँ? और बताइए थोड़ा। माँ को कुर्सी दो, माँ, माँ।
6: An attempt to mock Prime Minister Modi by Congress has ended up creating another controversy, leaving many questioning the Congress's intent and criticizing the party. It all happened at Rahul Gandhi's Chhatron Ki Goonj event in Indore on Saturday. The Congress invited comedian Pulkit Mani to Rahul's event. The comedian performed a satirical mimicry of Prime Minister Modi and mocked an incident involving the Prime Minister and an old lady whom he had referred to as Ma.
7: Aur bataiye, aur bataiye thoda. Ma ko kursi do. Ma, ma.
6: Just last month, in an attempt to mock Modi, the Congress raked up Italian Prime Minister Giorgia Meloni and made what the BJP called distasteful comments.
8: इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया. अब अजीब चीजें घुस जाती हैं. But इनके माइंड में घुस गया कि foreign policy is this. अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी.
9: एक चीज पूछ सकता हूं?
8: हाँ.
9: मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था.
6: The BJP hammered the Congress over the controversy, accusing it of stooping lower and lower. The Congress defended its leader and the act.
10: Rahul Gandhi ji, वो एक कार्यक्रम लेते हैं, छात्रों के बीच जाते हैं. नाम तो उन्होंने छात्रों की गूंज दिया है, लेकिन वो झूठ बोलते हैं, अपमान करते हैं, भारतीय संस्कृति का भी अपमान करते हैं.
11: मैं समझता हूँ ये तो प्रहलाद जोशी समझ नहीं पाते. भाषा का ज्ञान नहीं उनको, विषय का ज्ञान नहीं. इस तरह की बातें बेतुकी वो बोल जाते हैं. वो पहली बार नहीं बोल रहे, वो आदतन बेतुकी बातें बोलते हैं. माँ का कहाँ से जिक्र आ गया? मैं तो दो बार तीन बार देख चुका राहुल जी का, माँ का तो कहीं जिक्र ही नहीं आया था.
12: राहुल गांधी जी को सुनने के लिए कोई आने को तैयार नहीं है. 100 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं. तो आपने देखा कि नेहा सिंह राठौर को जो है उन्होंने बुला लिया गुजरात. और आज जो है, कल जब मैं देख रहा था तो स्टैंड अप कॉमेडियन जो है उसको लेके इंदौर में घूम रहे हैं.
13: राजनीति के अंदर जो है, जब आप शीर्ष पदों पर होते हैं तो आपको इस तरीके के इस तरीके की चीजों को स्वाभाविक रूप में लेना पड़ता है. लोकतंत्रवादी नहीं है आप. लोकतंत्र के अंदर इन चीजों को आपको पार्ट ऑफ गेम समझना पड़ता है.
6: It is not the first time that the Congress, in an attempt to target Prime Minister Modi, has gone too far and ended up scoring an own goal. The Granule Party seriously needs to consider whether such controversies can be avoided. With Piyush Mishra and Ravish Pal, Bureau Report, India Today.
1: The scripted history shattered the blueprint and no other channel has them. We are going completely unfiltered with the new faces of the Delhi University Student Union, Students Politics. The winner and the game changer, India Today's Anjali Pandey, with these twin campus exclusives, the campus king, Yash Dabbas, and the defiant rebel, Deepanshu Shokin.
14: काफी कांटे की टक्कर थी आपके बीच और एनएसयूआई के जो कैंडिडेट थे विजय मीना, उनके बीच. हर राउंड के बाद ऐसा लग रहा था कि कभी कोई आगे हो जा रहा था, कभी कोई आगे हो जा रहा था. काफी कम ऐसा होता है कि एंड के राउंड्स तक भी ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि कौन जीतने वाला है. तो आपको उस टाइम पे जब आप काउंटिंग बूथ पे प्रेजेंट थे, आपको उस टाइम पे कैसा लग रहा था जब हर राउंड के बाद रिजल्ट कभी इस तरफ जा रहा था, कभी उस तरफ जा रहा था?
15: मैम, मैं काफी रिलैक्स था. मुझे कहीं ना कहीं आत्मविश्वास था कि अभी एक आधे जो हमारे कैंपसेस है वो खुलने बाकी है, उनका रिजल्ट आना बाकी है, और उनका रिजल्ट आते ही मैं लीड मेंटेन कर लूंगा. और जैसे ही मुझे लगा कि हाँ उन कैंपसेस की वोटिंग खुली है, तो उसके बाद हमने एकदम से 2000 का मार्जिन क्लेम किया.
14: जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था यश, तो ये कहा जा रहा था कि यश देबास क्लियर विनर है, आज ही प्रेसिडेंट डिक्लेयर हो गया है। जब एनएसयूआई ने अपनी टिकट्स अनाउंस करी, उसके बाद सब कह रहे थे कि इस बार तो यश देबास ही जीतने वाला है। लेकिन कल जब काउंटिंग हुई तो हमने देखा कि कैसे काफी क्लोज कॉन्टेस्ट था, एनएसयूआई ने स्ट्रांग कमबैक किया। क्या आपको उम्मीद थी कि इतना क्लोज कॉन्टेस्ट होने वाला है, और क्या आपको लग रहा था कि मैं तो इजिली जीत जाऊंगा, क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी ये बात कह रही थी?
15: नहीं मैम, मुझे कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि कंपटीशन टक्कर का ही रहने वाला है। हमने उसी हिसाब से तैयारी भी की थी, और अपने कभी भी ओपोनेंट को हम हल्का तो समझना नहीं चाहिए, ना हमने समझा, इसीलिए हमने उसी तरीके की मेहनत की। और फिर कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पांस आया और हम 2100 के मार्जिन से प्रेसिडेंट पोस्ट पे जीत के आए।
14: तो कौन सी ऐसी चीज है जो एबीवीपी ने एनएसयूआई से अलग की और जो कि एबीवीपी के लिए काम कर गई?
15: मैम, जो एबीवीपी की इकाई है, जो हर एक कॉलेज में हमारी इकाई है, जो पूरा साल वो स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, छात्र हित के लिए काम करते हैं, राष्ट्र हित के लिए काम करते हैं, जो पूरा साल वो लगातार बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी स्वार्थ के जो लगातार काम करते हैं, वही हमारे जीत का कारण रहा। एनएसयूआई अगर आप देखेंगे तो वो केवल साल के आपके दो साल के आपको दो महीनों में ही दिखेगी, अगस्त और सितंबर, क्योंकि इन समय डूसू, उसके अलावा वो पूरे साल में आपको कहीं नजर नहीं आएगी।
14: फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू यू, आपने हिस्ट्री स्क्रिप्ट की है इतने सारे तरीकों से, रिकॉर्ड मैंडेट मिला है आपको, मार्जिन इतना बड़ा रहा, सबसे पहला जो नाम एकदम पक्का हो गया था, जीत जिसकी पक्की हो गई थी सुबह ही, वो आप ही थे। दीपांशु, एक वो दिन था जिस दिन आपको टिकट मना की गई थी, जिस दिन आपको टिकट नहीं दी गई एनएसयूआई की तरफ से, आपकी वीडियोज वायरल हुई, आप काफी इमोशनल थे, उस दिन आपने डिसीजन लिया कि आप इंडिपेंडेंट लड़ेंगे इलेक्शन, और एक कल का दिन था जब कोई एक ऐसा कैंडिडेट था जिसकी जीत सबसे पहले पक्की हुई थी और सबसे ज्यादा पक्की जीत थी, वो आप ही थे। कैसी रही ये जर्नी?
16: जर्नी काफी अच्छी रही, बहुत से स्ट्रगल्स इसके बीच में आए, जैसे और आपने पूछा कि भाई टिकट कटने के बाद और यहाँ जीत तक का सफर कैसा रहा, तो बहुत ही प्यार और स्टूडेंट्स ने भरोसा मुझ पर जताया, और उस भरोसे पर मैं खरा उतरूंगा, क्योंकि मेरा इलेक्शन सिर्फ मैंने नहीं लड़ा, मेरा इलेक्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर एक छात्र ने लड़ा, और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ने प्रूव किया कि अगर वो गलत होता देखेंगे तो स्टूडेंट्स अपनी आवाज उठाना जानते हैं, और उन्होंने मुझे अपनी आवाज के रूप में चुना।
14: दीपांशु, मैं आपसे जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी कंट्रोवर्सी रही उस पर भी बात करना चाहूंगी, क्योंकि कई वीडियोस वायरल हुए एनएसयूआई प्रेसिडेंट के, कई सारी थ्योरीज जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे चल रही थी, जिसमें कि उनका ये कहना था कि आपकी तरफ से कुछ शर्तें रखी गई थी और उन शर्तों को वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से आपको टिकट नहीं दी गई। उनका ये भी कहना है कि वो आपको प्रेसिडेंट की टिकट दे रहे थे लेकिन आप राजी नहीं थे प्रेसिडेंट लड़ने के लिए, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे?
16: बहुत सी ऐसी बातें थी जो सामने आती है, और आप देख सकते हैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट कर रहा हूँ, दो और कैंडिडेट थे जो इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट कर रहे थे, तो मैं साफ साफ ये कहना चाहूंगा कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी, ना तो वहां पे मैनेजमेंट हो पाई चीजों को लेकर, और जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे जिनका जेनजी का जिन पे भरोसा था, जो खुद स्टूडेंट जिनको सपोर्ट कर रहे थे, जो चाह रहे थे कि भाई कॉमन स्टूडेंट जिनके सपोर्ट में थे, उनको मौका नहीं मिला। आप देख सकते हैं जिस तरीके का मैंडेट सामने आया है, तो ये साफ दर्शाता है कि इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से स्टूडेंट्स का जो भरोसा था वो कहीं ना कहीं टूटा। और मैं कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी बात करते हैं हमारे जेनजीज की और छात्रों की गूंज की, तो वो बहुत अच्छा कंसेप्ट है जो स्टूडेंट्स उसे कनेक्ट करते हैं, पर कहीं ना कहीं इंटरनल पॉलिटिक्स जो एनएसयूआई के अंदर हुई, जो एनएसयूआई की लीडरशिप की वजह से हुई, उसने साफ साफ जो नुकसान एनएसयूआई को हुआ वो उस वजह से हुआ।
17: Former Vice President Hamid Ansari's remarks on Hindu right-wing communalism have triggered a fresh political confrontation, with the BJP launching a sharp attack on both Ansari and the Congress. Speaking at the AG Noorani Memorial Lecture in New Delhi, Ansari cited a remark attributed to Jawaharlal Nehru saying the greater danger to India was Hindu right-wing communalism rather than communism. Ansari also warned of what he described as recent challenges to civic nationalism, arguing that religious distinctions could emerge between citizens. The BJP has hit back hard, accusing the Congress of spreading anti-Hindu propaganda, calling Ansari's remarks unfortunate and demanding an apology. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, meanwhile, launched a scathing attack on former Vice President Hamid Ansari, alleging his remarks disrespect India's Sanatan traditions. Meanwhile, senior Muslim cleric and Imam body chief Umair Ahmad Ilyasi has also hit back at Ansari, accusing him of provoking Muslims and alleging a larger conspiracy behind his remarks.
18: Jawaharlal Nehru's observation in an officers' meeting of the Ministry of External Affairs and recorded for posterity by Foreign Secretary Gundevia, and I quote those words, "The danger to India, mark you, it is not communism, it is Hindu right-wing communalism."
19: कुछ लोगों की फितरत होती है कि वे अपने पद की मर्यादा को बनाए नहीं रख पाते हैं, उस मर्यादा के विपरीत अपना आचरण करना उनके जीवन की फितरत बन चुकी होती है। श्रीमान हामिद अंसारी, जो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने 5 वर्ष के अपने कार्यकाल को देश के अंदर संपन्न किया, उन्होंने कल एक वक्तव्य दिया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य था, और हम जैसे लोगों को शोभा भी नहीं देता कि हम उसका खंडन मंडन करें, लेकिन उनके जो वक्तव्य थे वह सचमुच डरावने वक्तव्य हैं, भारत के लिए, भारतीयता के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारत की परंपरा के लिए, और ये वक्तव्य दुनिया में भारत की छवि को धूमिल करने के कुत्सित प्रयासों के उस एजेंडे का हिस्सा है जो एंटी इंडिया फोर्सेस के द्वारा निरंतर निरंतर उसका दुष्प्रचार किया जाता है। उनके द्वारा शुद्ध रूप से भारत की सनातन परंपरा को कोसने, भारत की हिंदू परंपरा को अपमानित करने के वक्तव्य दिए गए और उसको आतंकवाद से जोड़ने के कुत्सित प्रयास हुए। एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति से भारत का संविधान अपेक्षा करता है कि उस पद की गरिमा के अनुरूप वह हमेशा आचरण करे।
20: इस प्रकार के बयान जिनको देश में उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बुलाया, उनके द्वारा जब इस प्रकार के घटिया बयान दिए जाते हैं तो उसका एक ही जवाब है कि हिंदू समाज सदैव सबको अपनाने का काम करता है, सबको सम्मान देने का काम करता है और सबके साथ समरस होकर के काम करता है। इस प्रकार के बयानों से जरूर वैमनस्यता फैलती है और एक घृणा का भाव आता है, लेकिन इस प्रकार के बयान से लगातार कभी न कभी देश के उपराष्ट्रपति रहे श्री हामिद अंसारी जी बयान देते रहे हैं जो अनुचित है, उसे स्वीकार नहीं किया जाता।
21: अगर हिंदू हमारे हिंदुस्तान में बहुसंख्यक नहीं होता तो मेरा हिंदुस्तान न तो सेकुलर होता और न पंथ निरपेक्ष होता। जिस वक्त बंटवारा हुआ इस देश का,

0: तरह के जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट करने के जो कारीगर लोग हैं, वो मुझे लगता है कि आप इस तरह के कन्फ्यूजन क्रिएट करके, जो कम्युनल कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सफल नहीं होंगे।
1: आज देश तरक्की के रास्ते पर है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर है। पिछले 12 सालों में जितना मुसलमानों ने तरक्की की है नरेंद्र मोदी की हुकूमत में, उतनी तरक्की कहीं नहीं हुई है। कांग्रेस के राज में दंगे होते थे, हजारों मुसलमान मार दिए जाते थे, कत्ल हो जाता था। आज 12 साल से कोई दंगा नहीं है, फसाद नहीं है, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा है।
2: उन्होंने कहा कि यहां पर उग्र वाम पंथ की तुलना में दक्षिण पंथी हिंदू सांप्रदायिकता अधिक खतरनाक है। यदि हिंदू सांप्रदायिक होता, यदि हिंदू कट्टर होता, तो हामिद अंसारी ये बात कहने का साहस नहीं कर सकते थे। इस तरह की बातें करने वाला या तो कोई अनजान होता है या बेईमान होता है। हामिद अंसारी अनजान नहीं हो सकते, वो इन सब तथ्यों को जानते। उनके ये वक्तव्य किसी बेईमानी से कम होंगे ऐसा लगता नहीं। वो किसी हिडन एजेंडा के अंतर्गत काम करते हैं। भारत की शांति, भारत का सौहार्द, ये शायद उनके एजेंडे को सूट नहीं करता। देश की जनता उनको पहचान चुकी है, उनको जान चुकी है, इनके किसी बहकावे में आने वाली नहीं है।
3: हामिद अंसारी साहब के पहले भी उन्होंने बहुत कंट्रोवर्सी बयान दिए थे और उसके बाद फिर उन्होंने एक कंट्रोवर्सी बयान अपना मुसलमानों के नाम से दिया है। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं। आज फिर उनको मुसलमान याद आ गए। जब वो सत्ता में थे, बड़ी बड़ी पदों पर बैठे थे, तब वो सेकुलर थे, तो इस तरह का मुसलमानों का फिर इस्तेमाल करके उन्होंने जो बयान दिया है और जिस तरह से दोबारा से मुसलमानों को उकसाने का ये उन्होंने बयान दिया है, भड़काने का बयान दिया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश है।
4: The West Asia conflict is entering another dangerous phase of escalation. The Houthis now claim attacks on Saudi Arabia's capital, Riyadh. At the same time, Turkey has signaled its readiness to support Saudi Arabia. And with Hormuz already being a major flashpoint, concerns are growing over the wider impact on global shipping and energy supplies. Take a look at this report.
5: It's been 7 months since the West Asia war haunted the region and tightened its chokehold on oil supplies and refineries across the world. For the first time since the conflict began, the Houthis have targeted Saudi Arabia's capital, Riyadh. The Houthis claim to have targeted both King Khalid International Airport and Aramco facilities in Saudi Arabia. This has once again brought the Bab al-Mandeb Strait into sharp focus and raised concerns over the strategic choke point.
6: The Yemeni armed forces carried out, with the help of Almighty God, two significant military operations using a large number of ballistic and cruise missiles as well as drones. The first targeted sensitive targets in the Saudi enemy's capital, Riyadh. The second targeted the Aramco company in Yanbu. Both operations were crowned a success, resulting in massive fires at the targeted sites.
5: The attack has also raised questions over the trilateral Mecca defense pact, which involves Pakistan, Saudi Arabia and Turkey. Turkish foreign minister said on Saturday that Saudi Arabia may have military requirements due to the ongoing attacks by Yemen's Houthis and that Turkey was ready to provide assistance. But Houthi forces have threatened Pakistan and Turkey, warning them to stay out of the conflict or face consequences. Just days earlier, the Yemeni government claimed that Iran-aligned Houthi forces fired 6 ballistic missiles at the Red Sea port of Mocha on August 14th. The Houthis have established their presence across key areas and significant islands of Yemen. These locations sit along one of the world's most important maritime routes, connecting the Red Sea to the Gulf of Aden and ultimately the Indian Ocean. This makes the chokehold even more critical. The shortest maritime routes connecting West Asia to the rest of the world revolve around 3 key choke points. The Suez Canal, a narrow but vital passage for global shipping. the Bab el-Mandeb Strait, which the Houthis

0: ये है हिंदुस्तान की शिक्षा का बजट। पहले 2014 में जब हमारी सरकार थी, बजट का 4.6% शिक्षा में जाता था। उसके बाद बजट कम करते करते करते करते 2.6% ऑफ बजट एजुकेशन में जाता है, 7.7 लाख करोड़ रुपए जो शिक्षा में जाने थे, अगर वो बजट मेंटेन किया जाता, वो शिक्षा में नहीं गए, वो अरबपतियों के हाथ गए, वो अदानी अंबानी के हाथ गए।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: are watching India Today.
1: In the Delhi SIRO, the Election Commission has issued notices to several high-profile figures across the national capital. Those flagged for discrepancies include External Affairs Minister S. Jaishankar and his wife, former Army Chief Upendra Dwivedi, CBI Director Praveen Sood, former Supreme Court Justice Ranjana Desai, Congress leader Udit Raj and former Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia. Discrepancies leading to these notices include names being unmapped with previous electoral rolls, name mismatches and parental age inconsistencies. Now, the Delhi Chief Electoral Officer has clarified that issue of notice does not mean that their names will be deleted from the electoral rolls of the NCT of Delhi. The poll body has explained that notices are being issued to correct their data and that no name can be deleted without giving an opportunity of being heard and an appealable order. Earlier, former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and four members of his family served electoral roll verification notices under the unmapped with last SIR category. This came after Kejriwal had publicly questioned the SIR exercise over deletions from the draft electoral roll. Kejriwal steps up his attack on the SIR, calling it an attempt to reduce India's population. In fact, he went a step further, claiming the exercise could bring the population of the country down from the current 140 crores to 50 crores, while alleging 47 lakh names are missing from the draft voter roll. Meanwhile, Delhi Chief Minister Rekha Gupta's electoral details were flagged also for a discrepancy during the SIR process, prompting a notice. But after physical verification by the BLO, her documents and details were checked out and then validated.
2: यह SIR का नया प्रोविजन इलेक्शन कमीशन ने भारतीय जनता पार्टी की दबाव में किया है और अभी तक 12-13 करोड़ वोटर्स डिलीट कर दिए गए। ये तो लोकतंत्र को खत्म करने की एक बड़ी साजिश है और ये इस बात का बड़ा सबूत है कि जब एलके अडवाणी के पास नोटिस जाएगा देश के फॉरेन सेक्रेटरी के पास जाएगा तो इससे अंदाजा किया जा सकता है कि ये प्रोसेस जो है वो कितना गलत प्रोसेस है
3: एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है और वो इतना निष्पक्ष है उसमें इतनी पारदर्शिता है कि जो नोटिसेस दिए गए हैं उसमें बड़े बड़े लीडर्स के नाम है और चाहे वो कपिल सिब्बल हों चाहे हमारी रेखा गुप्ता जी हों चाहे लाल कृष्ण अडवाणी जी हों और चाहे अरविंद केजरीवाल जी हों उन सबको दिए गए हैं क्योंकि एक रूल ऑफ लॉ है उसके तहत एक कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत सबको बताना पड़ता है वेरीफाई करना पड़ता है नोटिसेस जाते हैं और आप सही डॉक्यूमेंट्स देते हैं और बात साफ तौर से नई तरह से अपडेट हो जाती है इलेक्टोरल लिस्ट में लेकिन उसमें भी राजनीति देखिए बजाय ये समझने के कि लाल कृष्ण अडवाणी जी को भी गया है भाई एस जयशंकर जी को भी गया है जो हमारे मंत्री एक्सटर्नल अफेयर्स के लेकिन आप अपनी बात करके अपना रोना अपने मातम शुरू कर दिया है
4: ये बीएलओ को फॉर्म दिया मेरे दस्तखत हैं यहां और बीएलओ के दस्तखत तो मैचिंग हो गया तो इसका मतलब मेरा मैच करता है तो फिर मैं नोटिस कैसे आया मैं ज्ञानेश कुमार जी से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने नोटिस कैसे दिया मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं 1992 में मैं राज्यसभा का मेंबर था इतना बड़ा घोटाला हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ आज तक नहीं हुआ
1: राहुल गांधी's छात्रों की गूंज has now stepped into a new political arena. At the Indore session, Rahul Gandhi was seen on a stage with a comedian, where the two appeared to mock Prime Minister Modi's gesture towards an elderly woman when he asked someone to give her a chair. The BJP called it shameful and disgusting. The party posted a video of Prime Minister Modi with his mother and said Rahul Gandhi has now stooped to a new low. Here is a report on the same. Take a look.
5: और बताइए, और बताइए थोड़ा। माँ को कुर्सी दो, माँ।
6: An attempt to mock Prime Minister Modi by Congress has ended up creating another controversy, leaving many questioning the Congress's intent and criticizing the party. It all happened at Rahul Gandhi's Chhatron Ki Goonj event in Indore on Saturday. The Congress invited comedian Pulkit Mani to Rahul's event. The comedian performed a satirical mimicry of Prime Minister Modi and mocked an incident involving the Prime Minister and an old lady whom he had referred to as Ma.
5: Aur bataiye, aur bataiye thoda. Ma ko kursi do. Ma, ma.
6: Just last month, in an attempt to mock Modi, the Congress raked up Italian Prime Minister Giorgia Meloni and made what the BJP called distasteful comments.
7: इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया. अब अजीब चीजें घुस जाती हैं. But इनके माइंड में घुस गया कि foreign policy is this. अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी.
8: एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ. मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था.
6: The BJP hammered the Congress over the controversy, accusing it of stooping lower and lower. The Congress defended its leader and the act.
9: राहुल गांधी जी, वो एक कार्यक्रम लेते हैं, छात्रों के बीच जाते हैं. नाम तो उन्होंने छात्रों की गूंज दिया है, लेकिन वो झूठ बोलते हैं, अपमान करते हैं, भारतीय संस्कृति का भी अपमान करते हैं.
10: मैं समझता हूँ ये तो प्रहलाद जोशी समझ नहीं पाते. भाषा का ज्ञान नहीं उनको, विषय का ज्ञान नहीं. इस तरह की बातें बेतुकी वो बोल जाते हैं, वो पहली बार नहीं बोल रहे हैं, वो आदतन बेतुकी बातें बोलते हैं. माँ का कहाँ से जिक्र आ गया? मैं तो दो बार तीन बार देख चुका राहुल जी का, माँ का तो कहीं जिक्र ही नहीं आया था.
11: राहुल गांधी जी को सुनने के लिए कोई आने को तैयार नहीं है. 100 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं. तो आपने देखा कि नेहा सिंह राठौर को जो है उन्होंने बुला लिया गुजरात. और आज जो है, कल जब मैं देख रहा था तो स्टैंड अप कॉमेडियन जो है उसको लेके इंदौर में घूम रहे हैं.
12: राजनीति के अंदर जो है, जब आप शीर्ष पदों पर होते हैं तो आपको इस तरीके के इस तरीके की चीजों को स्वाभाविक रूप में लेना पड़ता है. लोकतंत्रवादी नहीं है आप, लोकतंत्र के अंदर इन चीजों को आपको पार्ट ऑफ गेम समझना पड़ता है.
6: It is not the first time that the Congress, in an attempt to target Prime Minister Modi, has gone too far and ended up scoring an own goal. The Grand Old Party seriously needs to consider whether such controversies can be avoided. With Piyush Mishra and Ravish Pal, Bureau Report, India Today.
1: The scripted history shattered the blueprint and no other channel has them. We are going completely unfiltered with the new faces of the Delhi University Student Union, Students Politics. The winner and the game changer, India Today's Anjali Pandey, with these twin campus exclusives, the campus king, Yash Dabbas, and the defiant rebel, Deepanshu Shokin.
13: काफी काटे की टक्कर थी आपके बीच और एनएसयूआई के जो कैंडिडेट थे विजय मीना, उनके बीच. हर राउंड के बाद ऐसा लग रहा था कि कभी कोई आगे हो जा रहा था, कभी कोई आगे हो जा रहा था. काफी कम ऐसा होता है कि एंड के राउंड्स तक भी ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि कौन जीतने वाला है. तो आपको उस टाइम पे जब आप काउंटिंग बूथ पे प्रेजेंट थे, आपको उस टाइम पे कैसा लग रहा था जब हर राउंड के बाद रिजल्ट कभी इस तरफ जा रहा था, कभी उस तरफ जा रहा था?
14: मैम, मैं काफी रिलैक्स था. मुझे कहीं ना कहीं आत्मविश्वास था कि अभी एक आधे जो हमारे कैंपसेज है वो खुलने बाकी है, उनका रिजल्ट आना बाकी है, और उनका रिजल्ट आते ही मैं लीड मेंटेन कर लूंगा. और जैसे ही मुझे लगा कि हाँ उन कैंपसेज की वोटिंग खुली है, तो उसके बाद हमने एकदम से 2000 का मार्जिन क्लेम किया.
13: जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था यश, तो ये कहा जा रहा था कि यश देबास क्लियर विनर है, आज ही प्रेसिडेंट डिक्लेयर हो गया है। जब एनएसयूआई ने अपनी टिकट्स अनाउंस करी, उसके बाद सब कह रहे थे कि इस बार तो यश देबास ही जीतने वाला है। लेकिन कल जब काउंटिंग हुई तो हमने देखा कि कैसे काफी क्लोज कॉन्टेस्ट था, एनएसयूआई ने स्ट्रांग कमबैक किया। क्या आपको उम्मीद थी कि इतना क्लोज कॉन्टेस्ट होने वाला है, और क्या आपको लग रहा था कि मैं तो इजीली जीत जाऊंगा, क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी ये बात कह रही थी?
14: नहीं मैम, मुझे कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि कंपटीशन टक्कर का ही रहने वाला है। हमने उसी हिसाब से तैयारी भी की थी, और अपने कभी भी ओपोनेंट को हम हल्का तो समझना नहीं चाहिए, ना हमने समझा, इसीलिए हमने उसी तरीके की मेहनत की। और फिर कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पांस आया और हम 2100 के मार्जिन से प्रेसिडेंट पोस्ट पे जीत के आए।
13: तो कौन सी ऐसी चीज है जो एबीवीपी ने एनएसयूआई से अलग की और जो कि एबीवीपी के लिए काम कर गई?
14: मैम, जो एबीवीपी की इकाई है, जो हर एक कॉलेज में हमारी इकाई है, जो पूरा साल वो स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, छात्र हित के लिए काम करते हैं, राष्ट्र हित के लिए काम करते हैं, जो पूरा साल वो लगातार बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी स्वार्थ के जो लगातार काम करते हैं, वही हमारी जीत का कारण रहा। एनएसयूआई अगर आप देखेंगे तो वो केवल साल के आपके दो साल के आपको दो महीनों में ही दिखेगी, अगस्त और सितंबर, क्योंकि इन समय डूसू, उसके अलावा वो पूरे साल में आपको कहीं नजर नहीं आएगी।
13: फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू यू, आपने हिस्ट्री स्क्रिप्ट की है इतने सारे तरीकों से, रिकॉर्ड मैंडेट मिला है आपको, मार्जिन इतना बड़ा रहा, सबसे पहला जो नाम एकदम पक्का हो गया था, जीत जिसकी पक्की हो गई थी सुबह ही, वो आप ही थे। दीपांशु, एक वो दिन था जिस दिन आपको टिकट मना की गई थी, जिस दिन आपको टिकट नहीं दी गई एनएसयूआई की तरफ से, आपकी वीडियोज वायरल हुई, आप काफी इमोशनल थे, उस दिन आपने डिसीजन लिया कि आप इंडिपेंडेंट लड़ेंगे इलेक्शन, और एक कल का दिन था जब कोई एक ऐसा कैंडिडेट था जिसकी जीत सबसे पहले पक्की हुई थी और सबसे ज्यादा पक्की जीत थी, वो आप ही थे। कैसी रही ये जर्नी?
15: जर्नी काफी अच्छी रही, बहुत से स्ट्रगल्स इसके बीच में आए, जैसे और आपने पूछा कि भाई टिकट कटने के बाद और यहाँ जीत तक का सफर कैसा रहा, तो बहुत ही प्यार और स्टूडेंट्स ने भरोसा मुझ पर जताया, और उस भरोसे पर मैं खरा उतरूंगा, क्योंकि मेरा इलेक्शन सिर्फ मैंने नहीं लड़ा, मेरा इलेक्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर एक छात्र ने लड़ा, और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ने प्रूव किया कि अगर वो गलत होता देखेंगे तो स्टूडेंट्स अपनी आवाज उठाना जानते हैं, और उन्होंने मुझे अपनी आवाज के रूप में चुना।
13: दीपांशु, मैं आपसे जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी कंट्रोवर्सी रही उस पर भी बात करना चाहूंगी, क्योंकि कई वीडियोस वायरल हुए एनएसयूआई प्रेसिडेंट के, कई सारी थ्योरीज जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे चल रही थी, जिसमें कि उनका ये कहना था कि आपकी तरफ से कुछ शर्तें रखी गई थी और उन शर्तों को वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से आपको टिकट नहीं दी गई। उनका ये भी कहना है कि वो आपको प्रेसिडेंट की टिकट दे रहे थे लेकिन आप राजी नहीं थे प्रेसिडेंट लड़ने के लिए, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे?
15: बहुत सी ऐसी बातें थी जो सामने आती है, और आप देख सकते हैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट कर रहा हूँ, दो और कैंडिडेट थे जो इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट कर रहे थे, तो मैं साफ साफ ये कहना चाहूंगा कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी, ना तो वहां पे मैनेजमेंट हो पाई चीजों को लेकर, और जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे जिनका जेन जी का जिन पे भरोसा था, जो खुद स्टूडेंट जिनको सपोर्ट कर रहे थे, जो चाह रहे थे कि भाई कॉमन स्टूडेंट जिनके सपोर्ट में थे, उनको मौका नहीं मिला। आप देख सकते हैं जिस तरीके का मैंडेट सामने आया है, तो ये साफ दर्शाता है कि इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से स्टूडेंट्स का जो भरोसा था वो कहीं ना कहीं टूटा। और मैं कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी बात करते हैं हमारे जेनजीज की और छात्रों की गूंज की, तो वो बहुत अच्छा कंसेप्ट है जो स्टूडेंट्स उसे कनेक्ट करते हैं, पर कहीं ना कहीं इंटरनल पॉलिटिक्स जो एनएसयूआई के अंदर हुई, जो एनएसयूआई की लीडरशिप की वजह से हुई, उसने साफ साफ जो नुकसान एनएसयूआई को हुआ वो उस वजह से हुआ।
16: Former Vice President Hamid Ansari's remarks on Hindu right-wing communalism have triggered a fresh political confrontation, with the BJP launching a sharp attack on both Ansari and the Congress. Speaking at the A.G. Noorani Memorial Lecture in New Delhi, Ansari cited a remark attributed to Jawaharlal Nehru saying the greater danger to India was Hindu right-wing communalism rather than communism. Ansari also warned of what he described as recent challenges to civic nationalism, arguing that religious distinctions could emerge between citizens. The BJP has hit back hard, accusing the Congress of spreading anti-Hindu propaganda, calling Ansari's remarks unfortunate and demanding an apology. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, meanwhile, launched a scathing attack on former Vice President Hamid Ansari, alleging his remarks disrespect India's Sanatan traditions. Meanwhile, senior Muslim cleric and Imam body chief Umair Ahmed Ilyasi has also hit back at Ansari, accusing him of provoking Muslims and alleging a larger conspiracy behind his remarks.
17: Jawaharlal Nehru's observation in an officers' meeting of the Ministry of External Affairs and recorded for posterity by Foreign Secretary Gundevia, and I quote those words, "The danger to India, mark you, it is not communism. It is Hindu right-wing communalism."
18: कुछ लोगों की फितरत होती है कि वे अपने पद की मर्यादा को बनाए नहीं रख पाते हैं, उस मर्यादा के विपरीत अपना आचरण करना उनके जीवन की फितरत बन चुकी होती है। श्रीमान हामिद अंसारी, जो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने 5 वर्ष के अपने कार्यकाल को देश के अंदर संपन्न किया, उन्होंने कल एक वक्तव्य दिया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य था, और हम जैसे लोगों को शोभा भी नहीं देता कि हम उसका खंडन मंडन करें, लेकिन उनके जो वक्तव्य थे वह सचमुच डरावने वक्तव्य हैं, भारत के लिए, भारतीयता के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारत की परंपरा के लिए, और ये वक्तव्य दुनिया में भारत की छवि को धूमिल करने के कुत्सित प्रयासों के उस एजेंडे का हिस्सा है जो एंटी इंडिया फोर्सेस के द्वारा निरंतर निरंतर उसका दुष्प्रचार किया जाता है। उनके द्वारा शुद्ध रूप से भारत की सनातन परंपरा को कोसने, भारत की हिंदू परंपरा को अपमानित करने के वक्तव्य दिए गए और उसको आतंकवाद से जोड़ने के कुत्सित प्रयास हुए। एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति से भारत का संविधान अपेक्षा करता है कि उस पद की गरिमा के अनुरूप वह हमेशा आचरण करे।
19: ये इस प्रकार के बयान जिनको देश में उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बुलाया, उनके द्वारा जब इस प्रकार के घटिया बयान दिए जाते हैं तो उसका एक ही जवाब है कि हिंदू समाज सदैव सबको अपनाने का काम करता है, सबको सम्मान देने का काम करता है और सबके साथ समरस होकर के काम करता है। इस प्रकार के बयानों से जरूर वैमनस्यता फैलती है और एक घृणा का भाव आता है, लेकिन इस प्रकार के बयान से लगातार कभी न कभी देश के उपराष्ट्रपति रहे श्री हामिद अंसारी जी बयान देते रहे हैं जो अनुचित है, उसे स्वीकार नहीं किया।
20: अगर हिंदू हमारे हिंदुस्तान में बहुसंख्यक नहीं होता तो मेरा हिंदुस्तान न तो सेकुलर होता और न पंथ निरपेक्ष होता। जिस वक्त बंटवारा हुआ इस देश का, उसमें जो है वो हिंदू बहुसंख्यक वाला हिंदुस्तान जो है वो पंथ निरपेक्ष और सेकुलर बना, मुस्लिम बहुसंख्यक वाला पाकिस्तान जो है वो इस्लामी राष्ट्र घोषित हुआ। इतना से भी अगर ABCD नहीं समझते और इस तरह के जो है वो छल छत्रप और इस तरह के जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट करने के जो कारीगर लोग हैं, वो मुझे लगता है कि आप इस तरह के कन्फ्यूजन क्रिएट करके, जो कम्युनल कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सफल नहीं होंगे।
21: आज देश तरक्की के रास्ते पर है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर है। पिछले 12 सालों में जितना मुसलमानों ने तरक्की की है, नरेंद्र मोदी की हुकूमत में उतनी तरक्की कहीं नहीं हुई है। कांग्रेस के राज में दंगे होते थे, हजारों मुसलमान मार दिए जाते थे, कत्ल हो जाता था। आज 12 साल से कोई दंगा नहीं है, फसाद नहीं है, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा है।
22: उन्होंने कहा कि यहां पर उग्र वाम पंथ की तुलना में दक्षिणपंथी हिंदू सांप्रदायिकता अधिक खतरनाक है। यदि हिंदू सांप्रदायिक होता, यदि हिंदू कट्टर होता तो हामिद अंसारी ये बात कहने का साहस नहीं कर सकते थे। इस तरह की बातें करने वाला या तो कोई अनजान होता है या बेईमान होता है। हामिद अंसारी अनजान नहीं हो सकते, वो इन सब तथ्यों को जानते। उनके ये वक्तव्य किसी बेईमानी से कम होंगे ऐसा लगता नहीं, वो किसी हिडन एजेंडा के अंतर्गत काम करते हैं। भारत की शांति, भारत का सौहार्द, ये शायद उनके एजेंडे को सूट नहीं करता। देश की जनता उनको पहचान चुकी है, उनको जान चुकी है, इनके किसी बहकावे में आने वाली नहीं है।
0: हामिद अंसारी साहब के पहले भी उन्होंने बहुत कंट्रोवर्सी बयान दिए थे और उसके बाद फिर उन्होंने एक कंट्रोवर्सी बयान अपना मुसलमानों के नाम से दिया है। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं। आज फिर उनको मुसलमान याद आ गए। जब वो सत्ता में थे, बड़ी बड़ी पदों पर बैठे थे, तब वो सेकुलर थे, तो इस तरह का मुसलमानों का फिर इस्तेमाल करके उन्होंने जो बयान दिया है और जिस तरह से दोबारा से मुसलमानों को उकसाने का ये उन्होंने बयान दिया है, भड़काने का बयान दिया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश है।
16: The West Asia conflict is entering another dangerous phase of escalation. The Houthis now claim attacks on Saudi Arabia's capital, Riyadh. At the same time, Turkey has signaled its readiness to support Saudi Arabia. And with Hormuz already being a major flashpoint, concerns are growing over the wider impact on global shipping and energy supplies. Take a look at this report.
2: It's been 7 months since the West Asia war haunted the region and tightened its chokehold on oil supplies and refineries across the world. For the first time since the conflict began, the Houthis have targeted Saudi Arabia's capital, Riyadh. The Houthis claim to have targeted both King Khalid International Airport and Aramco facilities in Saudi Arabia. This has once again brought the Bab al-Mandeb Strait into sharp focus and raised concerns over the strategic choke point.
3: The Yemeni armed forces carried out, with the help of Almighty God, two significant military operations using a large number of ballistic and cruise missiles as well as drones. The first targeted sensitive targets in the Saudi enemy's capital, Riyadh. The second targeted the Aramco company in Yanbu. Both operations were crowned a success, resulting in massive fires at the targeted sites.
2: The attack has also raised questions over the trilateral Mecca defense pact, which involves Pakistan, Saudi Arabia and Turkey. Turkish foreign minister said on Saturday that Saudi Arabia may have military requirements due to the ongoing attacks by Yemen's Houthis and that Turkey was ready to provide assistance. But Houthi forces have threatened Pakistan and Turkey, warning them to stay out of the conflict or face consequences. Just days earlier, the Yemeni government claimed that Iran-aligned Houthi forces fired 6 ballistic missiles at the Red Sea port of Mocha on August 14th. The Houthis have established their presence across key areas and significant islands of Yemen. These locations sit along one of the world's most important maritime routes, connecting the Red Sea to the Gulf of Aden and ultimately the Indian Ocean. This makes the chokehold even more critical. The shortest maritime routes connecting West Asia to the rest of the world revolve around 3 key choke points. The Suez Canal, a narrow but vital passage for global shipping, the Bab al-Mandeb Strait, which the Houthis have threatened to disrupt, and the Strait of Hormuz, which Iran has said will remain closed until its conditions are met.
3: Today on the diplomatic front as well, our positions are completely clear, rational and non-negotiable. Our messages and conditions have been conveyed explicitly to the other side through intermediaries, and the enemies know full well that the path of deception and unilateral imposition is closed. And until these conditions are met, the inalienable rights of the Iranian nation are recognized and the Americans fulfill their commitments, there will be no possibility of a return to the previous negotiation framework or to reopen the Strait of Hormuz.
23: به شرایط پیشین مذاکره و باز شدن تنگه هرمز وجود نخواهد داشت.
2: And it's not just that. US President Donald Trump has cut short his visit to Camp David and rushed back to Washington as tensions continue to escalate. The US State Department and American embassies across West Asia have also issued security alerts. This is where the West Asia crisis meets the global economy. The question is no longer where the next strike will come from, but how far its consequences will spread. Bureau Report, India Today.
16: From the world of entertainment, this is a controversy that has indeed taken center stage. It's Katrina Kaif who's at the center of this trolling storm. After she recently was spotted in public, trolls started targeting her looks and body, even questioning her beauty. Amid the backlash, it's Salman Khan who appeared to indirectly come out in support of Katrina Kaif during a recent Big Boss Weekend Ka Vaar episode. Let's take a look.
4: Once known for her fitness, now being trolled for her post-pregnancy weight. For years, Katrina Kaif has been known for her fitness and her carefully maintained on-screen image. But after becoming a mother, the conversation around the actress has taken a very different turn. Instead of talking about her post-pregnancy glow or even her motherhood, social media users started body-shaming her. And now, two of her former co-stars, Salman Khan and Ali Zafar, have spoken out against the trolling. Katrina Kaif recently stepped out with husband Vicky Kaushal at an Ambani family's Ganesh Chaturthi celebrations. And a section of social media began commenting on a post-pregnancy weight gain, and the body shaming quickly became a talking point online. Katrina herself has not responded on the trolling so far, but someone who did speak up was her longtime friend Salman Khan. On the latest Big Boss 20 Weekend Ka Vaar, Salman spoke about the way celebrities, especially women, are targeted for their appearance. And while he did not take Katrina's name, his comments came right in the middle of the backlash she was facing. Salman questioned why a woman should be trolled simply because she gained weight after pregnancy. His point was simple, that pregnancy changes a woman's body and there should not be an expectation that she immediately returned to her pre-pregnancy appearance. But Salman wasn't the only one to call out the trolling. Pakistani actor and singer Ali Zafar, who worked with Katrina in Meri Brother Ki Dulhan, also came out in her support. In a video addressing the issue, Ali Zafar said that society needs to look inward and question the standards it creates for women's bodies. Meanwhile, Katrina's fans have also pushed back against the trolling. Many users have reminded people that pregnancy and motherhood naturally bring physical changes and that a woman's body does not need to look the same before and after childbirth. Because after years of seeing actresses judged for being too thin, too heavy, too old, too young, the question is not really about Katrina's weight. It is about why a woman's body becomes public property the moment she steps into the spotlight. Bureau Report, India Today.
16: On that note, viewers, we're wrapping up the bulletin right here, but do stay tuned to India Today as we keep bringing you all the latest updates on the top stories through the evening. Thank you for watching.
5: You are watching India Today.

0: राहुल गांधी जो मिमिक्री कर रहे हैं, मैं तो ऐसा मानता हूं कि राहुल गांधी जी ने पार्टी को छोड़कर स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी को तो उन्होंने बेरोजगार कर दिया है, कम से कम स्टैंड अप कॉमेडियन का रोजगार उनको मिले।
1: अंधभक्त तो ढूंढते हैं सब लोग, जहां भी है तो अंधभक्तों की बात होती है। ये देश अंधभक्तों का मेला बन गया है, मोदी जी ने उनको अंधभक्तों का मेला बनाया है। लेकिन कल छात्रों की गुंज में हमने जो चित्र देखा है इंदौर में, वो बहुत ही उत्साहवर्धक रहा है। पूरे देश में ये छात्रों की गुंज हमें सुनाई दे रही है, और देश में परिवर्तन करने के लिए ये गुंज बहुत मदद करेगी।

0: are watching India Today.
1: In the Delhi SIRO, the Election Commission has issued notices to several high-profile figures across the national capital. Those flagged for discrepancies include External Affairs Minister S. Jaishankar and his wife, former Army Chief Upendra Dwivedi, CBI Director Praveen Sood, former Supreme Court Justice Ranjana Desai, Congress leader Udit Raj and former Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia. Discrepancies leading to these notices include names being unmapped with previous electoral rolls, name mismatches and parental age inconsistencies. Now, the Delhi Chief Electoral Officer has clarified that issue of notice does not mean that their names will be deleted from the electoral rolls of the NCT of Delhi. The poll body has explained that notices are being issued to correct their data and that no name can be deleted without giving an opportunity of being heard and an appealable order. Earlier, former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and four members of his family served electoral roll verification notices under the unmapped with last SIR category. This came after Kejriwal had publicly questioned the SIR exercise over deletions from the draft electoral roll. Kejriwal steps up his attack on the SIR, calling it an attempt to reduce India's population. In fact, he went a step further, claiming the exercise could bring the population of the country down from the current 140 crores to 50 crores, while alleging 47 lakh names are missing from the draft voter roll. Meanwhile, Delhi Chief Minister Rekha Gupta's electoral details were flagged also for a discrepancy during the SIR process, prompting a notice. But after physical verification by the BLO, her documents and details were checked out and then validated.
2: ये SIR का नया प्रोविजन इलेक्शन कमीशन ने भारतीय जनता पार्टी की दबाव में किया है और अभी तक 12-13 करोड़ वोटर्स डिलीट कर दिए गए। ये तो लोकतंत्र को खत्म करने की एक बड़ी साजिश है और ये इस बात का बड़ा सबूत है कि जब एलके अडवाणी के पास नोटिस जाएगा, देश के फॉरेन सेक्रेटरी के पास जाएगा, तो इससे अंदाजा किया जा सकता है कि ये प्रोसेस जो है, वो कितना गलत प्रोसेस है।
3: एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, और वो इतना निष्पक्ष है, उसमें उतनी पारदर्शिता है कि जो नोटिसेस दिए गए हैं, उसमें बड़े-बड़े लीडर्स के नाम हैं, और चाहे वो कपिल सिब्बल हों, चाहे हमारी रेखा गुप्ता जी हों, चाहे लाल कृष्ण अडवाणी जी हों और चाहे अरविंद केजरीवाल जी हों, उन सबको दिए गए हैं क्योंकि एक रूल ऑफ लॉ है, उसके तहत एक कानूनी प्रक्रिया है, उसके तहत सबको बताना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है, नोटिसेस जाते हैं और आप सही डॉक्यूमेंट्स देते हैं और बात साफ तौर से नई तरह से अपडेट हो जाती है इलेक्टोरल लिस्ट में। लेकिन उसमें भी राजनीति देखिए, बजाय ये समझने के कि लाल कृष्ण अडवाणी जी को भी गया है भाई, एस जयशंकर जी को भी गया है, जो हमारे मंत्री एक्सटर्नल अफेयर्स के, लेकिन आप अपनी बात करके अपना रोना अपने मातम शुरू कर दिया है।
4: ये बीएलओ को फॉर्म दिया, मेरे दस्तखत हैं यहां और बीएलओ के दस्तखत, तो मैचिंग हो गया, तो इसका मतलब मेरा मैच करता है, तो फिर मैं नोटिस कैसे आया। मैं ज्ञानेश कुमार जी से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने नोटिस कैसे दिया। मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं, 1992 में मैं राज्यसभा का मेंबर था। इतना बड़ा घोटाला हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ।
1: राहुल गांधी's छात्रों की गूंज has now stepped into a new political arena. At the Indore session, Rahul Gandhi was seen on a stage with a comedian, where the two appeared to mock Prime Minister Modi's gesture towards an elderly woman when he asked someone to give her a chair. The BJP called it shameful and disgusting. The party posted a video of Prime Minister Modi with his mother and said Rahul Gandhi has now stooped to a new low. Here is a report on the same. Take a look.
5: और बताइए, और बताइए थोड़ा। माँ को कुर्सी दो, माँ, माँ।
6: An attempt to mock Prime Minister Modi by Congress has ended up creating another controversy, leaving many questioning the Congress's intent and criticizing the party. It all happened at Rahul Gandhi's Chhatron Ki Goonj event in Indore on Saturday. The Congress invited comedian Pulkit Mani to Rahul's event. The comedian performed a satirical mimicry of Prime Minister Modi and mocked an incident involving the Prime Minister and an old lady whom he had referred to as Ma.
7: Aur bataiye, ha? Aur bataiye thoda. Ma ko kursi do. Ma, ma.
6: Just last month, in an attempt to mock Modi, the Congress raked up Italian Prime Minister Giorgia Meloni and made what the BJP called distasteful comments.
8: इनके पता नहीं कहाँ से इनके दिमाग में घुस गया. अब अजीब चीजें घुस जाती हैं. But इनके माइंड में घुस गया कि foreign policy is this. अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी.
9: एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ. मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था.
6: The BJP hammered the Congress over the controversy, accusing it of stooping lower and lower. The Congress defended its leader and the act.
10: राहुल गांधी जी, वो एक कार्यक्रम लेते हैं, छात्रों के बीच जाते हैं. नाम तो उन्होंने छात्रों की गूंज दिया है, लेकिन वो झूठ बोलते हैं, अपमान करते हैं, भारतीय संस्कृति का भी अपमान करते हैं.
11: मैं समझता हूँ ये तो प्रहलाद जोशी समझ नहीं पाते. भाषा का ज्ञान नहीं उनको, विषय का ज्ञान नहीं. इस तरह की बातें बेतुकी वो बोल जाते हैं. वो पहली बार नहीं बोल रहे, वो आदतन बेतुकी बातें बोलते हैं. माँ का कहाँ से जिक्र आ गया? मैं तो दो बार तीन बार देख चुका राहुल जी का, माँ का तो कहीं जिक्र ही नहीं आया था.
12: राहुल गांधी जी को सुनने के लिए कोई आने को तैयार नहीं है. 100 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं. तो आपने देखा कि नेहा सिंह राठौर को जो है उन्होंने बुला लिया गुजरात में. और आज जो है, कल जब मैं देख रहा था तो स्टैंड अप कॉमेडियन जो है उसको लेके इंदौर में घूम रहे हैं.
13: राजनीति के अंदर जो है, जब आप शीर्ष पदों पर होते हैं तो आपको इस तरीके की चीजों को स्वाभाविक रूप में लेना पड़ता है. लोकतंत्रवादी नहीं है आप. लोकतंत्र के अंदर इन चीजों को आपको part of game samajhna padta.
6: It is not the first time that the Congress, in an attempt to target Prime Minister Modi, has gone too far and ended up scoring an own goal. The grand old party seriously needs to consider whether such controversies can be avoided. With Piyush Mishra and Ravish Pal, Bureau Report, India Today.
1: The scripted history shattered the blueprint and no other channel has them. We are going completely unfiltered with the new faces of the Delhi University Student Union, Students Politics. The winner and the game changer, India Today's Anjali Pandey with these twin campus exclusives, the campus king, Yash Dabbas, and the defiant rebel, Deepanshu Shokin.
14: काफी कांटे की टक्कर थी आपके बीच और एनएसयूआई के जो कैंडिडेट थे विजय मीना, उनके बीच. हर राउंड के बाद ऐसा लग रहा था कि कभी कोई आगे हो जा रहा था, कभी कोई आगे हो जा रहा था. काफी कम ऐसा होता है कि एंड के राउंड्स तक भी ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि कौन जीतने वाला है. तो आपको उस टाइम पे जब आप काउंटिंग बूथ पे प्रेजेंट थे, आपको उस टाइम पे कैसा लग रहा था जब हर राउंड के बाद रिजल्ट कभी इस तरफ जा रहा था, कभी उस तरफ जा रहा था?
15: मैम, मैं काफी रिलैक्स था. मुझे कहीं ना कहीं आत्मविश्वास था कि अभी एक आधे जो हमारे कैंपसेस है वो खुलने बाकी है, उनका रिजल्ट आना बाकी है, और उनका रिजल्ट आते ही मैं लीड मेंटेन कर लूंगा. और जैसे ही मुझे लगा कि हाँ उन कैंपसेस की वोटिंग खुली है, तो उसके बाद हमने एकदम से 2000 का मार्जिन क्लेम किया.
14: जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था यश, तो ये कहा जा रहा था कि यश देबास क्लियर विनर है, आज ही प्रेसिडेंट डिक्लेयर हो गया है जब एनएसयूआई ने अपनी टिकट्स अनाउंस करी। उसके बाद सब कह रहे थे कि इस बार तो यश देबास ही जीतने वाला है, लेकिन कल जब काउंटिंग हुई तो हमने देखा कि कैसे काफी क्लोज कॉन्टेस्ट था, एनएसयूआई ने स्ट्रांग कमबैक किया। क्या आपको उम्मीद थी कि इतना क्लोज कॉन्टेस्ट होने वाला है, और क्या आपको लग रहा था कि मैं तो इजीली जीत जाऊंगा, क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी ये बात कह रही थी?
15: नहीं मैम, मुझे कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि कंपटीशन टक्कर का ही रहने वाला है। हमने उसी हिसाब से तैयारी भी की थी, और अपने कभी भी ओपोनेंट को हम हल्का तो समझना नहीं चाहिए, ना हमने समझा, इसीलिए हमने उसी तरीके की मेहनत की, और फिर कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पांस आया और हम 2100 के मार्जिन से प्रेसिडेंट पोस्ट पे जीत गए।
14: तो कौन सी ऐसी चीज है जो एबीवीपी ने एनएसयूआई से अलग की और जो कि एबीवीपी के लिए काम कर गई?
15: मैम, जो एबीवीपी की इकाई है, जो हर एक कॉलेज में हमारी इकाई है, जो पूरा साल वो स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, छात्र हित के लिए काम करते हैं, राष्ट्र हित के लिए काम करते हैं, जो पूरा साल वो लगातार बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी स्वार्थ के जो लगातार काम करते हैं, वही हमारी जीत का कारण रहा। एनएसयूआई अगर आप देखेंगे तो वो केवल साल के आपके दो साल के आपको दो महीनों में ही दिखेगी, अगस्त और सितंबर, क्योंकि इन समय डुसू, उसके अलावा वो पूरे साल में आपको कहीं नजर नहीं आएगी।
14: फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू यू, आपने हिस्ट्री स्क्रिप्ट की है इतने सारे तरीकों से, रिकॉर्ड मैंडेट मिला है आपको, मार्जिन इतना बड़ा रहा, सबसे पहला जो नाम एकदम पक्का हो गया था, जीत जिसकी पक्की हो गई थी सुबह ही, वो आप ही थे। दीपांशु, एक वो दिन था जिस दिन आपको टिकट मना की गई थी, जिस दिन आपको टिकट नहीं दी गई एनएसयूआई की तरफ से, आपकी वीडियोज वायरल हुई, आप काफी इमोशनल थे, उस दिन आपने डिसीजन लिया कि आप इंडिपेंडेंट लड़ेंगे इलेक्शन, और एक कल का दिन था जब कोई एक ऐसा कैंडिडेट था जिसकी जीत सबसे पहले पक्की हुई थी और सबसे ज्यादा पक्की जीत थी, वो आप ही थे। कैसी रही ये जर्नी?
16: जर्नी काफी अच्छी रही, बहुत से स्ट्रगल्स इसके बीच में आए, जैसे और आपने पूछा कि भाई टिकट कटने के बाद और यहाँ जीत तक का सफर कैसा रहा, तो बहुत ही प्यार और स्टूडेंट्स ने भरोसा मुझ पर जताया, और उस भरोसे पर मैं खरा उतरूंगा, क्योंकि मेरा इलेक्शन सिर्फ मैंने नहीं लड़ा, मेरा इलेक्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर एक छात्र ने लड़ा, और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ने प्रूव किया कि अगर वो गलत होता देखेंगे तो स्टूडेंट्स अपनी आवाज उठाना जानते हैं, और उन्होंने मुझे अपनी आवाज के रूप में चुना।
14: दीपांशु, मैं आपसे जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी कंट्रोवर्सी रही उस पर भी बात करना चाहूंगी, क्योंकि कई वीडियोस वायरल हुए एनएसयूआई प्रेसिडेंट के, कई सारी थ्योरीज जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे चल रही थी, जिसमें कि उनका ये कहना था कि आपकी तरफ से कुछ शर्तें रखी गई थी और उन शर्तों को वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से आपको टिकट नहीं दी गई। उनका ये भी कहना है कि वो आपको प्रेसिडेंट की टिकट दे रहे थे लेकिन आप राजी नहीं थे प्रेसिडेंट लड़ने के लिए, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे?
16: बहुत सी ऐसी बातें थी जो सामने आती है, और आप देख सकते हैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट कर रहा हूँ, दो और कैंडिडेट थे जो इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट कर रहे थे, तो मैं साफ साफ ये कहना चाहूंगा कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी, ना तो वहां पे मैनेजमेंट हो पाई चीजों को लेकर, और जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे जिनका जेनजी का जिनपे भरोसा था, जो खुद स्टूडेंट जिनको सपोर्ट कर रहे थे, जो चाह रहे थे कि भाई कॉमन स्टूडेंट जिनके सपोर्ट में थे, उनको मौका नहीं मिला। आप देख सकते हैं जिस तरीके का मैंडेट सामने आया है, तो ये साफ दर्शाता है कि इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से स्टूडेंट्स का जो भरोसा था वो कहीं ना कहीं टूटा। और मैं कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी बात करते हैं हमारे जेनजीज की और छात्रों की गूंज की, तो वो बहुत अच्छा कंसेप्ट है जो स्टूडेंट्स उसे कनेक्ट करते हैं, पर कहीं ना कहीं इंटरनल पॉलिटिक्स जो एनएसयूआई के अंदर हुई, जो एनएसयूआई की लीडरशिप की वजह से हुई, उसने साफ साफ जो नुकसान एनएसयूआई को हुआ वो उस वजह से हुआ।
1: Former Vice President Hamid Ansari's remarks on Hindu right-wing communalism have triggered a fresh political confrontation, with the BJP launching a sharp attack on both Ansari and the Congress. Speaking at the A.G. Noorani Memorial Lecture in New Delhi, Ansari cited a remark attributed to Jawaharlal Nehru saying the greater danger to India was Hindu right-wing communalism rather than communism. Ansari also warned of what he described as recent challenges to civic nationalism, arguing that religious distinctions could emerge between citizens. The BJP has hit back hard, accusing the Congress of spreading anti-Hindu propaganda, calling Ansari's remarks unfortunate and demanding an apology. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, meanwhile, launched a scathing attack on former Vice President Hamid Ansari, alleging his remarks disrespect India's Sanatan traditions. Meanwhile, senior Muslim cleric and Imam Body Chief Umair Ahmed Ilyasi has also hit back at Ansari, accusing him of provoking Muslims and alleging a larger conspiracy behind his remarks.
17: Jawaharlal Nehru's observation in an officers' meeting of the Ministry of External Affairs and recorded for posterity by Foreign Secretary Gundevia, and I quote those words, "The danger to India, mark you, it is not communism. It is Hindu right-wing communalism."
18: कुछ लोगों की फितरत होती है कि वे अपने पद की मर्यादा को बनाए नहीं रख पाते हैं, उस मर्यादा के विपरीत अपना आचरण करना उनकी जीवन की फितरत बन चुकी होती है। श्रीमान हामिद अंसारी, जो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने 5 वर्ष के अपने कार्यकाल को देश के अंदर संपन्न किया, उन्होंने कल एक वक्तव्य दिया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य था, और हम जैसे लोगों को शोभा भी नहीं देता कि हम उसका खंडन मंडन करें, लेकिन उनके जो वक्तव्य थे वो सचमुच डरावने वक्तव्य हैं, भारत के लिए, भारतीयता के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारत की परंपरा के लिए, और ये वक्तव्य दुनिया में भारत की छवि को धूमिल करने के कुत्सित प्रयासों के उस एजेंडे का हिस्सा है जो एंटी इंडिया फोर्सेस के द्वारा निरंतर निरंतर उसका दुष्प्रचार किया जाता है। उनके द्वारा शुद्ध रूप से भारत की सनातन परंपरा को कोसने, भारत की हिंदू परंपरा को अपमानित करने के वक्तव्य दिए गए और उसको आतंकवाद से जोड़ने के कुत्सित प्रयास हुए। एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति से भारत का संविधान अपेक्षा करता है कि उस पद की गरिमा के अनुरूप वह हमेशा आचरण करे।
19: ये इस प्रकार के बयान जिनको देश में उपराष्ट्रपति की कुर्सी आया, उनके द्वारा जब इस प्रकार के घटिया बयान दिए जाते हैं तो उसका एक ही जवाब है कि हिंदू समाज सदैव सबको अपनाने का काम करता है, सबको सम्मान देने का काम करता है और सबके साथ समरस होकर के काम करता है। इस प्रकार के बयानों से जरूर वैमनस्यता फैलती है और एक घृणा का भाव आता है, लेकिन इस प्रकार के बयान से लगातार कभी न कभी देश के उपराष्ट्रपति रहे श्री हामिद अंसारी जी बयान देते रहे हैं जो अनुचित है, उसे स्वीकार नहीं किया।
20: अगर हिंदू हमारे हिंदुस्तान में बहुसंख्यक नहीं होता तो मेरा हिंदुस्तान न तो सेकुलर होता और न पंथ।

0: मुस्लिम बहुसंख्यक वाला पाकिस्तान जो है वो इस्लामी राष्ट्र घोषित हुआ। इतना से भी अगर एबीसीडी नहीं समझते और इस तरह के जो है वो छल छत्रप और इस तरह के जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट करने के जो कारीगर लोग हैं, वो मुझे लगता है कि आप इस तरह के कन्फ्यूजन क्रिएट करके, जो कम्युनल कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सफल नहीं होंगे।
1: आज देश तरक्की के रास्ते पर है, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के रास्ते पर है। पिछले 12 सालों में जितना मुसलमानों ने तरक्की की है नरेंद्र मोदी की हुकूमत में, उतनी तरक्की कहीं नहीं हुई है। कांग्रेस के राज में दंगे होते थे, हजारों मुसलमान मार दिए जाते थे, कत्ल हो जाता था। आज 12 साल से कोई दंगा नहीं है, फसाद नहीं है, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा है।
2: उन्होंने कहा कि यहां पर उग्र वाम पंथ की तुलना में दक्षिणपंथी हिंदू सांप्रदायिकता अधिक खतरनाक है। यदि हिंदू सांप्रदायिक होता, यदि हिंदू कट्टर होता, तो हामिद अंसारी ये बात कहने का साहस नहीं कर सकते थे। इस तरह की बातें करने वाला या तो कोई अनजान होता है या बेईमान होता है। हामिद अंसारी अनजान नहीं हो सकते, वो इन सब तथ्यों को जानते। उनके ये वक्तव्य किसी बेईमानी से कम होंगे ऐसा लगता नहीं। वो किसी हिडन एजेंडा के अंतर्गत काम करते हैं। भारत की शांति, भारत का सौहार्द, ये शायद उनके एजेंडे को सूट नहीं करता। देश की जनता उनको पहचान चुकी है, उनको जान चुकी है, इनके किसी बहकावे में आने वाली नहीं है।
3: हामिद अंसारी साहब के पहले भी उन्होंने बहुत कंट्रोवर्सी बयान दिए थे और उसके बाद फिर उन्होंने एक कंट्रोवर्सी बयान अपना मुसलमानों के नाम से दिया है। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं। आज फिर उनको मुसलमान याद आ गए। जब वो सत्ता में थे, बड़ी बड़ी पदों पर बैठे थे, तब वो सेकुलर थे, तो इस तरह का मुसलमानों का फिर इस्तेमाल करके उन्होंने जो बयान दिया है और जिस तरह से दोबारा से मुसलमानों को उकसाने का ये उन्होंने बयान दिया है, भड़काने का बयान दिया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश है।
4: The West Asia conflict is entering another dangerous phase of escalation. The Houthis now claim attacks on Saudi Arabia's capital, Riyadh. At the same time, Turkey has signaled its readiness to support Saudi Arabia. And with Hormuz already being a major flashpoint, concerns are growing over the wider impact on global shipping and energy supplies. Take a look at this report.
5: It's been 7 months since the West Asia war haunted the region and tightened its chokehold on oil supplies and refineries across the world. For the first time since the conflict began, the Houthis have targeted Saudi Arabia's capital, Riyadh. The Houthis claim to have targeted both King Khalid International Airport and Aramco facilities in Saudi Arabia. This has once again brought the Bab al-Mandeb Strait into sharp focus and raised concerns over the strategic choke point.
6: The Yemeni armed forces carried out, with the help of Almighty God, two significant military operations using a large number of ballistic and cruise missiles as well as drones. The first targeted sensitive targets in the Saudi enemy's capital, Riyadh. The second targeted the Aramco company in Yanbu. Both operations were crowned a success, resulting in massive fires at the targeted sites.
5: The attack has also raised questions over the trilateral Mecca defense pact, which involves Pakistan, Saudi Arabia and Turkey. Turkish foreign minister said on Saturday that Saudi Arabia may have military requirements due to the ongoing attacks by Yemen's Houthis and that Turkey was ready to provide assistance. But Houthi forces have threatened Pakistan and Turkey, warning them to stay out of the conflict or face consequences. Just days earlier, the Yemeni government claimed that Iran-aligned Houthi forces fired 6 ballistic missiles at the Red Sea port of Mocha on August 14th. The Houthis have established their presence across key areas and significant islands of Yemen. These locations sit along one of the world's most important maritime routes, connecting the Red Sea to the Gulf of Aden and ultimately the Indian Ocean. This makes the chokehold even more critical. The shortest maritime

0: are watching India Today.
1: In the Delhi SIRO, the Election Commission has issued notices to several high-profile figures across the national capital. Those flagged for discrepancies include External Affairs Minister S. Jaishankar and his wife, former Army Chief Upendra Dwivedi, CBI Director Praveen Sood, former Supreme Court Justice Ranjana Desai, Congress leader Udit Raj and former Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia. Discrepancies leading to these notices include names being unmapped with previous electoral rolls, name mismatches and parental age inconsistencies. Now, the Delhi Chief Electoral Officer has clarified that issue of notice does not mean that their names will be deleted from the electoral rolls of the NCT of Delhi. The poll body has explained that notices are being issued to correct their data and that no name can be deleted without giving an opportunity of being heard and an appealable order. Earlier, former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and four members of his family served electoral roll verification notices under the unmapped with last SIR category. This came after Kejriwal had publicly questioned the SIR exercise over deletions from the draft electoral roll. Kejriwal steps up his attack on the SIR, calling it an attempt to reduce India's population. In fact, he went a step further, claiming the exercise could bring the population of the country down from the current 140 crores to 50 crores, while alleging 47 lakh names are missing from the draft voter roll. Meanwhile, Delhi Chief Minister Rekha Gupta's electoral details were flagged also for a discrepancy during the SIR process, prompting a notice. But after physical verification by the BLO, her documents and details were checked out and then validated.
2: यह SIR का नया प्रोविजन इलेक्शन कमीशन ने भारतीय जनता पार्टी की दबाव में किया है और अभी तक 12-13 करोड़ वोटर्स डिलीट कर दिए गए। ये तो लोकतंत्र को खत्म करने की एक बड़ी साजिश है और ये इस बात का बड़ा सबूत है कि जब एलके अडवाणी के पास नोटिस जाएगा देश के फॉरेन सेक्रेटरी के पास जाएगा तो इससे अंदाजा किया जा सकता है कि ये प्रोसेस जो है वो कितना गलत प्रोसेस है
3: एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है और वो इतना निष्पक्ष है उसमें इतनी पारदर्शिता है कि जो नोटिसेस दिए गए हैं उसमें बड़े बड़े लीडर्स के नाम हैं और चाहे वो कपिल सिब्बल हों चाहे हमारी रेखा गुप्ता जी हों चाहे लाल कृष्ण अडवाणी जी हों और चाहे अरविंद केजरीवाल जी हों उन सबको दिए गए हैं क्योंकि एक रूल ऑफ लॉ है उसके तहत एक कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत सबको बताना पड़ता है वेरीफाई करना पड़ता है नोटिसेस जाते हैं और आप सही डॉक्यूमेंट्स देते हैं और बात साफ तौर से नई तरह से अपडेट हो जाती है इलेक्टोरल लिस्ट में लेकिन उसमें भी राजनीति देखिए बजाय ये समझने के कि लाल कृष्ण अडवाणी जी को भी गया है भाई एस जयशंकर जी को भी गया है जो हमारे मंत्री एक्सटर्नल अफेयर्स के लेकिन आप अपनी बात करके अपना रोना आपने मातम शुरू कर दिया है
4: ये बीएलओ को फॉर्म दिया मेरे दस्तखत हैं यहां और बीएलओ के दस्तखत तो मैचिंग हो गया तो इसका मतलब मेरा मैच करता है तो फिर मैं नोटिस कैसे आया मैं ज्ञानेश कुमार जी से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने नोटिस कैसे दिया मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं 1992 में मैं राज्यसभा का मेंबर था इतना बड़ा घोटाला हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ आज तक नहीं हुआ
1: राहुल गांधीज छात्रों की गूंज हैज नाउ स्टेप्ड इनटू अ न्यू पॉलिटिकल अरेना एट द इंदौर सेशन राहुल गांधी वाज सीन ऑन अ स्टेज विथ अ कॉमेडियन where the two appeared to mock Prime Minister Modi's gesture towards an elderly woman when he asked someone to give her a chair. The BJP called it shameful and disgusting. The party posted a video of Prime Minister Modi with his mother and said Rahul Gandhi has now stooped to a new low. Here is a report on the same. Take a look.
5: Aur bataiye. Ha? Aur bataiye thoda. Ma ko kursi do. Ma. Ma.
6: An attempt to mock Prime Minister Modi by Congress has ended up creating another controversy, leaving many questioning the Congress's intent and criticizing the party. It all happened at Rahul Gandhi's Chhatron Ki Goonj event in Indore on Saturday. The Congress invited comedian Pulkit Mani to Rahul's event. The comedian performed a satirical mimicry of Prime Minister Modi and mocked an incident involving the Prime Minister and an old lady whom he had referred to as Ma.
5: Aur bataiye, aur bataiye thoda. Ma ko kursi do. Ma, ma.
6: Just last month, in an attempt to mock Modi, the Congress raked up Italian Prime Minister Giorgia Meloni and made what the BJP called distasteful comments.
5: इनके इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया. अब अजीब चीजें घुस जाती हैं. But इनके माइंड में घुस गया कि foreign policy is this. अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी.
7: एक चीज पूछ सकता हूं?
5: हाँ.
7: मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था.
6: The BJP hammered the Congress over the controversy, accusing it of stooping lower and lower. The Congress defended its leader and the act.
8: Rahul Gandhi ji, वो एक कार्यक्रम लेते हैं, छात्रों के बीच जाते हैं. नाम तो उन्होंने छात्रों की गूंज दिया है, लेकिन वो झूठ बोलते हैं, अपमान करते हैं, भारतीय संस्कृति का भी अपमान करते हैं.
9: मैं समझता हूँ ये तो प्रहलाद जोशी समझ नहीं पाते. भाषा का ज्ञान नहीं उनको, विषय का ज्ञान नहीं. इस तरह की बातें बेतुकी वो बोल जाते हैं. वो पहली बार नहीं बोल रहे, वो आदतन बेतुकी बातें बोलते हैं. माँ का कहाँ से जिक्र आ गया? मैं तो दो बार तीन बार देख चुका राहुल जी का, माँ का तो कहीं जिक्र ही नहीं आया था.
10: राहुल गांधी जी को सुनने के लिए कोई आने को तैयार नहीं.